قل الله.

इनसे पूछो तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई ऐसा भी है जो हक की तरफ रहनुमाई करता हो। कहो वो सिर्फ अल्लाह है जो हक की तरफ रहनुमाई करता है। फिर भला बताओ जो हक की तरफ रहनुमाई करता है वो इसका ज्यादा मुस्तहक है कि उसकी पैरवी की जाए या वो जो खुद राह नहीं पाता इल्ला ये कि उसकी रहनुमाई की जाए। आखिर तुम्हें क्या हो गया है, कैसे उल्टे उल्टे फैसले करते हो। हकीकत यह है कि इनमें से अक्सर लोग महज कयास और गुमान के पीछे चले जा रहे हैं, हालांकि गुमान हक की जरूरत को कुछ भी पूरा नहीं करता। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। और यह कुरान वो चीज नहीं है जो अल्लाह की वही और तालीम के बगैर तसनीफ कर लिया जाए, बल्कि ये तो जो कुछ पहले आ चुका था उसकी तस्दीक और अल किताब की तफसील है। इसमें कोई शक नहीं कि ये फरमा रवाए कायनात की तरफ से है। क्या ये लोग कहते हैं कि पैगंबर ने इसे खुद तसनीफ कर लिया है? कहो अगर तुम अपने इस इल्जाम में सच्चे हो तो एक सूरत इस जैसी तसनीफ कर लाओ और एक खुदा को छोड़कर जिस जिस को बुला सकते हो मदद के लिए बुला लो। असल ये है कि जो चीज इनके इल्म की गिरफ्त में नहीं आई और जिसका माल भी इनके सामने नहीं आया उसको उन्होंने खामखा अटकल पच्चू झुटला दिया। इस तरह तो इनसे पहले के लोग भी झुटला चुके हैं। फिर देख लो उन जालिमों का क्या अंजाम हुआ। इनमें से कुछ लोग ईमान लाएंगे और कुछ नहीं लाएंगे, और तेरा रब इन मुफसिदों को खूब जानता है। अगर ये तुझे झुटलाते हैं तो कह दे कि मेरा अमल मेरे लिए है और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए, जो कुछ मैं करता हूं उसकी जिम्मेदारी से तुम बरी हो और जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूं।

आपस में जान पहचान करने को ठहरे थे, उस वक्त तहकीक हो जाएगा कि फिल वाके सख्त घाटे में रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुठलाया और हरगिज वो राह रास्त पर न थे। जिन बुरे नताइज से हम इन्हें डरा रहे हैं उनका कोई हिस्सा हम तेरे जीते जी दिखा दें या उससे पहले ही तुझे उठा ले, बहरहाल इन्हें आना हमारी ही तरफ है और जो कुछ ये कर रहे हैं उस पर अल्लाह गवाह है। हर उम्मत के लिए एक रसूल है, फिर जब किसी उम्मत के पास उसका रसूल आ जाता है तो उसका फैसला पूरे इंसाफ के साथ चुका दिया जाता है और उस पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाता। कहते हैं अगर तुम्हारी ये धमकी सच्ची है तो आखिर ये कब पूरी होगी? कहो मेरे इख्तियार में तो खुद अपना नफा और जरर भी नहीं, सब कुछ अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ है। हर उम्मत के लिए मोहलत की एक मुद्दत है, जब ये मुद्दत पूरी हो जाती है तो घड़ी भर की तकदीमो ताखीर भी नहीं होती। इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह का आजाब अचानक रात को या दिन को आ जाए तो तुम क्या कर सकते हो? आखिर ये ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए मुजरिम जल्दी मचाएं? क्या जब वो तुम पर आ पड़े उसी वक्त तुम उसे मानोगे? अब बचना चाहते हो हालांकि तुम खुद ही उसके जल्दी आने का तकाजा कर रहे थे। फिर जालिमों से कहा जाएगा अब हमेशा के आदाब का मजा चखो, जो कुछ तुम कमाते रहे हो उसकी पादाश के सिवा और क्या बदला तुमको दिया जा सकता है।

0: सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं।
1: वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ। और अभी तक की कहानी में हमने बहुत कुछ समझाने और समझने की कोशिश की है, आइए अब आगे का सफर करते हैं। भाई, पब्लिशर्स लिस्टिंग के मुताबिक ये काम बारह पेपर बैक, हार्ड कवर, ऑडियो बुक के तरीके से आता रहा है और एनिवर्सरी एडिशंस में भी मौजूद है। आइए अब जानते हैं कि व्हाई द बुक वाज रिटन। जब मिच ने टीवी पर नाइट लाइन में मौरी को देखा, उनके अंदर कुछ एहसास हुआ। जब वो अपनी बिजी मटेरियल

क्राइसिस वाली जिंदगी से थकी हुई थी। न्यूज़पेपर स्ट्राइक ने वक्त दिया और मिच हर ट्यूसडे बोस्टन के करीब मॉरी के घर आने लगी। ये मुलाकातें एक आखिरी क्लास बन गईं, जिसमें नोट्स नहीं जिंदगी के सवाल जवाब थे। दोस्तों, कुछ मेन थीम्स हैं, उनको कुछ बुलेट पॉइंट्स में मैंने लिखने की कोशिश की है ताकि आप लोगों तक मैसेज सही पहुंचे। तो आइए एक एक करके उनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इसका जो लुबे लुबाब है वो ये है कि मोहब्बत और रिश्ते। मौरी कहती हैं कि सबसे अहम चीज मोहब्बत देना और लेना है। वो कहती हैं कि मोहब्बत करो वरना मिट जाओ। इसका मतलब है कि जिंदगी की असली रोशनी रिश्तों से आती है, फैमिली, दोस्तों और कम्युनिटी से। वहीं मौत को करीब समझना। मौरी सिखाती हैं कि जब तुम मौत को अपने साथ बैठा कर देखते हो तो जिंदगी की तरतीब बदल जाती है। फिर हम वक्त का इस्तेमाल बेहतर करते हैं लोगों को अहमियत देने के लिए। और वहीं काम और मादियत। मौरी पॉपुलर कल्चर की मटेरियल रेस पर सवाल उठाती हैं कि फेम, पैसा और स्टेटस अक्सर दिल को तन्हा छोड़ देता है। वहीं रोशनी ये डाली गई है कि अपनी कल्चर बनाइए जहां कीमत, मोहब्बत, रहमत, इमदाद और इंसानी राबता कायम रहे। एजिंग और कदर के नजरिए से देखें तो बुढ़ापा दुश्मन नहीं, ये दानिशमंदी लाता है। मौरी के लिए हर उम्र का एक हुस्न है अगर हम उसको गौर से देखें। और वहीं आखिर में माफी और जज्बात के सिलसिले में वो लिखती हैं कि दुख को पूरी तरह महसूस करा जाए और फिर उसे रिहाई दी जाए। माफी दीजिए दूसरों को भी और अपने आप को भी ताकि दिल हल्का हो जाए। वहीं दोस्तों कुछ हाइलाइट्स हैं इसके अंदर, जैसे कि फर्स्ट ट्यूसडे के अंदर दुनिया पर बात हुई। मौरी अखबार पर नजर रखती हैं, उन्हें लगता है कि जब वो तकलीफ में हैं तो दुनिया की तकलीफ और ज्यादा महसूस हो सकती है। मिडिल ट्यूसडे की बात करें तो मिच देखते हैं कि काम की दौड़ में वो अपनी रूह से दूर हो गए हैं। मौरी उसे याद दिलाती हैं कि असली जीत इंसानी राबते में है, ना कि सिर्फ हेडलाइंस में। और लास्ट ट्यूसडे में क्लास का आखिरी सबक छोटे अल्फाज में नजर आ जाता है कि जिंदगी को मोहब्बत के निजाम पर चलाना चाहिए और मौत से दोस्ती रखना चाहिए। दोस्तों, किताब का लहजा सीधा दिल से और एक स्टूडेंट का एक उस्ताद से है जहां पर ये क्लास जारी है। पब्लिशर एक्सपर्ट में सब्जेक्ट को द मीनिंग ऑफ लाइफ कहा गया है और हर ट्यूसडे एक नई गुफ्तगू जारी रहती है। जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो लगेगा जैसे कि मौरी हर सुनने वाले से कह रही हो, देखो तुम्हारे पास वक्त कम है लेकिन काफी है, और अगर तुम उसे सही से इस्तेमाल करो तो जिंदगी बहुत कुछ सिखा सकती है। तो दोस्तों, कहीं भी मत जाइएगा, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, यूं गए यूं वापस आए, और आने के बाद जानेंगे कि आज की बुक का खास मैसेज क्या है।

0: सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों के उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं।
1: वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ। और अभी तक की कहानी में हमने बहुत कुछ समझाने और समझने की कोशिश की है, आइए अब आगे का सफर करते हैं। दोस्तों, किताब के गाइडेड टेक अवेज की बात करें तो रिश्तों को पहली तरजीह देना जरूरी है। हर रोज एक छोटी सी मेहरबानी, एक कॉल, एक मुलाकात, एक मीठा लव, जिंदगी की तरफ पड़ रहा कदम, ये हमारे लिए बहुत कुछ है। ये दूसरे की जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। वहीं अपनी कल्चर बनाने के मुतालिक सोशल मीडिया स्टेटस और नंबर्स की कल्चर छोड़कर अपनी कीमत मोहब्बत और इमदाद पर लगाइए। मौत को याद रखिए, कैलेंडर पर नहीं, दिल पर, ताकि हर दिन मीनिंगफुल हो। माफी और जज्बात की आजादी के हवाले से भी इस किताब ने हमें बहुत कुछ समझाया है। दुख को महसूस करना चाहिए और फिर उसको जाने देना चाहिए, ये दिल को स्पेस देता है। दोस्तों, ट्यूजडेज विद मॉरी को पब्लिशर्स ने, जैसा कि मैंने बताया, नंबर वन न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर के तौर पर लिस्ट किया है। एनिवर्सरी एडिशंस के साथ अब भी वाइडली इस किताब को पढ़ा जाता है। दुनिया भर में इसने लाखों लोगों को ग्रीफ, लॉस और लाइफ के मीनिंग पर सोचने के लिए मधु किया है। मीडिया एंड डॉक्यूमेंटेशंस की बात करें तो एबीसी के नाइटलाइन इंटरव्यूज, जिनका हवाला बुक की ओपनिंग फ्रेम में भी मिलता है, इन्होंने मौरी की गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया, जिसने नैरेटिव का डॉक्यूमेंट्री फील मजबूत किया। जैसे कि एनवाईटी आर्काइव्स एक्सपर्ट में क्लास का स्टेप अप दिखाया गया है। वहीं मॉडर्न डे रेलेवेंस की बात करें तो वर्क लाइफ बैलेंस से मुतालिक, आज के दौर में जब हर चीज मेजरेबल लगती है, मौरी के सबक कहते हैं कि इंसानी राबते को मेजर मत कीजिए, उसे जिया जाना चाहिए। और वहीं केयर गिविंग और कम्युनिटी के हवाले से उनका कहना यह है कि फैमिली और केयर गिवर्स के लिए ये किताब दिल को तसल्ली देती है कि जज्बात को छुपाना नहीं, मुकाबला करना है और प्यार के साथ शेयर करना है। स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के हवाले से यूनिवर्सिटी कॉलम्स और बुक शॉप्स आज भी इस किताब को रिकमेंड करती हैं, एक नजरिया जो ग्रेजुएशन के बाद भी साथ रहता है। और दोस्तों, इस

आपके लेसंस हमें सिखाते हैं और ये कहते हैं कि आज ही इनको अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कीजिए. हर ट्यूसडे अपनी जिंदगी का एक पहलू ठीक कीजिए. छोटा काम, एक शुक्र, एक माफी, एक मुलाकात, जैसे कि मैंने बताया, उठता हर एक कदम किसी की जिंदगी में बेहतरी ला सकता है. वहीं प्यार को सिस्टम बनाइए, फैमिली टाइम को कैलेंडर पर स्टेपल कीजिए, दोस्तों से मुलाकातों को ऑप्शनल मत रखिए. मौत से डर कम, यकीन ज्यादा, एक्सेप्टेंस से प्रायोरिटीज साफ होती हैं. ये मौरी का सेंट्रल मैसेज है. तो दोस्तों, फाइनल रिफ्लेक्शन, अगर मौरी हमारे सामने होती तो शायद यूं कहती कि सरवर, हर ट्यूसडे तुमने अपनी रूह को थोड़ा हल्का करना है. दोस्तों, आज का ट्यूसडे यहीं से शुरू होता है. जिसको आप सुन रहे हैं और उसे अपनी जिंदगी की लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए, मोहब्बत, माफी, मौजूदा लम्हा. तो दोस्तों, इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. ये थी ट्यूसडेज विद मौरी. अगले एपिसोड में हम एक और ऐसी ही किताब पर बात करेंगे जिसने सोच बदली है और सोसाइटी पर गहरा असर डाला है. तब तक के लिए अपने दिल की क्लास हर ट्यूसडे लगाते रहिए. और इसी के साथ सरवर मिर्जा और प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए. सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी.

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दे।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने किराम, प्रोग्राम कुरान की मोती में आप सबका खैर मकदम है। तलहा अशरफुल जमान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। इब्तदाई में बता दूँ सामने किराम, आज की गुफ्तगु इंसान के दिमाग, खुशी, लज्जत, ताल्लुक, कामयाबी और जदीद डिजिटल जिंदगी के दरमियान एक बहुत दिलचस्प ताल्लुक के बारे में है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चार अहम हार्मोन्स हैं जिनमें डोपामीन, ऑक्सीटोकिन, इंडोरफिन और सेरोटोनिन की बात आ जाती है। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये खुशगवार कैफियत हैं। आज के डिजिटल दौर में क्या हम इन कैफियत को कुदरती ज़िंदगी के ज़रिए हासिल कर रहे हैं या ऐसी फौरी और मस्नूई स्टिमुलेशन के ज़रिए जो हर वक्त ऑन डिमांड दस्तियाब है। तो बात सिर्फ इसमें नहीं कि खुशी कहाँ से आए, सवाल ये है कि अगर दिमाग को बार बार ऐसी फौरी लज्जत मिलती रहे जिसके लिए न मेहनत दरकार हो, न ताल्लुक, न अचीवमेंट, न इंतज़ार, तो फिर इंसान की फितरी ख्वाहिश, तहम्मुल और रिवार्ड सिस्टम पर उसका क्या असर पड़ता है, यही आज की गुफ्तगु का मरकजी नुक्ता है। मजीद हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस नफसियाती कैफियत के हवाले से कुरान हमें क्या रहनुमाई करता है। समझने के लिए फर्ज कीजिए आप किसी दोस्त के साथ बैठे, खूब गुफ्तगु हुई, किसी बात पर दिल खोल कर हंसे। ये कुदरती इंसानी तजुर्बा है। लेकिन अब दूसरी सूरत देखिए, आप मोबाइल खोलते हैं, एक फनी वीडियो आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, आप मुसलसल आधे घंटे तक हंस रहे हैं। बज़ाहिर नतीजा एक है कि आप खुश हुए, लेकिन दोनों तरीके एक जैसे नहीं। पहली खुशी के पीछे एक हकीकी इंसानी ताल्लुक, एक मौका, एक माहौल और एक शेयर्ड एक्सपीरियंस था। दूसरी खुशी एक बटन के फासले पर थी। आपको किसी से मिलना नहीं पड़ा, आपको किसी ताल्लुक की जिम्मेदारी निभानी नहीं पड़ी, कोई वक्त तय नहीं करना पड़ा, बस स्क्रॉल किया और स्टिमुलेशन मिल गई। यही ऑन डिमांड प्लेजर जदीद जिंदगी का बड़ा मसला बन सकती है। इस सिलसिले में माहिरीन सेहत नफ्सियात वो सबसे पहले एंडोर्फिन का जिक्र करते हैं। इस हार्मोन को यहाँ एक ऐसी कैफियत से जोड़ा जाता है जो इंसान को दर्द के एहसास को कम करने, खुशी और एक तरह के नेचुरल हाई में मदद देती है। मसलन वर्जिश, हंसना, जिस्मानी मशक्क़त या बाज़ कुदरती सरगर्मियाँ इंसान के अंदर ऐसी कैफियत पैदा कर सकती हैं जिसमें उसे तवानाई, हल्की सरशारी और पेन रिलीफ महसूस होती है। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब यही एहसास इंसान आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन से बार बार हासिल करने लगे। मसलन हर चंद मिनट बाद फनी क्लिप, हर बोर मोमेंट में आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, हर थकन के बाद रील, हर खामोशी के बाद इंटरटेनमेंट। दिमाग आहिस्ता आहिस्ता ये सीख सकता है कि मुझे अच्छा महसूस करने के लिए कोशिश की ज़रूरत नहीं, मेरे पास फौरी बटन मौजूद है। और यही बात आगे एक बड़ी

आदत बन जाती है। अब मिसाल के तौर पर समझिए कि एक बंदा एक जमाने में सिर्फ दफ्तर में कॉफी पीता था, फिर उसने महसूस किया कि वीकेंड पर जब कॉफी नहीं पीता तो शायद सर दर्द होने लगता है। कुछ अरसा कॉफी छोड़ने के बाद हेडेक खत्म हो गया। अब उसे महसूस होने लगा कि जिस्म ने कैफीन के एक मखसूस लेवल को मामूल समझना शुरू कर दिया था, यानी जिस चीज से पहले थोड़ी स्टिमुलेशन काफी थी, आहिस्ता आहिस्ता जिस्म उसका आदी हो गया। और जब वो स्टिमुलेशन बंद हुई तो अलग किस्म के सिम्टम्स सामने आने लगे। तो ये मिसाल हमें एक बुनियादी उसूल बताती है कि जिस्म और दिमाग आपस में एक दूसरे से मुतासर होते हैं। जो चीज कभी खास थी मुसलसल मिलने के बाद मामूल बन जाती है, और फिर उसी एहसास के लिए ज्यादा स्टिमुलेशन दरकार हो सकती है। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोकिन, जिसे मोहब्बत और ताल्लुक का हार्मोन कहा गया है। इसे इंसानी कुर्बत, गले लगाने, मोहब्बत, तवज्जो और मीनिंगफुल रिलेशनशिप के साथ जोड़ा गया है। अब जरा गौर कीजिए, कुदरती तौर पर यह एहसास किन चीजों से पैदा होता है? माँ बच्चे को गले लगाती है, शौहर और बीवी एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, दो दोस्त एक दूसरे की बात सुनते हैं। तो यहाँ ताल्लुक के लिए एफर्ट है, वक्त है, कुर्बानी है, मुश्तरक जिंदगी है। लेकिन सोशल मीडिया ने एक दिलचस्प शॉर्टकट पैदा कर दिया है। आप किसी अजनबी शख्स को नहीं जानते, वो आपको एक कमेंट लिखता है, आपकी तस्वीर की तारीफ करता है, आपको अटेंशन देता है, और इस तरह आपके अंदर ताल्लुक जैसा एहसास पैदा होने लगता है। हालांकि हकीकत में कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना ही नहीं। आज एक शख्स किसी को सिर्फ मैसेज से जानता है, चंद तारीफें, दो तीन दिलचस्प गुफ्तगु, थोड़ी इमोशनल अटेंशन, और दिल में एहसास पैदा हो जाता है कि ये मुझे समझता है, ये बहुत खास है, हमारी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। हालांकि ना उस शख्स का हकीकी किरदार मालूम है, न स्ट्रेस में उसका बिहेवियर, न जिम्मेदारी का एहसास, न खानदान, न जिंदगी का मिजाज, लेकिन दिमाग को इमोशनल रिवार्ड मिल चुका है। यही फर्क आज की नस्ल के लिए समझना बहुत जरूरी है कि जेन्युइन इंटीमेसी और इमोशनल स्टिम्युलेशन एक चीज नहीं। एक मैसेज आपको अच्छा महसूस करा सकता है, मगर अच्छा महसूस होना किसी इंसान को वाकई जान लेने के बराबर नहीं। इसी तरह तीसरी अहम चीज डोपामीन है। इस हार्मोन को रिवार्ड के साथ जोड़ा गया है, यानी एवज आपने कोई काम मुकम्मल किया, बिस्तर दुरुस्त किया, कमरा साफ किया, किसी टास्क को खत्म किया, एक प्रोजेक्ट पूरा किया, तो आपके अंदर सेटिस्फेक्शन पैदा होती है। ये एहसास इंसान को अगला कदम उठाने में मदद देता है, यानी रिवार्ड एफर्ट के बाद आता है। ये बहुत अहम तरतीब है, पहले मेहनत फिर रिवार्ड, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी ने उसे कई जगह उलट दिया है। पहले रिवार्ड, कभी मेहनत ही नहीं। मसलन वीडियो गेम में आप वन लेवल से दूसरे लेवल पर पहुंच गए, फिर तीसरे लेवल, फिर नई बैज, नया स्कोर, दिमाग को मुसलसल ये सिग्नल मिल रहा है, अचीवमेंट। मगर सवाल ये है कि हकीकी जिंदगी में क्या बदला, क्या स्किल बढ़ी, क्या जिस्म मजबूत हुआ, किस इल्म में इजाफा हुआ, क्या कोई हकीकी जिम्मेदारी पूरी हुई? कभी जवाब हाँ भी हो सकता है, क्योंकि गेमिंग में कोऑर्डिनेशन या कॉम्पिटिटिव स्किल जैसे पहलू हो सकते हैं। मगर असल मसला तो यह है कि वर्चुअल रिवार्ड ये कहीं रियल वर्ल्ड एफर्ट का सब्स्टिट्यूट तो नहीं बन रहा है। यहाँ एक बच्चा कहता है कि मैंने आज बहुत कुछ अचीव किया, पूछें क्या? जवाब कि मैं गेम में 5 लेवल्स ऊपर चला गया। तो ये उसके दिमाग के लिए अचीवमेंट वाकई हुई, मगर जिंदगी के मिजान में शायद कुछ भी नहीं बदला। तो सोशल मीडिया इसी प्रिंसिपल को खूब समझता है। लाइक आया तो डोपामीन, यानी ये भी एक रिवार्ड है। किसी ने कमेंट किया, रिवार्ड। आप जो वीडियो तलाश कर रहे थे वो मिल गई, रिवार्ड। और ये सब इंटरमिटेंट रिवार्ड्स होते हैं, यानी आपको मालूम नहीं अगली बार कब क्या मिलेगा। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से इंसान बार बार ऐप खोलता है, शायद कुछ नया आया हो, शायद किसी ने रिप्लाई किया हो, शायद फॉलोअर बढ़ा हो, और यही डिजाइन आपके अटेंशन को प्लेटफॉर्म के साथ बांध सकता है। इसी तरह सामने निकला फिर एक मसला कॉन्शियस अवेयरनेस का भी है कि प्लेटफॉर्म डिजाइनर आपके बिहेवियर को रैंडम अंदाज में डिजाइन नहीं करता। वो जानता है कि आप नोटिफिकेशन पर कैसे रिएक्ट करते हैं, कब स्क्रॉल जारी रखते हैं, कौन सा कंटेंट आपको रोक कर रखता है, कितने देर बाद रिवार्ड देना है, किसी तरह अगला वीडियो ऑटो प्ले होना चाहिए। लिहाजा मसला सिर्फ ये नहीं रहा कि सोशल मीडिया बुरा है या अच्छा, असल सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आप समझते हैं तो आप कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हैं।
अगर नहीं

समझते तो मुमकिन है कि आप समझ रहे हो कि आप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि प्लेटफॉर्म आपकी अटेंशन इस्तेमाल कर रहा हो। जिस तरह सामने किराम, अगर दिमाग हमेशा हाई स्टिमुलेशन का आदि हो जाए तो नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। किताब बोरिंग, खामोशी बोरिंग, घर वालों के साथ बैठना बोरिंग, चलना बोरिंग, सादा गुफ्तगु बोरिंग, क्योंकि मामूली जिंदगी डोपामिन फायरवर्क्स नहीं देती। और यही शायद आज की गुफ्तगु का सबसे अहम हिस्सा है कि अगर इंसान बार बार इंटेंस स्टिमुलेशन लेता रहे तो मसला सिर्फ ये नहीं कि उसे ज़्यादा खुशी मिल रही है, असल मसला ये है कि नॉर्मल अब उसे नॉर्मल महसूस ना हो। वो कहता है मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि दिमाग का कंपैरिजन स्टैंडर्ड बदल गया है। जो चीज़ कभी खुशी देती थी अब कम लगती है, जो गुफ्तगू कभी दिलचस्प थी अब स्लो महसूस होती है, जो किताब कभी अटेंशन पकड़ती थी अब बोरिंग लगती है, जो हकीकी अचीवमेंट कभी खुशी देती थी अब उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट दरकार है, जबकि वर्चुअल रिवॉर्ड एक क्लिक पर मौजूद है। यही वो जगह है जहां इंसान को रुककर पूछना चाहिए, मैं अपने रिवॉर्ड सिस्टम को किस चीज की तरबियत दे रहा हूं। फिर चौथा मूड है, या चौथा जो हार्मोन सेरोटोनिन की बात हमने पहले की थी, तो इसे इस हार्मोन को सोर्स मूड या इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ जोड़ा जाता है। जैसे किसी पुरसकून जगह बैठना, इबादत, रूहानी सुकून, समंदर की आवाज़, खामोशी, कुदरती मनाजिर, यहाँ एक मुख्तलिफ क्वालिटी की खुशी सामने आती है। ये नोटिफिकेशन जैसी नहीं, ये फौरी एक्साइटमेंट नहीं, ये सेटल्ड कम है। अब इसका सब्स्टिट्यूट इस दौर में क्या है? आप समंदर पर जाने के बजाय सोशल मीडिया पर ही ओशन साउंड्स सुन रहे हैं, जंगल में जाने के बजाय नेचर एप्लीकेशन खोल ली। कभी ये टूल्स मुफीद भी हो सकते हैं, मसलन रिलैक्सेशन, स्लीप या ऐसे हालात में जहां बाहर जाना मुमकिन ना हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम रिप्लेसमेंट को रियलिटी समझने लगे हैं? आपको महसूस होता है कि आप मोमेंट में हैं, मगर जिस्म कुर्सी पर है, हाथ में फोन है, और आप फिर भी स्क्रीन के अंदर हैं। तो यहाँ सिर्फ बात पिक्चर का नहीं, यहाँ रोशनी है, हवा है, टेम्परेचर है, मूवमेंट है, स्पेस है, बॉडी एंगेजमेंट है, स्क्रीन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देती है। अब इस गुफ्तगू को समेटते हुए या इस गुफ्तगू का खुलासा क्या निकला? क्या हम कहेंगे कि भाई फोन फेंक दो? तो ये तो दुरुस्त नहीं। टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं, सोशल मीडिया से इल्म भी मिलता है, रिश्ते भी कायम रहते हैं, कारोबार भी होता है। असल मसला तो अनकॉन्शियस कंजप्शन में है, यानी आपको मालूम ही ना हो कि मैं क्यों खोल रहा हूँ, कितनी देर इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या हासिल कर रहा हूँ, और उसके बाद कैसा महसूस कर रहा हूँ। इसी तरह एक दूसरा संजीदा पहलू हसास मवाद है। आज बहुत से नौजवान ऐसी चीज़ों से बहुत कम उम्र में मुतारिफ हो रहे हैं, जबकि उन्हें ये समझ ही नहीं कि उनके दिमाग, ताल्लुकात और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर उसका क्या असर पड़ सकता है। अब जो शख्स ये जानता है कि कोई आदत उसके दिमाग पर असर डाल रही है, वो कम से कम उस पर गुफ्तगू तो कर सकता है, मदद ले सकता है, बाउंड्रीज कायम कर सकता है। लेकिन जो नौजवान ये समझता ही नहीं कि वो जिस चीज को नॉर्मल एंटरटेनमेंट या प्राइवेट हैबिट समझ रहा है, वो उसके एक्सपेक्टेशंस, रिवॉर्ड सिस्टम और ताल्लुकात के तसव्वुर पर असर डाल रही है, उसके लिए मसला ज्यादा पेचीदा हो सकता है। 40-50 साल पहले ऐसी अनलिमिटेड एसेसिबिलिटी मौजूद नहीं थी। आज एक स्मार्टफोन इंसान को एक ऐसे कंटेंट इकोसिस्टम तक पहुंचा देता है जो हफ्ते में 24 घंटे ऑन डिमांड दस्तियाब है, और यही ऑन डिमांड होना इस पूरे मसले का मरकजी हिस्सा है। एक बहुत नाजुक मसला यह है कि कम उम्र नौजवान जब हकीकी इज़दवाजी ताल्लुक से पहले इज़दवाजी ताल्लुकात के हवाले से कॉन्टेंट देखने लगते हैं, तो उनके पास हकीकत का कोई प्रॉपर रेफरेंस पॉइंट नहीं होता। वो जो देखते हैं उसी को रियलिटी समझने लगते हैं, हालांकि दरअसल ये सिर्फ एक कंटेंट देखना नहीं, ये एक्सपेक्टेशन फॉर्मेशन है। हकीकी ताल्लुक की बात करें तो उसमें एतमाद की बात है, गुफ्तगु है, तारीख है, जज्बाती एक तहक्कुम है, कभी इख्तिलाफ, कभी पार्टनर थका हुआ होता है, कभी मूड मुख्तलिफ होता है। लेकिन जब कोई इज़दवाजी हकीकी इज़दवाजी ताल्लुक के बगैर सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड पिक्चर देख रहा है, एडिटेड कमर्शियल कोई रील्स देख रहा है, तो नौजवान का दिमाग उसी तस्वीर को नॉर्मल समझने लगता है, और इस तरह बाद में उसे हकीकी

0: वक्त जिंदगी है, वक्त यूं ही सिर्फ गुजरने वाला लम्हा नहीं, बल्कि जितना वक्त गुजर रहा है उतना इंसान खसारे में जा रहा है। फिर दूसरा कुरानी उसूल है, इंसान बेमकसद पैदा नहीं हुआ। अल्लाह फरमाता है, अफहसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबथा, क्या तुमने ये समझ लिया कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है। इसका मतलब ये है कि तुम अबस के लिए नहीं आए, तुम्हारी निगाह का मकसद है, कान का, अकल का, वक्त का, ताल्लुकात का, दिल का, सबका एक एक मकसद है। तो ये आयत दरअसल आज के डिजिटल एज में बहुत गहरी मालूम होती है, क्योंकि इंसान का एक बड़ा मसला यह है कि वो पर्पस से ज्यादा स्टिमुलेशन में जिंदा रहने लगा है। फिर तीसरा उसूल है निगाह की हिफाजत, इसकी तासीर जहनी हिफाजत पर भी पड़ती है। यानी आज की जो हमने गुफ्तगू की है इसमें विजुअल ओवर स्टिमुलेशन और तरह तरह के फहश मवाद वगैरह का जिक्र भी आया है। कुरान इस मसले का बुनियादी दरवाजा ही बंद कर देता है। इरशाद खुदाबंदी है, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم। مؤمن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور پھر خواتین کے لیے بھی یہی اصول بیان کیا ہے۔ تو سامعین کرام ذرا غور کیجئے، یہاں قرآن نے نگاہ کے حوالے سے کہا ہے کہ نگاہ کو ڈسپلن کرو، چونکہ نگاہ یہ دراصل امیجنیشن بناتی ہے۔ اس طرح इमेजिनेशन के बाद कंपैरिजन, फिर एक्सपेक्टेशंस, फिर बिहेवियर का मरहला आ जाता है। और इस तरह ये गज़ वसर सिर्फ एक फ़िक़्ही हुक्म नहीं रहता, ये अटेंशन मैनेजमेंट भी बन जाता है। चौथा कुरानी उसूल है, हर ख्वाहिश खैर नहीं होती। यानी अल्लाह फरमाता है, अफ़रअयता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया। तो ये दरअसल आयत मॉडर्न हैबिट लूप्स को समझने के लिए नहायत अहम है। अगर यानी हर बर्डम के बाद जब फ़ोन खुला रहे और हर ख्वाहिश पर फौरी रिस्पांस मिले, हर डिज़ायर को इंस्टेंटली फीड किया जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की तरबियत ये हो जाती है कि जो चाहता हूँ अभी चाहिए। तो कुरान ने इस टेम्परमेंट को तोड़ा है, वो सिखाता है कि हर ख्वाहिश फॉलो नहीं करनी चाहिए, हर फीलिंग ट्रूथ नहीं होती, इस तरह जो है ना हर डिज़ायर हक नहीं बनती, यही सेल्फ कंट्रोल है। प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान के आज के इस हलके से तकनीकी मुआविन नदीम अंसारी और मुझे तलहा शफ़ीज़ ज़मान को दीजिए इजाजत। मासलामा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107
2: दिल से देसी।
3: फुटबॉल का असली रंग, असली जज्बा और असली धमाका लेकर आ रहा है मोहम्मद अमीन। इट्स अ गोल शो, जहां हर मैच की हर किक होगी लाइव, हर गोल बनेगा एक सेलिब्रेशन।
4: हाइलाइट्स, कमेंट्री और स्पोर्टी वाइब्स का फुल पैकेज। अगर फुटबॉल है आपका पैशन तो ये शो है आपका अल्टीमेट मजा। डोंट मिस इट, इट्स अ गोल शो With Muhammad Amin, every Sunday and Thursday at 1 p.m. Live on FM 107, Dil Se Desi.
5: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं।
6: अरे पर कुछ मिस हो गया तो? इनफैक्ट हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए, वरना बेचैनी रहेगी ना।
5: उफ, पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना।
7: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की, जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर ओपिनियन मैटर्स। सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 आरजे नाजिया और आरजे सरवर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: आप FM 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं।
2: The radio station with more music. FM 107. FM 107. दिल से देसी।

0: FM 107 टाइम चेक।
1: छह बज के एक मिनट हो गए, मेरी क्लिनिक खुल गई है, ये नब्ज दिखाई है अपनी। ठीक तो है हरमनप्रीत बेटे, वो बड़ा वाला इंजेक्शन लिख गया, ये व्हाट्सएप नहीं कर रहे आज, व्हाट्सएप नहीं। हाँ सीधे रहिए, सीधे रहिए। बस लग गया, वो देखो पंखा है, बस लग गया इंजेक्शन, बस। अब ये दवाई दे रहा हूँ मैं आपको, KVR 500 mg, ठीक है, ये आपको हर सवाल ही नहीं है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और आप जो सुन रहे व्हाट्सएप नहीं करेंगे तो मेरे पास ये हरमनप्रीत बेटे, बहुत इंजेक्शन का डब्बा है, मोटे वाले हैं, लेके आओ। आप व्हाट्सएप नहीं कर रहे, मेरे पास है इलाज इसका, ठीक है, हमारी क्लिनिक खुल गई है, चलिए शुरू करते हैं।

छह बज के 3 मिनट हो गए, उल्टा बोल दिया मैं। खैर कोई बात नहीं, सब माफ है हमारे लिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सवेरे आने का अपने आप में एक विजेते वाली फीलिंग आती है, विजेता वाली फीलिंग। अस्सलाम वालेकुम, जो लोग आ चुके हैं जिन्होंने व्हाट्सएप नहीं किया आपको बताइए, हमारा हरमनप्रीत इंजेक्शन तैयार है, तैयार है इंजेक्शन, व्हाट्सएप मैसेज नहीं किया मैं देख लूंगा आपको। एनी वे आप आ जाइए आज, क्योंकि दुग्गल साहब डॉक्टर बने तो आज आपको सच में मेडिकल मिस्ट्री मिलने वाली है, आज बहुत मजा आने वाला है आपको। आज की जो कहानी है इट्स गोइंग टू बी गाड़ी आपको साइड में लगाने पे मजबूर ना कर दूं ना आज की कहानी सुना के मैं, तो नाम नहीं बदलना, नाम बहुत प्यारा है माशाल्लाह। बस आप जो मर्जी वो बाद में डिसाइड कर लेंगे क्या करना। बाकी 666-22107 नंबर है, कुछ मैसेजेस सवेरे सवेरे जो आ गए हैं। एक मैसेज है आसिफ भाई का, वालेकुम सलाम, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आके लिखा है आज किसकी लाइफ की सर्जरी करोगे भाई। भाई देखो भाई आज क्या करता हूँ मैं। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई अब्दुल जब्बार, नाम में वजन है यार, जब्बार भाई वालेकुम अस्सलाम भाई। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग, इकबाल नेपाली साहब का मैसेज है, और एक मैसेज आ लिया भाई ये मोहसिन भाई का, वालेकुम अस्सलाम गुड मॉर्निंग भाई, कह रहा है हमें तो डेली मजा आता है भाई, थैंक यू भाई बहुत प्यार। सुभाष भाई गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल है भाई के, और बाकी जितने माँ बाप उठे हैं बच्चों को ड्रॉप करने के लिए, उन्हें तैयार करने के लिए, उनको मैं सलाम सलूट। और जो बच्चे आज स्कूल जाने के लिए थोड़े नखरे करेंगे, करना भी चाहिए, बच्चे बनता है उनका, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज मुझे ज़रा माँ बाप अपडेट करें और कौन कौन से बच्चे हैं जो आज जिनका मन नहीं है आज स्कूल जाने का, अच्छा लगता है मुझे उनके चेहरे देखकर, वो फोटो खिंचवाने के लिए स्माइल दे देते हैं लेकिन बैकग्राउंड में फिर नींद आ रही होती है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड बेटी, कंप्लीटली अंडरस्टैंड। हम तो बचे हुए थे बचपन में कि हमारा कोई फोटो ही खींच सकता था सवेरे सवेरे, मगर कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। सो 666-22107

0: और मिलेंगे 10 मिनट और 33 सेकंड के बाद हमारे तला भाई की आवाज में सुबह के अधिकार, एंड उसके बाद इंशाल्लाह होगी मुलाकात, ठीक है। 666-22-107 वरना आपको बताइए सुबह तैयार है, जाना नहीं है, बेस्ट जगह पर है आप। गुड मॉर्निंग।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीजा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: आपका मूड तो था छुट्टी का डॉक्टर साहब, किसका मूड था भाई छुट्टी का मौसम भाई, हम तो पूरे हफ्ता आ कर रहे हैं भाई बिटिया करके। शायद भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। और मैसेज क्या है सुभाष भाई कह रहे हैं पेशेंट बोला डॉक्टर कबीर दवा खाने के बाद मुझे बहुत नींद आती है, डॉक्टर कबीर ने कहा तो दवा खाने से पहले खा लिया करो। ये क्या बात है, आप तो डॉक्टर साहब को बदनाम करने में लगे हैं सुभाष भाई। और एक और मैसेज आ लिया भाई, इनका नाम क्या नाम है इनका, गुड मॉर्निंग कब्बू भाई, गुड मॉर्निंग मेरा भाई, क्या हाल है सल्लू भाई, सलमान भाई हमारे, इन्होंने मैसेज किया। अच्छा मैं ये एक चीज चेक कर रहा था ऐसी, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है, तो मैंने चेक करी भाई कि ये क्विल्ट और कंबल में क्या फर्क होता है। पहले तो मुझे बता दो आपको पता है क्विल्ट और कंबल में क्या फर्क होता है भाई। देखो मैं ये आपकी पढ़ाई वढ़ाई को चेक नहीं कर रहा हूँ, पहली बात तो इसमें ऑफेंड होने की कोई बात नहीं है, पर मुझे ये पता लगा, पता ये मुझे लिटरली AI ने बताया और मैंने चेक भी किया इंटरनेट पे, इसमें लिखा हुआ है कंबल, कंबल इज अ तगलोक फिलिपिनो वर्ड है, फिलिपिनो वर्ड फॉर अ स्टैंडर्ड ब्लैंकेट। पता था आपको ये भाई? मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली, मैं तो समझता था हम कंबल तो कहते ही हैं, ये तो हमारी हमारी भाषा होनी चाहिए, ये एक फिलिपिनो वर्ड है, मैंने जस्ट भी पढ़ा भाई, बताइए मैं अभी ऐसी पढ़ते पढ़ते मैंने कहा मैं शेयर कर दूं, क्योंकि मुझे नहीं पता था, पता नहीं कितने लोगों को इस बारे में ज्ञान होगा भाई, मैं मुझे नहीं पता था सीरियसली, आई डू नॉट नो। मैंने तो उनकी भाषा में एक वो सीखा था, क्या था वो, माल किता, तो मैं उसको एक तो मेरे मुंह से वो पंजाबी वर्ड लगता है वो माल किता, तो वो दैट मीन्स कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर मुझे ये मेरे मुंह से थोड़ा पंजाबी निकल जाती है, ये तो बाय डिफॉल्ट वो थोड़ा सा ऐसा लगता है पंजाबी वर्ड है ये, बट है नहीं। आसिफ भाई मैसेज कर रहे हैं कि भाई आसिफ भाई ने लिखा है और मैसेज है ये हमारे आसिफ भाई लिखते हैं, सबको दवा दे दो, दो गोली सुबह नींद से उठने से पहले और दो गोली रात में नींद पे जाने के बाद, इससे बड़ी कोई मेडिसिन किसी को नहीं मिलेगी भाई, यही तो मेरा प्लान है। फरद भाई वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ भाई एकदम शानदार, कह रहे हैं माल किताब। देखो मैं पढ़ रहा हूँ ना इसको, मैं चाहता हूँ कि जैसे फिलिपिनोज बोलते होंगे वैसे ही मैं इसको बोलूँ, मगर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैल किताब बोलते हो, मैल किताब, एक्सेंट ही नहीं आ रहा भाई मेरे मुंह से तो निकलता, हाँ जी माल किता जी माल किता, कि भैया एक मैसेज है आसिफ भाई का, अस्सलाम वालेकुम भाई मैं पूछता हूँ आज ही मौका मिल गया एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई मैं बहरीन से सुन रहा हूँ। अरे मेरा भाई बहुत बहुत शुक्रिया बहरीन से ट्यून इन करने के लिए। अंसारी भाई कैसे चल रहा है बहरीन में, क्या मौसम है, बढ़िया। और एक मैसेज है फरद भाई का, फरद भाई क्या हाल है। एक भाई ने मैसेज किया है भाई मैं, मेरे साथ फिलिपिनोज काम करते हैं और मैं उनसे पूछूंगा कि इसको बोलते कैसे हैं, मत बुलवाओ ये जो आप इजहार करवाना चाह रहे हैं उनसे, उस चक्कर में कुछ और ही ना निकल जाए। सुम्बल बहन गुड मॉर्निंग, क्या हाल है बहन के, सब बढ़िया शानदार सबके सब, सबको याद आ रहा है जिनके यहाँ फिलिपिनोज काम करते हुए, आज मैं पूछूंगा उनसे कैसे बोलते हैं इसे। एक मैसेज है फिलिपिनोज बोलने के लिए सिर्फ हर इंग्लिश वर्ड, हाँ वो तो मुझे पता है, वो एफ शुड बी रिप्लेस बाय पी, या वो तो मुझे पर देखो क्या है, जैसे वर्ड है ना, मैंने अभी जो ढूंढा, मतलब ढूंढा गया, मैंने सर्च करने की कोशिश करी, मैंने कहा ये कंबल वर्ड जो है और क्विल्ट जो है इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो मुझे इंटरनेट ने ये बता दिया कि भाई देख क्विल्ट तो ये होता है, ठीक है। और जैसे बहन ने भी कह दिया क्विल्ट इज़ मेड ऑफ प्योर कॉटन, बहन वो तो सानू पता है, मैं ये कह रहा हूँ जो कंबल वर्ड है ना इंटरनेट पर लिखा हुआ है, मैं एज इट इज रीड कर देता हूँ, कंबल इज द फिलिपिनो वर्ड फॉर द स्टैंडर्ड ब्लैंकेट, ये पता था आपको, इट इज अ फिलिपिनो वर्ड, मुझे नहीं पता था भाई, ये आज सुन के मैं थोड़ा सा ज्यादा हैरान हुआ हूँ। और क्या भाई ये क्या भाई ये माल की तमन्ना, एक बार फिर बोल दिया उसके बाद हंसने लगी वो, फिर अम्मा को बाद में मालूम पड़ा माल किता मतलब, हाँ मत बोलना ये खुलेआम आसिफ भाई दिक्कत हो जाएगी। सुम्बुल बहन ने बोला है रजाई किसे बोलते हैं, अब ये इतने सवाल मत मेरी तरफ फेंका करो प्लीज, मैं कंफ्यूज जाता हूँ, अभी मैं कंबल पे मेरे वो चल रहा था अभी मामला, आप रजाई तक का सवाल पूछ लिया, मैं ढूंढ लेता हूँ रजाई वर्ड कम्स फ्रॉम, लेट मी सी इंटरनेट क्या कहता है मुझे। द वर्ड रजाई कम्स फ्रॉम द क्लासिकल पर्शियन वर्ड रजाई, ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है अ क्विल्टेड कोवरलेट और बेड क्विल्ट, ये भी क्विल्टी है बहन, कंबल और रजाई में बहुत फर्क है तो कुल मिला के आज हमने सुबह क्या ज्ञान दिया है गर्मियां चल रही है, बात चल रही है भाई क्विल्ट की, क्या बात है, यही तो चिंता जनार्दन है भाई। वाह वाह वाह। वैसे यार भाई मैसेज डिलीट मारने के बाद भी तुम कैसे पढ़ लेते हो? मैं बहुत तेज हूँ भाई, लाइटनिंग और मेरी स्पीड सेम सेम है। एक मैसेज है, आज आप डॉक्टर हैं, आज डॉक्टर वाला सवाल पूछना चाहिए। मैं पूछना नहीं चाहता भाई, दिक्कत हो जाएगी। एक कॉल आ रही है, रुक जाओ कॉल उठा लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम।
1: अस्सलामुअलैकुम।
0: अरे क्या बात है बहन, कैसी जा रही है सुबह?
1: आपने अरे तो इतना लंबा कह के जैसे मेरी कॉल आप पूछ रही
0: नहीं। नहीं नहीं, मुझे आपका नंबर तक पता है। मुझे ये लास्ट वाला जो नंबर है 507 ये रटा हुआ है मुझे।
1: अच्छा
0: हाँ, बहुत तेज हूँ मैं। और क्या,
1: आपकी सुबह सुबह रजाई, कंफर्ट, ब्लैंकेट, क्विल्ट लेकर आए क्यों? क्या आप ये बता?
0: मैं आपको बताता हूँ, मैं आज मैं
1: बहुत
0: नहीं नहीं नहीं मैं बताता हूँ, मेरा खाली दिमाग है ठीक है, तो उसमें ज्यादा कुछ चलता नहीं है, तो मैं ऐसे ही बैठा तो मैंने कहा आज मैं जरा इंटरनेट से पूछूं भाई ये क्विल्ट और कंबल में क्या फर्क है। तो वो उसने
1: मतलब
0: वही
1: क्यों आपके हाँ। दिमाग में ये थॉट क्यों आया कि हम रजाई और कंबल के, मतलब रात में दीदी ने रजाई कंबल नहीं दिया आपको ओढ़ने के लिए, इसी में छुटते रहे?
0: अरे आपने तो इसको मेल फीमेल का वर्सेस बना दिया है, ऐसा नहीं है, सुनिए मेरी बात को। हम लड़कों के माइंड में कुछ भी नहीं आता ना, तुम कुछ भी सर्च कर लेते हैं, तो ये कुछ भी वाला सर्च था मेरा, समझ नहीं आया। हाँ हाँ, तो इसलिए मुझे आज मालूम पड़ा। पर देखिए नॉलेज वाली बात पता लगी ना, कि आपको पता था ये बात? नहीं पता थी ना,
1: मालूम थी मुझे।
0: जी हाँ मालूम थी मुझे, कुछ नहीं मालूम थी। जानबूझ के आप इस बात को ट्विस्ट कर रही हैं, यू प्लेइंग पॉलिटिक्स इन द मॉर्निंग। और बताइए टीचर साहिबा क्या चल रहा है? और टीचर्स ले जाते हैं लंच सुबह सुबह? क्या चला है टीचर्स का, क्या लंच रहता है, मतलब टिफिन में क्या?
1: टीचर्स इंसान नहीं होते, वो खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे।
0: अरे भाई साहब आज तो मतलब
1: क्या जाते?
0: बात बात में तलवार निकाली जा रही है। नहीं मैं ओके लेट मी ट्राई दिस अगेन, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मेरी प्यारी बहन कि क्या टीचर्स जो टिफिन ले जाते हैं वो कितना कितना अलग होता है अमूमन जब घर पे खाना होता है उससे, कितना अलग होता है?
1: अलग नहीं होता है।
0: कुछ अलग नहीं होता?
1: कुछ अलग नहीं होता है।
0: अच्छा तो मतलब नहारी वारी ले जाती हैं आप टिफिन में?
1: सुबह सुबह दे पाए दे नारी दे,
0: क्या बात है, ये हुई बात। नहीं सच बताओ क्या आप क्या ले जाती हैं टिफिन में?
1: कुछ भी, मतलब सैंडविच है और जो रात की सब्जी है सुबह पराठे के साथ।
0: क्योंकि मैंने तो इमेजिन कर लिया था, मैंने अभी आपने बोला मुझे लगा कि सुम्बुल भाई सारा काम खत्म करने के बाद रिसेस में नली ब्लू झटक रही है प्लेट पे। सही हो जाता है ये मामला, क्या
1: होता है? I wish कि ऐसा हो, but we are not allowed कि हम मेस में ऐसा कोई स्मेली खाना लेकर आए जिससे कि दूसरों को
0: समझ सकते हो। अरे रे रे रे, तड़प तड़पन हो जाएगी, मतलब तड़पन हो जाएगी। मैडम नारी खा रही है।
1: जी, पता चला किसी ने बोल दिया इनके फूड से बहुत स्पाइसेस की स्मेल आ रही है। I can't tolerate
0: my god, she's eating nari with her bare hands, my god that's too much। ओके और क्या,
1: तिरंगियों के साथ काम करने का एक मसला ये भी होता है।
0: तो आपने क्या क्या
1: मतलब खुद तो उबले खाने खाते हैं यार, मतलब क्या मैं बोलूं?
0: तो उनका खाना ट्राई नहीं किया आपने? खाना नहीं ट्राई किया?
1: कैसे कोई खा सकते, मतलब खा सकते ओके, बट एज अ फूड, एज अ लंच,
0: तो आपने ट्राई किया है कभी कुछ फॉरेनर्स वाला खाना उस टाइप का? बिल्कुल कतई अंग्रेजी खाना ट्राई किया?
1: मैं तो बस मैं बहुत डर डर के खाती हूँ, पे पूछ लेती हूँ फिलहाल और नो।
0: हाँ मतलब सब्जियों की बात कर रहा हूँ, सब्जियों में तो चलता है ना, सब्जियों में क्या टेंशन है?
1: उनकी सब्जियां भी बड़ी अतरंगी तरीके की होती है ना, समझ आती है।
0: अब जब टीचर कंफ्यूज है तो हमारी का मजाल है, जब टीचर ही कंफ्यूज है।
1: ठीक है मैं अपने खाने के मतलब मैं एक वो दिमाग में कंफ्यूजन चलता है ना मेरे कि मैं बहुत अवॉइड करती हूँ किसी और का खाना खाना। पता नहीं यार इससे कैसे बनाया होगा, हाथ धोए होंगे नहीं धोए होंगे, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन।
0: अरे यार तो इस हिसाब से तो आप रेस्टोरेंट में कभी खा ही नहीं सकती हैं?
1: हार्डली, मैं बहुत कम खाती हूँ, अगर खाई तो।
0: कमाल की लोग यार। अच्छा ठीक है,
1: मतलब आपको पता है मेरे घर पे लड़ाई किस बात पे होती है? मेरे हस्बैंड बोलते हैं बाहर से खाना लेकर आता हूं, मैंने बोला नहीं मैं घर पे बनाती हूँ ना।
0: अरे माशाल्लाह ये तो उनके लिए बहुत फायदे, ये पता है वो रिवर्स साइकोलॉजी खेलते होंगे वो।
1: पता नहीं क्यों है मेरे साथ ऐसा, बट है।
0: तो इसमें तो उनका फायदा है, वो रिवर्स साइकोलॉजी खेलते होंगे, जब आप कुछ नहीं बनाती होंगे तो वो खुद ही बोल देते होंगे बाहर से लेके आ रहा हूँ, अरे रुक रुक मैं बनाती हूँ। गुड फॉर हिम। ठीक है सुम्बुल बहन बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने क्विल्ट की जानकारी दी उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर साहब
1: अरे मैं टॉपिक
0: नहीं लेके आया, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, मारो यार को मुझे। मैं ये कह रहा हूँ मैंने रैंडमली सर्च करा तो मुझे
1: उसकी जगह कुछ और क्यों नहीं था।
0: क्या सर्च करें बताओ, आज आप बताओ, आज आप टॉपिक बताओ, चलो बताते बताते जाओ आप स्कूल में।
1: मैं आपको टॉपिक बता दूं।
0: और क्या टीचर हैं आप, बनता है आपका?
1: अच्छा बताऊंगी।
0: देखा यही होता है, सारी पढ़ाई धरी की धरी रह गई ना।
1: मैं बहुत कुछ दे सकती हूँ आपको, लेकिन कहना नहीं चाहती।
0: वेट कर रहा हूँ मैं मैसेज का, देखते हैं टीचर साहिबा के दिमाग में क्या।
1: ये आप जो है सर्च करेंगे, खाना बनाने का इजाद किसने की है भाई, कौन बंदा था जिसने खाना बनाने की ट्रिक्स निकाली?
0: ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई, मतलब कुछ भी हो गया है तो इससे बढ़िया सवाल तो फिर मेरा था।
1: आपका तो खाली दिमाग है।
0: इससे बढ़िया सवाल तो मेरा था।
1: नहीं नहीं इससे तो आप ये सर्च कर लो भाई, पर्दों को पर्दे क्यों कहते हैं, कर्टन्स किसने निकाला?
0: यार मैं जा रहा हूँ। नहीं आप आ, आप बोलो, मैं हो गया तो मेरा हो गया भाई।
1: मैं कर लूँ
0: रेडियो का शो। मेरे बस का नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो गया।
1: हाँ सही है,
0: थैंक यू सो मच बहन, आपने अपना वक्त दिया।
1: एक बात और
0: बोलो
1: ना। कल जब मैं ड्राइव कर रही थी तो मैंने ये सोचा था कि मैं आपके शो पे कभी बोलूंगी आके कि प्लीज जो फास्ट लेन पे स्लो गाड़ी चलाते मत चलाया करो, और अगर धोखे से मेरी गाड़ी हिट हो गई तो मैं जिम्मेदार नहीं होंगी।
0: आप ही जिम्मेदार होंगी, पता है ना आपको।
1: नहीं प्लीज, खुदा का वास्ता चाय पीते हुए स्लो गाड़ी मत चलाओ।
0: तो आप क्यों, मेरे को ये बताओ, आप जो हो लेफ्ट में क्यों चलाना है आपको, आप आराम से राइट में चलाओ।
1: नहीं मुझे जल्दी जाना है, जल्दी
0: जाना है। तो आप
1: फास्ट लेन पे स्लो गाड़ी चाय पीते हुए क्यों चलानी है?
0: हाँ ये तो है,
1: आप चाहे साइड में बीच वाली लेन पी लो, आप फर्स्ट लेन में पी लो, लेकिन किसी को जल्दी जाना होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
0: प्लीज भाइयों, सबसे गुजारिश है चाय जो है गाड़ी रोक के पिया करो, अगर आपकी गाड़ी पीछे से ठुक गई तो वो एक ही शख्स कर सकता है, वो है हमारी बहन, तो प्लीज।
1: वो जिसकी जिम्मेदारी मैं खुद नहीं हूँ।
0: नहीं वो तो आप ही होंगी, पर फिर भी आपकी तरफ से गुहार जरूर लगा सकते हैं हम, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है ठीक है साहिबा, तो हमारी बहन ने ये कह दिया है कि लेफ्ट लेन में जो चला रहे हैं भाई चाय मत पिया करो, गाड़ी रोक के पिया करो भाई। एक मैसेज है, ये तो कबीर भाई से भी ज्यादा भाई एकदम। आप सोचिए, मेरा सवाल बढ़िया नहीं था, मेरा सवाल ज्यादा बढ़िया नहीं था। एक मैसेज है, भाई मैडम को बोलो रेस लगाने के लिए वही लाइन है। हाँ वो रेस लगाने वाली लाइन है बहन, उस तरफ जाने का नहीं। गाड़ी एक बाइट डर गए सलमान में, कह रहे सुंबल बहन नंबर बता दो गाड़ी का, मैं पहले ही राइट में हो जाऊंगा। और एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग और वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, क्या हाल है बिलाल भाई के। और एक मैसेज है, पहले थोड़ा सर के ऊपर से गया।

ये लीजिए दूसरा पेशेंट। पेशेंट कहता है डॉक्टर कबीर मुझे लगता है मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। डॉक्टर कबीर कब से? पेशेंट कब से क्या? अब ये मेरे पे मीम बनने लगे भाई। सुभाष भाई ने पूरा मीम खोल दिया। और सुबह सुबह मैसेज आया है अलीना का, लिखती है अस्सलाम वालेकुम कबीर अंकल, हाउ आर यू, व्हाट लैंग्वेज डू यू थिंक इज मोस्ट ब्यूटीफुल व्हाइल स्पीकिंग। अलीना यहाँ बच्चे आपने मुझे फंसा दिया। मैं आपको बताता हूँ अलीना, रिसेंटली यहाँ पर आने के बाद तो ऑब्वियसली अरेबिक लैंग्वेज की कोई बात ही नहीं है। और क्या भाई, मैंने पोइट्री पढ़ी थी, हालांकि मुझे मतलब नहीं पता, लेकिन जो फ्लो करती है पोइट्री अरेबिक में, ओ हो। और दूसरी लैंग्वेज जो मुझे बहुत बढ़िया लगी, जिसके मैं वर्ड सोशल मीडिया पर सीखते रखता हूँ, वो है स्पेनिश। मुझे बहुत बढ़िया भाषा लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता कहीं ना कहीं एक अनरियल सा वो है ना, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस कि फ्रेंच तुम्हारे बस की कोनी भाई, लेकिन स्पेनिश ज़रूर सीख सकता हूँ। ये मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, हर रोज आता है और हर रोज चला जाता है। तो इसका कोई सार नहीं, कोई सेंस नहीं बन रहा, लेकिन है ऐसा ही है। तो हमारी बहन सुम्बुल ने आके जो है बताया वो क्या कहना चाहती है, मेरी बात पे ऑब्जेक्शन कर दिया है। मैं कम्बल और क्विल्ट की इतनी लॉजिकल बात कर रहा था, कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। तो मैं जो हूँ आपसे अजी पूछना चाहता हूँ, आप लोगों की भाषा में कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड होता होगा जो यू नो ऐसा है जो दूसरी भाषा में कुछ और ही मायने रखता है, या आपको लगता है कि मिलता जुलता है, तो ज़रूर बताएं, बिकॉज आई वुड लव टू नो। आपकी लैंग्वेजेस में कुछ ना कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे, कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ कहावतें होंगी, आज सिखा दो भाई। मैं सही बता रहा हूँ, आज मैं सीखने के मूड में हूँ, आज मेरा भी मन है बच्चों की तरह मैं कुछ ना कुछ सीखूँ। आज हो तो बालक ही मैं, तो मैं सीखना चाहता हूँ। सुरजीत भाई कह रहे हैं सलाम भाई, वालेकुम सलाम फ्रॉम मैकेनिक्स, उन्होंने मैसेज किया है, थैंक यू सो मच भाई। आपको याद है हमने एक वर्ड सीखा था कुछ टाइम पहले, वो वर्ड था मेरे ख्याल में चीते को कहते हैं हाँ, शायद चीता जो होता है ना उसको मराठी में कहते हैं बिपटिया। तो ये कैसा भाई लोगों वाला नाम है। अगर किसी को बोले और चीते कितना सही लग रहा है, और किसी को बोले ए बिपटिया। तो ऐसा कोई वर्ड है आपकी लैंग्वेज में जो आपको लगता है कि लोगों को सीखना चाहिए? आपकी लैंग्वेज का बेसिक है वो, हो सकता है कि आपके तरफ जो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, कहीं भी वो वर्ड बोला जाता हो और आपको वो लगता है कि ये लैंग्वेज का पहला ऐसा बहुत फेमस वर्ड है जो लोगों को पता होना चाहिए। फराज भाई वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, क्या हाल है आपके? तो मुझे सबसे फ़नी तो भाई ये लगा था, सबसे फ़नी लगा था चीता को कहते बिपटिया, ए बिपटिया। एक मैसेज आया है सर्च मंडे इन फ्रेंच, अच्छा एक सेकंड रुको, मंडे इन फ्रेंच, लेट मी सर्च, हाँ लाइन पे रुको, आए ओके। तो मैं ये देख पा रहा हूँ और इसे मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ये नहीं बोल पाऊँगा फराज भाई। ये नहीं बोल पाऊँगा, मुझे भी पता लगा। एक मैसेज है केल का, तेंदुए को कहते हैं, तेंदुए को, हाँ मैं यहाँ कन्फ्यूज़ हो रहा था, यहाँ कन्फ्यूज, मुझे लगा कि शायद चीते को कहते हैं, तेंदुए को कहते हैं भाई बिपटिया, ये मुझे पता लगा, थैंक यू सो मच भाई, आई मिस जज्ड चीता, चीता जी आई एम सॉरी। एक मैसेज भाई दही बोल रहा, क्या दही बोल रहा भाई मराठी, क्या क्या क्या। और फराज भाई आज आपने मुझे फंसा दिया था सही में, मैंने अच्छा हुआ सर्च कर लिया इनके बोलने से पहले, फ्रेंच की तरफ चले गए भाई, कोई आसान वर्ड बता देते तो मैं शायद सीख भी लेता। एक और मैसेज आया मेरे पास फराज भाई का, फराज भाई कैसे हैं? फराज भाई ने लगता है कि सीधा इंटरनेट पर सर्च कर लिया कि मंडे को क्या कहते हैं। मत क्या करो। एक मैसेज है बच्चे को मराठी में बोलते हैं पोरगा, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, पोरगा कहते हैं, पोरगा पोरगा, मैंने वो सुना है, एक तो टाबर सुना है मैंने, टाबर तो भाई मैंने मारवाड़ी में सुना है टाबर बोलते हैं, और मेनली वहीं से मैंने ये वर्ड जो है सबसे पहली मरतबा सुना था, टाबर या टाबर, और ये पोरगा नहीं बता था मुझे भाई, ये वो ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है, पोरगी यही सही प्रोनाउंसिएशन है, पोरगा पोरगी, अच्छा पोरगा पोरगी बच्चा और बच्ची को कहते हैं। अरे यार फनी लैंग्वेज भाई, बढ़िया, लेकिन सीखूंगा, मुझे मराठी बहुत डिफिकल्ट लगती है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जुबान, वो जो मराठी में रड़ा जो आवाज़ निकलती है ना, रड़ा वाली जो साउंड है, वो मैं नहीं निकाल सकता भाई, वो बहुत डिफिकल्ट है। मैं वर्ड भले ही बोल दूं, लेकिन जिस तरीके से आप वो अड़ा का इस्तेमाल करते हैं ना, वो नहीं बैठता भाई, वहाँ मैं फेल हो जाता हूँ, इस चक्कर में दिक्कत हो जाती है। और एक मैसेज आया भाई आपका,

शो में बहुत दिल से सुनता हूँ. थैंक यू सो मच आप सुबह में आ गए बिकॉज आई वॉज मिसिंग योर शो इन द मॉर्निंग एंड आई हैव बीन योर एविड लिसनर फ्रॉम बहरीन. अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बहरीन से मैसेज, क्या बात है. आगे उन्होंने लिखा है कि आई एम अ गुजराती.

0: हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो, हो सकता है कि गुजराती हो, मराठी हो, नेपलीज भाषा हो, सिंघालीज हो, कोई भी भाषा हो, उसमें मेजर मेजर वर्ड क्या है जो एक इंसान को सीख लेने चाहिए। जैसे आज मैंने मराठी में सीख लिया कि भाई लड़का लड़की को, स्पेशली बच्चों को पोरगा पोरगी कहते हैं, यही है ना सही देव इन मराठी। मुझे कुछ नहीं बताया गुलरेज भाई, मेरे से ना पूछो। और नहीं क्या आसिफ भाई कॉल लगा लूंगे आप, ये बताओ आसिफ भाई कॉल लगा लूँ तो मैं कॉल लगा लूंगा फौरन। एक और मैसेज आया मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको सीखना चाहिए स्पेनिश बिकॉज आई हैव लर्न स्पेनिश, लास्ट ईयर से मेरी प्रैक्टिस चल रही है एंड आई हैव बीन लर्निंग एंड स्पीकिंग स्पेनिश विद माय स्पेनिश कलीग्स। और ये मुझे क्या नाम है, अंकित भाई ने मैसेज किया। अंकित भाई थैंक यू सो मच भाई, मोटिवेटेड तो हूँ मैं एंड आई थिंक हर किसी को कुछ ना कुछ बाहर की भाषा तो आनी चाहिए भाई। एक मैसेज है, कंबल को हिंदी में ब्लैंकेट ही होता है। अरे नहीं नहीं नहीं बहन, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब मैंने पढ़ा क्विल्ट और कंबल में मुझे फ़र्क बताओ, तो उसमें इंटरनेट ने मुझे बताया क्विल्ट ये होता है एंड कंबल इज़ अ वर्ड दैट कम्स फ्रॉम द तगलोग, जो फिलिपिनो भाषा है, वहाँ से निकल के सामने आता है। दैट्स व्हाट आई सॉ ऑन इंटरनेट, मतलब मेरे पास स्क्रीन शॉट है, सबूत रखता हूँ मैं। एक मैसेज, स्मॉल ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड कैपिलरीज एंड इन प्योर उर्दू इट्स ट्रांसलेशन इज आरूख़े शारिया। अरे भाई ताहिर भाई मजा करा दिया एकदम, बोल के ऐसा मजा आ गया, मैं खामखा बोलूंगा ये वर्ड। मैं ये खामखा वर्ड यूज करूंगा, हालांकि मुझे ये आधा पता था, अभी पूरा आपने जो बताया वाह। तला भाई कह रहे हैं मोटिव भाई, मैं ये बताओ ऐसे ही लड़के होते हैं ये तला भाई जैसे, मोटिवेशन किसी को मिले ना इनको बर्दाश्त नहीं होता भाई, ऐसे जले झुलस झुलसे जा रहे हैं बिल्कुल जैसे बस कोई सीख ना ले। तला भाई अच्छी बात नहीं है यार ये। मैसेज है, गुड मॉर्निंग कबीर, इस्तवाना इज अ ट्रांसलेशन ऑफ अरेबिक वर्ड ऑफन स्पेल्ड उस्तवाना विच मीन्स सिलेंडर और कॉलम और पिलर। इतना खूबसूरत नाम सिलेंडर कॉलम और पिलर का है, अरे बाप रे। अच्छा कैसे पढ़ते हैं, उस्तवाना, उस्तवाना नाइस वर्ड यार, इसे इस्तवाना भी लिखा जाता है क्योंकि आपने इसमें नीचे हमजा लगाया, जेर लगाया, हाँ हमजा लगाया, इस्तवाना। ये मैं राइट कर लेता हूँ भाई, आज मैं सब कुछ वर्ड लिख के जा रहा हूँ, मैं ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल करूँगा मैं। सिलेंडर को कहते हैं, ये तो भाई बहुत अलग चीज़ थी है। नदीम भाई ने कुछ भेजा है मुझे, और नदीम भाई थैंक यू सो मच फॉर योर नॉलेज, ये भी मेरे काम की चीज़ है। बाकी आसिफ भाई ने लिखा है, मराठी में इसका मतलब तुम एक नंबर दिखते, तुम्ही खूब शांगला दिस्तो, सही पढ़ा मैंने, ये तो यार काम का वर्ड है यार, ये तो अच्छा वर्ड बताया आपने। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप कॉल करके प्रोनंसिएशन भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि मैं प्रोनाउंस अगर गलत कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। 4443477 4443477। एक मैसेज है, लिख लो पर तुमसे ना होगा, ये देखो कटना पड़ेगा ऐसे लोगों से मुझे। अस्सलाम वालेकुम
1: कबीर भाई, वालेकुम सलाम, आज हम तुम्हारे सही नाराज नहीं होंगे, इसके लिए हमने दोबारा कॉल किए
0: हैं।
1: तुम सबको बांट रही थी और हमें डांट रहे थे।
0: अच्छा ये भाई क्या हो गया, सब ठीक है?
1: कैसे हो?
0: मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई, ये आप और ही क्यों बन गए, क्या हो गया आपको?
1: नहीं मैं बोला आप पर डेली एक, मैं बोला थोड़ा कॉपी पेस्ट करके।
0: अच्छा वैसा
1: आप मेरा डांट जी जी कहिए,
0: शेखू कहो, शेखू शहजाद सलीम भाई लाइन पे, क्या हाल है बेटे, क्या हाल है आपके?
1: यहाँ पर मैंने कल रिक्वेस्ट आपको मैसेज डाली थी तो आपने ना सबको बांट रहे थे और मुझे डांट रहे थे, तो
0: मैं ऐसा क्या बांट रहा था शेखू, ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं मिला?
1: बहुत सारा खजाना था, बहुत सारे मेरे दिल के अंदर सारी कुछ हसरतें थी यहाँ पर ना, लेकिन मैं जाहिर नहीं, अफसोस जाहिर नहीं कर सका, लेकिन फिर मैंने आज दोबारा कोशिश की है, अब मेरे हाथ में फैसला किया जाए।
0: अरे मेरी जान, ये गलत जगह कॉल तो नहीं लगा दी कि कौन सा खजाना बांटा था भाई मैं? तो शहजादा सलीम क्या क्या बात हो गई आज है?
1: आज नहीं, आप मैसेज पढ़ते पढ़ते कभी बोलते हैं ना एक कॉल आ रही है।
0: अच्छा कॉल आ रही है, या कॉल आ रही है ब्रो, गुड कैच। बहुत
1: मैंने कॉपी पेस्ट करने की

0: उसी के थे, कल आप सबको बात प्रोवाइड
1: की। आपका कॉल कैच नहीं हुआ ब्रो, आपका कॉल कैच नहीं हुआ, आज तो स्लीप हो गया ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है। शहजाद सलीम, आप कौन से शहर से आते हैं जरा पूरे कतर को बताइए।
0: मैं सनैया में हूँ जी।
1: अरे कौन से शहर, अरे ए भैया ए भैया समझाओ, हम पूछे कि इंडिया में कौन से शहर से आते हो।
0: अच्छा अच्छा मैं हाँ बॉम्बे से।
1: बॉम्बे से हो ना, तो कुछ सिखा दो, कुछ पब्लिक को सिखा दो।
0: मैं जो इंडिया में रहता हूँ, माशाल्लाह एक सेंटर है बॉम्बे का, सांता क्रूज।
1: अच्छा,
0: सांता क्रूज ईस्ट में मैं रहता हूँ।
1: ठीक है, अब गली नंबर बताना। सुनो मेरे को
0: गली है ही नहीं, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ मेन मेन मेन रोड पे ही रहता हूँ।
1: यार पैसे वाले आदमी हो यार, मुंबई में आदमी मेन रोड पे रह रहा भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह।
0: मेन रोड से टच पे, यानी मेन रोड से टच पे ही घर है। तो मेरे घर से 2-3 मिनट्स मैक्सिमम मेट्रो ट्रैक के जाती है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट 15 मिनट।
1: अरे बस मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है पोस्ट ऑफिस। अरे सुनो तुम,
0: हाँ पोस्ट ऑफिस हाँ, यस यस, ऑल टुगेदर मैक्सिमम 20 मिनट्स ऑल टुगेदर इंक्लूडिंग द ऑल।
1: भाई सब पहुंच जाएंगे, पूरा एड्रेस तो दे दिया। अच्छा सुनो तो वीर, मैं तो सुनो 2 मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मराठी आती है, क्योंकि आप बॉम्बे से हैं तो थोड़ी बहुत आती है। कोई आज आज आज कोई वर्ड सिखा दो यार, कोई अगर मुंबई में जाएगा तो क्या वर्ड उसको बोलना चाहिए, कोई सिखा दो यार आज।
0: मुंबई में जाने कैसा काय बरा ऐसा बोलो,
1: ये क्या मतलब, क्या मतलब,
0: मतलब कैसे हो ना बस।
1: अच्छा दोबारा बोलो, कैसे बोलने, कैसे बोलने का,
0: कासा
1: का है, बरा है। अच्छा कासा का है, ओके ठीक है। और कुछ बस इतना ही बोलना है,
0: नहीं तो आज के लिए इतना ना, फिर कल के लिए बचाना है ना, फिर थोड़ा सा दूसरा।
1: मुझे लग रहा है शहजाद सलीम तुम्हें भी इतनी याद है।
0: नहीं नहीं, ये लैंग्वेज मैं कब यूज करता मालूम है, स्पेशली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पुलिस स्टेशन या एयरपोर्ट उतरूंगा ना, बॉम्बे एयरपोर्ट, वहां पर मैं यूज करता हूँ। तो वो बताइए अपना मालूम है यार,
1: सलाम भाई, सलूट है शहजाद सलीम, सलूट सलूट सलूट मेरे भाई।
0: जहाँ अपना काम से निकलता है ना, हाँ। तो वहीं पर मतलब ये करता, ज्यादातर यही रहता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो वहाँ ज्यादातर यही मतलब है ना, थोड़ा रिस्पांस मिलता है और थोड़ा सा हाँ ये, और फिर अपना भी इम्प्रूवमेंट हो जाता है, क्योंकि अभी मैं सऊदीया से गया ना, मैं तो काफी कुछ है ना कितनी भी बोल जाता है। तो मेरे को एक दिन कुछ ऐसी काम आ गया था राशन कार्ड ऑफिस में, तो वो मेरे को वो जो ऑफिसर था ना, वो बोलता है काय रे तुझा डोक्या कुटी डाला रे वेड़ा का ये क्या है, मतलब पागल हो गया दिमाग किधर जा। मेरे को बोलना क्या था मराठी में, मैंने बोल दिया क्या, तो फिर मैंने ना हिंदी में, मैंने हिंदी में बात किया। अरे तो बोलिए भाई हिंदी में बोलो ना, हमको भी हिंदी आता है इधर। मैं बोला हाँ,
1: परेशानी पता क्या है, आपने एक वर्ड सिखा दिया, कोई फंस गया पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बोला क्या क्या बताया था आपने, कैसे बोला था, क्या बोला था, वो कैसे क्या क्या हाल है पूछना,
0: कैसा काय बरा,
1: कैसा काय, कैसा काय बोलता रह जाएगा आदमी, उसमें उसमें उसकी धुलाई हो जाएगी, आगे का तो सिखाए नहीं, सिलेबस चैप्टर 1 में खत्म हो गया भाई।
0: हाँ कितना, और कितनी छान है, कितनी छान है, मतलब कितने खूबसूरत है ना, कुछ भी चीज है ना, वो भी मतलब कितने, मतलब कितने खूबसूरत है, तो इस तरह कितनी छान है, कितनी छान है।
1: अच्छा ठीक है,
0: मतलब स्टेप टू स्टेप है बहुत सी है, लेकिन वो अभी जब वहाँ जब आएंगे ना सामने अपने, मतलब बात करने वाला ना, तो ऑटोमेटिक ही ना उससे बोलने लगोगे, जिस तरह अरबी है ना इसी तरह ही। हाँ अरबी भी, अरबी आपसे, अभी सऊदी में तो 90% से ज्यादा अरबी चलती है, मैं सऊदी में काफी टाइम गुजारा।
1: ओह नो सरप्राइजेस देयर मेरे भाई, आई एम सो सरप्राइज, 90% अरबी चल रही है सऊदी अरब में, ये तो बहुत कमाल की बात हो गई। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा सलीम, ब्रेक लगा लो शहजादा सलीम, ब्रेक लगा लो।
0: वो आखिरी डायलेक्ट बोल के जाओ ना,
1: बोलो बोलो,
0: लड़की हम तो मोहब्बत के दुश्मन नहीं मगर उसूल के पक्के हैं, आखिरी जो
1: क्या बोल गए,
0: लड़की हम तो मोहब्बत के दुश्मन नहीं लेकिन उसूल के पक्के हैं,
1: उसूल के पक्के हैं शहजादा सलीम, अब तो है तुम्हें दीवार में चुनवा देंगी, धन्यवाद।
0: ये चुनवाने, ये जो आखिरी डायलॉग था ना, वो चुनवाई की तरफ का ही था लास्ट में, मालूम
1: कैपेसिटी अब आएगी, कैपेसिटी अब आएगी शहजादा सलीम, रुक जाओ सलीम, कसम तुम्हें अब तुम्हारी गाड़ी के, रुक जाओ शहजादा सलीम। थैंक यू सो मच मेरे भाई के कॉल करे। अल्लाह हाफिज मेरा भाई, अल्लाह हाफिज भाई, मानना पड़ेगा भाई बात है भाई मैं फुल इंजन भाई, इंजन ऑयल है भाई का। एक मैसेज क्या है भाई ने, ईशान भाई कह रहे क्या टॉपिक, टॉपिक भाई ये है कि आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में, आपकी लिंगो में या आपके स्लैंग्स में कोई ऐसी चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए। कुछ होता है ना, एक दो वर्ड लोग सीख लेते हैं, क्या हाल है, ऑफिस को क्या कहते हैं, घर को क्या कहते हैं, तो आपकी भाषा में कोई सेंटेंस या कोई वर्ड सिखा दो, तीन चार सिखा दो, एक से काम होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी लोग अरबी सीखने आते हैं फिर वो कैफ हाल पे रुक जाते हैं, उससे आगे बढ़ते नहीं है। कन्नड़ा में एक भाई ने मुझे कुछ बताया, मैं वो पढ़ने ही जा रहा हूँ। एक मैसेज किया उन्होंने, अस्सलाम वालेकुम इन कन्नड़ा इज बेकू इन तेलुगु, इट इज पिल्ली इन मलयालम, इट इज पोचा इन तमिल, इट इज पुनाय। ये बिल्ली को कहते हैं कन्नड़ा में बेकू। अच्छा बेकू, मैं आपको ज़्यादा प्यार से पढ़ रहा हूँ क्या सईद ख्वाजा भाई? और तेलुगु में पिल्ली, ये तो सही है, मलयालम में पूछा, अच्छा एंड तमिल इट इज पुनाय, सही पढ़ा हूँ मुझे, अरे राइट मैंने सही पढ़ा, क्या बात है। और एक मैसेज है भाई, मेरी लैंग्वेज में इजाफा हुआ है सुनकर सऊदी अरब में 90%। मैं खुद हैरान था ईशान भाई, मैं हैरान था 90% वहाँ बोले जा रही है, ये तो हद हो गई। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या है?
1: बस भाई समझ रहे होंगे क्या हाल है मेरे, आप बताइए।
0: देखो तो मैं इसके लिए आपके लिए एक सेंटेंस लाया हूँ, ठीक है?
1: बताइए।
0: लोग आपको इतना सिखा रहे हैं तो आप मराठी में उनको बोलो डोक्याला ताप देऊ नको।
1: अरे बाप रे, ये क्या मतलब है इसका?
0: ये है डोंट गिव मी अ हेडेक।
1: ओहो डोंट गिव मी अ हेडेक भाई, ये तो सीख के रहूंगा मैं। कैसे कैसे कैसे बोलो एक बार हल्के हल्के।
0: डोक्याला ताप देऊ नको।
1: डोक्याला
0: ताप
1: दियो नको। ओके डोक्याला ताप दियो नको। अरे भाई साहब ये तो ये बढ़िया सिखाया आपने भाई। ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल करूंगा जहां खतरा ना हो, डेफिनेटली। और नदीम भाई आपने कुछ सीखा?
0: आपको पता है मराठी वर्ड झकास भी एक मराठी वर्ड ही है।
1: झकास इज अ मराठी वर्ड? मुझे लगता था कोई स्लैंग व्लैंग है ये कोई।
0: नहीं झकास इज अ मराठी वर्ड, जो मतलब बहुत अच्छी चीज को जो देख के वो करते ना तो।
1: अच्छा ये नहीं पता था भाई मेरे को, मतलब मुझे लगता था कि झक्कास जो है वो ऐसा ही है, मतलब मैं ना स्लैंग व्लैंग में बोलते थे ना, जैसे कराची में पाकिस्तान में बोलता है शपाटर शपाट ऐसी कुछ वर्ड है ना शपाटर, तो मुझे वही लगता था ऐसी कोई इन्वेंट करके बोल दिया होगा। बात ठीक है, आपने कुछ और भाषा में सीखा है कुछ नदीम भाई?
0: सीखा तो है लेकिन अच्छी कोई चीज नहीं।
1: मैं समझ गया, ठीक है यहीं तक बात कर पाएंगे। ठीक है रंदीम भाई, मैं बहस आगे करूंगा नहीं। ये हम ऑफलाइन बात करते हैं इस बारे में।
0: हाँ ऑफलाइन, ऑफलाइन मैंने आपको सेंटेंस भेज दिया है पूरा, आप गेम
1: वो मैंने पढ़ा भाई। वो मैंने पढ़ा भाई। वो डेफिनेटली सीखा मैंने। एक मैसेज है, ये सलीम साहब कह रहे हैं तुला दोकिया झोपला होता है होटा, ये क्या मतलब है इसका? मराठी है ना ये?
0: दिमाग सो रहा है।
1: अच्छा दिमाग सो रहा है, इसका मतलब तुला डोकिया झोपड़ा, झोपड़ा
0: झोपड़ा मतलब स्लीपिंग,
1: झोपड़ा मतलब स्लीपिंग। अरे भाई साहब थैंक यू भाई। आज आप दोनों ने मिलके मुझे कुछ तो सिखाया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
0: ओके
1: मेरा भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और नदीम भाई से और ये सलीम साहब से बोल, सलीम भाई तो बोल के फोन चार्ज कर सकते हैं सीधा, बैटरी अगर 10% भाई बोलना चालो एकदम 80%। एक मैसेज है क्या है, द ट्रेडिशनल लिटरल टर्म्स फॉर अ फार्म स्केयर करो, क्या कहते हैं इसे? बछूगा, बछूगा कौन सी भाषा में? अबव इन उर्दू फॉर स्केयर करो, ये स्केयर करो को कहते हैं उर्दू में? ये मुझे नहीं पता था यार, उर्दू तो मैंने ही पढ़ी, ये नहीं पता था मुझे। भाज काग, भज काग, भज काग, ये स्केयर करो को कहते हैं। थैंक यू यार हसन भाई, ये तो सच में कुछ नया आपने अनलॉक किया है हसन भाई, थैंक यू सो मच। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जनाब खैरियत से हैं?
1: बढ़िया भाई एक नंबर, आप सुनाए जयस भाई।
2: बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आज तो यार तुमने तो डिक्शनरी लेकर बैठ गए
1: भाई, आज मैं कुछ सीख के जाऊंगा यहाँ से, मैंने तय कर लिया भाई। बढ़िया,
2: सीख के तो रोज जा ही रहे हो भाई।
1: नहीं नहीं मैं सिखा के जाता हूँ ना, सीख के जाऊंगा।
2: सीख के तो रोज जा रहा
1: हूँ। आज बैक सीट पे हूँ भाई मैं तो। जयस भाई आप क्या सिखाना चाहेंगे, आपकी तरफ क्या भाषा है?
2: भाई हमारी तुम्हारी एक ही है, हमारी को ये नहीं है वो लफड़ झंडो वाली है।
1: अच्छा तो कोई और दूसरी भाषा सीखने की जहमत उठाई आपने?
2: हाँ अरबी है ना भाई, अरबी तो अल्हम्दुलिल्लाह।
1: तो क्या सीखा?
2: जितनी भी चल लेते हैं।
1: तो आपको क्या लगता है कि लोग जो सीख रहे होंगे उन्हें क्या वर्ड सीखना है, जो कोई ऐसा वर्ड है जो आप सिखा सकें?
2: वो ऑफलाइन वाले
1: हैं। अच्छा, तो मुझे अलग से भी दे देगा, कोई टेंशन नहीं है। उम्मीद थी मुझे जैस भाई आपसे मुझे पूरी पूरी उम्मीद थी आपसे। एक और
2: तो भाई साहब, उसके तो जो है ना ऑफलाइन वाले जो होंगे ना, वो तो फिर डिक्शनरी में भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे होंगे भाई साहब, लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक।
1: बहुत ट्रेंड है यार, बहुत ट्रेंड है माशाल्लाह, क्या बात है यार। पर वो था ना, भाषा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सामने बोलने वाला भी होना चाहिए। अब आप सीख के बैठ जाए, सामने वाला वो है ही नहीं उस भाषा बोलने वाला, तो दिक्कत हो जाएगी। ये सबसे बड़ी दिक्कत
2: है। नहीं वैसे तो हमारे तरफ से कोई चेंज है नहीं भाई, अपनी तो अल्हम्दुलिल्लाह यही है, उर्दू है।
1: अच्छा, ओके। पर अगर आप उर्दू है तो ये आपको पता था, ये हसन भाई ने जो वर्ड बताया?
2: कौन सा वाला?
1: इन्होंने बताया स्केयर क्रो को क्या कहते हैं, स्केयर क्रो जो खेतों में लगाते हैं ना वो भगाने के लिए, इन्होंने लिखा है भज काग कहते हैं उसे, भज काग। कभी सुना था?
2: ये तो है ही नहीं भाई।
1: हाँ, सारी पढ़ाई धरी की धरी रह गई ना। अरेबिक वर्ड भी बताया, बताओ किसे कहते हैं?
2: इस्तवाना तो गैस सिलेंडर है।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस, पास हो गए आप, वेरी नाइस। आज आप मेरी तरफ से दो टॉफी खा लो भाई, टॉफी खा लो, ठीक है? मुबारक हो, वेरी गुड।
2: अच्छा पता करके देखना, रुमान के जो है ना अरबी में जो है ना, रुमान दो चीज में आता।
1: अच्छा,
2: एक चीज का तो रुमान का जो है ना, तुम सब बताएंगे कि ये है, फ्रूट में बताएंगे,
1: ठीक है? दूसरा?
2: दूसरा बड़ी मुश्किल से कोई बता पाएगा भाई साहब।
1: अच्छा, क्या वर्ड है, क्या वर्ड है?
2: रुमान।
1: रुमान,
2: हाँ,
1: ओके, ठीक है भाई, देखते हैं कोई बता सकता है कि नहीं। मैं ढूंढूंगा नहीं, पहले मैं देखता हूँ कि कुछ लोग क्या जवाब देते हैं।
2: रुमान में जो है ना, दो चीजें आएंगी, मतलब एक तो जो है किस चीज में आएगा, वो इंडस्ट्रियल उसमें आएगा, और एक जो है फ्रूट में आएगा।
1: अच्छा, अनार, एक तो अनार है।
2: हाँ,
1: अच्छा,
2: रुमान तो जो है अनार का तो हर कोई बता देगा कि अनार है, अनार है। और दूसरा देखो कितने बताते हैं,
1: ठीक है? ये देखना पड़ेगा कौन बताएगा भाई। डन हो गया, डन हो गया जैस भाई। और मेरे पास सरोवर भाई का मैसेज आया, मैं कल भी सुन रहा था ना, तो आज सही आपने क्लास ली सरोवर भाई से, जो बोला ना पेंटिंग के बारे में, वेरी नाइस। आज पेंटिंग बनेगी भाई, बढ़िया वाली, ठीक है?
2: आज बनेगी,
1: आज बनेगी भाई, आज तो बहुत बढ़िया है मेरे पास मटेरियल, आज मौज करा देंगे भाई। बताऊंगा मैं, खुल के बताता हूँ मैं, आ रहे हैं अभी मैसेज धीरे धीरे, ठीक है भाई? बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। माजिद भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। और फिर मैसेज किया है इरफान अली साहब ने, इरफान अली भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, होप यू वेल। भाई यहाँ आकर सीखा माफी मालूम मुदीर शेख, इससे ऊपर ही तो जाना है, यहीं तो लिफ्ट रुक गई है भाई। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू भाई, क्या हाल है आपके?
1: बढ़िया भाई, एकदम शानदार, शपाटर हो, शपाटर।
3: ये सिचुएशन में फिट नहीं हो रहा ना भाई,
1: फिट नहीं हो रहा ना। मैं बताऊं, मैं ऑनेस्टली बताता हूं, लेट मी टेल यू दिस, मैंने ये वर्ड जो है ये कराची में बोला था ना शपाटर, ये मुझे पता है कि क्या है, पर कहां यूज करना ये नहीं पता है। ये कंफ्यूजन
3: है, ये देखो, एक शपाटर एक फीलिंग है।
1: अच्छा, शपाटर फीलिंग
3: जो होता है उससे, हाँ, जो होता है ना उससे नहीं निकलती है, जो देख रहा होता है ना उससे निकलती है, शपाटर जा रहा देख।
1: अच्छा,
3: साइलेंसर निकाल के भाग रहा होता है
1: बाइक पे,
3: और उसको बड़े जोर से लगी होती, जगह ढूंढ रहा होता है कहाँ करूँ जाके।
1: अच्छा,
3: वो होता शपाटर जो बगैर ब्रेक की गाड़ी चलाना होता है अंधाधुन, खुद तो मरेगा दूसरों के लेके मरेगा, वो होता शपाटर।
1: अब मैं समझ गया,
3: वो दूसरों के लिए चलता है।
1: हाँ।
3: और शपाटर के आगे भी एक वर्ब लगता है और शपाटर के पीछे भी एक वर्ब लगता है।
1: हाँ।
3: जो उसको प्रोनाउंस की तरफ लेके जाता है।
1: ओ, अब मैं भाई, मुझे ये पता लग गया, ये अब मुझे एग्जैक्टली पता है कहाँ यूज करना है। थैंक यू सो मच तला भाई।
3: हाँ, चीज़ के लिए। जो उसके आगे पीछे वर्ब और प्रोनाउन लगते हैं ना भाई। हाँ। वो बड़े हैवी लगते हैं।
1: वो मैं समझ गया, उसमें
3: हिस्ट्री के पूरे बड़े बड़े हैवी वर्ड लगते हैं।
1: वो मुझे पता है, उसमें ज़ेर ज़बर का बड़ा ख्याल रखा जाता है, वो सब पता है मुझे। शपाटर का आज मुझे पता लगा कि यूज क्या है, क्योंकि मैंने ये एक जगह सुन लिया था और फिर जहन में बैठ गया था मेरे। नाउ आई नो। ओके, तो तला भाई क्या चल रहा है, सब बढ़िया?
3: बड़ी रश में फंसे, मुसीबत।
1: मुसीबत क्या हो गया? अच्छा रश में फंसे में रश में मैं कहूँ ये रश्मि रश्मि क्या कर रहे हैं भाई, क्या हो गया? तो तरह भाई कुछ आपकी तरफ का कुछ स्लैंग बताएं यार, पाकिस्तान में तो बहुत सारे माशाल्लाह स्लैंग यूज होते हैं जो बताने लायक हो, उनमें कुछ स्लैंग बताना चाहें आप, कोई वर्ड बताना चाहें।
3: अदब की जमीन है पाकिस्तान, क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ तो
3: अदब से बात करता है
1: तो अदब वाला ही कोई स्लैंग पूछ रहा हूँ ना मैं, अदब वाला ही सिखा दो।
3: हाउनो हाउनो
1: हाउनो क्या है?
3: हाउनो मतलब के आपको कोई इन्फॉर्मेशन है ना यार, तुझे ऐसी हाउनो है नहीं है?
1: अच्छा
3: मतलब किसी बात की ना, हाउनो
1: हाउनो ये कूल चीज है,
3: हाउनो
1: ठीक है,
3: हाउनो है नहीं हाउनो,
1: मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन था बोले तुझे पता है कि नहीं, वाली बात है ये।
3: यू नो दैट ये वाली कहानी तुझे पता है तो क्या यार, तुझे हाउनो है इस बारे में?
1: हाउनो
3: है अपने को, हाउनो है
1: तो ही नोटिस करेगा मुझे लगता है ये, बिल्कुल वैसे ही नक्को करो इन हैदराबादी चल जाता ना वैसे ही है ये,
3: अल्लू चलो बैंगन हैदराबाद में ये। अच्छा फिसल पट्टी में कभी तुमने मजा किया, एंजॉय किया?
1: ऑफ कोर्स
3: अरे फिसल पट्टी तो पता तुम्हें फिर यार।
1: हाँ तो फिसल पट्टी बताया भाई, क्यों नहीं बताया? हाँ
3: फिसल पट्टी तो पता है, चलो बेहतरीन हो यार। बाकी तो यार अपना कराची और मुंबई वाली लैंग्वेज तकरीबन एक ही है।
1: हाँ
3: तो मतलब तमीज वाली भी है और जो अपना टीनेजर वाले जो है बेसिकली ये है कि अभी ना दो जन अभी जेंसी जो नहीं चैनसी चैनसी जो ये आपके शहजादा सलीम आए थे ना ये वो कहा ये पेट में दर्द वाली जो बोली बोल रहे थे भाई माजरत के साथ, भाई सलीम भाई माजरत के साथ अगर आप सुन रहे हो भाई देखो आइंदा नहीं करना है कसम से बदुआ निकल रही थी मेरे मुझे दुबई से, मैं बड़ी मुश्किल से सेटिस्फाई हुआ हूँ किसी एक शो पे और तुमने ना उसका भी बेड़ा गरक कर रहे हो जैसे दूसरे शो में बेड़ा गरक हो रहा होता ना, नहीं कर रहा
1: है। शहजादा सलीम मान जाओ शहजादा सलीम, हम सबकी यही मांग
3: है, नहीं करो ये यकीन करो कबीर ने साइन करते करते रह गया, इसने रेजिग्नेशन लिख लिया है तुम्हारी वजह से।
1: शपाटर हो रहे, शपाटर यही है ना, शपाटर
3: हमसे ना होगा, ये है वाहियात शपाटर शपाटर ये चाहे वाहियात शपाटर भाई।
1: आज मैंने फाइनली इस वर्ड का सेंटेंस बना लिया, मैं बहुत खुश हूँ भाई, कामयाबी। थैंक यू भाई,
3: कसम से बंदा है मतलब, मैं यकीन कर मैंने फुल वॉल्यूम कर लिया, मैंने बराबर वाली गाड़ी की भी आवाज सेव करवा दी कि समझ के बताओ क्या कहना चाह रहा है लड़का ये।
1: मैं भी शुरुआत में डर गया था, मैंने क्या कह रहा है, पर बाद में क्रैक हो गया।
3: यार ये बंदा कह रहा 90% अरबी इस्तेमाल हो रही है सऊदी में, मतलब क्या ब्रेकिंग न्यूज थी, क्या ब्रेक कर रहा हमारा आगे।
1: ब्रेकिंग न्यूज थी भाई, वो तो है, हिला दिया मतलब दलदला ला दिया भाई ने अपनी बात से, 90% यूज हो रही
3: है। ये ऐसे ना फिलहाल मतलब पता नहीं भाई अल्लाह वाला को दिल बिल्लाल अल्लाह ताला इनको ना सुनने की तौफीक अता फरमाए।
1: ये तो है, ये तो है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ इसकी,
3: तुम्हारी है ना भाई, तुम्हारी वजह से हम भुगत रहे हैं।
1: मैं भी तो कभी कभी शपाटर हो सकता हूँ भाई, नहीं मैं आज जो है कुछ ना कुछ आपको सिखाऊंगा, आप सुनते हुए जाइए क्योंकि आज बहुत सारे अलग अलग भाषाओं में सुनने को पढ़ने को मिल रहा है मुझे, सो डेफिनेटली सुनने को मिलेगा, पर बहुत शुक्रिया मेरे भाई,
3: क्या कर लो जो करना तुमसे ना हो,
1: चैलेंज चैलेंज मिस्टर थला देखते हैं, लगी
3: कल तो तुम फॉर्मेट मार के आओ कल दिमाग को यार, क्या बात कर रहे हो।
1: अरे देखो अब तो भाई साहब आप बदले की भावना, मेरा इंतकाम देखेगी वाला सीन हो गया भाई, अब नहीं छोड़ूंगा मैं,
3: बस भाई फॉर्मेट आदमी है भाई।
1: फॉर्मेट
3: स्टोरी याद है कौन सी सुनाई थी कल?
1: कल मैं जब देख मैं
3: मैं चला गया फ्लैशबैक में। अरे कल क्या पत्थर गिरा था
1: फ्लैशबैक।
3: अरे अब मेरे दोनों की दादा बजाई थी भैया, चला गया फोन में।
1: अरे यार आज में पकड़ा गया। सॉरी तला भाई, सॉरी शक्तिमान, थैंक यू।
3: हेलो
1: भाई, ठीक है भाई, ख्याल रखो,
3: अल्लाह हाफिज़।
1: अल्लाह हाफिज़।

और तला भाई के बाद एक मुझे मैसेज आया था, उसमें मैंने कहा लिखते हैं नेपाली धेरायंगनगर, ये मैं कैसे पढ़ूं बहन, मेरे दिमाग का दही मत करो और मेरा दिमाग खराब मत करो, इट्स अ स्लैंग एंड देर आर मैनी बट वन सिमिलर साउंड इज फुल मतलब एग और फूल मतलब फ्लावर. अच्छा ओके, फुल मतलब अंडा और फूल मतलब फ्लावर, फूल जो होता है ऑब्वियसली. अरे यार ये अच्छा पता लगा. ये नहीं पता था भाई. जिंगल के बाद मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया चीजें सुनने को मिल रही है.

0: FM 107 Time Check.
1: भाई साहब घड़ी में हो रहे हैं 7:02 और आप भी मेरा 7:02 as you know it. ये तो ये बोली गई आके तो बोल दिया मैंने, ये रही एंट्री.

0: भाई पहले मैं जरा मैसेज पढ़ दूं उसके बाद मैं कॉल लूंगा, ठीक है? प्लीज, बहुत सारे मैसेज बना रह जाएंगे भाइयों के। एक मैसेज आया मेरे पास मीत भाई का। मीत भाई कह रहे हैं कि भाई पंजाबी में बढ़िया मुंडे को कहते हैं गैंट। वहाँ जी ये तो पंजाबी तो ऑन दिया भाई, कहते हैं गैंट बंदा जी। थैंक यू सो मच मेरे भाई, कहते हैं लाइक यू। एक मैसेज क्या है, अर्ज किया है, दरख्त के पैमाने पे चिलमन ए हुस्न का फुरकत से शर्माना, ये लाइन समझ में आए तो मुझे ज़रूर बताना। ये माज भाई की वजह से हो रहा है सब, मैं समझ रहा हूँ बहन, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं है। माज भाई को कॉल लगाता हूँ मैं, ये सब कुछ ये मेरे साथ जो माज भाई कह रहे हैं इनकी ज़रा क्लास लगानी पड़ेगी। माजू आई एम कॉलिंग यू राइट नाउ। ये जो चिलमन और ये सब जो मुझे साथ जो ये शेर व शायरी करी है इसकी जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं की पार्टनर ने करी है तो ऑब्वियसली जिम्मेदारी इनकी ही लेनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
1: हेलो निकलेंगी मेरे लिए।
0: हाँ जी, अब आ रही है आवाज आपको?
1: हाँ आ रही है।
0: हाँ जी बताइए, क्या कह रहे थे आप, क्या परेशानी थी आपकी?
1: मैं कह रहा था अल्लाह हाफिज बोलना चाहूंगा, वरना फिर तलाब भाई और दुआएं देंगे मुझे। मुझे वैसी दुआएं नहीं चाहिए, लेकिन जो उन्होंने दुआएं दी थी उन दुआओं पर मैं आमीन बोलना चाहूंगा।
0: समझ गई लाडली।
1: अच्छा, वो जो तलाबे बोल रहे थे ना हाउनो, वो पढ़ के मैंने लिखा था भाई कॉल करो, ये तो नो हाउ है इंग्लिश का, इन्होंने इंग्लिश को इन्होंने घुमा दिया।
0: हाँ वो एक्चुअली मैं ये नो हाउ का हाउनो क्या, हाउनो
1: नो हाउ को घुमा दिया वहां पे कराची।
0: क्या बात है
1: भाई, देखो अभी जो आपने वो शेर पढ़ा था वो मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमारी जो एहलिया है मिटर हाफ है उनका शायराना मिजाज है।
0: अच्छा,
1: वो बाजू बैठी है
0: तो भुगतना तो आपको ही पड़ेगा ना भाई,
1: होता हम कर रहे
0: हैं ना, सजा तो आपकी होगी ना भाई, उसमें कोई मतलब नहीं है, आपकी सोल सजा है, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। तला भाई ने मैसेज किया है कि भाई कराची में हाउनो ही है, इसका उल्टा वो तला भाई वो ये कह रहे हैं इसका उल्टा भी होता है, नो हाउ। नो हाउ का अंग्रेजी का हाउनो। और बताए क्या चल रहा
1: है,
0: तो आपने क्या सीखा, कौन सी भाषा में? तो माज भाई आपने कुछ सीखा दूसरी भाषा का? है
1: टॉपिक अच्छा निकाला है आपने, लेकिन इस टॉपिक में आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि
0: हाँ।
1: कभी कभी बहुत अच्छे प्यारे मायने वाले अल्फाज होते हैं दूसरी ज़बान।
0: वो आ चुके मेरे पास भर भर गया है।
1: नहीं मतलब बिल्कुल रिस्पेक्टफुल,
0: हाँ।
1: जैसा मतलब मैं भी वर्ड नहीं लूंगा,
0: हाँ।
1: लेकिन आपको मीनिंग बताऊंगा।
0: अच्छा,
1: तेलुगु में,
0: हाँ।
1: तेलुगु लैंग्वेज जो है हमारे आंध्र प्रदेश में वो है आइए,
0: आइए
1: आइए,
0: ओके,
1: मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, प्लीज आइए। अगर उसका मैं तेलुगु वर्ड बोल दूं तो फिर आप मुझे मतलब अगली बार से मेरा कॉल नहीं लो।
0: ये लिख के दो भाई, ये लिख के दो। मास भाई ये तो
1: okay.
0: हाँ, ये मेरे को चाहिए भाई।
1: तो ये आपने बहुत ही डेंजरस टॉपिक उठाया है।
0: अच्छा। मुझे खतरों के खिलाड़ी ऐसे ही थोड़ी कहते हैं मिस्टर बाज। मुझे भेजो
1: वन ऑफ द वर्ड।
0: हाँ हेलो हेलो मास भाई, वन ऑफ द वर्ड क्या?
1: ठीक है, वन ऑफ द वर्ड्स हमारे पास स्नैक्स के लिए यूज होता है, स्नैक्स,
0: ओके, वो
1: है चिदंडी।
0: ये क्या बात है?
1: अच्छा चिदंडियां ला रहे भाई,
0: मुझे लग रहा है डर, आप मुझे मैसेज ही कर दे आप ये सारे वर्ड ना, पहले तो मुझे वेलकम को बताना थे। बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जो तरह ना हैदराबाद वाले बैगन बोलते हैं, बैगन इज अ वर्ड जो अलग अलग इमोशंस के साथ यूज होगा।
0: हाँ, जैसे
1: हैदराबाद अगर जा रहे हो तो नक्को से ज्यादा आपको बैंगन सीखना जरूरी है।
0: अच्छा, बैंगन सीखना, उसमें नून आना चाहिए ना, बैंगन नुक्ता आएगा ना उस पे?
1: नहीं, बैंगन
0: बैंगन होना है। अच्छा ठीक है, डन डन, ये मैं क्लियर करना चाह रहा था।
1: बैंगन
0: बैंगन
1: की बात करके बैंगन हो गया यार, बैंगन।
0: ठीक है, अब समझ में आ गया। ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और एक जो इम्पोर्टेंट चीज है आजकल वो है जेंजी की लैंग्वेज सीखो।
0: हाँ,
1: हमारी लैंग्वेजेस जो हम जानते हैं वो सब ना हम हिंदी बात करते हैं, ना हम उर्दू बात करते हैं, ना हम इंग्लिश बात करते हैं।
0: आपने क्या सीखा? स्किबिडी स्किबिडी।
1: आप और मैं जो बात करें ना, ये हिंदी है ना उर्दू, ये पूरी बिगड़ी हुई जबान है। इसीलिए आपको स्केयरक्रो का मतलब नहीं पता था।
0: बात तो सही है। तो ये बताइए, जेंजी का कोई वर्ड सीखा आपने?
1: अभी वो सीखा ना रिसेंटली
0: मैं समझ गया यही तक बात कर पाएंगे हम।
1: लेकिन चल रहा है
0: इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ
1: मार्केट में
0: इसका मतलब मैं आपको डन डन इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको ठीक है मेरा भाई।
1: उर्दू में उर्दू में एक वर्ड जो मैं बता के जाना चाहूंगा जो मुझे रिसेंटली पता चला।
0: अच्छा।
1: मैं एक दावत में गया था और वहां मेरी मुलाकात अनएक्सपेक्टेडली मतलब जो मेजबान है तो उनके तो पास दावत में गया हूँ अनएक्सपेक्टेडली एक आदमी से हो गई मतलब हु आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ये इस दावत में होगा।
0: ठीक है।
1: तो बोला आप यहाँ कैसे? तो वो जो मेजबान थे उनको पकड़े और उनका हाथ पकड़ के बोले कि ये जो है ये मेरे हमजुल्फ है।
0: क्या है?
1: हमजुल्फ है।
0: हमजुल्फ है। अच्छा ठीक है।
1: अब लोगों को बोलने दो हमजुल्फ का मीटिंग क्या है।
0: हाँ।
1: तो मैं वहां थड़के घूरता रह गया कि भाई क्या मतलब है तुम्हारा।
0: हाँ।
1: कुछ गाली वाली दे रहे हो क्या दे रहे हो मुझे नहीं पता। मैंने बोला भाई ट्रांसलेट करो मुझे नहीं आती उर्दू।
0: तो क्या था?
1: कहे कि इनकी जो अहलिया है
0: हाँ।
1: और मेरी जो अहलिया है वो दोनों सगी बहने हैं।
0: अरे भाई साहब।
1: तो जो हमारे पास आई थिंक द वर्ड साड़ू है साड़ू कहते हैं।
0: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।
1: साड़ू को उर्दू में हम जुल्फ कहते हैं।
0: अरे भाई रे भाई थैंक यू भाई।
1: तो मैं यही बोलना चाह रहा था। हाँ। वो एक बच्ची ने पूछा था ना कि कौन सी सबसे प्यारी लैंग्वेज आप बोल रहे स्पैनिश लगती है अरबी लगती है ऑल दैट।
0: हाँ।
1: आपने बोला फ्रेंच फ्रेंच अपने पले नहीं पड़ेगी। द थिंग इज लैंग्वेज जितनी बिगड़ जाती है ना
0: हाँ।
1: उतनी ज्यादा बोली जाती है।
0: हाँ, ये तो
1: बिगड़ चुकी है।
0: ये तो फैक्ट है। ये तो बहुत
1: बिगड़ चुकी है इसलिए मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है।
0: राइट राइट।
1: फ्रेंच बिगड़ चुकी है इसलिए सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। अरबिक जो इतनी प्यारी लैंग्वेज है अरबिक की जो आप एग्जाम्पल ले रहे थे डिड यू नो अरबिक में मेरा एक दोस्त था साथी है वो कह रहा था कि अरबिक में सिर्फ बारिश हो रही है बारिश बारिश बोलने के लिए 50 से ज्यादा अल्फाज है।
0: वो तो है ये तो है पोएट्री का जिक्र किया मैंने कहा जब अरबिक लैंग्वेज बताते थे मैंने पोएट्री जब पढ़ी तो मैंने कहा यार क्या फ्लो है पोएट्री का तो वो समझ में नहीं आया लेकिन फ्लो बहुत जबरदस्त था।
1: लेकिन अभी अरबिक और ज्यादा बोली जा रही है बिकॉज अरबिक बिगड़ती जा रही है बिकॉज नाउ अरबिक हैज स्प्रेड ओवर मोर लॉट ऑफ प्लेसेस लॉट ऑफ एरियाज एंड पीपल हैव माइग्रेटेड
0: यस।
1: तो अब अरबी में और इतने अल्फाज जुड़ गए हैं एंड वो जो लहजा था वो जो क्या बोलना चाहिए
0: डायलेक्ट डायलेक्ट डायलेक्ट टू डायलेक्ट चेंज होता है वो इवन कतर में भी बहुत सारे डायलेक्ट्स सुनाई देते हैं तो वो बड़ी
1: माय पॉइंट इज नाउ इंग्लिश यूज हो रही है उसमें।
0: अच्छा वो ओके वो तो मिक्स एंड मैच
1: योर लैंग्वेज इज ब्रेकिंग डाउन योर लैंग्वेज इज डिमिनिशिंग।
0: ओके
1: उर्दू में भी अब यही हो गया ना कि अब मैं आपसे बात करता हूं मैंने कितने इंग्लिश अल्फाज इस्तेमाल कर लिए।
0: हां अरे कोशिश तो कर लेते हैं एफर्ट के नंबर मिल जाते हैं माय उर्दू इज नॉट गुड। ठीक है।
1: जबकि उर्दू इतनी शायराना जबान थी एंड इतने आप तो पढ़ चुके हो जो पढ़ चुके हो आपने माशाल्लाह जामिया मिल्ला कहाँ कहाँ से किया था आपने क्या किया
0: जामिया मिली है इस्लामिया और बाकी देखते बस आ रही है उनकी दुआएं आपकी तरफ। ठीक है मेरा भाई ठीक है अल्लाह हाफिज़ अल्लाह। ओके तो माज भाई की बात एक लास्ट कॉल भी सारे के सारे मैसेज लेने मुझे सो आई एम गोना कॉल वन लास्ट कॉल फॉर द डे। एक भाई ने मैसेज भी क्या टॉपिक है टॉपिक ये था कि भाई आपकी भाषा में कोई सेंटेंस कोई वर्ड जो आप सिखाना चाहें बहुत सारे स्लैंग्स ऐसे होते हैं जो बड़ा जरूरी होता है किसी और की भाषा में होते हैं लेकिन सीख लें तो बहुत बढ़िया है। एक हम इरफान भाई कॉल कर रहे हैं इरफान भाई ने मेरे से बोली थी कह रहा है मेरे को कॉल कर लो तो हम तो कॉल करेंगे ये कर रहे हैं हम इरफान भाई कॉल। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई क्या हाल है
0: कैसे हैं भाई बढ़िया इरफान भाई कैसे मेरा भाई
2: अल्लाह का शुक्र है आप बताएं आप खैरियत से हैं
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
2: बड़ी रौनक लगी हुई है
0: ऐसे ही है भाई, हम तो देखो क्या तारीफ करें हम कबीर साहब की। अब बताइए कैसे। हाँ,
2: ये बात है, अल्लाह का शुक्र है
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई।
2: सबसे पहले तो ये जो लास्ट कॉलर थे जिन्होंने अभी हमजुल का जिक्र किया ना, तो ये बड़ा कॉमन वर्ड है कराची में और इन पाकिस्तान में, और जो मैं समझता हूँ कि जो लोग दिल्ली से जिनका ताल्लुक है वो शायद हमजुल का वर्ड बखूबी वाकिफ होंगे इस वर्ड से। वेरी कॉमन वर्ड और बिल्कुल सही उन्होंने कहा। और जो तलहा ने जो कहा था ना कि ये जो पहले जो हम जिक्र कर रहे थे कि हाउ नो वाली बात जो थी, तो वो सही बोल रहा है कि वो नो हाउ वाला वर्ड ज्यादा यूज होता है। ऑल दो करेक्ट इंग्लिश का मसला नहीं है, नो हाउ का वर्ड ज्यादा, हाँ तुझे उसकी नो हाउ है अभी, इस तरीके से यूज होता है। और तलहा बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: वो हाउ नो कर रहा था ना, हाउ नो।
2: अच्छा, वो भी जो नो हाउ का जो वर्ड है ना, वो कराची के कुछ पर्टिकुलर इलाके हैं, मैं एक दो इलाकों के अगर नाम ले लूं, कोरंगी या फिर गोली मार और थोड़े से मोनी चापड़ी टाइप के लोग यूज करते हो। तो पान वाले लोग जो ज्यादा लोग पान, वो बिजनेस वाले जो होते हैं थोड़े उस किस्म के, तो वो वाले लोग शायद ये यूज करते होंगे वर्ड। और मैं एक बड़ा शॉकिंग चीज आपको बताऊं, आपको दो चीजें बताऊंगा। आपने कभी सोते हुए कोई वर्ड सीखे हैं आप नींद में, और आपने कोई वर्ड सीखे हो?
0: नहीं, ये क्या बात है, क्या सीखा आपने ऐसे भाई?
2: मैंने ऐसे क्या सीखा है कि मैं जब दुबई में था तो मेरा ना जबल अली का सफर हुआ करता था, फ्रॉम शारजा टू जबल अली। अब 5:30 बजे हमें जाना पड़ता था बस में, शारजा से आप बस पकड़े और फिर यानी जो वैन आती थी, तो मैं ना बड़ी गहरी नींद में, एक तो बंदा 4:30 बजे उठे फिर ना दो आप बस में बैठ रहे हैं ऑफिस के लिए, तो मैं बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। तो दो लोग बस में चढ़े, उनके हाथ में ना वो टिफिन था, तो एक दोस्त है ना दूसरे दोस्त को, यानी ये वो वर्ड आप शायद जानते ही होंगे, मैं इतनी गहरी नींद में था कि वो मुझे भी उसके टिफिन बॉक्स की खुशबू आ रही थी महसूस हुई। तो वो दोस्त अपने दोस्त को कह रहा है क्या बात है तुम सालाना लेकर आए हो। तो मैं पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या बोलना चाह रहा है सालाना। फिर उसने गुफ्तगू को मजीद किया, उसने मेरी पूरी नींद का बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद उसने गांव वर्ड यूज किया, मैं तुमको कल देखे तुम टेलीफोन बूंदा पे बात कर रहे हैं। तो मैं तो

0: उठा तो अच्छा फिर लिटरली मुझे अपनी नींद से उठना पड़ा तो मुड़ के देखा वो दो लोग थे तो मैंने नींद में ये दो वर्ड्स सीखे और कुछ अरसे पहले मैं जब लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में था तो हमारे यहाँ एक बंदा था वो किसी कंटेनर की बारे में बातचीत कर रहे थे और वो शिपिंग लाइन को कुछ बता रहे थे
1: अच्छा।
0: तो वो शिपिंग लाइन आपने अगर सुना हो कि कंटेनर के नंबर होते हैं CML होते न्यूमेरिक्स होते हैं उसके बाद तो वो एक बंदा उसको कह रहा था YUM YUL U 201 मैं समझ ही नहीं सक रहा था फिर जब उसने मेरे कुलीग ने फोन रखा तो मैंने उसको पूछा कि तुम इसको क्या बोल रहे थे यम यल यू बोला मैं इसको कंटेनर नंबर बता रहा था ना भाई तो मैंने कहा ये यम यल यू क्या होता है तो उसने बोला YMLU
1: आपके लिए मैसेज भी आ गया है तला भाई कह रहे मैं इरफान भाई का दर्द समझ सकता हूँ
0: तो वो बोला था यम यल यू तो इस तरीके से हो गया खैर बहरहाल अब मैं आपको बताऊंगा हमारी जो मदर टंग है वो गुजराती है
1: अच्छा।
0: और गुजराती का एक वर्ड है जोखम जोखम का मतलब होता है कीमती ठीक है ना तो अब उसको कैसे जोखम ये हाँ मिसाल के तौर पे स्पेशली ज्वेलरी या फिर कैश वगैरह को या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अगर आपने यूज करना है तो वो कहेंगे कि अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे फॉर एग्जांपल अब हम लोग जब कराची जाते हैं तो जारी बात है फैमिली ने ज्वेलरी पहनी है फॉर एग्जाम्पल या कैश वगैरह आपने कैरी किया हुआ अपने साथ तो जब हम घर में घुसेंगे ना तो हमारी मासी वासी काम वाली होगी तो हम अपनी अम्मी को कहेंगे अम्मी आमाना जोखम से यानी उसको हम जरा सीक्रेटली बताएंगे कि इसके अंदर जोखम है उसको जरा साइड कर दो
1: अच्छा यार ये तो उल्टा है क्योंकि जोखम तो मतलब ऐसा है कि जोखिम हाँ ठीक है मैं अपने आप को करेक्ट कर देता हूँ जोखम मतलब प्रेशियस चीज ऐसा
0: प्रेशियस
1: ठीक
0: तो यानी जोखम एक वर्ड है तो उसको अगर सेंटेंस में यूज करना हो कि भाई या फिर एक और दूसरा वर्ड बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल गुजराती में कि कबीर भाई हूँ तने बहु और खुश हूँ
1: अरे अरे भाई
0: इसका मतलब होता है कबीर भाई हूँ तने बहु ओड़खुश हूँ इसका मतलब है कबीर भाई मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ
1: ये वाला जरा लिख के देना मेरे को इरफान भाई मैं जरा इसको
0: ठीक है मैं आपको लिख के बताऊंगा और गुजराती का एक स्लैंग वर्ड है वो मैं आपको मैसेज करूंगा लेकिन वो मैसेज आप रेडियो पे पढ़ मत देना वरना मेरी लिए मुसीबत हो जाएगी
1: मुझे भेज देना
0: वो बड़ा मजेदार वर्ड है आपको बहुत हंसी आएगी और वो भी मुझे एक गुजराती बच्ची ने बताया था
1: अच्छा ठीक है प्लीज सेंड
0: तो ब्रेक पे मैं आपको वॉइस भी भेजता हूँ वो वर्ड भी भेजता हूँ
1: ठीक है डन भाई ओके डन
0: ओके ब्रदर थैंक यू
1: भाई बहुत सारे मैसेजेस हैं बहुत सारे मैसेज तो अभी कॉल्स हो गई है हम मैसेज कुछ देर में लेते हैं एक गाने के बाद सारे के सारे मैसेजेस लगातार लेकिन उससे पहले मुझे ये ट्रैक इतना पसंद है आई डोंट नो बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं होगा इस गाने में है कौन याद है आपको बिना इंटरनेट पर गए बताना इस गाने में है कौन भाई मैं मान जाऊंगा किसी ने बता दिया तो रगदा है बुरा ना मेरा नसीब है आज ही 7:18

안 돼. 22 बाय द क्लॉक में दो हवाला कबीर एफएम 107 पे और सारे के सारे भाई साहब मैं जितने मैसेजेस आप पढूंगा अभी कॉल का टाइम तो है नहीं क्योंकि कहानी की तरफ भी बढ़ना है तो सबसे पहले सारे मैसेजेस लेकिन सबसे पहले एंट्री जरूरी है जो जो अभी आए हैं ये रैप हमने आपके लिए दिल से बनाया था चलाइए

वेकअप जी। कुछ मैसेजेस हैं मुझे, माज भाई ने भी बहुत ज्ञान दे दिया है और माज भाई बहुत खतरनाक ज्ञान दिया। सारे लोग जो तेलुगु बोलते हैं उन्होंने बहुत कुछ बताया मुझे, जो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कॉम्प्रीहेंड करना, मगर थैंक यू सो मच। एक मैसेज है, इन पंजाबी स्लैंग प्रोवो यू कैन से, क्या इसका मतलब क्या है लेकिन माजिद भाई, इसका मतलब जरा मेरे को बताएं। एक मैसेज है सुभाष भाई का, दोई लेना क्या क्या मतलब है इसका। और एक मैसेज है सैयद हमजा भाई का, लिखते हैं कि पता नहीं जोखिम मतलब मुश्किल है, जोखिम में डाल दिया मे बी, इट्स गुजराती बट नॉट उर्दू। हाँ वही, मैं कंफ्यूज वहीं हुआ जब उन्होंने जोखिम बोला ना कि उर्दू गुजराती में है, तो मैं कहा जोखिम में तो डाल देते हैं, तो ये जोखिम में डाल दिया। और जोखिम जोखम वजन, ये फराज भाई ने मैसेज किया, पर थैंक यू सो मच। एक और मैसेज आया भाई, वो बच्चे वाला वर्ड मुझे भी देना, कौन सा वाला वर्ड मैं समझा नहीं, पोर का पोर की वाला, वो जो मराठी बोलते हैं। और इरफान भाई आपके लिए मैसेज किया है, मुजाहिद बुखारी साहब ने जो बहुत सालों से मिसिंग है, आप जाके इन्होंने मैसेज किया है। हम जुल्फ कॉमन उर्दू वर्ड भाई ने करेक्ट बताया। तला मैंने मैसेज किया, आई कैन फील द पेन। हमशीरा क्या होता भाई। और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम इन हिंदी, आइए इन तेलुगू। समीर भाई बड़ा मुश्किल है यार, मैं ये भाषा नहीं बोल पाऊंगा। तब उसमें मैं लिखते हैं कि फॉर मी हम जुल्फ इज द वर्ड ऑफ द डे डेफिनेटली। वो उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं ये कहीं ना कहीं आज यूज करोगे, बैन आज हो जाए इसका यूसेज पूरा। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, सब बहुत अच्छा टॉपिक लाए हैं आपने, जो बोला बंदा 140-120 की स्पीड पर गाड़ी दौड़ाता है, 80 पर चला रहा है आपका टॉपिक सुनते हुए, आई होप सो। तनवीर भाई, आई रियली होप सो। सादिक भाई ने मैसेज किया है, मुझे तो लगता है लैंग्वेज को इंग्लिश के लेटर से लिखना शुरू कर दिया है, तब से लैंग्वेज बिगड़ने लगी है। ऑलमोस्ट राइट, यू राइट देयर। अरसलान भट्ट साहब लिखते हैं, अन्ना इन तमिल लैंग्वेज इज बिग ब्रदर विद रिस्पेक्ट, वेयर इज इन पंजाबी ओए अन्ना आएगा। मतलब लाइक कह रहे हैं, बैक इन 2012 आई हर्ड माई कलीग सेइंग दिस एंड आई वाज शॉक्ड, ये क्या बोल रहा है। और इनके बाद मैसेज है, अपना ख्याल रखिएगा इज अ

slang we use when a person not understanding and keep arguing, we use tamiz se stop. Apna khayal rakhiyega. Haan. Waqas Iqbal sahab, main aapke saath hoon isme. Asif bhai, thank you so much. और ये तेलुगू में मैसेज किया उन्होंने, फिसल बंडा सुना था, फिसल पट्टी, फिसल पट्टी भी है. अगेन समथिंग न्यू लर्न. थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड बाकी मैंने मैसेज पढ़े ना. हाँ, छपरी कौन होते हैं जो फटे जीन्स, वियर्ड कलर शर्ट्स, खुले बटन, स्पाइक्स एंड कलरफुल हेयर. हाँ, वही हमारे यहाँ डेफिनेशन है. और एक मैसेज है, वर्जन में बहुत सारे तुलू लैंग्वेज के स्लैंग्स हैं. बहुत डेंजर लैंग्वेज है इस तरफ की, ये तो मैं समझ गया. एक मैं से फिसल पट्टी इज कॉल्ड फिसल वंडा इन बेलारी कर्नाटका. फिसल वंडा तो हमने भी सुना है, बट ये जो है मैंने नहीं सुना था. एंड अरेबिक के लिए मैसेज आया, ये समीरा जी ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, आई थिंक रोमान इज़ यूज्ड फॉर ब्यूटी, आई डो नॉट नो, मैं ये पता करना चाहता हूँ. और एक मैसेज है, क्या लिखा है, गेयर को क्या कहते हैं, रोमान. परवेज भाई ने मैसेज किया है, फिर अस्सलाम वालेकुम कमालुद्दीन शेख साहब, इकरम साहब वालेकुम अस्सलाम, और आयशा का उन्होंने फ़ोटो भी भेजा है. अनार लिखा है इन्होंने, तौखीर अहमद भट्ट साहब ने, फिर एक माजिद भाई ने पूरा एक्सप्लेनेटरी वीडियो, सॉरी ऑडियो भेजा है. फिर वालेकुम अस्सलाम एक भाई का. फिर इश्तियाक उस्मानी साहब ने मैसेज किया, गुड मॉर्निंग, ये सॉन्ग सुनकर मैं गाड़ी में झूमने लगा, मज़ा आ गया. चलो गुड, आपको अच्छा लगा. अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या है इंगिन को आज, ये क्या है इंगे को आ जा, अच्छा ये तो स्लैंग है भाई. फिर अस्सलाम वालेकुम, हम शेरा का मीन सिस्टर. ओके, थैंक यू मोहम्मद राणा भाई. और एक दो ऑडियोज हैं मेरे पास जो मुझे ऑब्वियसली सुनने पड़ेंगे पहले, बिफोर आई रिएक्ट टू एनीथिंग एट ऑल. शेख अतीक साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, नेपाल से उन्होंने मैसेज किया है, बाकी वॉइस नोट से. ओके, कुछ नहीं, तो अब बढ़ेंगे सीधा गाने की तरफ. बट हमने बहुत सारे वर्ड सीखे, बहुत सारे डेफिनेटली स्लैंग्स भी सीखे हैं. और ये हम शीरा और हम जुल्फ आज मुझे लगता है वर्ड्स ऑफ द डे जो उर्दू में कुछ सीखना चाहते हैं, काम तो आएगा भाई. एंड अभी कहानी की तरफ बढ़ूंगा मैं, तो आज की जो स्टोरी है मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ. ये बहुत काम की स्टोरी है, मेडिकल फील्ड में बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी और इवन उसका एक्सटेंशन है ये कहानी. तो अगर आप एक मेडिकल मिस्ट्री सुनना चाहते हैं, दिस इज़ द टाइम, आपको मज़ा आएगा और कुछ अलग जानने को मिलेगा आज डेफिनेटली. बिकॉज ये स्टोरी जो है, मैंने जब ढूंढी भी थी तो मुझे एक डॉक्टर साहब यहीं पे काम करते हैं उनका, उन्होंने बोला नाम बदल देना, शर्मीले हूँ थोड़े से, बट उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है इसके रिसर्च में. सो डेफिनेटली मज़ा आएगा आपको ये कहानी सुन के. तो मिलते हैं एक गाने के बाद. 666-22-107 नंबर है, 666-22-107. इस गाने के उस पार और अगर आप सुनने वाले कहानी लाइव तो 666-22-107.

भाई मुझे ये ओरिजिनल गाना ज्यादा पसंद है इसका, हालांकि दूसरा वर्जन भी वो दिस इज फार बेटर। 7:31 बाय द क्लॉक और अब है जी कहानी का वक्त। जो जो लाइव सुन रहे हैं प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा सो दैट आई नो एंड आई आई सेंड यू द चैनल सो आप उस पर भी आ सकते हैं। ओके तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करती है, फिर उन्हें सामने किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड वेरी हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल और इसमें मेरी मदद करी है एक डॉक्टर साहब ने, तो ऑफ कोर्स मैं उन्हें क्रेडिट देना चाहता हूं पर उन्होंने कहा कि नहीं मेरे नाम मत लीजिएगा प्लीज, तो उनका नाम ले रहा हूं मगर आई एम गोना नरेट दिस स्टोरी एंड होपफुली कि हो सकता है यू नेवर नो किसी के काम आ जाए। ओके शुरू करें, चलो भाई वॉल्यूम बढ़ा दी जाए। तो जो आज का किस्सा है ये टिपिकल मेडिकल मिस्ट्री से थोड़ा सा अलग है, एज आई मेंशन्ड अर्लियर ये ग्राउंड ब्रेकिंग कहानी है। तो आपको आज का किस्सा सुनाने के लिए मैं ले चलता हूं साल 2013 में, मार्च का महीना, एंड इस वक्त एक लड़की, इसका नाम था एमिली रियस। एमिली जो थी वो पढ़ाई कर रही थी, कहाँ पे? अपने डोम रूम में इन फीनिक्स एरिजोना, और पढ़ाई जो थी वो फाइनल एग्जाम की थी क्योंकि शी वॉज स्टडिंग फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्री मेड एंड उसका जो तीसरा सेमेस्टर था वो चल रहा था, तो बहुत प्रेशराइजिंग सिचुएशन है, मतलब होता ना बच्चे बिल्कुल आखिरी सेमेस्टर की तरफ बढ़ते हुए कितनी सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं और फिर ऊपर से सारी पढ़ाई भी पूरी करनी है और मेडिकल की पढ़ाई हलवा नहीं है, इट्स वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। तो सब दुआएं कर रहे थे एमिली के लिए आसपास, जितने भी लोग थे उसके दोस्त उसके घर वाले रिश्तेदार सब लोग कि भाई एमिली बस कर जाए। एमिली जो थी उसका प्लान बड़ा क्लियर था, एक तो वो पढ़ाई में अच्छी थी तो इवेंचुअली लोगों को उम्मीद उससे बहुत ज़्यादा थी, और एमिली जो थी वो मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद ऑन्कोलॉजी की तरफ बढ़ना चाहती थी, विच मीन्स कि वो कैंसर पेशेंट्स की मदद उनकी खिदमत करना चाहती थी एंड उसका सपना था कि वो कैंसर को क्योर कर सके। अब देखिए कोई ऐसे बोलेगा तो आप यही बोल सकते हैं कि हाँ कर लोगे बेटा शाबाश। एमिली का कुछ भी कहने का तरीका इतना कन्विंसिंग होता था ना कि डॉक्टर्स भी उसे ये कहते थे कि एमिली जब पेशेंट्स को इंशाल्लाह आगे जाके ट्रीट करेगी तो उसके पेशेंट्स को यकीन होगा कि वो कुछ कह रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी से जाके बोले कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, दो दिन में आप देखिए कैसे ठीक हो जाएंगे, तो उसके जो बोलने का तरीका है उसमें जो यकीन जो कन्विक्शन है उसकी आवाज में दैट इज अनपैरेलल, बहुत पॉजिटिव आउटलुक कुल मिला के एमिली का। तो जब एग्जाम्स करीब आ रहे थे और महज 3-4 दिन बचे थे तो ट्यूसडे का दिन आया एंड कुछ अलग हुआ। एमिली जो थी वो लाइब्रेरी में थी और पढ़ाई कर रही थी, उसके हाथों में हाईलाइटर था और लाइब्रेरी में ज्यादा बच्चे उस वक्त नहीं थे, एमिली लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी और एकदम से मार्किंग्स करते हुए उसके सर में दर्द शुरू हुआ। और एक होता है दर्द, आपको पता होता है कि साइड वाइड में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा सेंटर में दर्द हो रहा है, पीछे दर्द हो रहा है, एंड यू काइंड ऑफ नो, कुछ लोगों को होता है, अल्लाह ना करे ये किसी को भी ज़्यादा बीमारी हो, लेकिन माइग्रेन इज़ वेरी डिफरेंट, हर किसी के साथ अलग अलग होता है। तो एमिली के साथ माइग्रेन का कोई सीन नहीं था, तो शी वॉज नॉट रियली टॉकिंग अबाउट इट कि किसी को बोले या खुद से बोले कि लगता है माइग्रेन है, मगर ये दर्द थोड़ा वियर्ड था। उसने एडविल खा के दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी मगर ये दर्द ऐसा था कि जैसे दिमाग के अंदर से बाहर की तरफ कोई चीज पुश की जा रही हो, यानी रुक नहीं रहा था। तो उसने अपनी किताब बंद करी, मारकर फेंका एंड शी जस्ट रैन ऑफ, वो भाग के अपने डोम रूम की तरफ बढ़ चली कि मैं अभी ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, और सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसकी जो रूममेट थी वो कुछ देर बाद जब कमरे में आई तो एक अलग सिचुएशन में उसने एमिली को देखा। एमिली जो थी एक किचन का एरिया

वो, क्योंकि वो एम कहती थी एमिली को, तो उसने बोला एम मैंने मैंने कुछ कुछ नहीं किया, कौन से नोट्स? और वो रिएक्शन ऐसे दे रही थी जैसे अभी वो सोफी से लड़ लेगी, यू नो ऐसे जंप करेगी और शायद आधा पाई तक हो जाए, वो उतना सीरियस थी। एंड एमिली ने बोला सच बोल सोफी, सच बोलो। सोफी ने बोला एमिली आर यू क्रेजी, मैं क्यों क्यों नोट्स को छूंगी तेरे, क्या हो गया? एंड उसके बाद दोनों के बीच में बात नहीं हुई। मगर एमिली फॉलोड बाय दिस डे, इसके आने वाले तीन चार दिनों में, पहली बात तो उसका एग्जाम नहीं हो पाया, उसने बहुत कोशिश करी लेकिन वो दे नहीं पाई, और वो डोम रूम में रही है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। मगर एक और चीज़ होने लगी, एमिली जो थी वो कुर्सियाँ कहीं ना कहीं से ला ला के और अपने बेड के चारों तरफ रखने लगी, और जो जो चेयर थी वो फेस कर रही थी दूसरी तरफ, मतलब नॉट फेसिंग द बेड, दूसरी तरफ फेस करते हुए पूरे बेड के इर्द गिर्द लगाती और फिर सोने के लिए जाने लगी। तो ये अजीब और गरीब चीज़ें कर रही थी, सडन पर्सनैलिटी चेंज, और ये ऐसा पर्सनैलिटी चेंज था कि ये एकदम से था। जो सोफी उसकी रूममेट थी उसने जाके पहले तो कंप्लेन करी कि मैम मैं नहीं रह सकती इसके साथ, वो अजीब अजीब चीज़ें कर रही है, मगर फिर सोफी को लगा कि यू नो व्हाट, मेरी वजह से कहीं उसका नुकसान ना हो जाए, तो सोफी ने कहा मैम इट्स ओके आई टेक केयर ऑफ हर, एंड उसने दोस्ती निभाने का फैसला किया। मगर पर्सनैलिटी वॉज चेंजिंग। एक फ्राइडे की आफ्टरनून में शी इवन कोलैप्स्ड, मतलब वो एकदम से बेहोश होकर गिर गई, और जब गिरी भी तो उसे सीजर्स आने लगे, वो जैसे फिट्स आते हैं तो वो बुरी तरह से कांपने लगी, शी वाज शेकिंग बुरी तरह से। पैरामेडिक्स को तुरंत बुलाया गया, पैरामेडिक्स वहाँ पर पहुँचे, और उस वक्त वो जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एमिली फर्श पर है और बुरी तरह से कांप रही है। उन्होंने बहुत कोशिश करी उसे लिटरली होल्ड करने की, लेकिन एक अजीब से जैसे ताकत नहीं आ जाती है, वैसा सीन था एमिली के साथ। एंड इतनी ज़ोरों से वो सीजर में थी कि उसके जो ऊपर वाला होंठ था, लिटरली उससे उसने अपने होंठ को काट दिया था, नीचे वाले होंठ को, दांत से, अपने ऊपर वाले दांतों से ब्लीडिंग तक चालू हो गई थी। एंड दिस वाज वेयर्ड पैरामेडिक्स के लिए भी। उसे तुरंत इमरजेंसी रूम में ले जाया गया इन बैनर यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर, सीटी स्कैन किया गया, नॉर्मल आया, टॉक्सिकोलॉजी एकदम क्लीन, किसी किस्म की उसने कोई बाहर से कोई ड्रग्स नहीं लिए थे, कोई दवाई नहीं ली थी, कोई उसे फीवर नहीं था, नथिंग एट ऑल। तो डॉक्टर ने पर्चा निकाला, उस पर लिखा पैनिक अटैक, 7 मिनट उससे बातचीत करी, एक दवा लिखी और एक पैम्पलेट उसके हाथ में पकड़ा दी, जो पैम्पलेट उसके हाथ में दिया इस पर लिखा हुआ था स्ट्रेस मैनेजमेंट, और बोला बेटा आराम से घर जाओ, आराम करो। यहां से एक और सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि डॉक्टर्स जो कर रहे थे वो ऐसा था कि जैसे आग जो है वो घर में लगी है लेकिन पानी जो है वो गार्डन की तरफ डाला जा रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा था सब कुछ, मगर अभी तक ये समझ पाना मुश्किल था। खैर 2 दिन बाद मिसेस कार्मिन, जो एमिली की माँ थी और उसके बेसिकली फादर गए हुए थे बाहर एक ट्रिप पे, तो घर पे सिर्फ माँ थी, मिसेस कार्मिन को कॉल आई। ये कॉल जो थी ये एमिली की रूममेट सोफी ने की थी। उसने कॉल लगाई और फिर जो बातें करी वो एमिली की माँ सुन के डरने लगी। उसने सीधा कॉल करी, हेलो हेलो, कुछ नहीं बोली, मिसेस कार्मिन आपको यहाँ आना पड़ेगा, आपको प्लीज़ यहाँ आना पड़ेगा, बहुत बहुत अजीब बातें कर रही है आपकी बेटी, प्लीज़ आप प्लीज़ यहाँ पर आइए, मैं अभी सब कुछ नहीं बता पाऊँगी, प्लीज़। एंड मिसेस कार्मिन जो एमिली की माँ थी वो फ़ोन पे बैकग्राउंड में काफ़ी साउंड सुन पा रही थी, चेयर की मूवमेंट्स एंड काफ़ी कुछ सुनाई दे रहा था। तो उन्होंने सब कुछ तुरंत पैक किया, ज़्यादा सवाल नहीं किए, उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और 4 घंटे की ड्राइव फ्रॉम टक्सन एमिली तक उन्होंने करी। एंड शी वॉज ड्राइविंग रियली रियली फास्ट, बस उन्हें पहुँचना था। वो जैसी वहाँ पर पहुँची और जैसी उस रूम में पहुँची जहाँ पर सोफ़ी और एमिली रहती हैं, तो ऐसा लग रहा था कि वो जानती ही नहीं है अपनी बेटी को, एमिली जैसी लग ही नहीं रही थी। जब वो पहुंची तो उन्होंने देखा, एंड इस वक्त अराउंड 4:30-5 बज रहे थे शाम के सारे कागज फटे हुए उसके इर्द गिर्द पड़े हुए थे और वो फ्लोर पे बैठी हुई थी। जितने उसके इंपॉर्टेंट नोट्स थे, जो उसकी पढ़ाई के नोट्स थे, उनको वो फाड़ रही थी बैठे हुए, एंड शी वॉज जस्ट टॉकिंग, वो बस बातें कर रही थी। जो सेंटेंस फॉर्मेशन था उसका बड़ा अजीब था, कई मरतबा फुल सेंटेंस बोल रही थी जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा था, कई मरतबा बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रही थी जिनका सेंस तो बन

रहा है, लेकिन उसके आगे भी सेंटेंस है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग था, जैसे खुद से ही सवाल पूछना, खुद को ही जवाब देना, और ये काफी अजीब था। और मिसेस कारमेन ऑफ कोर्स मां होने के नाते उनका डर जो था वो 10x था, बहुत ज्यादा था। एंड उन्होंने अप्रोच किया अपनी बेटी को, क्योंकि वो डर भी रही थी। उन्होंने बोला, एमिली बेबी यू ओके? मगर फिर एमिली उठी, उसने चेयर जो उसके साइड में पड़ी थी उसे और साइड में किया, और सीधा जंप करके अपनी मां को उसने बुरी तरह से पकड़ लिया। इतनी बुरी तरह कि सोफी जो रूम में मौजूद थी वो डर के भागी। उसने सिक्योरिटी वाले को बुलाया एंड सिक्योरिटी वाले आए, और फिर वहां पे जो नर्सिस थी उन्होंने सेडेटिव दिए उसे सुन करने के लिए। एंड इस बार जो साइकेट्रिस्ट थी यहां पर मौजूद, उन्होंने कहा कि दिस इज एक्यूट साइकियाट्रिक ब्रेक, ये ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया है, और बड़े बड़े बीमारियों के नाम लिखे। उन्होंने उसे एंटीसाइकोटिक देना शुरू कर दिया। कोई भी नहीं समझ रहा था एमिली की चीज को, कोई भी नहीं। और वही वह जो पहले हुआ था, मेडिकेशन ने काम नहीं किया। इनफैक्ट एमिली ने बात करना ही बिल्कुल बंद कर दी। अब वो जो बोल रही थी वो एक ब्रोकन लैंग्वेज थी, वो अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर रही थी, ज़्यादातर अपनी ज़ुबान बाहर रखती थी, हाथ इधर उधर घुमाती रहती थी, दीवार में मारती रहती थी, एंड कमर जो है अपनी वियर्ड तरीके से मोड़ के लेटी रहती थी। कई मरतबा तो नींद भी नहीं आती थी उसे, और ये चलता रहा। आंखें उसके पीछे रोल होती थी और इतनी ज़्यादा रोल कर लेती थी वो आँखों को कि वाइट पोर्शन दिखता था, वो ब्लैक पूरा पीपल गायब हो जाता था, कैटाटोनिक स्टेट। तो उसको ज़बरदस्ती फीड करने के लिए, खाना खिलाने के लिए नोज से ट्यूब डाली जाती थी कि वो कम से कम किसी तरीके से खाना उसके जिस्म तक पहुंचे, और अकड़ जाती थी वो कई मरतबा। कारमेन जो उसकी माँ थी, जो ऑब्वियसली रिलीजियस लेडी थी, तो उनको लगा कि ये सब तो मैंने हॉरर में देखा है। मतलब ऐसा था कि शी वॉज काइंड ऑफ कन्विंस्ड, होता ना कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन आपका माइंड आपसे कह रहा है कि नहीं यार, यहाँ लॉजिक काम नहीं आ रहा है। क्योंकि एक आम आदमी जिसको मेडिसिन या मेडिकल फील्ड का ना पता हो, तो ये सोचेगा कि यार डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे तो फिर कुछ तो होगा, बहुत ही हो सकता है, और तो क्या हो सकता है। एंड उन्होंने इसी डर के मारे, उन्हें लगा कि उनकी बेटी के ऊपर कुछ साया है या कुछ आ गया है, तो उन्होंने फादर थॉमस को बुलाया। फादर थॉमस 52 ईयर्स के थे, और वो पहुंचे एंड इस सब पढ़ते हुए, दुआएं पढ़ते हुए, प्रेयर्स पढ़ते हुए, वो एमिली उस कमरे में आया जहाँ पे एमिली थी। एंड एवरीबडी वॉज देयर, जो आसपास के लोग भी थे उन्हें लग रहा था कि अरे पक्का इस पे कोई भूत वूत आ गया है, सबके सब पीछे डर के खड़े हुए थे। एंड फादर थॉमस वहाँ पर पहुंचे एंड उन्होंने देखा कि सामने एमिली है। एमिली फादर थॉमस को देख के स्माइल कर रही थी, विच वॉज अगेन वेरी हॉन्टिंग। अमूमन जब कोई स्माइल करता है तो खुशी बोलती है, लेकिन ये स्माइल ऐसी थी कि किसी को भी डर लग जाए। और उसने फिर 5 मिनट तक बोलना शुरू किया एमिली ने, मतलब नॉन स्टॉप बोली वो, लेकिन क्या बोली किसी को नहीं पता। हॉलवे में जितने लोग खड़े थे वो थर थर कांप रहे थे, बिकॉज उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वो सिर्फ जो टोन थी एमिली की वो इतनी कोल्ड टोन थी कि कोई भी डर जाए, क्योंकि वो जिबरिश भाषा थी। जिबरिश माने के ऐसी भाषा जो कुछ है ही नहीं, शी वॉज जस्ट सेइंग रेंडम चीजें। मगर यहां पर फादर थॉमस की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सीधा ये कहा एमिली की मां से कि मैं इसमें मदद नहीं कर सकता, आपको एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा अपनी बेटी को। एंड फादर थॉमस यहां पर एकदम सही थे। एमिली का जो इम्यून सिस्टम था, अब ये समझने वाली बात है, क्योंकि यहीं पर आपको पता लगेगा कि कहानी कितनी ज्यादा जरूरी है। सो हम सब में हमारा एक इम्यून सिस्टम होता है। एमिली का जो इम्यून सिस्टम था बॉडी के अंदर, उसकी जंग चल रही थी, एक किस्म की लड़ाई। तो बॉडी में अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट होती हैं जब कोई बीमारी डिटेक्ट हो जाती है, ये सुभान अल्लाह ताला ने ऐसा फंक्शन बनाया है। तो इसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनी और उन्होंने अटैक करना चालू किया, लेकिन एक ऐसी चीज को जो बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं NMDA रिसेप्टर्स। मैं आसान करके बताता हूँ ये क्या होता है। NMDA रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में होते हैं, हमारे भेजे के अंदर होते हैं, ये फैले हुए होते हैं मिलियंस एंड मिलियंस।

और रिसेप्टर्स, मिलियन स्विचेस, यूं समझ लीजिए बहुत सारे बटन है, मिलियन स्विचेस, इनकी वजह से हमारे थॉट्स, हमारे जो ख्याल हैं बेसिकली, हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त और हमारा परसेप्शन ऑफ रियलिटी, मतलब आप किस तरीके से किसी चीज़ को देखते हैं, आपको सामने क्या दिख रहा है, किस शेप एंड फॉर्म में दिख रहा है, उसे करेक्ट रिसीव करके आपको बताना इज द फंक्शन. ये रिसेप्टर्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं और ये बेहद बेहद ज़रूरी है. समझ लीजिए ये बिल्कुल वैसा है कि एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक सर्किट है, अगर उसमें एक जगह पे शॉर्ट सर्किट हो गया तो फिर मामला कितना खराब हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं. और ये रिसेप्टर्स, NMDA रिसेप्टर्स लगातार अटैक हो रहे थे बॉडी के अंदर एमिली के, इस वजह से उसकी स्पीच जा रही थी. और ऐसा जब होता है तो सबसे पहले स्पीच जाती है, मतलब बोलने की ताकत ख़त्म होती है, फिर कैटाटोनियन स्टेट हो जाती है और फिर कोमा और फिर दुनिया से रुखसती. इस बीमारी का इनफैक्ट एक नाम भी है, इसे कहते हैं NMDA रिसेप्टर एंसेफेलाइटिस, ये इसका पूरा नाम है, NMDA रिसेप्टर एंसेफेलाइटिस. एंड आपको भी जान के हैरानी होगी, इसकी डिस्कवरी 2007 में हुई है. समझ रहे हैं आप, कितने साल हो गए, 19 साल हो गए, 2007 में इसकी डिस्कवरी हुई है. अब आप सोचिए 2007 से पहले जिन लोगों को भी ये हुआ होगा, लोगों ने तो भूत मान लिया होगा कि भाई इस पे भूत आ गया. आप समझ रहे हैं, तो डिटेक्ट ही नहीं हुई पहले, ना जाने कितने केसेस रहे होंगे जहां पे ये पता ही नहीं होगा कैसा कुछ हो रहा है. तो डॉक्टर्स को, क्योंकि ये केस एक ही मर्तबा मिला था 2007 में, तभी डिस्कवर हुआ था, तो पता ही नहीं है. वो तो MRI कर रहे थे और उसके बाद कह देते थे कि वायरल एंसेफेलाइटिस है, किसी किस्म का बुखार है, और दवाइयां दे देते थे, उससे कुछ हो नहीं रहा था, स्टेट बिगड़ रही थी और लग रहा था कि जैसे पता नहीं कौन सा भूत आ गया इस पे. कोशिशें जारी रहीं, दिन 16 वेंटिलेटर पे कनेक्टेड थी, क्योंकि वेंटिलेटर सांस ले रहा था, क्योंकि एमिली का दिमाग सांस लेना, उसकी मदद करना भूल चुका था, तो काम मशीन को करना पड़ रहा था. उसकी जो हार्ट रेट थी वो 40 से 180 के बीच में घूम रही थी लगातार. जो फिजिशियन मौजूद थे हॉलवे में, वो लिटरली ये कहने लगे थे मिसेस कार्मन से कि मैम हमने सब करके देख लिया है, आप तैयारी शुरू कर लीजिए. उनका कहने का मतलब यही था कि एमिली ज़्यादा दिन नहीं बचेगी, है ना, आप हार मान लीजिए. दिस इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू से. लेकिन फिर एक कुदरत का करिश्मा हुआ, एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. जिस ICU में मौजूद थी एमिली, वहां पर डॉक्टर्स के आना जाना लगा था अलग अलग पेशेंट्स के लिए. सो एक डॉक्टर साहब थे जो इसी ICU में आए, इनका नाम था डॉक्टर मिगेल रेमिरेज. डॉक्टर मिगेल जो थे वो सेकेंड ईयर न्यूरोलॉजी रेसिडेंट थे. अब यहां समझने की जरूरत है आपको, डॉक्टर मिगेल रेमिरेज का कोई लेना देना नहीं था एमिली के केस से. वो ना एमिली को जानते, ना उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता था, ना उनका कोई ऑर्डर देने का हक बनता है कि ये टेस्ट करा लो और फला टेस्ट करा लो, नथिंग एट ऑल, उन्हें कुछ मतलब नहीं. डॉक्टर रेमिरेज हाउएवर वो अपने मेडिकल स्कूल की पढ़ाई को याद कर रहे थे उस टाइम पे, जब उन्होंने देखा कि एमिली किस स्टेट में है. उसकी आंखें खुली हुई थी, वो छत की तरफ देख रही थी और उसके पास से गुजरे. उन्होंने ऐसी ही कैजुअली उन्होंने पूछा, इस लड़की को क्या हुआ है? तो जो नर्सेस थी उन्होंने बताने की कोशिश करी और उन्हें लगा कि हम डॉक्टर को बताएंगे, डॉक्टर आगे चले जाएंगे, क्योंकि क्या ही बता पाएंगे ये. पर उस वक्त डॉक्टर मिगेल रेमिरेस को कुछ याद आया. उन्हें याद आई अपनी पढ़ाई, उन्हें याद आया एक केस, एक लड़की का जिसका नाम था पेन. उन्हें याद आया एक यंग बच्ची का केस जो 2007 का केस था. उन्होंने उसको ऐसी बात करते करते चलते फिरते उस केस को निकाला और फिर उन्होंने कहा कि इस पेशेंट का मुझे चार्ट मिलेगा क्या. उन्होंने एमिली का जो पूरा मेडिकल रिपोर्ट थी, पूरा चार्ट था, वो लिया. उन्होंने उसको पढ़ा और पुराने केस से मैच किया. उन्होंने देखा एमिली के केस फाइल पर लिखा हुआ था, एमिली 21 फीमेल, साइकेट्रिक ऑनसेट, मूवमेंट डिसऑर्डर, कैटाटोनिक, सब कुछ मैच कर रहा था. अब उनका इंटरेस्ट जागा. उनका अभी तक कोई लेना देना नहीं था एमिली से, पर उन्होंने बुलाया माँ बाप को और इनफैक्ट एक सीनियर डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने कहा
कि दो टेस्ट

आपको करने पड़ेंगे इस बच्ची के। एक तो है एंटीबॉडी ओपेनल, जहां पे स्पाइनल फ्लूइड जो रीढ़ की हड्डी थी स्पाइनल फ्लूइड, और एक अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। अब जब एक डॉक्टर जिसका कोई लेना देना नहीं है उसने ऐसा बोला, तो ऑब्वियसली बहुत सारे सीनियर्स और काफी सारे कलीग्स चिढ़ गए। वो बोले कि आपका कोई लेना देना नहीं है, आप क्या जानते हैं इसके बारे में यार, मतलब हम जो है अपने रिसोर्सेज वेस्ट करें एक साइकेट्रिक पेशेंट पे जिसपे अभी कुछ बचा भी नहीं है। तो वो लड़ लिए, डॉक्टर मिगेल रेमिरेस ने कहा ठीक है अगर मैं गलत हुआ तो मुझे कोई भी सजा मंजूर है, पर अगर मैं सही हुआ तो उसकी जान बच जाएगी। देन एवरीबडी वॉज साइलेंट, सबके मुंह पे ताले लग गए थे, ऐसे मुंह पे गोंद लगा दी हो कि अब कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो फिर जो टेस्ट बताए गए थे वो टेस्ट किए गए, और पूरा खर्चा मिसेस कार्मन ने कहा कि मैं दे रही हूं ना खर्चा, आपको एक्स्ट्रा चाहिए आप लीजिए, मगर टेस्ट कीजिए। एंटीबॉडी टेस्ट हुए और वो टेस्ट पॉजिटिव आया, एमिली के स्पाइनल फ्लूइड में एंटीबॉडीज थी मौजूद जो ब्रेन तक जा रही थी और अटैक कर रही थी। अल्ट्रासाउंड में यह भी पता लगा कि एक ट्यूमर था, बेसिकली यह ट्यूमर कहलाता है टेराटोमा। नाउ दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, इस ट्यूमर को टेराटोमा कहते हैं। ये अलग होता है, ये ऐसा ट्यूमर होता है जो दांत भी उगा लेता है, बाल भी उगा लेता है और बोन्स भी कई बार उगा लेता है, और साथ में टिश्यूज भी उगा लेता है। तो एमिली के केस में हो ही रहा था कि नर्व सेल्स पैदा हो रहे थे, बॉडी ने उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाई, और कंफ्यूजन में एनएमडीए रिसेप्टर जो ब्रेन के स्विच होते हैं उनको अटैक करना शुरू कर दिया। ये ट्रेवल कर रहे थे ब्रेन तक और फिर अपने आप को ही तबाह कर रहे थे। ट्यूमर से लड़ने के चक्कर में एमिली की बॉडी साइड में अपने आप को नुकसान पहुंचा रही थी। एमरजेंसी सर्जरी हुई तुरंत। ये टेराटोमा जो ट्यूमर था ये पूरा गोल्फ साइज बॉल का था, जो बॉल होती है गोल्फ खेलने वाली उस साइज का था। उसमें हेयर भी थे, दांत भी थे, टिश्यू भी थे। समझ लीजिए एक टाइनी ब्रेन जो था वो क्रिएट हो गया था ट्यूमर के अंदर, और ट्यूमर था बॉडी के अंदर। पर प्रॉब्लम ये थी कि हालांकि इस ट्यूमर को रिमूव कर दिया था, डैमेज बहुत हो चुका था क्योंकि बहुत लेट जाके ये चीज सामने आई थी। तो मसला ये था कि उसके ब्लड को क्लीन करने की जरूरत थी, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्माफेरेसिस। प्लाज्माफेरेसिस बेसिकली एक मशीन के थ्रू एंटीबॉडीज जो ब्लड की होती हैं, खून की होती हैं, उन्हें फिल्टर किया जाता है क्लीन करके और ब्लड को वापस फिर बॉडी में। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो ये तक किया गया। बॉडी में बेसिकली एक चीज होती है जिसे इम्यूनो ग्लोबुलिन कहते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम में जाता है और पूरे सिस्टम को रीसेट करता है। ऐसे हम क्या करते हैं, सिस्टम चालू नहीं होता तो ऑन ऑफ करते हैं ना, ऑन ऑफ का बटन, ये बिल्कुल ऑन ऑफ का बटन होता है। बिल्कुल वैसे ही इम्यून सिस्टम को रीसेट किया गया। 20 दिन एमिली को कोई होश नहीं आया, एमिली कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, एंड सबको लगा कि शायद हम फेल हो गए हैं। 23वें दिन नर्स ने कोशिश करी बैठने की, नोटिस करने की, लेकिन देयर वाज नथिंग। 26वें दिन आलम ये था कि एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि अब हमें मशीन्स हटा देनी चाहिए बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर एक बहुत कमाल की चीज़ हुई। 26वें दिन जब वो मशीन हटाने के लिए जा ही रहे थे, दे वर टॉकिंग, तो एमिली का जो सीधा हाथ था उसके 3 फिंगर्स ऐसे ट्विच करने लगी, हल्की सी कांपने लगी, एंड वो नर्स ने नोटिस किया। और जब नोटिस किया तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से एमिली ने उसका हाथ पकड़ लिया, एंड द नर्स शी स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगी। इसके बाद 28वें दिन धीरे से अपने होठों को खोलने की कोशिश करी एमिली ने और वर्ड बोला मॉम। और कार्मन जो माँ थी वो तो ऐसे रो रही थी, इस कदर रो रही थी ऑब्वियसली खुशी के आंसू के उनकी खुद की आवाज नहीं निकल रही थी। 3 महीने बहुत मेजर थे इस रिकवरी के, क्योंकि वापस बोलना सीखना है, वापस चलना सीखना है, वापस खाना सीखना है। वो जो मेमोरीज थी जो बहुत ही इधर उधर हो चुकी थी क्योंकि ब्रेन इधर उधर हो गया था, वो सारी मेमोरीज तो लौट के आ रही थी मगर टुकड़ों में, किश्तों में, कि पता है ये हुआ था लेकिन कैसे हुआ था याद नहीं, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग।
और एमिली जो थी वॉज टू लकी, बहुत खुशनसीब थी। खुशनसीब इसलिए क्योंकि एक डॉक्टर मौजूद था जिसे अपनी पढ़ाई याद थी और वो अपने ही हॉस्पिटल से लड़ने को तैयार था, और एक माँ तैयार थी जो पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी। एक साल लगा कंप्लीट रिकवरी में, लेकिन एक साल के बाद एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में वो वापस पहुंची भी, न्यूरो साइंस की पढ़ाई भी शुरू करी, ब्रेन की पढ़ाई करी, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि क्या हुआ उसके साथ। वापस लाइब्रेरी में एमिली बैठी हुई थी और पढ़ रही थी कि चीज़ें ये वापस हो सकती हैं, वापस ये सब लौट के आ सकता है, और अपने दिल पे हाथ लगा के चेक करती थी कि कहीं वापस मुझे धड़कन तो मेरी तेज़ नहीं हो रही है, क्योंकि 12% चांस होता है कि इंसान रिलैप्स कर जाए। लेकिन आपको जान के खुशी होगी, मैंने भी रिसेंट भी चेक किया है, एमिली इज़ फाइन, शी इज़ डूइंग वंडरफुल, अपनी लाइफ में एकदम सेट है, मेडिकल फील्ड में है, एंड उसके केस ने बहुत कुछ सिखा दिया है। ये कि जो केसेस 2007 से पहले के रहे हैं, जहाँ पे लोग समझ नहीं पा रहे थे और ये कह देते कि ओ भूत आ गया, कितने केसेस गलत ट्रीट किए गए होंगे, इस बात का गम भी है और इस बात की खुशी भी कि अब शायद सब ट्रीट सही से किए जाएंगे। दिस वॉज द स्टोरी। 666-22107 नंबर है, 666-22107, एंड आपके मैसेजेस के इंतज़ार में मैं दोहा वाला कबीर, बिकॉज आई लव टू नो। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के काम तो आएगी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत कुछ बता देती है कहानी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे बता सकते हैं 666-22107 पे, कॉल्स अभी कुछ देर में लेंगे हम 666-22107। And एक मैसेज आया, kindly send me the story if you have recording, very rare disease, even I wasn't aware of it, thanks for narrating। डॉक्टर साहब ने मैसेज किया, डॉक्टर समीउल्ला नियाजी कार्डियोलॉजिस्ट, ऑफकोर्स सर मैं भेजूंगा, आई एम रियली हैप्पी कि डॉक्टर साहब ने मुझे मैसेज किया है, डॉक्टर साहब थैंक यू। और एक मैसेज है, नाजिया बहन के लिखती हैं, कल की स्टोरी ब्रिलियंटली नरेटेड, कुछ भी हो बंदा तो जीने सा, इतना आसान सेम टू सेम पेंटिंग। हाँ, पेंटर्स में मोटिवेशन भर भर के आया ये। खादिम साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई द ग्रेट, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई होप कि आज की स्टोरी अच्छी लगी आपको। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत इंफॉर्मेटिव स्टोरी, आई एम अ PhD स्टूडेंट स्टडिंग न्यूरो साइंस एंड आई डिडंट नो अबाउट इट। भाई साहब, भाई मैं अभी नर्वस हो जाऊंगा मैं। भाई साहब, न्यूरो साइंस पढ़ने वाले डॉक्टर जो है और PhD स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आप यकीन जाने, दिस इज़ एन ऑनर टू मी, थैंक यू। अगर मैंने कोई इधर उधर दवाइयों के नाम बोल दिया मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे को डर लग गया भाई, लेकिन मैंने कोशिश ये करी कि मैं जितना जान सकूँ पढ़ सकूँ उतना मैं आप तक पहुँचा सकूँ, एंड आई होप मदद होगी। मैं ऑफकोर्स हिस्टोरी भेजूंगा, सिंस यू आर अ PhD स्टूडेंट, वो भी न्यूरो साइंस में, तो फिर अदनान भाई आपको तो सेंड करना बनता ही है, बाकी को तो मैं दूंगा, बट थैंक यू सो मच। और आप अपने रिव्यू तो क्या मतलब बता सकते हैं, कहानी आपको कैसे लगी, इससे पहले आपने कभी ऐसा कुछ सुना था कि नहीं सुना था, जस्ट लेट मी नो। अमन भाई कहते हैं, कबीर साहब योर नरेशन इज़ एक्सेलेंट, जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू। और कमालुद्दीन शेख साहब कह रहे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर कबीर। नहीं भाई, अभी बहुत बड़े बड़े लोगों ने मैसेज कर दिया, आज तो भाई आपका चौड़े में जाएगा, क्या बात है।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक
2: 8:02 होने वाले हैं थैंक यू सो मच आप सभी का मैसेज करने के लिए इस कहानी पर एंड सबसे बड़ी बात मेरे लिए इट्स एन ऑनर कि एक डॉक्टर साहब हैं हमारे नियाजी साहब उन्होंने मैसेज किया है अदनान भाई हैं जो PhD कर रहे हैं वो भी न्यूरो साइंस में आप दोनों ने मैसेज किया ना तो अभी मेरे को अपना लेवल थोड़ा बड़ा फील हो रहा है थैंक यू सो मच ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने सराहा क्योंकि आप लोग इस फील्ड के हैं सो थैंक यू सो मच उन्होंने मैसेज किया माई मॉम इज हैविंग इशू विद हर ब्लड एंड देर इज नो प्रॉपर डायग्नोसिस सारे टेस्ट नेगेटिव आते हैं बट स्टिल ब्लड लेवल कीप्स फॉलिंग विदाउट एनी रीजन होप कोई ऐसा ही डॉक्टर डायग्नोस कर सके और अम्मी को थोड़ा बेहतर हो जाए इंशाल्लाह मेरे भाई बहुत सारी दुआएं आपकी अम्मी के लिए दुआओं की गुजारिश सबसे बिल्कुल अदनान भाई कहने की बात ही नहीं मेरा भाई ऑफकोर्स एंड एक गाने के बाद सारे मैसेज पढ़ूंगा बिकॉज भाई इस गाने के बाद मुझे भी चाय की जरूरत है एक गाने का ब्रेक लेते हैं देन आपके मैसेजेस आपके रिव्यूज इस कहानी के ऊपर ठीक है इसके बाद मिल रहे हैं भाई डन हो गया लेट्स गो

हाँ जी, तो 8:05 हो गए, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, और 3-4 और डॉक्टर्स ने मुझे मैसेज कर दिया, अभी तो मैं नर्वस हो गया हूँ भाई। पर डॉक्टर साहबों डॉक्टर्स बोलता हूँ, जितने भी डॉक्टर्स ने मैसेज किया, थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आपने इस काबिल समझा कि कहानी सुन के मैसेज कर दिया, तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है।

0: लो wake up. Hey, दो हवाला में कबीर, यही कहूंगा सुबह सुबह.
1: Wake up जी, wake up. सारी पढ़ाई हो गई भाई साहब हमारी तो. पर मैं इतनी, जब भी मैं कोई मेडिकल मिस्ट्री सुनाता हूँ मुझे खुद से बहुत डर लगता है भाई. बहुत मुश्किल पढ़ाई है. तमाम डॉक्टर्स को, नर्सेस को, तमाम लोगों को जो मेडिकल फील्ड से हैं, आप सबको मेरा सल्यूट सलाम. जो आप लोग कर रहे हैं अलग लेवल है भाई, अलग ही चीज़ है. यू आर ब्लेस्ड एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू. फैयाज भाई थैंक यू सो मच. और एक मैसेज क्या है, बहुत अच्छी स्टोरी थी कबीर भाई ये मैसेज किया अब्दुल करीम भाई ने, थैंक यू सो मच मेरे भाई. खादर अब्दुल आदिब भाई कहते हैं रियलिटी रियली इट्स अ गुड केस ऑफ न्यूरो सर्जरी. मेमोरी रिकॉल इज कॉम्प्लिकेटेड मेथड, हाउएवर द स्ट्रेंथ अराउंड द पेशेंट गेव गुड रिकवरी एंड द डॉक्टर हैज टू गेट ऑफ कोर्स भाई. तमाम डॉक्टर्स को सलूट है भाई इस बारे में. तो इन्फॉर्मेटिव स्टोरी एक भाई लिखा है, थैंक यू सो मच. और एक भाई लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, टुडे स्टोरी वाज फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच. और एक मैसेज है मेरे पास मोहसिन भाई का. मोहसिन भाई कहते हैं आपको टैक्सी वाले से लेकर डॉक्टर सब सुनते हैं भाई. ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं आपको बता नहीं सकता. मैं आज बहुत खुश होकर अल्हम्दुलिल्लाह घर जाऊँगा. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम. और लिखते हैं यू आर ग्रेट, थैंक यू भाई. और तो बस मैंने मैसेज किया है वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, बहुत अच्छी लगी. हर स्टोरी से कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ रही है हमारी. मैनी मैनी थैंक्स कबीर भाई, शुक्रिया बहन. और आगे लिखती हैं शुक्र है एमिली की जान बच गई, और वो मोमेंट बहुत अच्छा लगा जब डॉक्टर ने अपना केस ना होते हुए भी इंटरेस्ट दिखाया. दैट्स व्हाट यार, ये जो फील्ड है ना मेडिकल की, ये ना अलग ही है, अलग ही है. एक मैसेज है कबीर भाई क्या कमाल की स्टोरी बताई, एवरीवन नीड टू नो. दुनिया में सब लोग भूत पकड़ा करते रहते हैं. वही भाई, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थी सलमान भाई ये कहानी. दैट इज़ वाई मैंने इस कहानी को चुना भी, कि मैं ये सुनाते हैं भाई. माजिद भाई लिखते हैं स्टोरी वॉज टू गुड. नौशाद आफ्ताब आलम साहब लिखते हैं स्टोरी वॉज टू गुड, आई ऑल्सो गॉट इमोशन एट द एंड ऑफ द स्टोरी. लव यू कबीर भाई, लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई. एंड मुझे मैसेज किया है भाई ने, ग्रेट इन्फॉर्मेटिव स्टोरी, इट वॉज अ चाय स्टोरी. थैंक यू सो मच भाई. चाय पीते वगैरह आपने सुनी है तो मौज तो आया होगा यहाँ भाई, नो डाउट अबाउट इट. फराज भाई वालेकुम सलाम लिखते हैं वेरी गुड इन्फॉर्मेटिव स्टोरी. फिर एक भाई लिखा है वेरी गुड स्टोरी अनिल भाई, थैंक यू सो मच. और एक ने मुझे हाई लिखा है, इनका नाम इन्होंने अल्फा लिखा है फॉर सम रीजन. एक मैसेज है अमेजिंग स्टोरी, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह. एंड इनके बाद जी कमालुद्दीन शेख साहब लिखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर कबीर, थैंक यू. और कबीर साहब योर नरेशन इज एक्सलेंट, थैंक यू. एंड देन बहुत अच्छी लगी स्टोरी और इमोशनल भी, इसे कहते हैं किस्मत. लव यू ब्रो, थैंक यू सो मच भाई. बहुत सारा प्यार प्रिंस भाई को, लॉन्ग टाइम नो सी प्रिंस भाई. और मैसेज किया है मुझे मुजाहिद बुखारी साहब ने, लिखते हैं स्टोरीज स्टार्टेड अगेन लिस्टिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, वंडरफुल स्टोरी एंड एज यूजुअल एक्सप्लेन वंडरफुली, लव यू लॉट्स, थैंक यू सो मच मेरे भाई. अदील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, खादिम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. एंड मैसेज किया है एक और भाई ने, कहना भाई मैं एज अ नर्स काम कर चुका हूँ एंड अभी मेडिकल फील्ड में हूँ. इट्स बिन अ वाइल, आई हैव बिन लिसनिंग टू यू एंड यू आर फैंटास्टिक, कीप डूइंग ग्रेट कबीर भाई. द वे यू नरेट अ स्टोरी इज ऑब्वियसली इमैक्युलेट बिकॉज यू गैदर इन्फॉर्मेशन एंड देन यू डिलीवर. आगे लिखते हैं अमूमन लोग कहानी तो सुनाते हैं लेकिन उसमें डिटेल्स नहीं होती, जल्दबाजी में होती, बट योर स्टोरी टेक्स टाइम एंड आई सल्यूट यू, थैंक यू सो मच भाई. रेहान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई. भाई मेहनत के बिना तो मज़ा भी नहीं आएगा ना, कहानी में डिटेल हो तब बात है, है ना. नाजिया बहन जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया. और मैसेज किया है जब आपने कहा मेडिकल, एक अलग ही साउंड मोरा, अलग लेवल का बंदा था मैं. हाँ अलग लेवल का बंदा था मैं, वही फिट बैठता है यहाँ पे. अलग लेवल का बंदा था यार. एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम
1: जी भाई साहब. कमाल भाई बस एकदम बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह. कमाल भाई आप सुनाइए क्या हाल है.
2: अपने हाल तो ठीक है कबीर भाई, बस हाँ. यही सोच रहा था हाँ. कि आजकल आप हॉरर के साथ में जो है ना मेडिकल लाइन के जो है
1: ये मेरा हॉरर सुनाने का तरीका है.
2: दोनों मिला रहे हैं आप. शाम का हॉरर सुनाने का जो है ना, सुबह आप जो है ना मिक्स करके सुनाई दे रहे हैं.
1: हाँ तो वही कोशिश है भाई, मतलब
2: नहीं नहीं सही है भाई, हम लोग को तो सुनना था लेकिन आप सब में नहीं सुन पाते हैं, तो आपने सुबह सुना रहे हैं मिक्स करके, बहुत अच्छी बात है.
1: थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया.
2: बात है कि भाई दिमाग बताइए, अपने आप से अगर वजन लड़ रहा है किसी को पता, अपने यहाँ तो भूत प्रेत सबको बुला लिया जाता. एक भाई वो जो पादरी आया हुआ था उसे नहीं होता दूसरे को बुलाते.
1: वो तो है,
2: हो सकता है कोई दूसरा भूत.
1: बिल्कुल है भाई, ये तो एक परेशानी है.
2: कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई भाई.
1: पता जब मैं पढ़ रहा था मैंने कहा 2007 से पहले ना जाने कितने सेम केसेस आए होंगे और बेचारे सब के सब निपट गए होंगे इस वजह से कि इस पे भूत आ लिया.
2: भूत आ गया.
1: हाँ वो तो
2: जो हरकत थी वही थी ना भाई.
1: हाँ
2: और आप जो भाई मिक्स करके जो सुना रहे हैं जैसे कि डिटेल हर चीज का
1: जी,
2: ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है भाई कि हम लोग को भी थोड़ी जानकारी हो जाती है और डिटेल जो आप सुनाते हैं ना उसमें सुनने में और इंटरेस्ट आता है।
1: थैंक यू सो मच भाई।
2: क्या कोई भी कहानी आप सुना रहे हैं उसमें डिटेल आप बहुत अच्छे जोड़ते हैं
1: भाई, उसी का मजा, मुझे खुद ढूंढने मजा आता है डिटेल्स का, मजा ही है। मुझे लगता है कई मर्तबा कि थोड़ा खिंचना जाए कहानी पर, फिर भी मेडिकल फील्ड में तो बहुत जरूरी है भाई, इसमें तो डिटेल डालनी ही पड़ती है। तो
2: नहीं आपके जैसे बाकी लोगों की कहानी एक थराजा एक थराजा दोनों मर गए कहानी
1: यही कोशिश है भाई, वो वाली कहानी नहीं सुना ली पर बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
2: जो बात कर रहे थे लैंग्वेज की, अभी मैं गया था ना बॉम्बे
1: जी जी,
2: तो बॉम्बे जाने के बाद जो है क्या हुआ कि लाइसेंस रिन्यूअल करना था।
1: अच्छा,
2: बोले भाई मराठी आनी चाहिए, तो मराठी तो मुझे आती है। अब वहाँ गया तो बोले उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, आपको भेजा भी था मैंने, शायद आपने नहीं देखा, फिर डिलीट कर दिया। भाई ने जाके सर्टिफिकेट लेके आया भाई मराठी की।
1: हाँ वो मैंने देखा सर्टिफिकेट, में कुछ पढ़ नहीं पाया उसमें भाई क्या खतरनाक सर्टिफिकेट था भाई तो वो मैंने देखा सर्टिफिकेट, पर अब आपको तो पूरी आती है ना मराठी, तो यू आर फ्लुएंट ना पूरा।
2: हाँ
1: हाँ वेरी नाइस।
2: अब पूरी आती है लेकिन क्या होता है ना, दो साल तीन साल के बाद जाओ तो मराठी और अरबी मिक्स हो जाती है भाई
1: मैं समझ सकता हूँ। मैंने यहाँ पे भी देखा, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो ट्यूनिशिया से या कहीं से हैं, तो उनके यहाँ फ्रेंच वगैरह ना, तो वो फ्रेंच और अरेबिक दोनों मिला के बोलते हैं, वो भी बहुत डिफिकल्ट है भाई कॉम्प्रिहेंड करना
2: बहुत डिफिकल्ट हो जाता है
1: तो
2: भाई।
1: मैं समझ रहा हूँ भाई, पर कमाल है, मुझे अच्छा लगा कि आपको कहानी अच्छी लग रही है, आप सुनते हैं डेली, उसके लिए बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू मेरा भाई, अपना ख्याल रखिए भाई, अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़। और मुझे जो है ज़ीशान भाई ने एक बात बोली है, ज़ीशान भाई थैंक यू सो मच यार फॉर अप्रिशिएटिंग। ज़ीशान शरीफ भाई लिखते हैं, पहले उन्होंने लिखा भाई दो तीन रोज से कोई स्टोरी में मन नहीं रहा है, हजम नहीं हो रहा आई लिखते हैं भाई यू आर सच यू मच अप्रिशिएटेड फॉर प्रोनाउंसिंग डिजीजेज एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी करेक्टली, इफ इट वर अ रेगुलर पर्सन लाइक मी दे वुड प्रॉब्ली गेट टंग टाइड और कैच फेशियल पैरालिसिस ट्राइंग टू से देम। भाई थैंक यू सो मच, मैं प्रोनाउंसिएशन बार बार देखना पड़ता है, डर लगता है भाई गलत ना बोल दूं मैं, ये भी एक टेंशन है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, सलाम अलैकुम भाई।
1: हाँ जी भाई, क्या हाल है भाई के?
3: अच्छा बताओ।
1: बढ़िया भाई, एकदम शानदार, बताओ।
3: बस स्टोरी के लिए मैंने थोड़ा सा तो सुना, पर जितना सुना बहुत मजा आया, क्यों मैं बहुत रिलेट कर पाया। हमारे गांव में ऐसा होता है।
1: गांव में क्या होता है?
3: मतलब वो भूत निकालते हैं ना
1: हाँ भाई बाद हमारी तरफ तो बाद में झाड़ू निकाल लेते भाई, कभी मारने के लिए कभी भूत भगाने के लिए।
3: दस दिन पूरा एकदम वो टेंट वेंट लगा के 10 दिन काम कर, वो एकदम एक वो फेस्टिवल का सेम सेम करते हैं।
1: हाँ वही ना, तभी तो भाई मैंने कहानी सुनाई, हमने कहा कहीं तो किसी के पल्ले तो पड़े भाई।
3: आने वाला है भाई वो फेस्टिवल, अभी थोड़ी दिन में आने वाला है हमारे गांव में, तो मतलब हमारे एरिया में पूरा वो अभी हो जाएगा दशहरा, हम लोग दशहरा बोलते हैं
1: भाई। अब बच के रहना, तुमको तो कहानी सुना दूंगा भाई, मैं सुन ली ना कहानी, बस ये सुना देना भाई गाँव में।
3: अभी तक तो मेरे खानदान में किसी को नहीं हुआ है,
1: अल्हम्दुलिल्लाह
3: और हो भी ना, पर वो हम लोग जाते हैं देखने के लिए और वो नाटक देख के हम लोग मजे करते हैं उधर।
1: करो मजे करो, सीरियस मत लेना, तुम भी झाड़ू लेके मत पहुंच जाना मेरे भाई, भाई क्या उतारूं।
3: बचपन में वो जाते थे ना उधर तो डर लगता था, कहीं उसको बोल दे हमको ना पकड़ ले पर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो
1: बढ़िया। अब ये कहानी अपने गाँव वालों को भी सुना देना, उनको भी पल्ले पड़ जाएगा कुछ, किसी को पल्ले पड़ेगा। अरे 10 में से 1 को तो समझ में आएगा भाई, कहीं तो
3: वो एक कोई होगा कि समझ लेगा
1: हाँ बस वो उसी के लिए।
3: तो जो ये काम करता है ना, जो ये भूत निकालने के, उसके घर से मेरे घर दूध आता है।
1: तो आए क्या है घर क्या
3: उनके घर से दूध आता है हमारे यहाँ।
1: अच्छा अच्छा, उनके घर से दूध आता है जो भूत भगा रहा है। अरे ये क्या, अच्छा वो दूध भी बेचते हैं वो? कोई दिक्कत नहीं, मैं भेजता हूँ, पर वो दूध भी बेचते हैं और भूत भी भगाते हैं, ये दोनों काम एक साथ करते हैं।
3: पर क्यों, मैंने थोड़ा सा सुना तो मेरे को समझ गया आज कौन से लाइन से है कहानी।
1: अरे मेरा सवाल तो सुनो, मैं कह रहा हूँ जो आपके घर दूध भिजवा रहे हैं वो साथ में भूत भी भगा रहे हैं।
3: हाँ वो भूत भी भगाते
1: हैं भाई, मेरा सलाम कहना उनको भाई, वो बढ़िया आदमी है, उनके पास बहुत सारी कहानी होगी भाई। थैंक यू मेरा भाई, कहानी में भेजता हूँ
3: भाई। वो जो 10 दिन का मतलब वो एकदम मेला का सेम लगता है ना आपको, वो मुर्गी लेके आता है, बकरी लेके आता है उधर।
1: वो तो उनके अपने सिस्टम है भाई, पर थैंक यू सो मच कि आपने कॉल करी। रिचुअल में नहीं जाएंगे आप, मुझे मैसेज कर दो, मैं कहानी भिजवा देता हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच
3: भाई। और हाँ रिचुअल में नहीं जाएंगे, कितने बोलेंगे कि भाई मजाक उड़ा रहे
1: हैं। हाँ बस ठीक है, ख्याल रखो मेरा भाई। ओके
3: ओके भाई, मैं मैसेज भेज रहा हूँ।
1: ठीक है, डन डन डन, ओके। और भाई के बाद मैसेज किया है फैज मंसूरी भाई ने, क्या लिया कबीर भाई मैं बढ़िया बस शानदार एकदम ठनाठन। और एक मैसेज किया है यूसुफ भाई ने, कहते हैं कि आज की स्टोरी तो शुरू से नहीं सुन पाया, मेडिकल ट्रॉमा मिस्ट्री स्टोरी अच्छी लगी, क्या है इमोशनल भी, वो जो डॉक्टर आए बेचारी के लिए आसमान से फरिश्ता बन के, जिससे जिसने जान बचाई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी बीमारियां हैं जो इंसान के दिमाग के परे हैं, अल्लाह बचाए। गुड टू हेयर दैट आपके स्टोरीज पीएचडी स्टूडेंट्स एंड एमडीज एंड अदर मेडिकल फील्ड्स वाले सुन रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। ये सही है, हमारी तरफ की कंट्रीज में ऐसे केसेस को कोई दूसरी तरफ ही ले जाता, हाँ सीधा झाड़ू बाहर। और मंजूर साहब लुसेल से उन्होंने मैसेज किया है, और फिर अरबाज मैंने मैसेज किया, माय नेम इज़ बाबा अरबाज, भूत निकालने में माहिर हूँ, जिसको ज़रूरत हो कॉल कर सकते हैं, ये ऑटो में चिपके होते हैं ना ऐसे। और जो डॉक्टर एम समीउल्ला नियाजी साहब हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भेजा है कि आई शैल सेंड दिस स्टोरी टू माय फैमिली ग्रुप, ऑलमोस्ट ऑल माय फैमिली मेम्बर्स आर डॉक्टर्स एंड माय एल्डर ब्रदर इज़ अ न्यूरोलॉजिस्ट, सो वर्थ शेयरिंग। भाई उनका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। खादर अब्दुल्लादी भाई कहते हैं, कबीर भाई द वे यू इंकरेज मॉर्निंग विद रिचार्ज पावर, कबीर भाई डॉक्टर फौजिया शुड हैव लिसन टू दिस स्टोरी। मैम को मैं भेज दूंगा भाई, ज़रूर भेजूंगा, वेरी गुड आइडिया। रहमतुल्ला साहब वालेकुम अस्सलाम, और कबीर भाई ये स्टोरी स्पेशली मेरे को सेंड करो, ऑफकोर्स ऑफकोर्स सोनू भाई। आरिफ भाई कह रहे हैं बाबा टिल्लू। एक कॉल आ रही है, रुके भाई, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम।
1: अरे साहब आपकी आवाज को मैंने कितना याद किया है, आप कहाँ थे मेरे भाई?
4: अरे हमने भी आपको बहुत याद किया, आप तो शो की धड़कन हो।
1: अरे मेरे
4: सुबह गायब हो गई थी, शाम में चल रही थी,
1: वापस आ गया
4: मैं। कैसे ढूंढेगा आपको,
1: कम बैक किया मैंने, कम बैक मालूम।
4: अरे इसकी वजह से तो हमने भी कम बैक किया है आपके खातिर।
1: थैंक यू भाई, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। और बताइए,
4: जान हो यार तुम जान।
1: थैंक यू
4: रेडियो की।
1: थैंक यू सो मच भाई। आप बताइए प्रिंस भाई, कहाँ थे, क्या चल रहा है जिंदगी में, सब बढ़िया है, टॉप क्लास?
4: सबसे पहले तो ये बात गलत है कि आप बताइए, हम बता देंगे, आप देख पाओगे।
1: अरे यार
4: आप सुना सकते हैं।
1: देखो नाश्ते से पहले मजाक नहीं मेरे साथ, ठीक है, नाश्ते से पहले मजाक
4: भाई, बहुत अच्छे से नाश्ता किया जा सकेगा आपको।
1: नहीं अभी बस उसके लिए तैयारी चलेगी 9 बजे के बाद। बाकी कहानी कैसे रही है प्रिंस भाई, ये बताइए।
4: आधी से सुनी लेकिन सारी समझ आई, बहुत ही बढ़िया और इमोशनल बहुत थी यार भाई,
1: है ना,
4: इसे कहते हैं किस्मत।
1: बस यही है भाई, किस्मत का खेल था, और इसमें मतलब वो है कि इतनी इतना रेयर केस और ऐसे सॉल्व हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये तो
4: बहुत ही बड़ी बात है।
1: यस,
4: जिसने हमारी हयात लिखी है उसी ने मौत भी लिखी है मेरे भाई, उसकी हयात थी और उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया, वो बच गई बंदी, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन स्टोरी थी।
1: थैंक यू सो मच प्रिंस,
4: काफी वक्त हो गया था खास स्टोरी सुने हुए,
1: तो इसलिए भाई बस अभी शुरू कर दिया हमने सिलसिला, और सुबह को 7:30 बजे करीब रखते हैं, तो आप जरूर मेरे भाई वक्त निकाल के जब भी आए
4: 7 बजे हाजिर हो जाएंगे जनाब, आपको तुम तो कीजिए।
1: डन हो गया प्रिंस भाई, डन हो गया।
4: ये आवाज नसीब वालों को सुनने के लिए।
1: अरे थे थे थे थे, खुद ही को आज मैं बर्थडे गिफ्ट दे दूंगा भाई, इतनी खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच प्रिंस भाई, आपकी मोहब्बत।
4: और बताएं भाई क्या चल रहा है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह एकदम शानदार, एकदम शानदार भाई।
4: हमारे भाई लोग जो खो गए थे वो सब मिले या नहीं मिले, जो जो सुबह सुबह आ रहे थे
1: सब मिल गए भाई, सब मिल गए, सारे सारे आ गए, शाम वाले को भी लिया।
4: अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया भाई बढ़िया, सुबह के मजे ही अलग होते हैं, सुबह बेहतरीन हो तो सारा दिन बेहतरीन गुजरता है।
1: जज़ाकअल्लाह भाई, बस यही कोशिश है प्रिंस भाई।
4: दो दिन आपके बिना गुजारते हैं आप उसी के लिए शुक्र अदा कर लीजिए कि हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं।
1: बहुत शुक्रिया प्रिंस भाई, मैं तो सोच रहा था पता नहीं कहाँ गए प्रिंस भाई, फाइनली यू आर बैक, गुड टू नो दिस, और अच्छी बात है, अब तो मैं 7 बजे मुझे पता है कि आप आ जाया करेंगे, तो अच्छी
4: इंशाल्लाह
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई,
4: अपना ख्याल रखें और सारे लिसनर्स अपना ख्याल रखें,
1: ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
4: वालेकुम भाई।
1: वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और प्रिंस भाई के बाद अगले गाने की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद खबरों की बात करनी है, इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। आए साहिल और जॉनी द गांधी की आवाज में 8:22 हो चले ही, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे मैसेज करते रहिए, बाकी इसके बाद मिलते, जाना नहीं आपने, ठीक है। सैयद फिरोज साहब थैंक यू सो मच,

गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम। मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे। अब वक्त है कुछ खबरों का, बहुत जरूरी बातें हैं जो करनी है। सो मैं जी दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे 8:23 बाय द क्लॉक। कुछ चीजें, सबसे पहले तो थर्सडे को होने वाली चीज है, हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन एक अवेयरनेस कैंपेन लेकर आ रहे हैं। एक अवेयरनेस इवेंट है जो थर्सडे को होगा, एंड थर्सडे को क्यों होगा इसके पीछे वजह है क्योंकि दे आर मार्किंग वर्ल्ड अल्जाइमर्स मंथ और अवेयरनेस रेस की जा रही है फॉर अर्ली डायग्नोसिस, ताकि पता लग सके कि अर्ली डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, अर्ली सिम्टम्स क्या हैं, एंड किस तरीके से लोगों की मदद की जा सके टू मेक देयर लाइफ ईजियर, एंड ऑल्सो पीपल विद डिमेंशिया उनके साथ भी कैसे राजा उनकी लाइफ को कैसे आसान बनाया जाए, और उनके इर्द गिर्द लोग जो उनका ख्याल रखते हैं तो उनको क्या क्या करना चाहिए उन चीज़ों पे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जो हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन अवेयरनेस कर रहा है इस चीज़ की। सो कुडस टू देम। हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन ने प्रेस स्टेटमेंट में ये भी बताया कि जो इवेंट है ये होगा अल रुमाइला हॉस्पिटल में, और ये सुबह के 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक है। इसमें जो मेंबर्स हैं वो पब्लिक को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि दे कैन मीट मल्टीडिसिप्लिनरी मेडिकल टीम, मिल सकें टीमों से और सीख सकें, उनके सर्विसेज के बारे में समझ सकें कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो इस साल का जो कैंपेन है इट इज़ हेल्ड अंडर द ग्लोबल थीम द अर्लियर यू नो द मोर यू कैन डू। मतलब जितना जल्दी आपको पता लगेगा उतना ही ज़्यादा आप इन डिजीज से कॉम्बैट कर सकते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन हमेशा लेवल अप रखने के लिए। ओके, इसके बाद हिज एक्सेलेंसी मिनिस्टर ऑफ म्यूनसिपैलिटी अब्दुल्ला बिन हमद अलाथिया, ही इज इन टॉक्स विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ चाइनीज कंपनीज ऑन एग्रीकल्चरल पब्लिक सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली बहुत सारे चाइनीज इक्विपमेंट्स हैं जो मार्केट में आ रहे हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एंड उसको कैसे यूज कर सकते हैं ट्रायल बेसिस के लिए कम से कम, इस बारे में बातचीत चल रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी की तरफ से और वहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से, तो मीटिंग एक हुई है जो बीजिंग में हुई है, एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ द मिनिस्टर्स करंट विजिट टू चाइना। वहाँ पर पहुंचे थे एंड काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुई, अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बात हुई, जिसमें स्मार्ट सिस्टम्स का डिज़ाइन कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है एफिशिएंसी पे, और सर्विस की क्वालिटी किस तरह से बढ़ाई जाए, एंड साथ में रोबोट्स जो हैं वो कैसे काम में ले जा सकते हैं फॉर क्लीनिंग एंड पब्लिक सर्विसेज। तो इंशाल्लाह आगे वाला आने वाला जो साल है बहुत ही कति एडवांस होने वाला है भाई, कति एडवांस। इसके अलावा कतर, ये म्यूज़िक बंद करके बताऊँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कतर will be hosting a number of international events, मतलब आने वाले हफ्तों में, महीनों में और ख़त्म होते होते, जिसमें कि स्पोर्ट्स है, बिजनेस है, कल्चर है, हेरिटेज है, सिनेमा है, टेक्नोलॉजी है, म्यूज़िक है, हेल्थ केयर है, डिप्लोमेसी है,

0: वो सारे मतलब पूरा का पूरा ग्लोबल अटेंशन कतर अपनी तरफ खींचने वाला है, और बहुत सारे हाई प्रोफाइल इवेंट्स भी हैं, जैसे कि प्रीमियर स्पोर्टिंग चैंपियनशिप्स हैं, लग्जरी ब्रांड एग्जीबिशंस हैं, टेक्नोलॉजी फोरम्स हैं, इसी के साथ साथ कल्चरल शोज के साथ साथ म्यूजिकल शोज भी हैं, म्यूजिकल एक्सट्रावेगेंजास, यानी सारे के सारे इवेंट भर भर के विजिटर्स को कतर की तरफ लेकर आने वाले हैं. सो गेट रेडी फॉर दिस. इसी से कनेक्टेड खबर, हमद पोर्ट हैंडल्ड मोर देन 90,000 टन्स ऑफ ग्रेन. बेसिकली 90,000 से ज़्यादा टन का मैंने जो है आवन जावन मई से जुलाई के महीने में इस साल, और बहुत ही एफिशिएंटली एंड काफ़ी स्टडी फ्लो रहा है ऑफ एसेंशियल गुड्स टू कतर. ये जो वॉल्यूम है ना, ये क्यों मैंने बताई इतनी स्पेसिफाई करके 90,000 टन, बिकॉज ये दिखाती है किस तरीके से रिश्ते जो हैं वो स्ट्रांग हुए हैं कतर के बाकी कंट्री से, फूड सिक्योरिटी सिस्टम को किस तरीके से कतर बढ़ावा दे रहा है, एंड वो जो रोल है मेंटेनिंग मार्केट स्टेबिलिटी उस पे कतर कितना सीरियस है. दिस शोज हाउ वेल वी आर डूइंग इन द मार्केट राइट नाउ. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस माशाल्लाह कतर, अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, कुछ मैसेज हैं भाई कॉल. ओके, ए मैं कह रहा हूँ हाउ आर यू, गुड टू हैव यू इन द मॉर्निंग, प्लीज सेंड द स्टोरी. ये अनंत भाई मैसेज. अनंत भाई मैं आपको एक चैनल भेज रहा हूँ भाई, इस पे आ जाना, कुछ देर में आपको मिल जाएगी कहानी. ठीक है अनंत भाई, ये लो. बाकी मैं एक ज़रा कॉल कर लेता हूँ क्योंकि आसिफ भाई ने बोला ये कॉल करने का, तो कॉल करने का. एक सेकेंड आसिफ भाई, बस मिला दी मैंने कॉल. एक मैसेज और है, अस्सलाम वालेकुम, क्या लिखा उन्होंने, प्लीज सेंड द स्टोरी. ओके मैं भेज रहा हूँ आपको चैनल, आपको फॉलो करिए. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या बोलते हैं कबीर भाई, मजे
0: बढ़िया भाई, एकदम मजे में भाई. आप सुनो भाई, क्या हाल है,
1: क्या मतलब भाई, क्या चल रहा है, क्या भाई तुम्हारे शो पे भाई,
0: एकदम बढ़िया भाई. आप सुनाए, क्या लग रहा है आपको, तो आप बताएंगे
1: भाई. मेरे को तो बहुत मजा आती है भाई, कसम खुदा की, मैं तो सुन रहा था, मैं सुबह से तुम्हारा शो सुन रहा हूँ भाई. बाकी मैं बोल रहा तुमको बाद में बात करूंगा मैं भाई. वो मेरे को ना भाई वो शहजादे सलीम भाई के ऊपर तो हंसी आई नहीं थी, वो बंदा कसम खुदा की वो तला भाई सही बोलता, वो फांसी लेने का दिल कर रहा था भाई. मैं सच्ची में गाड़ी चला रहा, दिल कर रहा गाड़ी से उतर के मारूं भाई मैं.
0: उनका भाई स्पीड है, शहजादे सलीम की स्पीड है, अगर वो स्पीड पकड़ ली.
1: मगर तला भाई को क्या हो गया भाई, बोले कराची की और बम्बई की लैंग्वेज सेम सेम है. अरे
0: मैं बताऊं वो एक्चुअली में फैक्ट क्या है, कराची और मुंबई बहुत सिमिलर पर्सनालिटीज शेयर करते हैं. जैसे आप लोगों के पास बीच है, कराची के पास है, और बहुत ज्यादा जैसे वो वर्ड थे ना स्लैंग वगैरह जो आपके ऐसे एक बोलते ना टपोरी भाषा है, वैसे कराची के पास भी.
1: ऐसा नहीं हो सकता भाई, अरे है एकदम डिफरेंट है.
0: अरे भाई है, वाइब है वैसी, मैं बताता हूँ. हाँ है वाइब, हाँ सच्ची में भाई. और जो लाहौर है इज मोर लाइक दिल्ली, तो वो ऐसा है, वो पर्सनालिटी ऐसी है कराची की मोर लाइक मुंबई, और लाहौर इज मोर लाइक दिल्ली खाने के लिहाज से भी भाई.
1: मैं तो सोच में पड़ गया भाई, बंबई की लैंग्वेज कराची में चल रही है, कराची की लैंग्वेज बंबई में चल रही है.
0: वो लैंग्वेज अभी तक नहीं आई, लेकिन जैसे वो जो एक टिपिकल टपोरी भाषा यूज होती है ना कुछ जगहों पे, तो वैसी एक कराची की भी अपनी एक भाषा जिसमें शपाटर वाटर ही वर्ड आते हैं. तो वो
1: नहीं, तो फिर मैं तुमको बताता हूँ भाई एक बात, तुमको तो बम्बई की जो कट्टर लैंग्वेज है ना भाई, हाँ. वो तुम मेरे से सुन पाएंगे, आराम से सुन पाएंगे भाई, पर्सनल मैं तुमको बताऊंगा मैं.
0: हाँ,
1: तुम की लैंग्वेज जो है ना भाई, हाँ. बहुत हार्ड है कट्टर लैंग्वेज बम्बई की, और जो मराठी लैंग्वेज है ना भाई आजकल, मतलब एक बात तुमको बोलता हूँ भाई, कबीर भाई जैसा मतलब मेरा एक दोस्त था, वो यूपी में रहता था, वो यूपी से आया इधर बम्बई में, दस साल हुआ आके, और बोलने लगा भाई मैं तो मराठी है, मी मराठी आए, मी बोलना मराठी, थोड़ा समझत ना है क्या, वो मतलब ऐसा बोलने लगा, उसको मतलब थोड़ा बहुत मराठी आ गई. अरे भाई मैं बोला भाई क्यों बेइज्जती करवा रहा है हमारी.
0: मुझे एक बात हो, क्योंकि लाइन पर तो वो जो अड़ा निकालते हैं मराठी, वो कैसे निकालते हैं, वो मैं मेरे से निकलता नहीं
1: भाई. बहुत डेंजर लैंग्वेज है मराठी, जैसा अभी मैं तुम्हारे को बोलूंगा एक चीज, काय भाओ कसा काय, तुम्हें काय करतो, मतलब मैं तुम्हारे को ये बोल रहा हूँ कि भाई क्या कर रहे हो तुम. बहुत से लोग होते भाई, मतलब लैंग्वेज ठीक तो लेते हैं भाई, मगर बोलने का ग्रामर नहीं मालूम इन लोगों को.
0: हाँ वो ग्रामर क्योंकि मुश्किल भी लगती है मुझे, आसान नहीं है भाई.
1: भाई बहुत हार्ड है. अभी मैं तुम्हारे अभी मैं भी एक शहद भाई को एक बात बोलता हूँ, भाओ गप्पा बसा आई शपथ तुझा में डोका फोरन टाकनी.
0: क्या बोल गए भाई, क्या बोला
1: भाई, कसम खुदा की ज्यादा भाई, अगर सुनते रहेंगे ना तो कल इसका जवाब देंगे मेरे को. बोले ये क्या बात हो गई कबीर भाई, तुम्हारे शो पे मेरा सर फोड़ा जा रहा है.
0: मैं जरूर जानना चाहूंगा इसका मतलब क्या है, मुझे अलग से भी सिखा देना.
1: इसका मतलब भाई कबीर भाई तुमको बताएंगे, वो तुमको बताएंगे.
0: ठीक है मैं वेट करूंगा.
1: मैं
0: मुझे इतना तो पता, कहीं भेजे की बात हो रही है, थोड़ा बहुत भेजे से कनेक्टेड बात हो रही है.

0: है, इतना तो मैं समझाऊं, पूरा नहीं समझा, लेकिन
1: बताया भाई, मैं बताता था तुम्हारे, उसका मतलब ये है कि भाई चुप बैठो, गप्पा बताया नहीं, चुप बैठो, आई शपथ, यानी मैं अपनी माँ की कसम में तुम्हारा सर फोड़ दूंगा।
0: हाँ मैंने कहा ना, कहीं ना कहीं इसमें सर है, सर है, मुझे शक हो गया था इस बात पर।
1: मतलब एक अच्छी लैंग्वेज है भाई, हम लोग की लैंग्वेज बहुत प्यारी लैंग्वेज है मराठी, भाई मजा आती है।
0: नहीं यार,
1: किसी मराठी से बात करेंगे ना भाई, तुम किसी की मराठी की लैंग्वेज सुनेंगे ना, तो तुम बहुत अंदर से हैप्पीनेस फील करेंगे, बोले क्या बात करते हैं तो।
0: भाई डेली सुनता हूँ भाई मराठी लैंग्वेज, यकीन जानो
1: सच्ची में भाई। और दो तीन जन में देखा भाई शो पे आते भाई, तुम पूछ रहे सवाल जवाब दे रहे, उन लोग बेचारे कुछ भी बोल रहे भाई, मैं सुन के हंस रहा। मैं बोला कहाँ से आते हैं लोग, कौन है ये लोग?
0: इसलिए तो मैंने बोला
1: अंदर आ गया था भाई मेरे अंदर।
0: नहीं मैं बता रहा हूँ ना, अभी देखना वो वही लोग अभी अलग अलग शोज में जाएंगे ना, उनकी पर्सनालिटी बदलती चली जाएगी, हर शो के हिसाब से पर्सनालिटी होती है लोगों की।
1: मेरे को लगता है भाई लैंग्वेज बदल जाती है, जैसा शो बदलते ही लैंग्वेज बदल जाती है। आप भाई तुम्हारे शो पे, अरे क्या कबीर भाई।
0: वो मैंने नोटिस किया भाई, वो मैं हमेशा नोटिस कर रहा हूँ, हर रोज नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह के शो के सुनने को मिल रहा है। तो
1: कबीर भाई कैसा मुझा की भाई, मैं तो बोलता हूँ अगर तुम्हारी जगह होता ना, मैं स्किप कर डालता।
0: नहीं भाई बहुत प्यार आसिफ भाई को, थैंक यू सो मच, इस टाइम में हमेशा से बात होती है तो अच्छा लगता है भाई। आसिफ भाई बस अपना ख्याल रखिए मेरी जान, एंड हमेशा से खुश रहिए, थैंक यू सो मच मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखो आसिफ भाई,
1: शुक्रिया
0: भाई। वो घंटा है तो आसिफ भाई के बाद क्या एक गाना चलाना पड़ेगा, क्योंकि गाना वो टाइम से चलाया नहीं, एक सेकंड वर्क करना पड़ेगा मुझे अपनी टपोरी भाषा में, क्योंकि मराठी तो बोल नहीं पाएंगे, तो कम से कम मैं इसी पे काम कर लूँ थोड़ा सा। अब एक ऐसा लाइट सा गाना चलाऊंगा, एकदम लाइट सा, एनर्जी गिरेगी नहीं, ये एनर्जी हाई रहेगी, टेम्पो एकदम बढ़िया ड्राइव वाला रहेगा, मालूम कैसा ऐसा। एपी ढिल्लो, Let's go, summer high, 833. यार ये बंदा ना, कभी कभार मुझे लगता था एपी ढिल्लो का चेहरा और आवाज मैच नहीं हो रही है, बट व्हेन आई सॉ हिम इन द वीडियो, आहा बात है यार इसके गानों को, कुछ लो फाई गाने एक नंबर।

0: आ गया जी 8:35 हो रही है। मैं दोहा वाला कबीर, सब बढ़िया चल रहा है। आठ बजे की शिफ्ट वालों, जिनकी शिफ्ट अभी शुरू हो रही है, गुड मॉर्निंग बोल दूं मैं आपको अलग से, क्योंकि जी मारी शिफ्ट तो एंड होने लग रही है। ओके जी, 3-2 एंड एक्शन।
1: सीधा रेडियो पे धुआं, बातें हैं फायर, ख्यालों का कुआं, भेजे के कसरत और बोली से सुनवा, कंपटीशन को नहीं।

0: सलाम साहिब, 8:37 में दो हवाला कबीर, दो बार इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने, ज्यादा हो गया। जुल्करन साहब वालेकुम अस्सलाम। अरे जुल्करन साहब, आज आप हमारी गली कैसे क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल चली गई क्या हमारे मोहल्ले में, क्या बात हो गई? आज जुल्करन साहब आए भाई सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक मैसेज, जजाकल्ला खैर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई मैसेज करने के लिए। एक मुझे मलिक वगास साहब ने मैसेज किया है। मलिक वगास साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, माशाल्लाह बेहतरीन वाली स्टोरीज चल रही हैं। कल वाली स्टोरी क्या कमाल वाली थी, वैन पेंटर की दिमाग था बंदे में, उसकी जान भी बचा ली एंड में। आज लेट मैसेज किया क्योंकि ट्रैफिक में फंस गया था, वो ये बुरा वाला नहीं। देखो ट्रैफिक में फंसना आप लोगों का थोड़ा बहुत मेरे लिए ज़रूरी है, मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली डार्क ह्यूमर, लेकिन बहुत ही मॉर्बिड वे में ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी मुझे सुनेंगे ना ट्रैफिक में फंसेंगे, नहीं तो उस तरीके का। कॉल आ रही है, रुकिए उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
0: बढ़िया भाई, हमारा तो एकदम बढ़िया रहता है, आप सुनाइए क्या हाल है आपके?
1: चलो अल्लाह ताला आपको बढ़िया रखे हमेशा।
0: जी भाई
1: बढ़िया। भाई ने मैसेज किया ना कल, में वाकई में जबरदस्त स्टोरी थी कल वाली।
0: थैंक यू सो मच भाई,
1: पेंटर की जबरदस्त।
0: तो क्या सोचा भाई, आप भी ब्रूस लेने जा रहे हो क्या?
1: नहीं, वो कल आपका चर्चा हो इसका प्रोग्राम में भी हो रहा था, अपना सरोवर भाई के
0: प्रोग्राम में हो रही। अच्छा, मैंने सुना ही
1: जो आपने पेंटिंग वाली स्टोरी सुनाई ना इसके लिए
0: तो मैं तो वही
1: आपके भी चर्चे चल रहे थे, एक भाई आपका चर्चा कर रहा था उसमें
0: क्योंकि मैंने बोल दिया था ना, मैंने कहा एक पेंटिंग तो बननी है, मजनू भाई की पेंटिंग याद है ना वेलकम वाली, वैसे ही बनाएंगे भाई।
1: बिल्कुल
0: सरवर भाई हमारे एफएम 107
1: के मजनू भाई की बनाओगे क्या?
0: नहीं, सरवर भाई हमारे मजनू भाई है भाई, वही हमारे मजनू भाई है, पेंटिंग वो बनाएंगे।
1: नहीं, वो पेंटिंग वाला कल भी चर्चा चल, मैं सरवर भाई को सुन रहा था ना, एक भाई चर्चा कर रहे थे आपका पेंटिंग का स्टोरी सुनाया ना, उसका चर्चा चल रहा था कल दोपहर में भी।
0: नहीं, मैं तो चाहता हूँ भाई, अभी लोग जो लोग सुन रहे हैं सरोवर भाई को, आज से मजनू भाई बोले, मजनू भाई हमारे वो एकदम क्या हेलो मजनू भाई, क्या चल रहा बाकी? और बताओ भाई, सब सेट है? सब सेट,
1: बस सेट, अल्लाह का एहसान है।
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बढ़िया भाई, मजे करो और आज की गाने मिल जाएगी इंशाल्लाह, ख्याल रखिए भाई।
1: मिल जाए, वो अभी वो लिंक भेजाना अपने व्हाट्सएप पे।
0: हाँ भाई,
1: उस पे वो डॉट लगा के भेजने की जरूरत तो नहीं ना आपको?
0: ना भाई, उस पे कुछ भेजने की जरूरत नहीं भाई, सीधा जाओ अपलोडेड है, जाओ देख लो।
1: हाँ, वो ग्रुप में
0: डाना भाई, ठीक है।
1: तो उसमें एक टिकटॉक में आप वो सोफा पे बैठ के सुना रहे हैं, एक दूसरा है वो खाली वॉइस है वो।
0: अरे सोफे का मजाक उड़ा रहा हूँ, मेरा मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
1: नहीं, मजाक किसी का नहीं उड़ा रहा, मैं तो बोला एक सोफे पे बैठ के देखेंगे तो उसमें और मजा आता ना।
0: थैंक यू सो मच, वो भी जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी इंशाल्लाह, बहुत प्यार भाई, थैंक यू मेरा भाई, ओके अल्लाह हाफिज। और इनके बाद मलिक वकास भाई कहते हैं, भाई ये सुबह वाली शो की सुबह वाली बातें और शुगल मेला मिस हो रहा है, इवनिंग में सुन पाता था, स्टोरी तो मिल जाती है लेकिन शो का शुगल मिस हो रहा है, क्योंकि आपके शो के अलग ही लेवल है, इसका कोई मुकाबला नहीं। मेरा भाई बहुत सारा प्यार आपको, मैं 4 दिल भेज रहा हूँ और एक खुशी के आंसू वाला इमोजी भेज रहा हूँ। मलिक वकास साहब हमारी तरफ से कबूल फरमाइए। और कह रहे हैं आसिफ भाई, क्या कह रहे हैं भाई, ट्रैफिक में बदनाम हमारी मजबूरी है, क्या करें, हंसना पड़ता है। एक मैसेज है, ऐसी बात मजनू भाई सुनकर सरवर भाई कसम खुदा कि फ़ोन में से निकल के, मैं यही चाहता हूँ, आज मैं चाहता हूँ कि सरवर भाई को मजनू भाई बोला जाए, मैं तो बोलूँ और मजनू भाई, सरवर भाई किसी दिन स्टूडियो से बाहर निकल कर दौड़ लगाएंगे। मेरे घर की तरफ ही आएंगे, पड़ोसी है ना वो, ट्रैफिक वाला अच्छा था। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ ना भाई, मैं क्यों ज़बरदस्ती की शरीफ बात करूँ? साथ भाई बताओ, साथ भाई गलत कह रहा हूँ क्या? आप अगर ट्रैफिक में फंसेंगे नहीं तो भाई आप सुनेंगे कैसे, है ना? तो इन अ वेरी वियर्ड मॉर्बिड वे, आपका ट्रैफिक में फंसना ज़रूरी है तभी आप सुनेंगे। अब ये है सच्चाई भाई, तो है, अब मैं क्यों इसको ज़बरदस्ती इस पर शुगर कोट करके बोलूँ, क्यों? बात सही ना बनता है। बाकी 666-22107 नंबर है। मजनू एक कह रहा, मजनू भाई का शो जब आएगा तो उनसे पेंटिंग बनवाऊंगा, बनवाओ भाई बिंदास बनवाओ। एक कॉल आ रही है, अस्सलामुअलैकुम।
2: सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: जी मेरा भाई, आपका नाम?
2: मैं हुसैन बात कर रहा हूँ कबीर भाई। मैं
0: हुसैन भाई, आवाज को क्या हो गया भाई, कौन से गुफा में से बात कर रहा हूँ मैं? हुसैन भाई की आवाज तो पहचानता हूँ, आज बड़ी दबी दबी से लग रही है, क्या नाश्ता नहीं हुआ?
2: नाश्ता भाई शाम वाले सुबह उठ रहे हैं आप।
0: अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी भाई, माफी माफी, मैं समझ सकता हूँ।
2: अभी जस्ट उठा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ ब्रश लेके भाई।
0: नहीं नहीं नहीं, सही है, मैं समझ सकता हूँ। मैं हैरान हूँ कि हुसैन भाई सुबह सुबह कैसे आ लिए यार, कोई चांस ही नहीं।
2: अरे भाई क्या करूँ, आई मिस यू भाई, आई मिस यू।
0: थैंक यू मेरा भाई, बहुत प्यार भाई को, बहुत है, सो स्वीट ऑफ यू भाई।
2: मैं आवाज सुनने

0: से ऐसा लग रहा है कि काफी साल हो गया यार।
1: अरे क्या बात है भाई, टाइम मशीन हो रही है आवाज हमारी कति। हुसैन भाई बाकी बढ़िया चल रहा है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया चल रहा है, बस आपकी याद आती है अब शाम को।
1: भाई तो कहानियां वानी सुन रहे हैं? आप नहीं सुन रहे हैं? बिल्कुल मिस हो जा रही है सारी।
0: अरे बिल्कुल भाई, कहानी तो सारी सुन रहा हूँ।
1: वेरी नाइस, ये चाहिए, मतलब कम से कम कनेक्शन बना रहना चाहिए, जब
0: नहीं नहीं
1: कमबैक हो तो
0: बिल्कुल
1: अच्छा हो।
0: कनेक्शन बना भी हुआ है, और शाम में फजील भाई थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रहा है। बार बार मैं यही बोलता हूँ फजील भाई कहानी तो भेज दो।
1: अरे यार ये बता, ये होता है, ये जब टाइम चेंज होता है तो पहले नाजिया बहन और महविश बहन को लोग कह रहे थे कहानी भेजो, फजील भाई को कह रहे हैं मैं कहाँ से भेज दूँ कहानी। नहीं पर अच्छी बात है, कम से कम कहानी के जरिए कनेक्टेड तो है। इंशाल्लाह जब कमबैक होगा तो फिर तो भाई सॉलिड कमबैक होगा शाम में भी।
0: जी बस उसी भाई वही उसी ने जिंदा रखा है कि हाँ मैं वापस आऊंगा।
1: अभी सोल्जर वाली जो माँ है उसकी तरह वेंडोल रेत में आएगा, वो आएगा। पहुंचूंगा भाई मैं इंशाल्लाह।
0: मेरा
1: कबीर आएगा,
0: सीधा चीर के आएगा।
1: अरे डायलॉग तो याद है के रिसेंटली देखिए क्या क्या बात है।
0: नहीं अभी जस्ट बस आया है, बन गया
1: भाई। चाय वाय हुई है कि अब सीधा अभी बस शुरुआत है?
0: भाई बोला तो अभी ब्रश लेके बैठा हूँ, बस आप ब्रश करूंगा अब आप जाऊंगा, उसके बाद चाय नाश्ता सब होगा।
1: अरे रे रे रे रे
0: आज जरूरी था बहुत। आई मिस यू ब्रदर।
1: थैंक यू सो मच मेरा भाई, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर मेरा भाई, बहुत सारा प्यार।
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई, क्या करे भाई, आवाज सुनने में काफी दिन हो गए। स्टोरी तो डेली सुन रहा हूँ, देखता हूँ क्या कम्युनिटी में अपलोड हो जाती है, बस उधर से ही चालू हो जाता है स्टोरी।
1: थैंक यू मेरा भाई, और बस ब्रश करके सीधा चाय पे हमला बोल दो भाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तैयारी बैठा हूँ, पानी की बोतल भी गाड़ी में ही है। करूंगा यार तो सीधा ठेके पे।
1: तो घर वर भेज दो, गाड़ी में रहना शुरू कर दो भाई, सब तो सेट है आपका गाड़ी के अंदर। नहीं बार अपना ख्याल रखो हुसैन भाई। मैं भी सोचता हूँ, मिस करता हूँ बहुत सारे शाम वाले लोगों को। बड़ा अच्छा लगा कि आपने आज वक्त निकाला भाई, जजाक अल्लाह, बहुत प्यार भाई। थैंक यू भाई।
0: चले भाई बढ़िया, और सब बाकी बढ़िया?
1: बढ़िया भाई, एकदम टनाटन। थैंक यू सो मच।
0: चलो आज सर्वर भाई को मजनू भाई बनाना है।
1: हाँ भाई आज मजनू भाई आयो आज से।
0: उनकी भी टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो गई क्योंकि अब दो शो आ गए ना उस टाइम पे। पहले वो 11 से 1 थे, अब वो समथिंग 1:30 बजे आते हैं।
1: यस यस यस फटी है मजनू भाई तो मजनू भाई है
0: पूरा। अरे पूरा अल्टरनेट चेंज हो गया भाई, क्या कभी तो मन करता है कि आपके बॉस को पर्सनली मेल करके मुलाकात करूं, ब्रॉडकास्ट उन्हीं के साथ करना चाहिए।
1: नहीं ठीक है, अब चेंज है तो है, इंशाल्लाह उसमें भी कमबैक हो जाएगा।
0: क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल,
1: रोजी रोटी,
0: सबका अपना अपना काम होता है भाई।
1: जी मेरा भाई, पर ख्याल रखिए,
0: कोई नहीं मुश्किल नहीं। बिल्कुल कोरोना काट लिए तो नहीं, ये तो 3 महीने,
1: ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो कुछ भी नहीं है भाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल चले भाई, बढ़िया। ओके भाई,
1: ख्याल रखिए भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
0: ओके अल्लाह हाफिज़।
1: तो भाई के बाद गाना तो जरूरी है, एक और मैसेज आया है, कैसे हैं सर? मैं जी बढ़िया, आप सुनाइए। दलजीत बाजी भी आगे ने और एक और क्या मैसेज है? हाँ जी, हाँ जी दलजीत, जट पैदा होया बस चोन वास्ते,

0: सीधी बात है भाई, जट पैदा होया सिर्फ चोन वास्ते। एक कॉल आ रही है भाई, सब उठा लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम
1: भाई साहब, रेडियो को थोड़ा सा कम कर दो। हेलो,
0: वालेकुम अस्सलाम,
2: क्या हाल है कबीर भाई?
0: मैं तो बढ़िया भाई, एकदम अल्हम्दुलिल्लाह, टन टन। आप सुनाइए क्या हाल है?
2: मेरा नाम रियाज अहमद है।
0: जी रियाज अहमद साहब, बताइए
2: क्या हाल है? ठीक है,
0: बढ़िया भाई एकदम।
2: बहुत टाइम से कॉल मिला रहा हूँ, कॉल नहीं मिल रहा था
0: भाई। मेरे सामने आपने 3 बार कॉल मिलाई है, झूठ पकड़ा जाएगा आपको।
2: मुझे टाइम की टेंशन थी, टाइम खत्म हो रहा था।
0: हाँ ऐसा वही समझू, मैंने कहा भाई करे लगातार कॉल लगाई। मैं नजर थी मेरी, जब गाना चल रहा था तो आपने कॉल लगाई थी।
2: मैं बहुत टाइम के बाद कतर आया हूँ, तो मैं सोचा भाई से थोड़ा सा बात की जाए।
0: मेरे भाई आपकी मोहब्बत है। आज भाई कैसी रही छुट्टियाँ, कितने टाइम के लिए गए थे?
2: बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम के बाद सुन के। कहानी तो आती है पर बात करने का मौका नहीं मिलता है।
0: मेरा भाई यार, क्या थैंक यू सो मच, बहुत प्यार, बहुत प्यार। रियाज भाई कैसे छुट्टी में गए थे क्या?
2: नहीं मैं तो सऊदी में था।
0: सऊदी में थे? अब जहाँ वापस आ गए ना, अब तो सऊदी, अब तो इधर ही रहोगे अब या चल जाओगे?
2: हाँ बजट के सिलसिले में गया था, तो अभी आया हूँ, इंशाल्लाह फिर जाएंगे। अभी तो मतलब हम मल्टीनेशनल हो गए।
0: आए हुए मल्टी इंटरनेशनल हो रहा भाई रियाज भाई। कोई मसला नहीं भाई, चलती फिरती एमएनसी हो रहा हूँ भाई। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। सऊदी अरब में जब छुट्टी था आपने मुझे मैसेज किया था, मुझे याद है, और अभी वापस आया हो। रियाज भाई बस सुनते रहो, ऐसे ही जुड़े रहो, कनेक्टेड रहो, किधर भी रहो भाई। अब तो आप बड़े आदमी है भाई।
2: सुबह सुबह माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लास लगाई हुई थी।
0: थैंक यू सो मच रियाज भाई,
2: बहुत प्यार भाई। और कहानी एकदम मतलब आपका तो खैर जवाब ही नहीं है।
0: बहुत भैया, बस अब बात कर लिया करें भाई, मैसेज कर देगा ना, कोई टेंशन नहीं है भाई, बड़े आदमी है। कोई टेंशन
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। आप जा हम वहाँ, आप जा हम वहाँ।
0: अरे मेरा भाई बहुत मोहब्बत,
2: चाहे आप चैनल बनाओ, चाहे आप ग्रुप बनाओ, चाहे आप इंस्टा बनाओ, हम तो उसी टाइम से आपके साथ मतलब कनेक्ट है और कनेक्ट रहेंगे।
0: थैंक यू मेरा भाई।
2: कल मुझे एक बात पे बहुत हंसी आ रही थी।
0: किस बात पे?
2: मैं थोड़ा शेयर कर दूं।
0: हाँ।
2: वो जो कल मैं आपका वो पेंट ब्रश वाला कहानी कर रही थी, वो पेंटिंग वाली, तो मैं आपको मैसेज किया था कि मैं ब्रश पे जा रहा हूँ, टूथ ब्रश।
0: अच्छा।
2: तो वो 10 बजे का शो आता है ना, महावीर बहन का और जी का, तो मैं उसमें मैसेज किया था, तो महावीर जी वो मेरा वाला वही मैसेज पढ़ रही पढ़ने लगी।
0: अच्छा।
2: वो सुबह आया था,
0: वो कंफ्यूज हो गए होंगे, वो भी कि आदमी क्या कह रहा है।
2: मेरे को इतना अजीब लग रहा था, मैं बोला महावीर जी क्या सोचेंगे, क्या बोल रहे
0: नहीं, पर मुझे अच्छा लगा भाई कि आप लोग वहां से भी सुन रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।

0: और रियाज भाई।
1: मैं आया हूँ, एक हफ्ता हो गया
0: हाँ।
1: और बड़ी तमन्ना थी, लेकिन वो काम आपको पता है
0: हाँ।
1: सुनते हैं
0: हाँ।
1: लेकिन कॉल करने का वो चांस जो है वो थोड़ा सा कम मिल जाता है।
0: नहीं भाई थैंक यू
1: तो
0: सो मच,
1: बहुत शुक्रिया इस टाइम पे मेरा कॉल पिक करने के
0: नो
1: लिए,
0: प्रॉब्लम
1: टाइम
0: भाई।
1: थोड़ा कम है
0: हाँ बिल्कुल आखिर
1: समझ
0: में
1: रहा,
0: भाई थैंक यू सो मच भाई,
1: लेकिन बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत प्यार, थैंक यू
1: आप
0: मेरे भाई,
1: सलामत रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए,
0: आप भी खुश रहिए मेरे भाई, ख्याल रखिए। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और रियाज भाई के बाद बिल्कुल क्लाइमेक्स हो जाएगा शो का, तो आप लोगों से ज़्यादा चाहूँगा इसी मोहब्बत के साथ कि आप लोग किसी भी कोने में सुनते हैं, इतना प्यार देते हैं, थैंक यू सो मच। बट फॉर नाउ दिस इज़ दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा। और सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, FM107 कतर, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मासलामा।
2: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है,
3: चले तो कट ही जाएगा सफर,
2: तो फिर एक ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
4: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से,
5: 7:15 बजे से
4: FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ,
5: दोहा वाले कबीर के साथ
6: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की।
7: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, finding what brings you joy and what keeps you whole.
6: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों सुनना न भूलें शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से RJ नासिया के साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
8: आप सुन रहे हैं वेक अप विद दोहा वाला कबीर, सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।

0: और जिनसे फेडरल रिजर्व की सूद की शरह के मुस्तकबिल को भी इशारा मिलेगा। स्पॉट गोल्ड 4,424.40 डॉलर फी आउंस पर तकरीबन तब्दील ही नहीं हुआ, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए यूएस गोल्ड फ्यूचर्स 0.1% कम होकर 4,471.60 डॉलर पर रहा। दीगर धातों में स्पॉट सिल्वर 66.21 डॉलर फी आउंस पर मुस्तकम रहा। प्लैटिनियम 0.7% गिरकर 1,807.38 डॉलर और पैलेडियम 0.4% कम होकर 1,393.00 डॉलर पर आ गया। अमरीकी डॉलर भी पीर को दबाव में रहा, हालांकि सूद की शरह में इजाफे की तवक्कात बढ़ रही हैं। मशरक वस्ता की कशीदा सूरत हाल ने महंगाई के दबाव में इजाफे के खदशात पैदा कर दिए हैं, जिसके बाइस दुनिया भर के मरकजी बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी को मजीद सख्त कर रहे हैं। कतर सेंट्रल बैंक की इंटरनेशनल रिजर्व्स और फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी में अगस्त में सालाना बुनियाद पर 0.75% इजाफा हुआ है, जहां मजमूई हजम 262.24 बिलियन कतरी रियाल तक पहुंच गया, जबकि गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में ये 260.282 बिलियन कतरी रियाल था। और कतर स्टॉक एक्सचेंज का जनरल इंडेक्स ट्रेडिंग सेशन के अख्तिताम पर 51.97 पॉइंट्स या 0.53% के इजाफे के साथ 9,785.73 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सेशन के दौरान तमाम शोबों में 19,855 ट्रांजैक्शंस के नतीजों में 20 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ और 27 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी आई, जबकि 7 कंपनियों ने अपनी साबिका क्लोजिंग प्राइसेस को बरकरार रखा। ये थी अभी तक की बिजनेस न्यूज अपडेट्स, आइए अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज का।
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस में कतर की वुमेन्स वॉलीबॉल टीम ने अम्मान में तीसरी वेस्ट एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में चौथी पोजीशन हासिल की, जबकि फाइनल मैच में डिफेंडिंग चैंपियंस लेबनान के हाथों 3-0 से हार गई। दिफाई चैंपियन पेरिस सेंट जर्मन इस हफ्ते चैंपियंस लीग के टाइटल का दिफा शुरू करेगा, जहां उन्हें आर्सेनल की तरफ से एक सख्त चैलेंज का सामना होगा। न्यूयॉर्क में जारी यूएस ओपन टेनिस में एलेना रिबाकिना ने पीर को साबिक यूएस ओपन चैंपियन नाओमी ओसाका को 6-6-4 सेट से हराकर क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली। चीन की जेंग किनवेन ने एक और शानदार कमबैक करते हुए 6 मरतबा की मेजर चैंपियन ईगा स्वांतेक को अपसेट कर दिया। और दोहा 2026 वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जो पहली से 14 नवंबर तक लुसेल शूटिंग कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद होगी।

0: स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं FM 107। अब न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: FM 107 पर न्यूज हेडलाइंस विद फुरकान शाहिद।
2: साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने तंजानिया के सदर को उनके शोहर के इंतकाल पर ताज़ियती पैगाम इरसाल किया। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान कतर की जानिब से दो तरफ़ा तआवुन के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देने और उन्हें आला तरीन सतह तक ले जाने की ख्वाहिश का इआदा किया। कतर ने अरब मुस्तकिल कमेटी बराए बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की सदारत हासिल कर ली है। वाज़ेह रहे कतर की ये कामयाबी इंसाफ कानून के बालादस्ती और इंसानी बुनियादों पर काम करने के हवाले से उसकी काविशों के एतराफ़ की अक्कासी करती है। और कतर ने सूडान की वहदत और इलाकाई सालिमियत के लिए अपनी मुस्तकिल

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्त उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। समीन अजम आपको नूह अलैहिस्सलाम की दुआ सुनाएंगे जब वो अपनी कौम को तूफान से नजात दिलाकर किश्ती से उतरने वाले थे। इस मौके पर उन्होंने आजिजी से अपने रब से अर्ज किया, रब्बे

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम की जो फुटबॉल की दुनिया में बिजली की तरह चमका है, किलियन एम्बापे, मॉडर्न जनरेशन के स्टार। पेरिस के सबर्बन इलाके बॉन्डी से निकलने वाला एक ऐसा लड़का जिन्होंने अपनी स्पीड, स्किल और डिटर्मिनेशन के जरिए दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेजेस पर अपनी जगह बनाई। एम्बापे का बचपन बॉन्डी में गुजरा, जहां फुटबॉल जिंदगी का एक अहम हिस्सा था, लेकिन उनका ड्रीम सिर्फ फुटबॉल खेलना नहीं था, वो फुटबॉल की दुनिया पर राज करना चाहते थे। और फिर सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल फुटबॉल में डेब्यू किया। मोनाको के लिए उनकी परफॉर्मेंसेस ने सबको मुतासिर कर दिया, खासतौर पर उनकी स्पीड, उनकी ड्रिबलिंग और गोल के सामने उनकी फिनिशिंग, दैट मेड किलियन एम्बापे वन ऑफ द

की सबसे बड़ी पहचान उनका इंटरनेशनल करियर बना। यहां 2018 का फीफा वर्ल्ड कप, सिर्फ 19 साल की उम्र और दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट। एम्बापे ने फ्रांस के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, उन्होंने टूर्नामेंट में 4 गोल स्कोर किए और फाइनल में क्रोएशिया के खिलाफ भी गोल किया। फ्रांस ने फाइनल 2 के मुकाबले 4 गोल से जीता और एम्बापे बन गए वर्ल्ड कप विनर, एक टीनेजर वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन अगर 2018 ने दुनिया को एम्बापे का नाम बताया तो 2022 का कतर वर्ल्ड कप ने उन्हें फुटबॉल की हिस्ट्री में और भी गहरा लिख दिया। अर्जेंटीना के खिलाफ लुसेल स्टेडियम में उस फाइनल में एम्बापे ने हैट्रिक स्कोर की, 3 गोल्स वर्ल्ड कप फाइनल में, और टूर्नामेंट के तमाम मैचेस में उन्होंने 8 गोल स्कोर किए। इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद एम्बापे ने गोल्डन बूट जीता और वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर बने। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने महसूस किया एम्बापे सिर्फ फ्यूचर का स्टार नहीं, वो प्रेजेंट का भी सुपरस्टार है। और फिर आया 2024, एम्बापे ने रियल मद्रिद ज्वाइन किया, पीएसजी को कह दिया टाटा बाय बाय। दुनिया के सबसे मशहूर और कामयाब फुटबॉल क्लबों में से एक रियल मद्रिद, रियल मद्रिद की लेजेंडरी व्हाइट जर्सी में कदम रखना हर फुटबॉलर का एक ड्रीम होता है, पर अब किलियन एम्बापे भी उसी तारीख का हिस्सा है। फैंस उनका मुकाबला लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे लेजेंड से करते हैं, लेकिन एम्बापे ने अपनी पहचान खुद बनाई है, अपनी रफ्तार से, अपनी सोच से और अपनी फिनिशिंग से। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी स्पीड। जब वो ओपन स्पेस में बॉल लेकर दौड़ते हैं तो डिफेंडर्स के पास अक्सर सिर्फ एक ही सवाल होता है, उन्हें रोका जाए कैसे। लेकिन एम्बापे सिर्फ तेज नहीं, वो इंटेलिजेंट भी हैं। उनकी मूवमेंट, उनकी टाइमिंग और गोल के सामने उनकी फिनिशिंग, जिसको कहते हैं किलर फिनिशिंग, उन्हें मॉडर्न फुटबॉल के सबसे डेंजरस फॉरवर्ड्स में शामिल करती है। और इस साल का फीफा वर्ल्ड कप सबने देखा ही होगा, यहाँ एम्बापे ने अपनी कहानी में एक और शानदार चैप्टर ऐड कर दिया। फ्रांस के कप्तान के तौर पर उन्होंने टूर्नामेंट में 10 गोल स्कोर किए और गोल्डन बूट अपने नाम किया। यानी 2022 के बाद एम्बापे ने दोबारा वर्ल्ड कप का गोल्डन बूट जीता और 2026 टूर्नामेंट के बाद उनके वर्ल्ड कप गोल्स की तादाद 22 हो गई। इसके साथ एम्बापे ने लियोनल मेसी को पीछे छोड़ दिया और फीफा वर्ल्ड कप की तारीख के ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर बन गए। अच्छा, फ्रांस वर्ल्ड कप नहीं जीत सका, लेकिन एम्बापे ने इंडिविजुअल लेवल पर फुटबॉल हिस्ट्री में अपना नाम और भी मजबूत कर दिया। सोचिए कि 2018 में वर्ल्ड चैंपियन, 2022 में गोल्डन बूट विनर और 2026 में दोबारा गोल्डन बूट, और वर्ल्ड कप हिस्ट्री के सबसे ज्यादा गोल्स करने वाले खिलाड़ी। बॉन्डी शहर से शुरू होने वाला सफर मोनाको, पीएसजी, फ्रांस और फिर रियल मद्रिद तक, ये सिर्फ एक फुटबॉलर की कहानी नहीं, ये एक ऐसे ख्वाब की कहानी है जो स्पीड, टैलेंट, मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ हकीकत में बदल गया। किलियन एम्बापे स्पीड का नाम, स्किल का नाम, रिकॉर्ड्स का नाम और मॉडर्न फुटबॉल के एक ऐसे सुपरस्टार का नाम जो अब सिर्फ फुटबॉल का फ्यूचर नहीं, फुटबॉल की तारीख का हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों, ये था स्पोर्ट्स हाइलाइट्स का आज का खास सेगमेंट। उम्मीद है आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए लेजेंड, एक नए चैंपियन और एक नई कहानी के साथ। तब तक मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। तब तक खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें। फी अमानिल्लाह।

कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर, हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से RJ सफा के साथ।

0: छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए. ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी. देसी जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है. पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. सो नो फोमो एवर अगेन. सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ. रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
2: FM 107 presents Tech Update. Tech Update.
0: Assalamu alaikum. Main Doha wala Kabir FM 107 pe aur waqt ho gaya hai ek aur Tech Update ka. ये बोलने बड़ा कूल लगता है टेक अपडेट. अच्छा शुरू करते हैं फिर. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट्स जो बड़ी काम की हैं और बहुत काम की हैं, लजीज भी हैं इस बारी तो, और खबर में क्या है वो भी बताना जरूरी है. सब कुछ बताऊंगा लेकिन सबसे पहले शुरू करूंगा उन वेबसाइट से जो मुझे मिली है और बहुत बहुत यूनिक एंड इन अ वे ये कूल भी है यार, काफी कूल है. शुरू करें. ओके तो नंबर वन ऑन द लिस्ट मेरी वेबसाइट जो मुझे मिली है वो है tempmail.org. कैसे लिखना है? TEMP फिर हाइफन और डैश व्हाटएवर, टेम्प डैश फिर मेल MAIL उसके बाद .org. अब आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट जो होती है आपको पता नहीं होता है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है. आपको पूछती हैं अपना ईमेल दो, जरा ईमेल दो, साइन अप करो, साइन इन करो, और आपको लगता है अरे यार अब अपना मुझे ईमेल देना पड़ेगा. यहाँ पे जाके आप एक टेम्पररी ईमेल बना सकते हैं. आपको ऐसे बना के दे देगा भाई, वो तो नहीं होती, नहीं वो क्या कहते हैं टेम्पररी जो काम होता है ठीक है इस चीज के लिए जरा देना एक. तो ये एक ऐसा ईमेल है जो आपके वैसे किसी काम का नहीं है लेकिन उस वेबसाइट के लिए काम आ सकता है. अगर कोई वेबसाइट पुश कर ही रही है इतना कि लाओ अपना ईमेल दो और आपको लगता है पता नहीं अपना ईमेल दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो tempmail.org पे जाके आप एक टेम्पररी ईमेल बना के उस वेबसाइट पे डाल सकते हैं और ईमेल भी रिसीव कर सकते हैं. दैट इज द बेस्ट पार्ट. तो ये आपको बहुत बहुत हेल्प कर सकता है आपके ईमेल्स में कुछ भी कोई भी हैक करने की कोशिश करे या कुछ वायरस भेजने की कोशिश करे तो इट इज इम्पॉसिबल टू डू इट नाउ. ओके अब बढ़ते हैं अगली वेबसाइट की तरफ. अगली जो वेबसाइट है इसका नाम है myfridgefood.com. सही सुना आपने, माय फ्रिज, मेरा फ्रिज. तो मैं स्पेल आउट कर देता हूं पूरी वेबसाइट. सबसे पहले myfridgefood.com. इस वेबसाइट पे जाके जब आप देखेंगे पेज पर बहुत सारे खाने के आइटम्स उनके नाम लिखे होंगे, इनफैक्ट जो रॉ आइटम्स उनके नाम लिखे होंगे, आप उन पे टिक कर सकते हैं अपने फ्रिज में चेक करके. मतलब ये हुआ कि आपके फ्रिज में जो आइटम्स हैं उनको देख लिया आपने और साथ साथ टिक करें, हाँ मेरे पास आलू है, हाँ ये भी है, हाँ ये भी है. आप टिक करेंगे उसके बाद नीचे लिखेंगे या क्लिक करेंगे के रेसिपी, तो आपको जो आपके फ्रिज में पड़ा हुआ सामान है उसके बेसिस पर एक रेसिपी बना के ये दे देगा कि भाई आप ये बना सकते हैं अगर आपके फ्रिज में ये पांच आइटम है तो. इतनी बढ़िया चीज है ना, इतनी बढ़िया चीज है. इस बहाने आप ऐसी ऐसी चीजें बना लेंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी. रेसिपी के साथ साथ पूरा का पूरा उसको कैसे कैसे बनाना है पूरा प्रोसेस भी आपको मिलता है, विच इज ब्यूटिफुल. मुझे इतनी काम की लगी ना ये वेबसाइट myfridgefood.com. आप एक बार खुद जाके देखिए, आपको मजा ना आ जाए तो कहिएगा, डेफिनेटली वर्थ इट. ऑलराइट अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ जो इस वीक बढ़ के आई है. देखिए एक खबर जो है थोड़ी सी अभी पुरानी हो गई होगी लेकिन फिर भी बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता. सैमसंग लॉन्च करने जा रहा है S26 FE, जो उन्होंने बोला था कि भाई ये तो हम कंफर्म निकाल के ही रहेंगे मार्केट में, तो आ चुका है. उसका रिव्यू अगर आपके पास है तो हमें बता दीजिएगा एंड लेट अस नो. बाकी और भी मॉडल्स लॉन्च करने वाला है सैमसंग बहुत जल्दी ऐसा सुनने में आया है, तो जब वो आ जाएगा तो मैं आपको जरूर जरूर बता दूंगा. फिलहाल एक जो गैजेट है जो मार्केट में हड़कंप मचा रहा है वो है सैमसंग का नहीं गूगल का, गूगल पिक्सल की वॉच 5 वो मार्केट में आई है.

0: और वो एक और प्रोटेक्टिव लेयर लगाती है, हेल्थ सेफ्टी फीचर्स उसमें भर भर के दिए हैं और जेमिना इंटीग्रेशन कर दिया है और साथ में इम्प्रूव GPS भी दिया है। ये एक बहुत बड़ी जीत है। मैं स्मार्ट वॉचेस को शुरुआत में बहुत पसंद करता था, फिर बीच में कह रहा है जब मैंने कहा नहीं नहीं नहीं स्मार्ट वॉचेस नहीं, बट नाउ दैट दे आर डूइंग समथिंग विद द वॉचेस, एटलीस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट और भी हो रहा है, तो आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि गूगल ऐसा कर रहा है। गूगल कीप डूइंग इट, ऑल द बेस्ट टू यू। बाकी खबरों के लिए और टेक अपडेट के लिए सुनते रहिए FM 107। अपना ख्याल रखिए एंड दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।
3: स्कैम अलर्ट।
0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का, और ये शो फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर दिन आपको एक नए जमाने के नए फ्रॉड से मैं मिलवाता हूं। एक्चुअली ये फ्रॉड इतने ज्यादा आम हो गए हैं कि किसी के साथ भी हो सकते हैं और कोई भी कर सकता है। इवन आजकल 12, 15 और 18 से लेकर 22, 25, 30 और 45 से लेकर 50 साल तक के उम्र के बच्चे और बूढ़े सारे लोग इस तरह के स्कैम में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि लोगों के लिए ये है आसान पैसा। दोस्तों चालाकी का खेल, ये इस फ्रॉड के बारे में हम बात करने वाले हैं, डायरेक्टरी लिस्टिंग स्कैम्स। ये स्कैम खास तौर पर स्मॉल बिजनेसेस को फंसाने के लिए बनाया गया है। इसमें होता ये है कि एक दिन आपके पास अचानक एक कॉल या ईमेल आएगा। स्कैमर्स बहुत ही पोलाइट आवाज में, बेहतरीन आवाज में आपसे बात करते हैं कि सर हम आपके बिजनेस इंफॉर्मेशन को एक लोकल ऑनलाइन डायरेक्टरी में वेरीफाई करना चाहते हैं ताकि आपको नए कस्टमर मिल सके। आप ऐसे में बिजनेसमैन हैं, आपको नए कस्टमर्स की जरूरत है। वो आपसे साफ साफ कहेंगे कि ये बेसिक लिस्टिंग बिल्कुल फ्री है और आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। आपके एम्प्लॉयज बिना सोचे समझे हाँ बोल देते हैं, और कई बार अगर आप भी बिजनेस ओनर भी कॉल पर होता है तो वो बिना सोचे समझे हाँ बोल देगा कि यार फ्री का काम है, हमें कुछ करना नहीं है, और डिटेल्स वेरीफाई करवा दिया जाता है। लेकिन असली खेल कुछ हफ्तों बाद शुरू होता है। आपके बिजनेसेस के नाम पर एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव इनवॉइस बिल आता है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ रियाल्स या डॉलर्स मांगे जाते हैं। जब आप उन्हें कॉल करते हैं तो स्कैमर्स क्लेम करते हैं कि आपने एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए साइन अप किया था। अगर आप मना करते हैं तो वो आपको डराने के लिए एक हैवीली एडिटेड वॉइस रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग का कट पेस्ट करके बनाई गई एक ऑडियो होती है वो सुनाते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि आपके एम्प्लॉय ने पैसा देने के लिए हाँ बोला था। लोग कोर्ट कचहरी या लीगल एक्शन का डर बहुत ज्यादा उनको सता देता है, इसलिए वो किसी भी तरह के बवाले में, किसी तरह के स्कैम में पड़ना नहीं चाहते। ऐसे में इस तरह के अलग और अजीब स्कैम से कैसे बिजनेस ओनर बचें या फिर एम्प्लॉयज बचें, इसका सॉल्यूशन भी है। दोस्तों इस तरह के स्कैम बड़े यूनिक होते हैं, ऐसे में इस तरह के स्कैम से हम बच पाए ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बचने का तरीका थोड़ा लेंदी जरूर है। सबसे पहले किसी भी एम्प्लॉय को जब आप हायर करें तो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए और बेहतरीन होनी चाहिए। किसी भी एम्प्लॉय को बिजनेस से ना जाने देना ये एक ऑप्शन होता है, ये एक प्रिविलेज है किसी भी बिजनेस ओनर के लिए कि उसका एम्प्लॉय लंबे वक्त तक उसके साथ रहे। लेकिन जब आप अच्छी ट्रेनिंग करते हैं अपने एम्प्लॉयज की तो वो आपके साथ लंबे वक्त तक रहता भी है और सीखता समझता है, इसके लिए उसकी ट्रेनिंग भी बड़ी जरूरी है। अपने सभी स्टाफ और एम्प्लॉयज को सख्त इंस्ट्रक्शन दें कि फोन पर कभी भी बिजनेस की सेंसिटिव डिटेल्स या अकाउंट इन्फो वेरीफाई ना करें। अगर कोई फ्री लिस्टिंग का कॉल आए तो सीधे बोल दें कि उन्हें ईमेल पर ऑफिशियल प्रपोजल भेजा जाए। बगैर किसी ऑफिशियल प्रपोजल के काम बिजनेस ओनर को या एम्प्लॉयज को नहीं करना चाहिए। उसके अलावा इनवॉइस अप्रूवल सिस्टम, पीओ सिस्टम भी जरूर रखना चाहिए। आमतौर पे ये बिजनेस लैंग्वेज है पीओ सिस्टम। अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक रूल सेट करें, कोई भी बिल तब तक पे नहीं होगा जब तक उसे एक असली परचेज ऑर्डर यानी कि पीओ और डिलीवरी रिसीट के साथ मैच ना किया गया हो। बिना चेक किए किसी भी बिल को पास ना करें, ना ही एम्प्लॉयज और ना ही ऑब्वियसली बिजनेस ओनर। उसके अलावा अर्जेंसी से कभी ना डरें। अगर कोई ईमेल कहे कि वेबसाइट बंद हो जाएगी या लीगल एक्शन होगा तो डर में अक्सर तुरंत पेमेंट ना करें। पहले उस वेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनके रियल कस्टमर केयर पर कॉल करके कंफर्म करें, फिर रिकॉर्डिंग की सच्चाई पर भी आते हैं। अगर कोई आपको फोन पर एडिटेड वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाकर डराए तो बिल्कुल ना डरे। उनसे कहें कि आप इसकी कंप्लेंट साइबर क्राइम सेल में करने जा रहे हैं। स्कैमर्स साइबर क्राइम का नाम सुनते ही भाग

0: जाते हैं। आम तौर पे आपको 99% जो स्कैमर्स हैं वो साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट से या साइबर क्राइम सेल से डर जाते हैं और वो भाग जाते हैं। उसके अलावा रिपोर्ट कैसे करें, रिपोर्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। साइबर सेल डिपार्टमेंट सबसे अहम होता है, किसी भी कंट्री का साइबर सेल डिपार्टमेंट इन सब मामलों में एक्टिव रहता है। अगर आप किसी शहर में हैं या अगर आप कतर में हैं तो आपका बिजनेस ऐसे किसी फ्रॉड का शिकार ना बने, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो भी जाए तो साइबर क्राइम विंग को रिपोर्ट करें, या मेट्रेश 2 ऐप के थ्रू भी फ्रॉड की रिपोर्ट आप दर्ज करा सकते हैं। ये कुछ आसान तरीके हैं जिससे आप नए जमाने के नए स्कैम से बच सकते हैं। तो फिर कैसे बचना है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, पीओ सिस्टम, इनवॉइस अप्रूवल सिस्टम, अर्जेंसी से बिल्कुल ना डरें, रिकॉर्डिंग की सच्चाई, उसके अलावा कतर में कैसे रिपोर्ट कर रहा हूं, उसके अलावा अगर आप किसी दूसरे कंट्री में भी हैं तो वहां पर भी साइबर सेल होते हैं, साइबर डिपार्टमेंट, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और शुरुआत के 1-2 घंटे बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड में बात करते हुए। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। आपके जहन में वजारत दाखला या उसके मुख्तलिप शोबों से मुतालिक कोई सवाल है, वजारत दाखला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए, या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं, तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखला के मुख्तलिप शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और आवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम, पुलिस और अवाम, जानिए, समझिए और बाखबर रहिए। ओनली ऑन FM 107।
2: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर, हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से RJ सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, देसी।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
4: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। और आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं माइक्रो इन्वेस्टिंग की। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है या इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन मॉडर्न फिनेंशियल वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है और ये है माइक्रो इन्वेस्टिंग। अब माइक्रो इन्वेस्टिंग है क्या? देखिए, माइक्रो इन्वेस्टिंग का मतलब है छोटे छोटे अमाउंट्स को रेगुलरली इन्वेस्ट करना ताकि वक्त के साथ वेल्थ बिल्ड की जा सके। इस कॉन्सेप्ट ने इन्वेस्टिंग को आम लोगों, स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए भी एक्सेसिबल बना दिया है। माइक्रो इन्वेस्टिंग का जो बेसिक आइडिया है वो बड़ा ही सिंपल है। आपको एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। आप रोजाना, हफ्तावार या महीने बेसिस पर छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अमाउंट $5, $10 या इससे भी कम हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्वेस्टमेंट जो है वो अमाउंट नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी को देखता है। बहुत से बिगनर्स इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करते क्योंकि वह सोचते हैं कि उनके पास ज्यादा पैसे होंगे तब करेंगे। यहाँ माइक्रो इन्वेस्टिंग जो है वो एक बेटर सोल्यूशन है। जब लोग रेगुलरली छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे एक इन्वेस्टमेंट हैबिट डेवलप कर लेते हैं और ये हैबिट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस की फाउंडेशन बनती है। देखिए, माइक्रो इन्वेस्टिंग को समझने के लिए कंपाउंड ग्रोथ या फिर कंपाउंड रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट समझना भी जरूरी होता है। कंपाउंड ग्रोथ का क्या मतलब है? कंपाउंड ग्रोथ का मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न अर्न करती है वो फ्यूचर में और ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करे। यानी आप सिर्फ अपने ओरिजिनल पैसे पर ही प्रॉफिट नहीं कमाते बल्कि प्रॉफिट पर भी प्रॉफिट अर्न करते हैं। चलिए एक मिसाल देके

मैं आपको समझाती हूँ कि अगर कोई शख्स हर महीने थोड़ी सी अमाउंट इन्वेस्ट करे और उस इन्वेस्टमेंट को कई सालों तक कंटिन्यू रखे तो कंपाउंड ग्रोथ की वजह से हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिस्क तो इन्वॉल्व है ही। मार्केट कभी ऊपर है तो कभी नीचे है, इसीलिए इन्वेस्टर्स को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। देखिए, वेल्थ ओवरनाइट बिल्ट नहीं होती। माइक्रो इन्वेस्टिंग जो है एक स्लो और स्टेडी प्रोसेस है जो पेशेंस और कंसिस्टेंसी डिमांड करती है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अक्सर रेकमेंड करते हैं कि इन्वेस्टिंग को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए यूज करना चाहिए। अगर कोई पर्सन रिटायरमेंट प्लानिंग, फ्यूचर एजुकेशन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहता है तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स उसे अपने गोल्स के करीब ले जाते हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इमोशनल डिसिप्लिन। जब मार्केट टेम्परेली डाउन हो तो पैनिक करने की बजाय लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर फोकस करना चाहिए। माइक्रो इन्वेस्टिंग एक एजुकेशनल बेनिफिट है। जब लोग छोटे छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल मार्केट, सेविंग्स और वेल्थ क्रिएशन के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल तौर पे सीखते भी हैं और ये लर्निंग फ्यूचर में उन्हें बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। देखिए, आज के जमाने में इन्फ्लेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहे तो वक्त के साथ उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इन्वेस्टिंग का मकसद ये होता है कि पैसा ग्रो करे और फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स को सपोर्ट करे। इसीलिए बहुत से फाइनेंशियल प्लानर्स सेविंग्स के साथ साथ रेगुलर इन्वेस्टमेंट को इम्पोर्टेंट समझते हैं। बस अब जाते जाते मैं यही कहूंगी कि माइक्रो इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा लेसन ये है कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है बल्कि कंसिस्टेंट होना जरूरी है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स अगर रेगुलरली और लॉन्ग टर्म बेसिस पे किए जाएं तो वक्त के साथ सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। कंपाउंड ग्रोथ, पेशेंस और डिसिप्लिन माइक्रो इन्वेस्टिंग के ये तीनों इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। इसीलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्टार्ट स्मॉल, इन्वेस्ट रेगुलरली। वेल, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में, अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए, और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाया, थमने ना पाया। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: FM
2: आप सुन रहे हैं यू मैटर
1: RJ सफा और RJ महविश के साथ
2: FM 107 पर दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और माविश मेरा माइक ऑन करना भूल गई थी, लेकिन खैर है माविश, चलें आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं अपनी कन्वर्सेशन में और ये बताते हैं कि इस वक्त 10:02
4: झूठ बोलने का ना सख्त अजाब है। मैंने पहले तुम्हारा माइक ऑन किया और मैंने तुम्हें इशारा किया कि बोलो, और फिर उसमें कि मेरा माइक ऑन करना भूल गई थी।
3: ये जुल्म है, ये चाह रही
4: थी,
3: ये चाह रही थी पहले मेरी आवाज जाए, मुझे फंसा रही थी।
4: मैंने यूं किया, मैंने कहा बोलो माइक ऑन करके, और मुझे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं ऑन एयर।
3: मावेश देखिए, आज ट्यूजडे, आज लड़ाई नहीं करेंगे, आज लड़ाई से गुरेज करेंगे हम, ठीक है?
4: वाकई
3: आज
4: मतलब क्यों
3: सब बोर हो जाएंगे अगर हमारी लड़ाई ना होगी। तो भाई साथियों, इस वक्त जो है घड़ी में 10:02 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं FM 107 पर, शो का नाम है यू मैटर।
4: यस,
3: और भाई देखिए आप बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो इसलिए क्योंकि आप मैटर करते हैं आपको ये बताते चलें कि एक कन्वर्सेशनल शो है। आपने हमें अगर शामिल होना है शो में, अगर नहीं आपने होना है शामिल, तो उसके तरीके का हम बता देते हैं।
4: बिल्कुल सही बता दीजिए।
3: आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं 6622107 पर,
4: कॉल कर सकते हैं 4434377 पर।
3: और आज जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे भाई, आज बड़ा संगीन मुद्दा है, आज इमोशनल मुद्दा है,
4: इमोशनल और सेंसिटिव।
3: हाँ, देखो आज दूसरों के बारे में बात नहीं, हाँ दूसरों के बारे में बात नहीं करेंगे, आज टोटल कोर सॉलिड अपने बारे में बात करेंगे सिर्फ, क्योंकि यू मैटर। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि जो अपना ख्याल नहीं रखता वो दूसरों का ख्याल नहीं रखता। और एक बहुत बारीक बात लेकिन एक बहुत भारी बात आती है जब हम अपना ख्याल रखने की बात करते हैं, तो उसके अंदर एक बहुत बहुत स्ट्रांग बात आती है कि भाई अपने साथ कैसा चलना चाहिए। अपने साथ जो हम अपने रिएक्शंस रखते हैं, जो हम जिस तरह की रिस्पॉन्डिंग रखते हैं अपने साथ, वो हमारी कैसी होती है।
4: सही,
3: तो
4: अच्छा देखा ये गया है अमूमन कि हम लोग जो है ना दूसरों के साथ सब बड़े अच्छे अच्छे और हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, और बहुत हमारे माशरे में तो खैर बहुत ज्यादा ही होता है कि दूसरों के आगे निछावर हुए हैं, अपने आप को बिछा दिया है। लेकिन जहाँ बात अपनी आती है, अपने एहसास की, अपने आप के हवाले से कि अपने आप भी कुछ बर्ताव करना चाहिए ना खुद के साथ, तो वहाँ पे हमारा रवैया बहुत ही कभी कभी सख्त हो जाता है,
3: अपने आप को धक्का दे रहे होते हैं भाई। देखो मामला क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर अपने आप को सुकून, अपनी जान को जो है ना रिलैक्स करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपसे फिल वक्त नहीं हो रहे, तो आप उसके ऊपर अपने आप को कह सकते हो ना कि नहीं मेरी आज हालत ऐसी नहीं कि मैं ये काम करूँगा, तो मैं अपने आप को रिलैक्स करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं आज मैं ये काम नहीं, कोई और इस काम को निपटा ले, फॉर एग्जाम्पल। या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे हमने अक्सर औकात ये बात, इसके अंदर ये भी बाउंड्रीज वाली बातें भी आ जाती हैं, इसके अंदर बहुत सारा मटीरियल आ जाता है कि हम लोग जो है ना अपना अपनी बाउंड्रीज बहुत ज्यादा,
4: अपनी नींद पूरी नहीं हुई, अपने आप खाना खाया नहीं खाया, चल गया पूरे पूरे दिन लगे में,
3: खाना बनाया नहीं, अपनी पसंद का बनाया
4: या बनाया सबको खिला दिया और खुद इंतजार कर रहे हैं कि अब आखिर में जब सब कुछ हो जाएगा, जब सारे काम निमट जाएंगे, अगर कुछ बच गया, मतलब जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम वगैरह में होता है ना यूजली कुछ बच गया तो फिर देखेंगे, अदरवाइज इग्नोर किया हुआ खुद को, पानी नहीं पी रहे, कुछ नहीं कर रहे। फिर जी अब इसी मतलब सेंसिटिव टॉपिक के साथ हमारे साथ कुछ सेंसिटिव से लोग जुड़ गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू।
4: जी
5: आज भी लगता है हम फर्स्ट कॉलर हो गए।
4: जी जी बिल्कुल, आप फर्स्ट कॉलर हो गए।
3: अरे भाई कल अगर फर्स्ट कॉलर होगा तो हैट्रिक हो जाएगी। अरे भाई
4: कितना प्यारा उसे
5: अगर मैं कुछ और ड्यूटी पे होता हूँ, अगर कॉल ना करूँ वो कहाँ से होने वाली बात है कि मैं महज पे और सपा के उसमें कॉल ना करूँ, ये कहाँ से होने वाली।
4: अरे भाई ए, कैसे हो सकता है ये
3: कैसे हो सकता है कि हम खुशबू लगा के बात ना करें।
5: नहीं मैं ए, इनको सपा को मैं बोलूंगा ये कि लाहौर की एक इंस्पेक्टर है, वो पूरा फूड इंस्पेक्टर का मतलब वो टेस्ट करती है पूरा जगह जहाँ पे रेट के बारे में और सारा ये आपने मतलब ये क्या रेट क्यों इतना नहीं लगाया, इसको वजन करवाए, उसका लगाते हैं, सपा का हाइट, सपा का वो बिल्कुल एकदम बोलने का अंदाज।
3: अरे भाई जुड़ा हुआ
4: कौन कौन है ये भाई?
3: मैंने तो सोचा था फैक्ट्री से सिर्फ मैं ही एक अकेली आई हूँ ऐसी।
4: यार आनी तो एक ही चाहिए थी तो
3: एक संभाल ही नहीं।
5: मतलब चेहरे पे मास्क, फेस मास्क लगा के रखती है, काले ड्रेस में होती हैं और मतलब हर जगह जाके फूड उसमें मतलब जाके चाहे फ्रूट हो चाहे मतलब ग्रोसरी मार्केट के अंदर हो सारा वो जांच करती है। मतलब आप लोगों ने सही रेट पंजाब पंजाब के मतलब लाहौर का।
4: अच्छा अच्छा,
3: मैं मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी इनके ऊपर,
4: देखना पड़ेगा
5: पंजाब। हाँ तकरीबन हाँ बोलने का अंदाज बिल्कुल हमारे सपा में का मिलता जुलता है तकरीबन।
4: अच्छा
5: और थोड़ा भी ये नहीं हो और बिल्कुल वो सही भी है, जरूरी भी है, जो आम कस्टमर को तकलीफ उठाना पड़ रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सब अगर अवेयरनेस हर जगह अगर ये किया जाए, हम लोग खासकर हम लोगों के मुल्कों में ये सब चीजें बिल्कुल इग्नोर की जाती है। कोई मतलब इसके ऊपर ख्याल नहीं करता कि मतलब कितने गले सड़े मतलब फूड होते हैं और उसको लोग सामने रख के बेचा जाता है। तो उन्होंने इस पे भी किया कि भाई आप लोग सामने गले सड़े और ये सब कि मतलब सही सामान रखो, सही सामान सही रेट लगा के रखो, लोगों को बेवकूफ ना बनाओ, 400 लगा के सही से
4: चले। शेयर कीजिएगा हमसे रईस भाई व्हाट्सएप पे हमारे, हम शेयर कीजिएगा, मैं जरूर देखना चाहूंगी सफा की तरह कौन है। है तो वो सफा की तरह लेकिन काम अच्छे कर रही है। ये कितनी अजीब सी बात है,
3: काम कर रही है। मेरा नाम डुबो दिया।
5: मतलब इनकी हाइट और वो मतलब मिलता जुलता हो सकता है चेहरा, क्योंकि उन्होंने मतलब पूरा सही से नहीं खोला है।
4: अच्छा अच्छा,
5: हो सकता है चेहरा कुछ डिफरेंट हो, मैं कंफर्म नहीं बता पाऊंगा क्योंकि
4: ऊपर ऊपर से लग रही है सफा। अच्छा पता है सफा, इतना मजे की चीज हुई, पहले दिन रईस भाई आए, मैं नाजे के साथ शो करी थी तो मुझे आके कहते हैं कि आपने अपनी वीडियो लगाई थी। मैं कह रही हूँ मैंने तो अपनी वीडियो नहीं लगाई थी। फिर कह रहे नहीं आपने मुझे मैसेंजर पे भेजी थी। मैंने कहा यार ये कौन सी वीडियो जो मैंने बना के इनको भेज भी दी और मुझे पता ही नहीं चला। बाद में पता चला कि ये जो है ना मैंने अपने पास एक शेयर की थी कराची की, कुछ एक प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था तो उसके बारे में कह रहे थे। फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं होंगी, कोई और होगा। तो कह रहे नहीं नहीं हमें क्या बेवकूफ बना रही है, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते आपको। और मैंने देखा पहली दफा में तुम्हें भी लगेगा मैं खड़ी हुई हूँ।
3: अरे भाई
4: मैंने अपने घर वालों को भी दिखाया तो मेरे घर वालों ने नहीं नहीं तुम तो नहीं। मैंने कहा जाहिर सी बात है मैं नहीं हूँ लेकिन एक नजर में देखो
3: ऐसा
4: लग रहा है,
3: ऐसा होता है कि जरा। अच्छा ये
5: साइड में खड़ी है मतलब
4: रईस भाई का, मतलब मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि लोगों को किससे मिलाना है, किसकी शक्ल किससे मिलती है, इसमें बड़े एक्सपर्ट हैं आप।
3: रईस भाई ने एआई की गुंजाइश नहीं रखी कि बंदा कैसे कि एआई है।
5: आप लोग हैं अब हम से और रिस्पेक्ट करें, जैसे हम लोगों के अपने फैमिली के चेहरे जो अपने रिलेशन के होते हैं या तो आप लोगों का मतलब जो मिलता जुलता तो थोड़ा सा।
4: चले मैं सफा को भी देखना चाहूंगी क्योंकि आपने जिसको मुझसे मिलाया था वो वाकई किसी हद तक लग रही थी। अब मैं देखना चाहूंगी सफा से कौन मिल रहा है।
5: फेस पे कंफर्म तो नहीं मैं करूंगा क्योंकि उन्होंने चेहरे को सही से मतलब ये किया हुआ है, पूरा 50% ढका हुआ है तो मैं चेहरे, लेकिन मतलब तकरीबन बॉडी लैंग्वेज और मतलब लहजा तकरीबन शायद आप भी कहेंगे कि शायद मिलता जुलता है बस।
4: अच्छा नहीं नहीं भेजें भेजें, हम मैं जरूर देखना चाहूंगी।
3: अच्छा भाई मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आज का हमारा मुद्दा जुड़वा तुड़वा नहीं थे, आज का हमारा मुद्दा ये था कि जरा ये बताएं कि हम अपने ऊपर इतना सख्त क्यों होते हैं, हमें क्यों ऐसा लगता है कि भाई मुझे बेहतर करना चाहिए था या मैंने कोई मिस्टेक कर दी है, हमेशा गिल्ट में रहते हैं, मुझे और भी ज्यादा अच्छा करना चाहिए था, मैंने कुछ अच्छा नहीं किया,
4: अपने आप को टफ टाइम देते रहते हैं, मतलब अपनी नहीं सुनते। अगर अपने आप को आराम करना हो आपको, आपका मतलब एक हो रहा हो ना अंदर से, बॉडी सिग्नल दे रही होती है भाई सो जाओ थोड़ा सा, लेकिन फिर भी नहीं नहीं मैं अपने आप को थकाऊंगा, ये सब कुछ चल रहा होता है तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और आप तो नहीं करते
5: नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि मिसाल के तौर पे कोई मतलब जो गुजर गया वो उस पे अफसोस नहीं करना चाहिए कि मतलब बहुत से इसी टॉपिक पे हम उसमें जैसे कोई किसी से बातचीत चल रहा है तो उसमें हम ये बात क्यों नहीं रख पाए, ये क्यों नहीं कह पाए, ये ऐसा क्यों नहीं हो पाया, ये सब चीजें मतलब गैर जरूरी है, मतलब उसको और ज्यादा नजरअंदाज करना चाहिए। बस इतना था, अल्लाह ने हमारे से जितना बुलवाना चाहा, जितना करवाना चाहा वो हो गया, बस उस पर मतलब हम बहुत ज्यादा अपने आप को ना ये करें तो कल की बेहतर है। अगर मौका मिले फिर अपनी बात को दोबारा रखने का, तो आपको चांस मिले तो कोशिश करें, नहीं तो फिर अपने आप को बहुत ज्यादा टेंशन में डाल के और ये करके, मैं तो भाई यार इसी पे ये करूंगा कि बहुत ज्यादा अपने आप को डिप्रेशन में ना डाल के, जो गुजर गया उसके ऊपर समझ लो कि सबसे आगे बढ़ जाए कि छोड़ो उसके ऊपर क्या फायदा ज्यादा। हाँ होता है, कुछ हालात है ऐसे जिस पर हमें अफसोस होता है कि काश अगर हम होते वहां पर तो हम ये कर देते, या उस जगह पे अगर हमें ये मतलब मौका मिला होता तो हम ये बदल देते, तो ये सब चीजें कहने के दूर से तो लगता है, लेकिन जब उस पे आदमी उस फील्ड में होता है, वहां पे पहुंचता है उस मकाम पर, तो फिर उसका नजरिया तकरीबन बदल जाता है मेरे ख्याल से। क्योंकि बहुत से लोगों को देखा है कि जो पॉलिटिशियन भी होते हैं वो उनका अंदाज गुफ्तगु जब साइड में होते हैं तो उनका अलग होता है, लेकिन जब वो अपने इक्तदार पे पहुंचते हैं तो उनका जो रवैया है वो तकरीबन बदल जाता है, क्योंकि उनको सारी चीजों को मैनेज करके चलना होता है।
6: सही, मेरे ख्याल से अपने पर इतना हार्श नहीं होना चाहिए,
5: नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा फायदा नहीं है उसमें बताना अपने आप को। मैं तो यही कह के आगे बढ़ूंगा और हमारे भाइयों को
4: चले दी। बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई आपका, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी।
6: चले जी, अगर अभी भी किसी को बात समझ में आई तो आपको ये बता देते हैं कि भाई कभी कभी होता है कि एक्सपेक्टेशंस का बोझ जो है ना बहुत ज्यादा होता है, कभी वो एक्सपेक्टेशंस खुद से बहुत ज्यादा होती है, कभी दूसरों से, दूसरों ने हमारे ऊपर कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली होती है, कभी फैमिली की होती है, कभी सोशल मीडिया की होती है, सीमिंगली लाइफ परफेक्ट दिखने के चक्कर में ना लोग अपने आप को एग्जॉस्ट कर देते हैं। अच्छा मेरा एक सवाल है,
4: कॉलर आ गए फिर उसके बाद
6: इनसे सवाल पूछते हैं।
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वो आज फिर मैं दूसरे नंबर पे आ गया वालों।
4: जी जावेद साहब, क्या हाल चाल है?
7: अल्लाह का शुक्र है, मैं भी शाप और सफा, कैसी हैं आप दोनों?
6: अल्हम्दुलिल्लाह।
7: मैं अपनी पहले बात बढ़ाता हूँ, माशाल्लाह ये रईस भाई जो है, मैं विश, मैंने कल भी दोपहर के शो में आपका नाम लिया था और क्रेडिट गोज़ टू यू जो आपने हम सबको आपस में मिलवाया FM 107 के तवक्कु से, ठीक है
4: जी जी, बहुत शुक्रिया।
7: चीज मुझे लगता है कि रईस भाई ने ना अपने हाथ में मोबाइल अपने अंगूठे को ना वो एल्फी लगा के जोड़ा हुआ है।
6: पहले कॉलर हो जाते हैं वाकई में सही बात है। मैंने कहा ना कल तो हैट्रिक करेंगे, हैट्रिक
4: करने पे आए तो कर गुजरेंगे वो।
7: मैं कल मेरी कोशिश रही कि इनसे मुलाकात कर इनको मैं फंसा के रखूं, ये कॉल ना कर पाए।
6: हैट्रिक ना हो जाए,
4: रिकॉर्ड नहीं बनने दें आप।
7: चले माशाल्लाह सलाह करें।
6: अच्छा भाई, अब आते हैं हम मुद्दे पर।
4: सवाल आज का हमारा ये है कि होता ये है कि जावेद साहब कि हम ना मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सैक्रिफाइस करते रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में लगे रहते हैं, लेकिन अपना जब वक्त आता है ना, मतलब हमारी अपनी जब नीड्स भी होती हैं तो उनको भी हम इग्नोर कर रहे होते हैं, अपने साथ बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं।
7: आपकी बात पूरी हो गई?
4: हाँ बिल्कुल हो गई। आप मुझे बताएं कि ऐसा आप भी करते हैं या फिर ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
7: बेसिकली जो फितरत के साथ जो इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ उसकी एक फितरत भी पैदा होती है जिसके अंदर वो या तो खुद गर्दी रखता है तो या फिर वो मददगार साबित होता है, ये फितरत है इंसान की। ओके, वरना माशरे में देखिए कि ऐसे ऐसे हालात और वाकयात होते हैं जिनकी आंखें और जमीर बंद है, उन पर असर नहीं होता, वरना ऐसे भी लोग हैं जो किसी की बात सुनकर खून के आंसू, उसको रोना कहते हैं, वो भी करते हैं किसी की बात सुन के। लेकिन मैं ये समझता हूँ और इस पर मैं अमल भी करता हूँ कि सबसे पहले आप बिल्कुल दुनिया के मामलात उनको बड़ा अच्छा रखें, बहुत अच्छा रखें, और उसके बाद अच्छा रखने के बाद भी क्योंकि सिला रब की जात देने वाली है, इंसान से हम तौकवात रखते हैं। आज का आपका सवाल और कल का सवाल दोनों सिमिलर हैं तकरीबन, लफ्ज दूसरे हैं लेकिन एक जैसे।
4: कल का क्या था हमारा, मैं भूल गई।
7: फैसला, जिंदगी के फैसले।
4: फैसला सही।
7: लेकिन जहां पर इंसान को सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए तो मैं, मेरा नजरिया ये है, बड़ी अच्छी बात कह रईस भाई ने, मेरा नजरिया ये है कि सबसे पहले आप अपने आप से दोस्ती करें, अपने आप खुद से दोस्ती करें आप, क्योंकि दुनिया में सबसे लंबा साथ आपको अपनी जात से निभाना होता है।
4: बिल्कुल।
7: और जब इंसान अपनी जात से मोहब्बत करना, खुद को समझना और अपनी कदर करना सीख ले, मैविश और सफा, तो जिंदगी ज्यादा खूबसूरत और बेतहाशा पुरसुकून हो जाती है।
4: बिल्कुल, बेशक, बेशक, बिल्कुल ऐसे ही।
8: بالکل.
9: دوسروں کے لیے ضرور جئیں مگر اپنی ذات کو کبھی نظر انداز نہ کریں. یہ میں چھوٹی سی بات کروں گا تاکہ دوسرے کالر بھی فون کر سکے اور میں سن پاؤں. میں
4: چلیں جی ضرور جاوید صاحب بہت بہت شکریہ, بہت زبردست بات اور تھینک یو جی.
6: ہمارا کوئی دوست پریشان ہوتا ہے تو کیسے ہم بھاگے بھاگے جاتے ہیں, ہائے صدقے نہیں کرو چلو ہو جاتا ہے چلو اپنے لائٹ لو بھائی لائٹ لو, ہم لوگ کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو بھائی لائٹ لو ہو جائے گا معاملہ سالو ہو جائے گا, لیکن وہی چیز اگر ہم خود فیس کرتے ہیں تو ہمیں انزائٹی اتنا ڈپریشن اتنا پریشر کیوں لیتے ہیں, مجھے آج تک بات سمجھ میں نہیں آتی.
4: مطلب دوسروں کے لیے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو دوسرے کے لیے بس ہمیں یہ
6: نرمی ہوتی ہے
4: کنسول کر دو کچھ مطلب معاملہ نمٹ جائے یہ ہو جائے, لیکن اپنے معاملے میں نا ہم اپنے آپ کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر کے رکھتے ہیں.
6: مجھے لگتا ہے ہمارا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ ہم جو ہے نا پرفیکشن میں اور سکسیس میں فرق نہیں سمجھتے. دیکھیں اگر آپ سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی نا ایسا تو نہیں ہے کہ انسان کوئی غلطی کرتا نہیں, ٹھیک ہے اٹ از اے فیکٹ کہ انسان غلطیاں کرتا ہے, غلطی کر کر ہی سیکھتا ہے. یہ جو سوچ ہوتی ہے نا غلطی کر کر سیکھ جاؤں گا وہ ایک بہت میں کہوں گی کہ سکسیس کی نشانی ہوتی ہے سوچ رکھنا, لیکن موسٹلی یہ چیز ہم کھا جاتے ہیں.
4: اچھا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اسی بات کو, لیکن اس سے پہلے کالر کو لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم.

0: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप?
0: जी अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं।
1: जबरदस्त, वैसे आपकी भी कुछ ना कुछ हैट्रिक हो गई है। नंबर ना
0: मैं तो एवरीडे करता ही हूँ कॉल।
1: हाँ, नहीं वो जैसे सीक्वेंस में चल रहा है, इसी कुछ इसी नंबर पे आप आ रहे हैं, इसी वक्त पे आप आ रहे हैं।
2: सीक्वेंस वही चल रहा है।
0: मैं इसी वक्त में निकलता हूँ। मैं बस हाथ में कॉफी का गिलास होता है, थोड़ी सी डेट्स होती है, बस उसको एंजॉय करते करते मैं आपसे बात कर लेता हूँ।
1: चलें, गुड, जबरदस्त, बहुत आला। और बताएं भाई शोएब भाई, ये आज का जो हमने सवाल रखा है वो ये है कि अपनी जात के साथ जो एक सख्ती वाला बर्ताव होता है ना हर चीज में, जैसे भी सफा कह रही थी फेलियर आ गया,
2: हर चीज के लिए पुश करना,
1: कोई मसला है, एग्जाम्स हो रहे हैं आपके, कहीं पे आपने मतलब अपनी जॉब के वक्त में अगर इन केस कभी कोई गलती हो जाती है, हर बंदे से होती है, हर दफा सोचता है कि नहीं करूंगा, नेक्स्ट टाइम ये वाली चीज नहीं करूंगा, लेकिन कुछ और हो जाती है, तो उसके बाद अपने आप को माफ करने को तैयार नहीं हो रहे होते, आपके साथ होता है ऐसा?
0: नहीं, मैंने आपको कल भी बताया था, देखिए गलतियां इंसान से होती हैं और इंसान गलतियों का पुतला है, और इंसान जो है ना एक सीखने की मतलब जिंदगी भर सीखता ही है कुछ ना कुछ, वो कभी खत्म नहीं होता। देखो मेरा हिसाब थोड़ा डिफरेंट है, मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं हूँ, मैं इमोशनल नहीं होता, मेरा सब्र बहुत अच्छा है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है, और मैं अपने आप को किसी चीज के लिए पुश नहीं करता हूँ। मुझे अगर कुछ चीज चाहिए तो मुझे चाहिए, अभी जैसे कि मैं कहीं से गुजर रहा हूँ और मुझे जैसे कि मुझे शूज का बहुत शौक है,
1: सही,
0: तो मैं कहीं अभी मेरी वाइफ हूँ, जल्दी से मेरे को किसी भी हम मॉल में जाते हैं, मैं शूज का सेक्शन में नहीं लेके जाती मेरे को, तो उन्हें पता है कि अगर इस पर उन्होंने कुछ देख लिया, कोई स्नीकर्स नए आए होंगे क्या है, वो एकदम से बस ले लेंगे।
1: सही,
0: तो मैं अपने आप को किसी चीज से पूछ नहीं करता, मुझे कुछ चीज चाहिए तो मैं बिना किसी से मुझे ले लेता हूँ बिना कुछ। मैं ये कल के लिए भी नहीं सोचता कि कल मेरे पास जेब में पैसे हैं या नहीं है, या मैं कैसे करूंगा, नहीं,
2: ये फिकर ना फाका है इसका, काका
1: वही वाला सीन चल रहा है,
0: कोई फिकर नहीं है। मेरे मॉम डैड मुझे कहते हैं कि भाई एक बार बता शोएब, मैं बोला हाँ पापा, पापा पूछ लो क्या बात होगी, थोड़ी बहुत टेंशन लेनी चाहिए ना कल की, मेरा पापा आप तो सही, मैं क्यों लू टेंशन, मेरी मम्मा मुझे बोलती है कि हमारा सबसे अच्छा बेटा शोएब है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, हमेशा खुश रहता है। अगर मैं मतलब मेरी मम्मा मुझे एक चीज में और तारीफ करती है, और मेरे पापा के बोलते हैं कि घर में जब बच्चे होते हैं वो सब्जियां कुछ नहीं खाते हैं, कुछ भी मतलब किसी का वो कुछ बनाया, मम्मा मैं आज ये नहीं खाऊंगा, मतलब मेरा हिसाब क्या है, ठीक है चलो जो भी है आ जाओ दे दो।
1: हाँ,
0: तो मेरी मम्मा मुझे एक चीज में तारीफ करती है कि भाई हमारा बच्चा सबसे अच्छा शोएब, कि कुछ भी बना के दे तो खा लेगा, हमेशा खुश रहेगा और बिल्कुल चिल, और अगर जब मान मेरी किसी से गलती हो जाए, ठीक है सॉरी झगड़ा हो जाए, मान लो किसी रिश्तेदार से दोस्त से थोड़ा बहुत कहा सुनी हो गई, मैं ऐसा बंदा हूँ दो मिनट के बाद जाकर उसको खुद गले मिल जाता हूँ, यार छोड़ यार क्या रखा लगा झगड़े में, छोड़ खत्म कर, चल
2: मेरे वाला हाल है क्या इनका, क्योंकि झगड़ा भी करना भी प्यार से कहते हैं खल्ली वल्ली भाई, अपना वो गिल्ट बहुत भाई, झगड़ा करके लोगों से गिल्ट बड़ा होता है, बहुत गिल्ट होता है, जबकि झगड़ा उन्होंने स्टार्ट किया होगा, लेकिन अगर हम आगे से कुछ चार बातें बोल दें तो हमें गिल्ट फील होना शुरू हो जाता है।
0: जी मगर मेरा अपना ऐसा हिसाब नहीं है, मेरे अंदर तो कोई वो इमेज, तो मैं ज्यादातर इमोशनली टच नहीं होता किसी से, मतलब जैसे कि लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं लड़ाई झगड़े की वजह से, अपने रिलेटिव के इस तरह से मेरे अंदर कोई सीन नहीं है, और मैं अपने आप को किसी तरह के प्रेशर में नहीं रखता, कुछ दिन पहले मिला वो मेरे एरिया के बंदे थे, तो वैसे मुलाकात ऐसी हुई कि दो से ढाई घंटे तक हम लोग बैठे रहे, और अब फिर उसके बाद फोन नंबर एक्सचेंज हो गए, तो अभी भी जब भी हम कॉल करते हैं तो कम से कम एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक बातें करते रहते हैं।
1: अच्छा,
2: चिल मोड वाले बंदे भाई, जो जहाँ मिल गया इसने बात,
1: जहाँ मिल गया उसके हो गए, चलिए गुड, जबरदस्त, अच्छी बात है।
0: थैंक यू
1: और वैसे रहना भी इसी तरह से चाहिए शोएब, मतलब आपको ना,
2: आपका
1: मुझे भी ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा इमोशनल होने का, बहुत ज्यादा इस तरह का ना कोई फायदा होता नहीं है
2: रखने का।
1: हाँ, तो ये वाला जो बिहेवियर है आपका बड़ा सही है, बिल्कुल ठीक है।
0: मैंने देखा है कि कुछ लोग ज्यादा टेंशन, मतलब ऐसे मेरा कलीग रहे कुछ रहे, जरा जरा सी बात को इतना टेंशन अपने उस पर ले लेते हैं कि फिर बस वो सोचते रहते हैं यार ये हो गया वो हो गया, मेरे को ये जॉब से निकाल दे, ए, चिल कर भाई कुछ नहीं होगा, मैंने अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है चल ठीक है बात करते हैं, आजा देखो हर चीज का सोल्यूशन बात करने से निकल जाएगा।
1: बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है,
0: लेकिन लोग जो है ना बेचारे एकदम प्रेशर में आ जाते हैं ना, यार छोड़ो प्रेशर मत लो, अपने आप को प्रेशर ले तो आप अपनी एज खत्म कर रहे हो।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड भाई, गुड अप्रोच, जबरदस्त,
0: थैंक यू।

0: थैंक यू सो मच
1: जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
2: जी तो हमारे साथ शोएब भाई और जबरदस्त मस्त है भाई, बिल्कुल कूल।
1: अच्छा ये एक हकीकत बात है कि कभी कभी ना जिंदगी में हमें मोटिवेशन ज्यादा ना परमिशन की जरूरत होती है, पता है किस चीज की, अपने आप को परमिशन देनी है कि खुद को इम्परफेक्ट होने की परमिशन देनी है, खुद को स्लो रखने की परमिशन देनी है।
2: यही होना चाहिए हमारा एटीट्यूड। अगर देखा जाए ना बहुत हद तक मैं भी इमोशनल नहीं हूँ, मतलब मेरा भी अपना ये वाला सीन है कि मैं इमोशनल नहीं हूँ, मेरी बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होती इस तरह की ना, मेरा मामला नहीं होता इस तरह का, तो उसमें ये एक बंदे को सुकून रहता है। और एक जो खासतौर पर फ्यूचर के हवाले से ना, तो आपको हमेशा मतलब ना एक अगर आप कहते हैं ना तवक्कुल, तो तवक्कुल होना चाहिए,
1: नहीं कुछ नजर आना चाहिए। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे ऐसा होता है कि मैं ना अपनी तरफ से मुतमइन नहीं होती कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, जबकि मुझे पता है मैंने अपना 100% दे दिया, अब इससे आगे क्या ही होगा, इससे आगे 200% होगा, मैं कहूंगी मैंने 500% दे दिया, लेकिन उसके बाद भी एक गिल्ट रहता है कि नहीं आई डिड नॉट गिव।
2: अच्छा मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं जो कर सकती हूँ जितनी मेरी कैपेसिटी है उस पर मैंने काम किया, और उसके बाद मुझे पता है मैं मतलब ये एक तरह से ना अल्लाह ताला से भी कह रहे होते हैं कि मेरी इतनी है, इसके आगे जो काम है वो यकीनन आपका है।
1: ये चीज बहुत ठहर कर, बहुत सबर, और मुझे लगता है मेरे जैसे लोगों की ना एक उम्र बाद जाकर समझ में आती है कि नहीं भाई अपने ऊपर इजी हो जाओ, अब जान बाकी नहीं रही है। वो जैसे लोग कहते हैं ना कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे ये काम नहीं होते,
2: शुरू से ही वाला मामला है। कल ही किसी बात पे ना मेरी अपने बेटे से बात हो रही थी, तो मैंने कहा मैं तुम्हें समझाऊं, तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे किसी चीज पे वो किया करो। बेसिकली एक थोड़ा सा छोटा सा मसला हुआ, लेकिन वही वाली बात जो हम अपने आप को माफ करने को तैयार नहीं होते। तो उसने कहा
1: बच्चे में होता है ये,
2: उसने कहा आप रिएक्ट ही नहीं करती किसी बात पे मैं आपको कब समझाऊं, तो मैंने कहा ले भाई मतलब हमारी गलती हो गई, हम रिएक्ट नहीं करते, हम किसी चीज पे शोर नहीं मचाते, तो हमें कोई कंसोल भी नहीं करेगा कभी
1: अच्छा मेरा मामला मेरे साथ बहुत मुख्तलिफ है, अगर मैं अगर बच्चे हों, खासतौर पर बच्चों के मामले में ना मेरा ये मामला है, बच्चे किसी के भी हों, मुझे ऐसा लगता है आप उनको थ्रेशोल्ड से भी ऊपर ले जाओ मोटिवेशन के लिए। अगर उनका कोई एग्जाम गलत हो गया या उनके वांटेड मार्क्स नहीं आए, हमारे घर में भी ऐसे रोले रहते हैं कि नहीं भाई मुझे इतना परसेंट चाहिए था, इससे 1% कम आया,
2: क्यों आया,
1: अरे भाई इतना फसाद, 3 दिन खाना नहीं खाना। मैंने कहा भाई ये जिंदगी का आखिर थोड़ी है।
2: मेरा भी यही हिसाब किताब है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि आप ना मतलब किस हद तक,
1: लेकिन अपने साथ नहीं किया जाता ये माविश,
2: मुझे ऐसा लगता है। अच्छा अभी ना ये बड़े मजे की बात, रईस भाई ने की थी, मेरा ख्याल रईस भाई थे, वो कह रहे थे कि जो ना वो ये होता है कि सुना बाद में याद आता है, सुना दिया ये कर दिया। मेरी बहन के साथ बहुत होता है, किसी से बात करके आएगी कोई, उसको आगे से ना मतलब किसी चीज पर टॉन्ट कर देगा कुछ भी, मतलब जो लोगों की आदत होती है बिला वजह की, मतलब बहुत ज्यादा, फिर आके बाद में कहेगी आए मैं सोची थी मैं ये कह सकती थी, मैं 3 दिन तक सोचती रहती है कि मैं ये जवाब दे सकती थी, मैं वो जवाब दे सकती
1: होता
2: थी।
1: था मेरे साथ पहले होता था, पूरी थीसिस चल रही थी दिमाग में,
2: कहती यार तो तुम जवाब देकर क्यों नहीं आई, तुम्हें ऑन स्पॉट दे देना चाहिए। मतलब मेरा अपना ये वाला हिसाब किताब है, अगर मुझे मतलब ज्यादा कोई मसला है ना तो मैं बोल दूंगी अगले बंदे को ताकि वो समझ जाए,
1: लिमिट में आ जाए।
2: अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे इसीलिए लोग फीलिंग सेंड नहीं लेते,
1: फीलिंग सेंड कर देनी है। अच्छा ये चीज मुझे, इस चीज की आदत मुझे अब जाकर हुई है, अब जाके समझ में आई कि नहीं लोगों को
2: आपको
1: भी ये इजाजत है कि आप लोगों को आगे से उसी तरह से ट्रीट करो जिस तरह से
2: लोग आपको ट्रीट कर रहे हैं,
1: उनको उनकी बाउंड्रीज में रखो।
2: एग्जैक्टली, तो ये वाला जो रईस भाई की बात पे ना मुझे याद आ रहा था कि मैं हमेशा उसको, तुमने उस वक्त क्यों नहीं बोला, आप नहीं सोचो इसके बारे में, वो पूरे 3 दिन तक भाई मैं ये भी तो बोल सकती थी, भाई मैं ये बात भी कर सकती थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम,
3: प्रकाश खान
2: कैसे हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह
2: जबरदस्त।
3: मैं लिसनर तो बहुत पुराना आपको, लेकिन कभी कभी पार्टिसिपेट करता हूँ मैं।
2: अच्छा अच्छा चलें गुड है, कभी कभी कर लेते हैं आप
3: जी। तो वो ये है ना कि जज्बात से आरी तो बंदा ही नहीं होता है, जज्बात तो होनी चाहिए।
2: जज्बात से आरी नहीं, एक चीज होती है जज्बाती होना, एक चीज होती है जज्बात को काबू में रखना। जो शोएब या मैं बात करें ना, हम ये बात करें कि जज्बात को काबू में रखना आता है।
3: देखें दिल का नरम होना बहुत जरूरी है, अगर दिल का नरम, दिल नरम नहीं है तो सब कुछ खत्म हो गया। तो जिसका दिल नरम होगा वो तो
2: नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जज्बाती बंदा तो हर वक्त जो है ना मारने धाड़ने को तैयार रहता है, तो फिर वो जज्बाती।
3: हाँ मैं जरा बात करना चाहता था,
2: कौन से जज्बात,
3: तो कह रही थी कि अपने आप को खत्म कर देना किसी के लिए, ये वो अपने भूल जाना।
2: हाँ अपने आप को भूल जाते हैं लोग, मेरे से लोग भूल जाते हैं।

0: मेरी बात सुने के सबके बहन भाई घरों में होते हैं,
1: सही,
0: रोज मौतें भी होती हैं,
1: अल्लाह
0: खैर, लेकिन देखो अपने भाई की या माँ की या वालिद की डेथ पे तो सब रोते हैं,
1: सही
0: रोते हैं ना, ये तो कुदरती अमर है।
1: हाँ जी।
0: लेकिन एक बंदा ऐसा मर गया और उसके लिए एक बंदा ऐसा रो रहा है जिससे वास्ते ही कोई नहीं है, वो क्यों रो रहा है? तो उसके वो कभी काम आया होगा। तो हमारे एक मौलाना साहब थे, उन्होंने कहा कि ऐसी मौत बनना चाहिए जिसपे घर वाले तो रोते ही रोते हैं, बाहर वाले रोए कि हमारा तो कुछ बिछड़ गया आज। तो वो उसी सूरत में हो सोचेगा किसी के बारे में,
1: इसको जज्बाती होना नहीं कहते भाई, आप ना लफ्ज गलत चूज कर रहे हैं, ये एक मतलब इस्तेला, ये क्या नरम दिल का होना जरूरी है, जज्बाती जो है ना, जज्बात का क्या मतलब होता है कि गुस्सा एक जज्बा है, ठीक है, आपका जो गर्म मिजाज है वो आपका एक जज्बा है, आपका गम जो है वो एक जज्बा है, अब अगर आप जज्बाती हैं किसी मामले में तो हर वक्त गमगीन रहेंगे, आप हर वक्त गुस्से में रहेंगे, या फिर आप खुश भी, खुशी जो है एक जज्बा है, लेकिन क्या कोई बंदा हर वक्त खुश रह सकता है? मतलब शिद्दत हो सकती है उसमें, है ना, उसको कहते हैं जज्बाती। तो आप जो बात कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं नरम मिजाजी की, नरम दिली की, खुश अखलाकी की, तो उसके लिए लफ्ज दूसरे होते हैं। जो मैंने और शोएब ने बात की इमोशनलिज्म, वो ये होता है कि आप हर चीज में ना एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, मतलब एक्सट्रीम
2: गियर नहीं होता गाड़ी में,
1: तो वो अलग बात हो जाती है।
0: हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू मैम,
1: थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।
2: अच्छा ये कितनी खूबसूरत बात है कि इमोशंस अगर इंसान बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वे में ले लेना तो एग्जॉस्ट हो जाता है। हर मशीन की भी जैसे अपनी कैपेसिटी होती है, इंसान की भी कैपेसिटी होती है, कभी आपने देखा है कभी ज्यादा बहुत ज्यादा मुस्कुराल तो यहाँ आँखों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जबड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है।
1: अच्छा मतलब लेकिन हमारी, क्योंकि मतलब हम ये कहा जाता है ना बड़े सगीर, ये जो पाक है यहाँ पे बहुत जज्बाती लोग हैं, और आप देखो मतलब बहुत सारे ना हमारे एक्सट्रीमिस्ट हैं, और आप अगर देखो तो हमारे जो मसले हैं ना जो हम देख रहे होते हैं वो यूं सॉल्व हो जाएं, लेकिन क्यों नहीं होते?
2: क्योंकि हम लोग दिमाग से नहीं काम लेते। अच्छा मैंने तो एक खूबसूरत बात सुनी थी जज्बात और इन चीजों को लेकर कि इंसान का दिल और दिमाग जहाँ मैच कर जाए ना वो एक लिमिट इंसान को लेनी चाहिए।
1: वो एग्जैक्टली बिल्कुल जी। तो हमारे साथ एक कॉलर है, हेलो,
3: वालेकुम
2: अस्सलाम, कौन है हमारे साथ,
3: कैसे हैं आप लोग?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: अदनान कैसे हैं आप?
3: जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप लोग कैसे हैं?
1: सब ने मुझे यूं देखा नहीं, वो इसलिए देखा इन्होंने क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाम अदनान है तो इसलिए इसने मुझे गौर से देखा कि मैंने ऐसे बोला। जी अदनान भाई, तो आपके क्या हाल चाल है, कहाँ से ताल्लुक है आपका?
3: मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, लाहौर से।
1: अच्छा माशाल्लाह, ग्रेट, जबरदस्त।
2: नहीं नहीं नहीं अदनान भाई, इससे पहले कि आप कुछ और बात छेड़े, मैंने आपको छेड़ना था एक बात, ये पर ये बताएं जुम्मे के दिन बिरयानी खाते हैं कि पुलाव?
1: क्यों इससे इसका
2: बता दी ना, बताती हूँ अदनान भाई को छेड़ रही हूँ। अदनान भाई बिरयानी खाते हैं कि पुलाव?
3: लेकिन लाहौर वाले तो जुम्मे के दिन बिरयानी बनेगी,
2: लाहौर वाले जुम्मे के दिन भी बिरयानी नाम की बनाते हैं और पुलाव खाते
1: पुलाव खाते हैं ये तो मुझे भी पता है।
3: नहीं पुलाव एक्चुअली अल्टरनेट डेज में बनता है।
2: नहीं नहीं आप समझे नहीं,
1: ये
2: मजाक था,
1: ये सिर्फ लाहौर का नहीं पूरे पंजाब का है।
2: हम लोग क्या कहते हैं, जो पंजाब साइड पे जो बिरयानी बनती है ना वो नाम की बिरयानी होती है, वो असल में पुलाव होता है, वो इतना हमारे लिए वो इतना फीका होता है।
3: नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, आपने फिर
1: बिरयानी हो जाएगा,
2: ये ट्रिगर हो गए।
1: अच्छा नहीं मैंने वैसे देखा है कि ना अब लाहौर में इस्लामाबाद में भी बहुत अच्छे अच्छे खाने मिलने लगे। लाहौर में तो खैर अच्छे होते थे,
3: लाहौर तो फेमस है फूड
1: खानों के लिए, बिल्कुल पता है बिल्कुल,
2: दही भल्लों के नाम पर खाली दही मुझे चिपका दी उन्होंने,
3: कहाँ चले गए
2: मुझे, अरे मैं तो उनकी मेन फूड स्ट्रीट में गई थी और मुझे कोई ये बोलकर लेकर मुझे लाहौरी लेकर हाँ मुझे लाहौरी लेकर गए वहां पर कि भाई आओ हम तुम्हें खिलाते हैं लाहौर की सबसे मशहूर तरीन। मैंने कहा या मैं नहीं आई हूँ मार्केट में या तुम लोग मुझे ना
1: मुझे
2: नहीं चल रहा,
1: मुझे अच्छा लगा था खाना, मुझे अच्छा लगा था पर्सनली, लेकिन
2: मुझे फिर गलत दोस्तों के हाथ चढ़ी थी, मुझे उस वक्त से ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे।
3: वो लाहौर वाले कराची वाले होंगे?
1: अरे लो ये तो सही, मतलब ये तो होगा ना?
2: नहीं नहीं ये नहीं होगा क्योंकि मेरा ददियाल पूरा लाहौरी
1: है,
3: जो लाहौर के है ना उनको पता है कि खाना कहाँ कैसा अच्छा कहाँ मिलता है, मतलब फूड स्ट्रीट में भी है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उधर भी डिफरेंट वैरायटीज हैं।

0: या बस मेरी मेरे नसीब में वही वो चना चाट और
1: है ना आगे बढ़ जा आगे बढ़ पर ये आज तक रो रही है इस बात को बैठ के माफ करने को तैयार नहीं हूं मैंने ये क्यों खा लिया
0: नहीं ये माफ ना होगा अच्छा भाई आज के टॉपिक पर आते हैं आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम लोग अपने साथ क्यों देखिए जैसे मैं माफ नहीं कर पा रही ना अपने आप को वो दही भले खाने पर तो वैसे हम अपने आप को क्यों नहीं माफ कर पाते चीजों के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं अपने साथ खाने की बात अलग
2: ये इंसानी फितरत है मतलब आप
1: सॉरी भाई
2: जी
1: जी जी आप कंटिन्यू कीजिए चुप रहो
2: तो वो मतलब जैसे आपने जज्बात की बात की वो भाई तो कहीं और चले गए थे जो जिन्होंने भी कॉल की
1: जी जी जी जी
0: लोहर निकल गया
2: बाकी लोगों का यही होता है
1: अच्छा मजे की बात है मतलब वो इस बात पे जज्बाती होकर आ गए थे कि जज्बाती क्यों ना हो भाई
2: नहीं जज्बात का क्या इंसान मतलब जो कहते हैं कि जो सच्चे दिल के इंसान होते हैं वो जज्बाती होते हैं
1: अच्छा
2: जिनको
0: अच्छा हम माविश तुम्हारा दिल सच्चा नहीं है
1: मैं वो तो जज्बाती हूं दिल की
0: बहुत झूठे लगे हो पत्थर रखा मैंने पत्थर अपने
1: ये की जगह पर मतलब मुझे हंसी आ रही है लोग आहा के ना मुझे मतलब मुझे सुनाने के लिए लोग आ रहे
2: जिनका दिल नरम होता है वो जज्बाती होते हैं
1: देखिए मैं ऐसी हूं ना
2: नेचर है इंसान की जी तो क्या है कि मतलब उनको छोटी छोटी चीज भी बुरी लगती है
1: सही सही सही अच्छा
0: मामला पता है क्या है मामला ये कि हम लोग ये मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं कि जरा ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अपने साथ जब हम लोग ये हरकतें करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं रिश्तेदारों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं ऑफिस में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो हम अपने आप को ये मौका क्यों नहीं देते कि हम अपने आप को कह सकें कि भाई अच्छा रिलैक्स कर जाओ अभी थोड़ा रुक जाओ हम करेंगे गलतियां भी होंगी चीज़ें भी सॉल्व करेंगे सक्सेस की तरफ भी चलेंगे सब कुछ होगा हम कभी कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपर पुश करते हैं चीज़ों के लिए जिससे हम एग्जॉस्ट जाते हैं बर्नआउट मोड पे चले जाते हैं
2: मैम जैसे आपने अभी बात की बच्चों की एजुकेशन के बारे में करी थी कि बच्चे बोलते हैं कि मेरा इतना नहीं आया इतना परसेंटेज नहीं आया परसेंटेज नहीं आया ठीक है
1: सही
2: तो उसके पीछे भी मैं कहीं ना कहीं बोलता हूँ कि पेरेंट्स की गलती है वो प्रेशराइज करते हैं बच्चों को मतलब आप बच्चों को पढ़ने दें वो अच्छे बच्चे सब मतलब स्कूल जाते हैं तो वो इसलिए जाते हैं कि पढ़ें और अच्छा अच्छे मार्क्स लाएं
1: सही
2: लेकिन जो कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे और बिगड़ जाते हैं
1: सही सही सही
2: ठीक है मेरे बच्चे जाते हैं स्कूल में तो मैं उनको कभी कुछ नहीं बोला लेकिन वो अंदला और हमेशा A+ और अच्छे अच्छे मार्क्स से पास होते हैं क्लासेस में
1: अरे
2: तो वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती है जहाँ पे बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि अगर इतने मार्क्स नहीं आए तो फिर ये नहीं होगा या उनको उनके ऊपर कुछ जैसे शर्तें रख देते हैं अगर मार्क्स नहीं लाए तो आपको ये नहीं मिलेगा अगर ये नहीं होगा तो फिर बच्चा मेंटली तौर पे वो प्रेशराइज हो जाता है
0: मेरे भाई अदनान भाई यकीन जाने हमारे यहाँ तो वो वाली मखलूक बैठी हुई है जिसको ना कोई प्रेशर मिला है ना कोई डेडलाइंस मिली है ना कोई ऐसी सर्कमस्टेंस मिली है माशाल्लाह A+ लाने वाले लेकिन अगर एक आधा नंबर भी ऊपर नीचे हो जाए ना तो इतना रोना धोना मचाते हैं इतना रोना धोना मचाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो ये भी एक मखलूक है जो उसके बावजूद ही जो है ना वो तंग आई हुई होती है कि नहीं मैंने डिसाइड किया था कि मेरे 90s में आएंगे तो मेरे 95 क्यों आए हैं मेरे 98 से ऊपर क्यों नहीं आए
2: 99 जी जी जी जी तो उसके लिए मतलब वही आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है बच्चों के साथ बैठना पड़ता है और
0: समझाना पड़ता है कि जिंदगी में आपको भी जरूरत है परमिशन है आपको
2: ये चीजें इन्हें इतनी जरूरी नहीं है मतलब आप देखें अभी नॉर्मली मैं आप यहाँ की बात करता हूँ जैसे अभी यहाँ पे कितने लोग हैं जो उनके पास डिग्री हो रहा है और काम कोई और कर रहे हैं आप समझ रही हैं
1: ठीक है
2: आप जी तो ये चीजें जो है ये बस एक लिमिट तक रखनी बच्चों
1: सही,
2: को उनको समझाना ये जो आपका फ्यूचर है वो आपने बनाना है बाद में ये जो नंबर्स और ये मार्क्स ये चीजें मैटर करती है मैं नहीं बोलता कि मैटर नहीं करती है लेकिन एक लिमिट तक
1: सही।
2: तो बच्चों पे इतना प्रेशराइज ना करें उनको और
0: अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जब हम किसी चीज में फेल आए चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो एक्सपेक्टेड कोई भी चीज हो फेलियर का जो मतलब आपकी लाइफ में क्या है कि लाइफ खत्म हो गई अपने आप को गिल्ट में रखना
2: फेलियर नहीं नहीं फेलियर सबसे अच्छी चीज है
1: सही।
2: आपको एक और मौका मिलता है आप अपने आपको एक और मौका देते हैं कि मैंने एक बार ही किया है गलती से सीख के नेक्स्ट टाइम उससे बेहतर करूं इंसान को हर इंसान को फेल होना जरूरी है
0: आपसे बात करके अच्छा लगा और मामला यही है कि हाँ इंसान को ऐसा होना चाहिए कि इंसान को ये दिमाग में रखना चाहिए कि भाई

0: गिल्ट फील नहीं करना ज्यादा
1: जी खत्म जी जी जी बिल्कुल जिंदगी खत्म नहीं होगी जिंदगी तो बहुत बड़ी अल्लाह ने जिंदगी दी है अच्छे से रहने के लिए खुश रहने के लिए खुश रहें आसपास के लोगों को खुश रखें
0: चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा अदनान भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज
1: आप लोग भी बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह
0: हाफिज तो भाई मामला ये चल रहा है कि आप सारा है कि आपको क्या लगता है खुद के ऊपर इतना प्रेशर डालना खुद को इतना एग्जॉस्ट करना खुद को ये ना कहना कंसोल ना करना कि इट्स ओके इज इट ओके टू डू दिस मुझे तो नहीं लगता हाँ ये और बात है कि मैं ऐसी हरकतें जरूर करती हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है आप क्या कहते हैं आपका दिमाग क्या कहता है ये सही बात कि गलत है फिलहाल तो आप सोचें जरा और हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आकर इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे आपसे बात करेंगे सुनते हैं फिर 107 पर शो का नाम है यू मैटर विद सफ़ा एंड माविश

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है. क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू होते हैं? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन. नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ या टेक रेवोल्यूशन. अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान. बनिए कल का चेहरा आज ही. आज ही सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर. दिल से इसी.

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। आप सुन रहे हैं यू मैटर
1: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ
0: FM 107 पर दिल से देसी।
2: वालेकुम
3: अस्सलाम जी अब्दुल रूफ साहब, कैसे हाल चाल हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक
3: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक
2: जी। ये बात तो वही हो रही है कि आप अपने लिए अपना वक्त या अपने कुछ चीज को मान रखते हैं कि नहीं, लेकिन मेरे नजरिए में यही है कि जब आप किसी के काम आ रहे हैं या आप किसी के लिए अच्छाई का सबब बन रहे हैं, तो वो असल में आप

0: अपनी सेल्फ सुकून होने के लिए या अपनी जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने जो रखी है वो ही पूरी हो रही है, आपका अपना अपनी खूबी काम आ रही है किसी के, तो आप अपने ही काम आ रहे हैं ना, तो वो होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है आपने किसी को अपना वक्त दिया तो इसका मतलब आपका इनर से उसकी ख्वाहिश थी आपकी कि मैं इस बंदे के काम आऊं या आप किसी के लिए अच्छाई का सबब बन जाएं, तो असल में वो आपकी अच्छाई या आपके अंदरूनी ख्वाहिश ही पूरी हुई तो आप अपने काम आ गए ना, तो उससे दूसरे का भी भला हो गया।
1: सही,
0: तो दूसरा ये है कि कहते हैं ना कि खैर अल-उमूर औसतहा, यानी जो दरमियाना रवि जो है वही बेहतर पॉलिसी है। जो आप बात कर रहे हैं कि मार्क्स नहीं आए या एक्सट्रीम कंडीशन उसे कहते हैं, वो तो एक्सट्रीम पे है ना हम लोग, कि बच्चा अगर नहीं हासिल कर रहा तो वो जज्बाती हो जाता है, तो वो एक्सट्रीम पे नहीं होना चाहिए। तो उसको दरमियाना रवि में होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आए तो उसका भी कुछ रीजंस होंगे, उसे दोबारा अपने नजरसानी करना चाहिए उसके अपने बिहेवियर पे।
1: तो आजकल तो मसला ये ना कि बच्चे खुद ही जज्बाती
2: बहुत ज्यादा
0: जी हाँ, वो ये एनवायरनमेंट, ये चीजें, कंपटीशन, सोशल मीडिया और ये देख देख के ये चीजें इतनी ज्यादा उनका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है हर एक के मिजाज पे। तो बाकी ये है कि अपने पर्सनल वाकया नहीं शेयर करता, लेकिन एक छोटा सा वाकया ये कि मैं एक बार सफर कर रहा था शहर रावलपिंडी से, मैंने मरी जाना था, तो एक वैगन में मैं बैठा, तो वक्त था वैगन चले में, तो तकरीबन सारी सीट्स खाली थी।
1: अच्छा।
0: तो मैं एक सीट पे बैठ गया, तो जो बाबा जी वो अरेंज कर रहे थे मुझे कहते हैं कि जरा आप मेहरबानी करके दूसरी सीट पे चले जाए, मैं दूसरी सीट पे चला गया। तो तकरीबन उन्होंने मुझे चार मरबा यानी इसी तरह किया।
1: अच्छा।
0: तो पांचवी बार मैंने कहा कि भाई आप मेरे पे मेहरबानी करेंगे मुझे मेरी सीट से ना उठाएं। तो यानी एक एक हद होती है, उसके ऊपर फिर जाएंगे तेरे वो।
2: एग्जैक्टली
0: किसी हद तक तो आप उसे टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन है कि उसको एक्सट्रीम पे ना जाए ना सामने वाला ना आप। तो बाकी जो जो चीजें आपके जहन में अच्छाई आती है, बुरे कार लाते हैं किसी के लिए, फैमिली के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, तो आपका वो इनर ख्वाहिश होती है, आपकी अंदरूनी चीजें जो हैं वो बुरे कार हो के आपको उस पर एक्ट करने पर मजबूर करती हैं।
2: सही।
0: तो वो आपका वक्त लगा, आपकी ख्वाहिश पूरी हुई, वो दूसरे के काम आई।
2: सही,
0: तो बाकी एक्सट्रीमिज्म तो आजकल जो माहौल है या चीजें हैं उसकी वजह से ये हो गया। ऐसे भी हमें भी बच्चों को समझाना चाहिए कि इसमें आप अपने बैलेंस रखें, ना इतना ज्यादा ना इतना कम, तो दरमियाना रवि जो है वो बेहतर पॉलिसी है।
1: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।
2: अच्छा भावेश, बात मेरे दिमाग में आती है रऊफ भाई की बात सुनकर, कि हम लोग जो ना खास तौर पे ये जब माशाल्लाह से फैमिली बड़ी हो ना, या जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, उसके अंदर आपने अक्सर एक लफ्ज सुना होगा, ये तो जो है ना बस लेजी है। ये चीज बड़ी टॉक्सिक होती है। आप किसी को लेजी बोल दो, कोई रेस्ट मांग रहा है तो उसके दिमाग चलता है कि मैं थका हुआ हूं, मैं बीमार हूं, लेकिन सामने वाले मुझे लेजी कह रहे हैं। दूसरों को खुश करने के चक्कर में इंसान अपनी सेहत और ज्यादा नजरअंदाज करके, नहीं मुझे और काम करना चाहिए, नहीं मुझे इनको खुश रखना है, नहीं मुझे ऐसा करना, नहीं, एक्सपेक्टेशन का बोझ ना, वो एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस का बोझ अपने सर के ऊपर उठा लेता है। और एक और चीज मेरे दिमाग में आती है कि जहाँ हमें नो कहना होता है ना, वहाँ हम क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है, अच्छा सब कुछ आपने करना है, सब कुछ आपने संभालना है। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा भाई होता है, ठीक है, घर का जो बड़ा भाई है उसके सर के ऊपर बोल दिया था, भाई फलाने की शादी है तो सारा तुमने संभालना है, छोटे भाई की शादी है, छोटी बहन की, तो सारा तुमने संभालना है, वजह से कि वो ये कहे कि नहीं भाई मेरा भी अपना एक बजट है, नहीं मेरे भी बच्चे हैं, बेगम है, तो इसको ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर देते हैं, बजाय इसके कि वो ना कह सके, क्योंकि उसके पास इतना प्रेशर होता है तो वो नो नहीं कह पाता। उसका नो हाँ मुंह से जब निकलेगा तो हाँ के चक्कर में निकलेगा, तो वो अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर लेता है ना इंसान, और फिर खुद के लिए ये सोच रहा होता है मैंने अभी भी कम किया है। वो गिल्ट जो है ना उसका अपने ऊपर से जा ही ना था, अपने ऊपर इतना प्रेशर लिया हुआ होता है हर चीज का, इतना प्रेशर लिया हुआ होता है कि इंसान को समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं अंदर से खुद अपने आप को

0: आराम
1: ऐसे
0: अपने पर ज्यादा लेते हैं, वही वाली बात होती है ना कि अपने आप को, मैंने एक स्टडी में पढ़ा था कि जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हो ना तो आपका दिमाग अपने आप को खाना शुरू कर देता है लिटरली।
2: हाँ बिल्कुल ऐसे ही, तभी तो मना करते हैं कि इतना ज्यादा आपको डिप्रेशन स्ट्रेस और इन चीजों में जाना ही है, क्योंकि वही है कि वो आपको सिर्फ
0: अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है ना।
2: हाँ कि हमें लग रहा है कि यार हमें गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा सा मतलब बंदा थक जाता है ये वो, अंदर से वाकई आपकी बॉडी कम होने लगती है। तो ये है, अच्छा कॉल्स आ रही हैं बहुत सारी लेकिन मैं रिसीव नहीं कर रही क्योंकि अब हम बिल्कुल आखिर में
0: कंक्लूजन की तरफ चलेंगे,
2: कंक्लूजन की तरफ आ गए। तो खैर जी, तो कहने का मकसद यही है कि आज जो हमने बात की है कि जहाँ हम सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे होते हैं, सब लोगों का ख्याल रख रहे होते हैं, वहाँ हमारी ज़ात भी डेफिनेटली इतना हमसे तकाजा करती है और हक भी रखती है कि हम उसका भी ख्याल रखें, अपने आप को भी थोड़ा सुकून दें, नींद आए तो सो जाएं, कभी आपकी थकन हो रही हो तो थोड़ा खुद से आराम कर लें, कभी अपने आप के लिए कुछ अच्छा पका लें, अच्छा खा लें
0: और दूसरी पसंद की चीज़ बना लें। दूसरी बात तो मैंने एक सीधी सी बात है ना, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना जरूरी है ना तो जिंदगी में रिलैक्स करना भी जरूरी है।
2: बिल्कुल,
0: कभी कभी हम आगे बढ़ने के चक्कर में ना क्या होता है कि हम रुक कर सांस लेना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है हर चीज इमरजेंसी है भाई, हर चीज हमारे ब्रेन को सर ट्यून इन कर दिया जाता है या घर वालों की तरफ से या किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर से, अपना जैसे हम कहते हैं ना अपना एक बिल्ट इन दिमाग ऐसा हुआ होता है हमारा कि हमें लगता है हर चीज इज एन इमरजेंसी कॉल। नो, हर चीज इज नॉट एन इमरजेंसी कॉल, क्योंकि आपकी अपनी भी एक वर्थ है, आपके अपने भी कुछ डिसीजंस हैं, रेस्ट लोगे तभी आप काम कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि खुद से भी मोहब्बत से नरमी से पेश आना जरूरी है, वो जो हम लोग बात करते हैं दिल नरम होना चाहिए भाई, सिर्फ दूसरों के लिए नरम नहीं होना चाहिए, अपने लिए भी दिल नरम होना चाहिए। जैसे उस दिन हम कर रहे थे कि चोट लगती है तो खुद नहीं देखा जाता, मैंने मामी से कहा मामी मुझे चोट लग जाए ना तो मैं अपने आपको, मेरी उंगली भी कट गई, ये छोटी वाली उंगली नजर आ रही है ये कटी हुई है, ये कट के अलग हो गई थी तो मुझे उससे कोई इतना वो नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं किसी और जरा सा कट लगे हुए देख लूँ ना तो मेरी बेहोश होने हालत हो जाती है,
2: दोनों सूरतों में बेहोश हो जाती हूँ।
0: तो मेरा अपना होता है ना, मैं कहूँ यार उठा के उंगली जोड़ लो डॉक्टर के पास चलते हैं, चल जाएंगे,
2: इतनी हिम्मत नहीं, मैं तो इतना सा भी देख लूँ ना तो मैं गशी आने लगती
0: हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कर से बात जिन लोगों को बात नहीं समझ में आती, अब टाइम आ गया ये समझने का कि अपने आप को पुट योर सेल्फ टुगेदर, जो नरमी आप दूसरों के साथ इख्तियार करते हो अपने साथ भी करो। टाइम लगेगा समझने में लेकिन समझो इसे।
2: बिल्कुल बिल्कुल जी, चलिए जी इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे कल सुबह,
0: और इस नोट पे मुलाकात जो है ना आज की खत्म की जा रहे हैं कि जो इंसान अपना ख्याल नहीं रखता वो दूसरों का क्या ही ख्याल रखेगा। तो वही सुनते रहे फिर 107 पर
2: दिल से देसी, और हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।

0: जवाबात दिए और कई सवालात के जवाब साफ कह दिया, ला आलम, मैं नहीं जानता। लोगों को ताज्जुब हुआ कि इमाम अहमद और मैं नहीं जानता, अरे ये कैसी बात हुई। उन्होंने फरमाया कि जाकर कह देना इमाम अहमद नहीं जानते, तो कितनी बड़ी बात है ना। इंसान बात पढ़कर हर मौजू पर फैसला सुनाने लगता है, और वो अइम्मा जिनके सामने इल्म के समंदर थे वो कहते थे मुझे मालूम नहीं। तो यहाँ फतवा में जो खौफ है उनकी, ये कमी नहीं ये अजमत है। किसी आलिम के बारे में अगर कहा जाए कि वो फतवा देने में बहुत मुहतात है तो ये ऐब नहीं, ये उसकी तारीफ है। क्योंकि फतवा एक सिर्फ एक इंसानी राय नहीं, बल्कि अगर दीन के नाम पर दिया जा रहा हो तो गोया इंसान बता रहा है कि अल्लाह की शरीयत मसले में क्या कहती है। इसलिए इस बात का बुनियादी कायदा दिल में बिठा लीजिए कि कोई शख्स ही मोहतरम क्यों ना हो, उसका कौल कुरान और सुन्नत से बाला नहीं हो सकता। हर एक की इज्जत अपनी जगह पर है, लेकिन हलाल और हराम का आखिरी इख्तियार अल्लाह ताला के पास है। और एक मोमिन का तर्ज फिक्र यह होना चाहिए कि मैं अदब के साथ उलमा से सीखूंगा, उनके रहनुमाई लूंगा। मजीद मैं इस बात को सही से जानता हूँ कि उलमा जो है ना शरीयत को बयान करते हैं, वो खुद शरीयत बनाते नहीं। हाँ, अगर कोई इस तरह शरीयत बनाने वाले हों, माअदल्लाह, अगर इंसान अपनी तरफ से अल्लाह की हलाल करदा चीज़ को हराम बनाने लगे या अल्लाह की हराम करदा चीज़ को हलाल से समझने और समझाने लगे तो ये मामला बड़ा संगीन है। यानी अल्लाह के तशरीह इख्तियार में दखल देना मामूली बात हो सकती है। इसी से हदीस है, हलकल मुतनत्तियून, हद से बढ़ने वाले हलाक हो गए। यानी एहतियात अपनी जगह है, लेकिन हर चीज़ पर हराम हराम की मोहर लगा देना भी तकवा नहीं। दीनी मामलात में बेजा तशद्दुद और तकल्लुफ से बचने की तंबीह के तौर पर यह बात आई है, हलकल मुतनत्तियून। जहां हमें इल्म ना हो वहां अपने से शरीयत न बनाए। पूछिए, कुरान का उसूल है, फसअलु अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछ लो। और यही जिंदगी का एक बड़ा उसूल है, दुनिया के मसाइल में मुतअल्लिक माहिर से रुजू किया जाए और दीन के मसाइल में ऐसे मुतबर अहले इल्म से जो किताब और सुन्नत और फिक्र की बसीरत रखते हों। और सब जानते हैं सवाल करना एक कम इल्मी की अलामत नहीं, बल्कि इल्म तक पहुँचने का दरवाजा है। एक सवाल के जरिए इंसान किसी दूसरे शख्स के बरसों के तजुर्बे मुताले और तखस्सुस से फायदा उठा लेता है। इसलिए अगर कोई मसला आ जाए, समझ नहीं आए हलाल है या हराम, जायज़ है या ना जायज़, तो अपनी ख्वाहिश या सुनी सुनाई बात पर फैसला करें, अहले जिक्र से पूछिए। एक हदीसे कुदसी में आया है, नस का मफहूम यह है कि अल्लाह ताला ने बंदों को सीधी फितरत पर पैदा किया, फिर शयातीन उन्हें उनके दीन से फेरते हैं और उन पर वो चीज़ें हराम करने लगते हैं जिन्हें अल्लाह ने उनके लिए हलाल किया था। तो इंसान की ख्वाहिश, मुतरते रिवाज या जज्बात कभी इस हद तक गालिब आ सकते हैं कि वो अल्लाह के जायज़ करार दिए हुए किसी अमल को सिर्फ अपनी नापसंदीदगी की वजह से शरण नाजायज समझने लगे। बात यह है कि किसी चीज का हर शख्स के लिए मुनासिब या जरूरी होना एक अलग बहस है, लेकिन जिस चीज को शरीयत ने उसूलन मुबारक कहा हो उसे महज जाती नफरत के बिना पर अल्लाह ने हराम किया है कहना दूसरी बात है। कुरान का फैसला बहुत वाज़ेह है, वमा काना लिलमुमिनी वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु वरसूलुहु अम्रन अन यकूना लहुमुल खियारतु मिन अम्रिहिम। जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मामले का फैसला कर दे तो मोमिन मर्द औरत के लिए उस हुक्म के मुकाबले अपनी मर्जी को हाकिम बनाना दुरुस्त नहीं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हलाल को हलाल समझकर उसे इख्तियार करने और हराम को हराम समझकर उसे दूर रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। प्रोग्राम कुरान के मोती के आज के हल्के से देखने के मामले नदीम अंसारी और मुझे अब्दुल हाशिफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। अस्सलाम।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी,
1: नया जमाना और अनप्लग गाने, दिल खोल के होंगी आपके खत की बातें, छोटी सी कहानी हो या तरह के किस्से, ये शो फजील के साथ आपके हिस्से।
2: सुनिए अनप्लग इवनिंग विद आरजे फजील, संडे टू थर्सडे 6 PM टू 7 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए जी राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे, हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें पर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर लगते हैं, पता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक मुकर्रर है जिसके बाद उनका जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, का सुकून और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। समीन आज हम आपको नूह अलैहिस्सलाम की दुआ सुनाएंगे, जब वो अपनी कौम को तूफान से नजात दिलाकर किश्ती से उतरने वाले थे। इस मौके पर उन्होंने आजी से अपने रब से अर्ज किया,
2: رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين।
1: رب انزلني, ए मेरे रब, मुझे उतार, यानी मुझे रहने के लिए जगह अता फरमा, मुनजलम मुबारका, ऐसी जगह जो खैर और बरकत से भरी हो, जहां अमन सलामती और भलाई हो। وانت خير المنزلين, और तू सबसे बेहतरीन ठहराने वाला है, यानी तेरा अता किया हुआ ठिकाना ही सबसे महफूज और बाबरकत है। समीन, ये दुआ हमें सिखाती है कि जिंदगी के हर मरहले में, चाहे सफर हो, हिजरत हो या नई मंजिल की तलाश, हम उससे बरकत और सलामती तलब करें। जिंदगी की हर नई मंजिल पर हमें अल्लाह की पनाह और उसकी बरकत तलब करनी चाहिए। आइए हम सब दिल की गहराई से ये दुआ पढ़ें।

0: अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है।
1: अपने शरई मसाइल के हल, रोजमर्रा जिंदगी से मुताल्लिक रहनुमाई, अहले इल्म के मुदल्लल जवाबात और मुफीद इल्मी गुफ्तगू सुनने के लिए समात कीजिए नूरे इस्लाम। तरतीब व पेशकश फुरकान शाहिद कासमी, हर जुमा शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
2: क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में।
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
2: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM।
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स
4: की। आप सुन रहे हैं FM 107।
5: दिल से देसी।
6: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम की हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है।
7: उम्मीद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने एक बालिश्त भर भी जुल्म से ले ली तो 7 जमीनों का तौक गर्दन में डाला जाएगा। इसे रिवायत किया है बुखारी और मुस्लिम ने, मुत्तफ़क़ुन अलैह। सामईन किराम, इस हदीस के क्लस पर ज़रा तवज्जो दीजिए कि सिर्फ एक बालिश्त की बात कही गई, यानी मामला एक बड़े प्लॉट, एक खेत या बड़ी ज़मीन का ही नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल ही ऐसी दी जिससे मालूम होता है कि किसी के हक में मामूली सी ज्यादती भी मामूली नहीं। हमारी निगाह में शायद वो चंद इंच हो, लेकिन अगर वो किसी दूसरे का हक है तो ये हुकूक अल-इबाद हैं, तो इसे ज़रूर हमें साहिब हक की तरफ वापस लाने, यही हिम्मत की तरबियत है। मजीद ये कि ज़मीन पर कब्जे की बात संगीन क्यों है, क्योंकि ज़मीन एक ख़ास नौईयत है, माल की बहुत सी सूरतें आती जाती रहती हैं, लेकिन ज़मीन पर किया गया कब्ज़ा बाज़ औक़ात नस्लों तक चलता रहता है। एक शख्स किसी की ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा अपने हदूद में शामिल कर लेता है, फिर वही हद उसके बच्चों को मुंतकिल होती है, फिर अगली नस्ल उसे अपनी मिल्कियत समझने लगती है। यूं ज़ुल्म करने वाला शायद दुनिया से चला गया, लेकिन उसका ज़ुल्म बाकी रह गया। इसीलिए ज़मीन के मामलों में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हद बंदी हो, विरासती ज़मीन हो, मुश्तरका जायदाद हो, रास्ते का हक हो या पड़ोसी की ज़मीन, मोमिन का उसूल ये होना चाहिए, जो मेरा नहीं उस पर मेरा कोई हक नहीं। सामईन किराम, कितने ख़ानदान सिर्फ ज़मीन के चंद गज़ पर बरसों से एक दूसरे से नाराज़ है। कहीं दो भाइयों के दरमियान विरासती ज़मीन झगड़ा है, कहीं किसी ने बहन का हिस्सा दबा लिया, कहीं पड़ोसी ने दीवार बनाते हुए चंद इंच आगे बढ़ा दी, कहीं ताकतवर शख्स ने कमज़ोर की ज़मीन अपने कब्ज़े में ले ली, जिसने तो एकड़ जमा किए उसे भी कब्र के लिए चंद गज़ दरकार हैं, जिसने किसी के चंद इंच हैं उसे यहीं छोड़ कर जाना है। फ़र्क ये है कि ज़मीन यहीं रह जाएगी, उसका हिसाब साथ जाएगा। इसीलिए मैं दुनिया की मिल्कियत को आखिर की जवाबदेही में देखता है, वो सोचता है कि क्या ये वाकई मेरा हक है, क्या मैं ये चीज़ अल्लाह के सामने भी अपनी कह सकूँगा। तो समझ

0: ज़िम्मेदारी का एक वसी तसव्वुर देती है। अगर कोई नमाज का पाबंद हो लेकिन वरासत में दूसरों का हक खा जाए, पड़ोसी की ज़मीन दबाए, मामलात में जुल्म करे, तो उसे अपने किरदार पर दोबारा गौर करना होगा। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यह है कि बंदों के हुकूक मुकद्दस हैं, दूसरे की मिल्कियत का एहतराम करना भी तक्वा है। तो सामने के नाम आज की सुन्नत अमली पहलू यह है कि सबसे पहले अपनी मिल्कियत और दूसरों की मिल्कियत के दरमियान हद वाज़ेह रखिए। इस मामले में अंदाजे, ताकत या पुराने रवाज के बजाय सही पैमाइश और वाद को बुनियाद बनाइए। वरासत का मामला हो तो हर वारिस को उसका शरी हक दीजिए, खुसूसन ऐसे अफराद का हक न दबाइए जो कमज़ोर हैं या अपना हक मांगने की ताकत नहीं रखते। अगर कभी मालूम हो जाए कि हमारी दीवार तामीर या इस्तेमाल में दूसरे की ज़मीन शामिल हो गई है तो अना का मसला बनाने के बजाय हक वापस कीजिए, और अगर कोई पुराना मामला दिल में खटक रहा है तो उसे ज़िंदगी ही में साफ कर लीजिए, क्योंकि दुनिया में चंद कदम पीछे हट जाना आसान है, क़यामत में जवाबदेही का बोझ उठाना आसान नहीं। अल्लाह ताला हमें जुल्म से महफूज रखे, दूसरों के हुकूक की हिफाजत की तौफीक दे, और हमें ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ और ऐसी पाकीज़ा मिल्कियत अता फरमाए जिसके बारे में क़यामत के दिन हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूह परवर सुन्नत के आज के हलके से तकनीकी मुआविन शकीब अहमद और मुझे तलहा शर जमान को इजाज़त दीजिए। मासलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: पर अमल करें। सबसे पहले मोबाइल फोन्स या किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को गाड़ी अंदर छोड़कर ना जाएं, क्योंकि गाड़ी ज्यादा गर्मी हो जाने की वजह से इनमें आग लग सकती है। हमेशा अपनी गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें, जो इमरजेंसी के वक्त फौरन इस्तेमाल हो सके। किसी भी किस्म का एक्सप्लोसिव मटेरियल या जल्दी जलने वाली चीजें जैसे परफ्यूम्स, लाइटर्स या केमिकल्स गाड़ी में रखने से परहेज करें। और वहीं रेडिएटर में कूलेंट को बाकायदगी से चेक करते रहें, ताकि ओवरहीटिंग से बचा जा सके और इंजन महफूज रहे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी सेफ्टी आपकी पहली डिफेंस होती है। याद रखें, छोटी सी एहतियात बड़ी मुसीबतें बचा सकती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में ही एक शख्स हमारे साथ हुआ कैफे 107 पर।
0: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ।
2: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। Stories of Prophets, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने को रोशन करें।
3: सुनिए शो आरजे महेश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
4: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 presents update.
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे और वक्त हो गया है एक और टेक अपडेट का। ये बोलने बड़ा कूल लगता है टेक अपडेट। अच्छा शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट्स जो बड़ी काम की हैं और बहुत काम की हैं, लजीज भी हैं इस बारी तो, और खबर में क्या है वो भी बताना जरूरी है। सब कुछ बताऊंगा लेकिन सबसे पहले शुरू करूंगा उन वेबसाइट से जो मुझे मिली है और बहुत बहुत यूनिक एंड इन अ वे ये कूल भी है यार, काफी कूल है। शुरू करें? ओके, तो नंबर वन ऑन द लिस्ट मेरी वेबसाइट जो मुझे मिली है वो है tempmail.org। कैसे लिखना है? TEMP फिर हाइफन और डैश व्हाटएवर, टेम्प डैश फिर मेल MAIL उसके बाद .org। अब आपने लिखा होगा कई सारी वेबसाइट जो होती है आपको पता नहीं होता है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। आपको पूछती हैं अपना ईमेल दो, जरा ईमेल दो, साइन अप करो, साइन इन करो, और आपको लगता है अरे यार अपना मुझे ईमेल देना पड़ेगा। यहाँ पे जाके आप एक टेम्पररी ईमेल बना सकते हैं। आपको ऐसे बना के दे देगा भाई, वो तो नहीं होती नहीं वो क्या कहते हैं टेम्पररी जो काम होता है ठीक है इस चीज के लिए जरा देना एक, तो ये एक ऐसा ईमेल है जो आपके वैसे किसी काम का नहीं है लेकिन उस वेबसाइट के लिए काम आ सकता है। अगर कोई वेबसाइट पुश कर ही रही है इतना कि लाओ अपना ईमेल दो और आपको लगता है पता नहीं अपना ईमेल दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो टेम्प मेल पे जाके आप एक टेम्पररी ईमेल बना के उस वेबसाइट पे डाल सकते हैं और ईमेल भी रिसीव कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो ये आपको बहुत बहुत हेल्प कर सकता है आपके ईमेल्स में कुछ भी कोई भी हैक करने की कोशिश करे या कुछ वायरस भेजने की कोशिश करे तो इट इज इम्पॉसिबल टू डू इट नाउ। ओके, अब बढ़ते हैं अगली वेबसाइट की तरफ। अगली जो वेबसाइट है इसका नाम है myfridgefood.com। सही सुना आपने, माई फ्रिज, मेरा फ्रिज। तो मैं स्पेल आउट कर देता हूं पूरी वेबसाइट। सबसे पहले myfridgefood.com myfridgefood.com। इस वेब पे जाके जब आप देखेंगे पेज पर बहुत सारे खाने के आइटम्स उनके नाम लिखे होंगे, इनफैक्ट जो रॉ आइटम्स उनके नाम लिखे होंगे, आप उन पे टिक कर सकते हैं अपने फ्रिज में चेक करके। मतलब ये हुआ कि आपके फ्रिज में जो आइटम्स हैं उनको देख लिया आपने और साथ साथ टिक करें, हाँ मेरे पास आलू है, हाँ ये भी है, हाँ ये भी है, आप टिक करेंगे उसके बाद नीचे लिखेंगे या क्लिक करेंगे के रेसिपी, तो आपको जो आपके फ्रिज में पड़ा हुआ सामान है उसके बेसिस पर एक रेसिपी बना के ये दे देगा कि भाई आप ये बना सकते हैं अगर आपके फ्रिज में ये 5 आइटम है तो। इतनी बढ़िया चीज है ना, इतनी बढ़िया चीज है, इस बहाने आप ऐसी ऐसी चीजें बना लेंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। रेसिपी के साथ साथ पूरा का पूरा उसको कैसे कैसे बनाना है पूरा प्रोसेस भी आपको मिलता है, विच इज ब्यूटिफुल। मुझे इतनी कई लगी ना ये वेबसाइट myfridgefood.com, आप एक बार खुद जाके देखिए, आपको मजा ना आ जाए तो कहिएगा, डेफिनेटली वर्थ इट। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ जो इस वीक भर भर के आई है। देखिए एक खबर जो है थोड़ी सी अभी पुरानी हो गई होगी फिर बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता। सैमसंग लॉन्च करने जा रहा है S26 FE, जो उन्होंने बोला था कि भाई ये तो हम कंफर्म निकाल के ही रहेंगे मार्केट में, तो आ चुका है उसका रिव्यू। अगर आपके पास है तो हमें बता दीजिएगा एंड लेट अस नो। और भी मॉडल्स लॉन्च करने वाला है सैमसंग बहुत जल्दी ऐसा सुनने में आया है, तो जब वो आ रहे तो मैं आपको जरूर जरूर बता दूंगा। फिलहाल एक जो गैजेट है जो मार्केट में हड़कम मचा रहा है वो है सैमसंग का नहीं गूगल का, गूगल पिक्सल की वॉच 5 वो मार्केट में आई है और वो एक और प्रोटेक्टिव लेयर लगाती है, हेल्थ सेफ्टी फीचर्स उसमें भर भर के दिए हैं और

0: जेमिना इंटीग्रेशन कर दिया है और साथ में इम्प्रूव जीपीएटी दिया है। ये एक बहुत बड़ी जीत है। मैं स्मार्ट वॉचेस को शुरुआत में बहुत पसंद करता था, फिर बीच में कह रहा है जब मैंने कहा नहीं नहीं नहीं स्मार्ट वॉचेस नहीं, बट नाउ दैट दे आर डूइंग समथिंग द वॉच, एटलीस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट और भी हो रहा है, तो आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि गूगल ऐसा कर रहा है। गूगल डूइंग इट, ऑल द बेस्ट टू यू। बाकी खबरों के लिए और टेक अपडेट के लिए सुनते रहिए FM 107। अपना ख्याल रखिए एंड दिल से देसी।
1: ये सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉर्पोरेट की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.ua।
3: म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं, एक एहसास है। कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है,
4: नजर यूं झुकाना मेरे लिए है बस, मेरे लिए है।
3: तो कभी नए सपने दिखाता है, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ द रिक्वेस्ट शो। चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो, दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक, हम बनेंगे आपकी आवाज। डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास।

0: सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमित के साथ ओनली ऑन FM 7 दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.
3: स्कैम अलर्ट. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का और ये शो फ्रॉड अवेयरनेस जहां पर हर दिन आपको एक नए जमाने के नए फ्रॉड से मैं मिलवाता हूं. एक्चुअली ये फ्रॉड इतने ज्यादा आम हो गए कि किसी के साथ भी हो सकते हैं और कोई भी कर सकता है. इवन आजकल 12 15 और 18 से लेकर 22 25 और 45 से लेकर 50 साल तक के उम्र के बच्चे और बूढ़े सारे लोग इस तरह के स्कैम में शामिल हो चुके हैं क्योंकि लोगों के लिए ये है आसान पैसा. दोस्तों चालाकी का खेल ये इस फ्रॉड के बारे में हम बात करने वाले हैं. डायरेक्टरी लिस्टिंग स्कैम्स. ये स्कैम खास तौर पर स्मॉल बिजनेसेस को फंसाने के लिए बनाया गया है. इसमें होता ये है कि एक दिन आपके पास अचानक एक कॉल या ईमेल आएगा. स्कैमर्स बहुत ही पोलाइट आवाज में बेहतरीन आवाज में आपसे बात करते हैं कि सर हम आपके बिजनेस इंफॉर्मेशन को एक लोकल ऑनलाइन डायरेक्टरी में वेरीफाई करना चाहते हैं ताकि आप नए कस्टमर मिल सके. आप ऐसे में बिजनेसमैन हैं, आपको नए कस्टमर्स की जरूरत है. वो आपसे साफ साफ कहेंगे कि ये बेसिक लिस्टिंग बिल्कुल फ्री है और आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा. आपके एम्प्लॉयज बिना समझे हाँ बोल दे रहे हैं और कई बार अगर आप भी बिजनेस ओनर भी कॉल पर होता है तो वो बिना सोचे समझे हाँ बोल देगा कि यार फ्री का काम है, हमें कुछ करना नहीं है और डिटेल्स वाई करवा दिया जाता है. लेकिन असली खेल कुछ हफ्तों बाद शुरू होता है. आपके बिजनेसेस के नाम पर एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव इनवॉइस बिल आता है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ रियाल्स या डॉलर्स मांगे जाते हैं. जब आप उन्हें कॉल करते हैं तो स्कैमर्स क्लेम करते हैं कि आपने एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए साइन अप किया था. अगर आप मना करते हैं तो वो आपको डराने के लिए हेविली एडिटेड वॉइस रिकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्डिंग का कट पेस्ट करके बनाई गई एक ऑडियो होती है वो सुनाते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि आपके एम्प्लॉय ने पैसा देने के लिए हाँ बोला था. लोग कोर्ट कचहरी या लीगल का डर बहुत ज्यादा उनको सता देता है इसलिए वो किसी भी तरह के वाले में किसी तरह के स्कैम में पड़ना नहीं थे. ऐसे में इस तरह के अलग और अजीब स्कैम से कैसे बिजनेस ओनर बचें या फिर एम्प्लॉय बचें इसका सॉल्यूशन भी है. दोस्तों इस तरह के स्कैम बड़े यूनिक होते हैं. ऐसे में इस तरह के स्कैम से हम बच पाएं ये बहुत मुश्किल होता है लेकिन बचने का तरीका थोड़ा लेंथी जरूर है. सबसे पहले

0: किसी भी एम्प्लॉय को जब आप हायर करें तो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए और बेहतर होनी चाहिए। किसी भी एम्प्लॉय को यू नो बिजनेस से ना जाने देना ये एक ऑप्शन होता है, ये एक प्रिविलेज है किसी भी बिजनेस ओनर के लिए कि उसका एम्प्लॉय लंबे वक्त तक उसके साथ रहे। लेकिन आप अच्छी ट्रेनिंग करते हैं अपने एम्प्लॉयज की तो वो आपके साथ लंबे वक्त तक रहे और सीखता सकता है, इसके लिए उसकी ट्रेनिंग भी बड़ी जरूरी है। अपने सभी स्टाफ और एम्प्लॉयज को सख्त इंस्ट्रक्शन दें कि फोन पर कभी भी बिजनेस की सेंसिटिव डिटेल्स या अकाउंट इन्फो वेरीफाई ना करें। अगर कोई फ्री लिस्टिंग का कॉल आए तो सीधे बोल दें कि उन्हें ये ऑफिशियल प्रपोजल भेजा जाए। बगैर किसी ऑफिशियल प्रपोजल के काम बिजनेस ओनर को या एम्प्लॉयज को नहीं करना चाहिए। उसके अलावा इनवॉइस अप्रूवल सिस्टम पीओ सिस्टम भी जरूर रखना चाहिए। आमतौर पर बिजनेस लैंग्वेज है पीओ सिस्टम। अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक रूल सेट करें, कोई भी बिल तब तक पे नहीं होगा जब तक उसे एक असली परचेज ऑर्डर यानी कि पीओ और डिलीवरी रिसीट के साथ मैच ना किया गया हो। बिना ये किसी भी बिल को पास ना करें, ना एम्प्लॉयज और ना ही ऑब्वियसली बिजनेस ओनर। उसके अलावा अर्जेंसी से कभी ना डरे। अगर कोई ईमेल कहे कि वेबसाइट बंद हो जाएगी या इलेक्शन होगा तो डर में आकर तुरंत पेमेंट ना करें। पहले उस वेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनके रियल कस्टमर केयर पर कॉल करके कंफर्म करें, फिर रिकॉर्डिंग की साइट पर भी आते हैं। अगर कोई आपको फोन पर एडिटेड वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाकर डराए तो बिल्कुल ना डरे। उनसे कहें कि आप इसकी कंप्लेंट साइबर क्राइम सेल में करने जा रहे हैं। स्कैमर साइबर क्राइम का नाम सुनते ही भागते हैं। आम तौर पे आपको 99% जो स्कैमर्स हैं वो साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट से या साइबर क्राइम सेल से डर जाते हैं और वो भाग जाते हैं। उसके अलावा रिपोर्ट कैसे करें, रिपोर्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। साइबर सेल डिपार्टमेंट सबसे अहम होता है। किसी भी कंट्री का सेल डिपार्टमेंट इन सब मामलों में एक्टिव रहता है। अगर आप किसी शहर में हैं या अगर कतर में हैं तो आपका बिजनेस ऐसे किसी फ्रॉड का शिकार ना बने, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो भी जाए तो साइबर क्राइम विंग को रिपोर्ट करें या मैट्रेस 2 ऐप की फ्रॉड की रिपोर्ट आप दर्ज करा सकते हैं। ये कुछ आसान तरीके हैं जिससे आप नए जमाने के नए स्कैम से बच सकते हैं। तो फिर कैसे बचना है? एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, पीओ सिस्टम, इनवॉइस अप्रूवल सिस्टम, एजेंसी से बिल्कुल ना डरें, रिकॉर्डिंग की सच्चाई, उसके अलावा कतर में कैसे रिपोर्ट कर रहा हूं, उसके अलावा अगर आप किसी दूसरे कंट्री में भी हैं तो वहां पर भी साइबर सेल होते हैं, साइबर डिपार्टमेंट, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और शुरुआत के 1-2 घंटे बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपके फ्रॉड हो जाए तो। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड में बात करते हुए। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। अलर्ट, वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल की जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन। नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट, सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान, बनिए कल का चेहरा आज ही। आज ही सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से M107 पर। दिल से देसी।
2: Maximum music, maximum fun.
3: On FM 107, Dilsi Desi.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम बात करें एक ऐसे नाम की जो फुटबॉल की दुनिया में बिजली की तरह चमका है, किलियन एम्बापे, मॉडर्न जनरेशन के स्टार। पेरिस के सबर्बन इलाके बॉन्डी से निकलने वाला एक ऐसा लड़का जिन्होंने अपनी स्पीड और डेडिकेशन के जरिए दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेजेस पर अपनी जगह बनाई। एम्बापे का बचपन बॉन्डी में गुजरा, जहां फुटबॉल जिंदगी का एक अहम हिस्सा था, लेकिन उनका ड्रीम सिर्फ फुटबॉल खेल नहीं था, वो फुटबॉल की दुनिया पर राज करना चाहते थे। और फिर सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल फुटबॉल में डेब्यू किया। मोनाको के लिए उनकी परफॉर्मेंसेस ने सबको मुतासिर कर दिया, खासतौर पर उनकी स्पीड, उनकी ड्रिबलिंग और गोल के सामने उनकी फिनिशिंग, दैट मेड किलियन एम्बापे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फॉरवर्ड स्ट्राइकर ड्यूरिंग हिज टाइम। धीरे धीरे पूरी दुनिया की नजरें इस नौजवान फ्रेंच खिलाड़ी पर जमा होने लगे। 2017 में पेरिस सेंट जर्मेन यानी PSG ने एम्बापे को अपनी टीम का हिस्सा बनाया और यहां से उनके करियर ने एक नई रफ्तार पकड़ी। PSG के साथ उन्होंने गोल स्कोर किए, ट्रॉफीज जीते और फ्रेंच फुटबॉल के सबसे बड़े स्टार्स में अपनी जगह बनाई। लेकिन एम्बापे की सबसे बड़ी पहचान उनका इंटरनेशनल प्लेयर बना, यहां 2018 का फीफा वर्ल्ड कप, सिर्फ 19 की उम्र और दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट। एम्बापे फ्रांस के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, उन्होंने टूर्नामेंट में 4 गोल स्कोर किए और फाइनल में क्रोएशिया के खिलाफ भी गोल किया। फ्रांस ने फाइनल 2 के मुकाबले 4 गोल से जीता और एम्बापे बन गए

वर्ल्ड कप विनर, एक टीनेजर वर्ल्ड चैंपियन, लेकिन अगर 2018 ने दुनिया को एम्बापे का नाम बताया तो 2022 का कतर वर्ल्ड कप ने उन्हें फुटबॉल की हिस्ट्री में और भी गहरा लिख दिया। अर्जेंटीना के खिलाफ लोसेल स्टेडियम में उस फाइनल में एम्बापे ने हैट्रिक स्कोर की, 3 गोल्स वर्ल्ड कप फाइनल में, और टूर्नामेंट के तमाम मैचेस में उन्होंने 8 गोल स्कोर किए। इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद एम्बापे ने गोल्डन बूट जीता और वर्ल्ड कप टॉप स्कोरर बने। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने महसूस किया एम्बापे सिर्फ फ्यूचर का स्टार नहीं, वो प्रेजेंट का भी सुपरस्टार है। फिर आया 2024, एम्बापे ने रियल मद्रिद जॉइन किया, पीएसजी को कह दिया टाटा बाय बाय। दुनिया के सबसे मशहूर और कामयाब फुटबॉल क्लबों में से एक रियल मद्रिद, रियल मद्रिद की लेजेंडरी व्हाइट जर्सी में कदम रखना हर फुटबॉलर का एक ड्रीम होता है, पर अब किलियन एम्बापे भी उसी तारीख का हिस्सा है। फैंस उनका मुकाबला लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे लेजेंड से करते हैं, लेकिन एम्बापे ने अपनी पहचान खुद बनाई है, अपनी रफ्तार से, अपनी सोच से और अपनी फिनिशिंग से। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी स्पीड। जब वो ओपन स्पेस में बॉल लेकर दौड़ते हैं तो डिफेंडर्स के पास अक्सर सिर्फ एक ही सवाल होता है, उन्हें रोका जाए कैसे। लेकिन एम्बापे सिर्फ तेज नहीं, वो इंटेलिजेंट भी हैं। उनके मूवमेंट, उनकी टाइमिंग और गोल सामने, उनकी फिनिशिंग जिसको कहते हैं किलर फिनिशिंग, उन्हें मॉडर्न फुटबॉल के सबसे डेंजरस फॉरवर्ड्स में शामिल कर दिया। और इस साल का फीफा वर्ल्ड कप सबने देखा ही होगा, यहाँ एम्बापे ने अपनी कहानी में एक और शानदार चैप्टर ऐड कर दिया। फ्रांस के कप्तान के तौर पर उन्होंने टूर्नामेंट में 10 गोल स्कोर किए और गोल्डन बूट अपने नाम किया। यानी 2022 के बाद एम्बापे ने दोबारा वर्ल्ड कप का गोल्डन बूट जीता और 2026 टूर्नामेंट के बाद उनके वर्ल्ड कप गोल्स की तादाद 22 हो गई। इसके साथ एम्बापे ने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया और फीफा वर्ल्ड कप की तारीख के फुल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर बन गए। अच्छा, फ्रांस वर्ल्ड कप नहीं जीत सका, लेकिन एम्बापे ने इंडिविजुअल लेवल पर फुटबॉल हिस्ट्री में अपना नाम और भी मजबूत कर दिया। सोचिए कि 2018 में वर्ल्ड चैंपियन, 2022 में गोल्ड विनर और 2026 में दोबारा गोल्ड, और वर्ल्ड कप हिस्ट्री के सबसे ज्यादा गोल्स करने वाले खिलाड़ी। बॉन्डी शहर से शुरू होने वाला सफर मोनाको, फ्रांस और फिर रियल मद्रिद तक, ये सिर्फ एक फुटबॉलर की कहानी नहीं, ये एक ऐसे ख्वाब की कहानी है जो स्पीड, टैलेंट और डिटर्मिनेशन के साथ हकीकत में बदल गया। किलियन एम्बापे स्पीड का नाम, स्किल का नाम, रिकॉर्ड्स का नाम और मॉडर्न फुटबॉल के एक ऐसे सुपरस्टार का नाम जो अब सिर्फ फुटबॉल का फ्यूचर नहीं, फुटबॉल की तारीख का हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों, ये था स्पोर्ट्स हाइलाइट्स का आज का खास सेगमेंट। उम्मीद है आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए लेजेंड, एक नए चैंपियन और एक नई कहानी के साथ। मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। तब तक खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें। फी अल्लाह।

हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है ये दिन हमारे लिए खुशी मनाने बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर सवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है आइए जुमे की रूहानी खानदान और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें तलहा अशरफुल जमान के साथ जुड़िए

0: प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107
2: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: Assalamualaikum. आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट. मैं हूं आपकी आरजे महावश. इस पांच मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूब सकाफत, रिवायत और विरसे की. यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है. आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को तीन नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें. कतर की सकाफत में बेडियोन वरसा बहुत अहम मकाम रखता है. बेडियोन लोगों की जिंदगी रेगिस्तान, सफर, जानवरों और कुदरती माहौल से गहरा ताल्लुक रखती है. इस तर्ज जिंदगी ने लोगों को सब्र, हिम्मत, मेहमान नवाजी और मुश्किल हालात में

0: ने एक दूसरे का साथ देना सिखाया। रेगिस्तान की जिंदगी आसान नहीं होती। पानी की कमी, सख्त गर्मी और लंबी मुसाफतों के बावजूद लोग अपने हौसले को कायम रखते थे। सफर के सितारों और मौसम और रास्तों का इल्म जरूरी होता था। ये तजुर्बा स्लो तक मुंतकिल होता रहा और रेगिस्तान को समझने का हुनर पैदा हुआ। ऊंट बेडुइन जिंदगी का बहुत कीमती हिस्सा थे। सफर, सामान की मुंतकली और रोजमर्रा जरूरियात में मददगार होते थे। ऊंट को सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि रेगिस्तानी जिंदगी का साथ जाता था। उसकी देखभाल, तरबियत और सफर से मुतालिक तजुर्बे बाप दादा से बच्चों तक पहुंचाए जाते थे। बेडुइन जिंदगी में डेरा या खेमा भी अपना एक खास मकाम रखता था, कि सिर्फ आराम की जगह नहीं बल्कि खानदानी जिंदगी और मेहमान नवाजी का मरकज होता था। खेमे में लोग जमा होते थे, खाना तैयार करते, कहवा पेश करते और कहानियां सुनाते थे। मेहमान को इज्जत देना इस जिंदगी का अहम उसूल था। बेडुइन वर्से का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू उनकी कहानी गोई और शायरी है। सफर, मौसम, खानदान और रोजमर्रा तजुर्बों से मुतालिक कहानियां लोगों को जोड़ती थी। शायरी के जरिए जज्बात और नसीहत और यादें बयान की जाती थी। चंद अल्फाज में गहरी बात कह देना इस रिवायत की खूबसूरती है। शायरी कहानियों की महफिल में सुनने वाले तवज्जो से बैठते थे। बुजुर्ग अपने तजुर्बे शेयर करते और बच्चे उनसे सीखते थे। इस तरह जबानी वरसा महफूज रहता था। आज भी कहानियां और लोक रिवायत कतर की सकाफती कहानियों का प्यारा हिस्सा है। बेडुइन दस्तकारी भी बहुत दिलकश होती है। खास तौर पर साधु बुनाई का ताल्लुक रेगिस्तानी जिंदगी से है। रंगीन धागों और मुख्तलिफ नक्शों से कपड़े और जरूरी अशिया तैयार की जाती थी। इन नक्शों में जिंदगी, कुदरत, काबिले याद मौकों की झलक मिल सकती है। साधु सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि सब्र और मेहनत की अलामत है। इस काम में वक्त, तवज्जो और बारीक हुनरमंदी दरकार होती है। आज भी कतर में इस रिवायती हुनर को सकाफती नुमाइशों और तालीमी कहानियों के जरिए महफूज रखा जा रहा है। बेडुइन लिबास भी मौसम और जिंदगी की जरूरियात से मुतालिक था। सादा और आरामदेह कपड़े सफर और रेगिस्तानी माहौल के लिए मुनासिब होते थे। साथ ही लिबास में वक्कार और सलीका भी नजर आता था। खास मौकों पर ज्यादा खूबसूरत और बेहतर तरतीब वाला लिबास पहना जाता था। पाकिस्तान में मेहमान आए तो उनकी खातिरदारी की जाती थी। पानी, खाना और कहवा पेश करना बहुत अहम समझा जाता था। सफर करने वाले शख्स को सुकून देना, उसकी मदद करना अच्छे अखलाक की निशानी था। इसी रवैये ने कतर की मेहमान नवाजी को मजबूत बुनियाद। कतर का बेडुइन वरसा आज के जदीद दौर में भी जिंदा है। डेजर्ट कैंप, सकाफती प्रोग्राम और वर्से के मुतालिक मरकज लोगों को पुरानी जिंदगी के बारे में जानने का मौका देते हैं। यहाँ नई नस्ल ऊंट, साधु, रिवायती खेमों और रेगिस्तानी अदाब के बारे में सीख सकती है। बेडुइन वर्से को समझना सिर्फ माजी को याद करना नहीं बल्कि उन उसूलों को पहचानना भी है जो आज भी अहमियत रखते हैं। सब्र, मेहमान नवाजी, हिम्मत, तवाज़ो और कुदरत का एहतराम हर दौर में कीमती है। बेडुइन वरसा कतर की पहचान का एक खूबसूरत सफा है। इसमें रेगिस्तान की वसत, सफर की कहानियां, ऊंट की रिवायत, खेमे की गर्माहट और मेहमान के लिए खुलूस शामिल हैं। आज का कल्चर मोमेंट हमें याद दिलाता है कि किसी भी कौम का वरसा सिर्फ पुरानी चीजों में नहीं होता बल्कि उन अखलाक और तजुर्बों में भी होता है जो लोग अपनी आने वाली नस्लों को देते हैं। कदर का बेडुइन वरसा सब्र, हिम्मत और अपनायत का असल पैगाम है जो आज भी जिंदगी को रोशनी देता है। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान की

ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है पुराने करीम। आइए अल्लाह अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

0: सितारे उतेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: स्पोर्ट्स राउंड अप विद आवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों स्पोर्ट्स राउंड अप में आप सभी का इस्तकबाल है और आज का स्पोर्ट्स राउंडअप कुछ खास इस वजह से है कि कई ऐसे इवेंट्स नए इवेंट्स शुरू होने जा रहे हैं ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग इवेंट्स जारी है और इसी स्पोर्ट्स राउंडअप शो में आपको मिलेगा हर खेल का हर पहलू सिर्फ आपके लिए सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉप फाइव हाइलाइट्स लेकिन फाइव हाइलाइट्स यानी हाइलाइट्स से पहले एक सवाल आप लोगों के लिए है जिससे आप लोग इस प्रोग्राम में जुड़ जाते हैं शो में जुड़ जाते हैं तो गौर से सुनिएगा ये सवाल उस क्रिकेटर का नाम आपको बताना है जिनके वालिद ने इंडिया के लिए खेला लेकिन उनके बेटे ने पाकिस्तान के लिए आपको बताना है इन क्रिकेटर का नाम कि फादर प्लेड फॉर इंडिया एंड सन प्लेड फॉर पाकिस्तान ये आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा तो आप थोड़ा सा पता कीजिए और मुझे बता सकते हैं तो बताइए ऑन 666-2107 पर व्हाट्सएप नंबर है एफएम 107 का और अभी चलिए बढ़ते हैं टॉप स्पोर्ट्स हाइलाइट्स ऑफ द वीक हो क्या रहा है कतर में क्या स्पोर्ट्स होने जा रहा है क्या चल रहा है आप लोगों को बता दूं कतर जो है 10th FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है जो दोहा में 12 सितंबर तक चलेगा और आज से शुरू हो रहा है और इस चैंपियनशिप में ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक 21 ममालिक के तकरीबन 116 एथलीट्स शिरकत कर रहे हैं तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप बता दूं कि ये जो इवेंट्स जितने भी ओलंपिक इवेंट्स अभी कतर में होने जा रहा है होगा या जारी है बेसिकली क्या है 2030 का एक प्रिपरेशन है 2030 एशियन गेम्स के लिए एक प्रिपेरेटरी वर्क कह लीजिए और कतर को सही से देखना है दोहा के जितने भी वेन्यूज है स्पोर्टिंग वेन्यूज है उसको सही तरह से परखना है कि आदर दे फंक्शनिंग वेल और इसीलिए इस तरह की कॉम्पिटिशन को ज़्यादा से ज़्यादा कतर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अच्छा अभी हाल ही में इतवार को सऊदी अरब ने कतर को 1-0 से हरा दिया और ये मैच फुटबॉल मैच जो है एएफसी अंडर 20 एशियन कप क्वालिफिकेशन का एक मैच था और इसमें से कतर की टीम जो है इस क्वालिफायर से बाहर होने के बाद अब इस टूर्नामेंट में नहीं खेल सकता है और सऊदी अरब अगले राउंड के लिए यानी नेक्स्ट ईयर

कि जो 2027 का जो ये टूर्नामेंट है उसमें एक क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है। तो टीम कतर एशियन गेम्स, जैसे कि मैंने 2030 के बारे में बताया कि 2030 में एशियन गेम्स कतर में दोहा में होने जा रहा है, तो टीम कतर अभी इस साल के एशियन गेम्स की तैयारी, ऑब्वियसली दैट एशियन गेम्स ऑलरेडी स्टार्टेड एंड कुछ कुछ गेम्स शुरू हो चुके हैं और 243 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल एक स्क्वाड का अनाउंस किया है, जो कि इस साल का जो एशियन गेम्स है वो जापान के आइची नागोवा में होने वाला है और ये 20th एशियन गेम्स है और ये गेम 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेंगे। सो कतर इज रेडी, कतर इज प्रिपेयरिंग फॉर मोर मेडल्स दिस टाइम इन द एशियन गेम्स। और एक साथ साथ ये भी चल रहा है कि US ओपन टेनिस साल का आखिरी जो ग्रैंड स्लैम टेनिस इवेंट है वो अभी न्यूयॉर्क में जारी है, जिसमें कार्लोस अल्काराज ने टॉप सीड है और डिफाई चैंपियन भी हैं, उन्होंने टॉमी पॉल को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली। तो दोस्तों ये थी स्पोर्ट्स हाइलाइट्स और आज का सवाल ये था कि उस क्रिकेटर का आपको नाम बताना है जिनके ने इंडिया के लिए खेला लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला, आपको ये बताना है। देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस, कुछ क्रिकेटर्स न्यूजीलैंड के लिए खेले, कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं यू नो के ही भाई या उनके ही वालिद जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले, कुछ इंग्लैंड के लिए खेले, कुछ इंडिया के लिए खेले। ये उस जमाने की बात है जब प्री इंडिपेंडेंस की बात है, जहां पर आई मीन मोस्ट क्रिकेटर्स प्लेड फॉर इंडिया और लेटर ऑन वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी रिप्रेजेंट किया। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इन क्रिकेटर का नाम बताइए जिन्होंने इंडिया के लिए खेला लेकिन उनके बेटे साहब ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। अगर आपके पास जवाब है तो 666-221-107 पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, एंड FM 107 का ये व्हाट्सअप नंबर है और जुड़े रहिए FM 107 के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ। यहाँ पर मैं लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक, टिल देन कीप लिसनिंग टू FM 107 दिल से देसी।

0: करके होंगी आपके खत की बातें छोटी सी कहानी हो या तरक्की के किस्से ये शो फजील के साथ आपके हिस्से
1: सुनिए अनप्लग इवनिंग विद आरजे फजील संडे टू थर्सडे 6 PM टू 7 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
2: स्पोर्ट्स राउंड अप

0: with our sports journalist, Mohammad Amin. Sirf FM 107 par. Dil se, Desi.
1: दोबारा इस्तकबाल है. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, FM 107 की जानिब स्पोर्ट्स राउंड अप शो में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन. और आज हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से. काफ़ी कुछ अपडेट्स हैं, काफ़ी कुछ मैचेस हो चुके हैं, हो रहे हैं, टूर्नामेंट्स होने, जैसे मैंने स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में बता चुका हूं मैं कि क्या क्या टूर्नामेंट्स होने जा रहा है एंड क्या क्या तैयारियाँ हैं फॉर द एशियन गेम्स 2026 एंड कतर की टीम इज रेडी टू पार्टिसिपेट इन द 20th एडिशन ऑफ द एशियन गेम जो कि जापान के आइचा नागोआ में होने जा रहा है. शुरू करते हैं क्रिकेट की कुछ बातें. क्रिकेट की कुछ ऐसी न्यूज़ जिसमें आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करेंगे जरूर. एंड जरूर आई थिंक क्रिकेट इज अ गेम फॉर द देसी पीपल एंड इसीलिए मैं क्रिकेट से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा फोकस रखता हूँ क्रिकेट की न्यूज़ पर. तो अभी जो मैच कल होने जा रहा है दोस्तों, आप लोगों को पता है आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है. पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड के दरमियान 3rd क्रिकेट टेस्ट का, आई मीन माफ़ कीजिएगा, 3 मैचों की टेस्ट सीरीज़ का ये 3rd क्रिकेट मैच है. और पाकिस्तान ऑलरेडी हैज़ लॉस्ट दिस सीरीज़ 2-0. कल ये मैच होने जा रहा है और ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फोकस्ड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान फोकस अगर है तो पाकिस्तान टीम के ऊपर है, इसीलिए कि पाकिस्तान टीम इज़ थोड़ा सा लग रहा है कि डिफेंसिव है और ऑलरेडी हैव लॉस्ट. और PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी काफ़ी हलचल है, इसलिए कि 7 खिलाड़ियों को उन्होंने बुला लिया है हु कुडंट परफॉर्म और कुड नॉट परफॉर्म वेल, जिनमें 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने मैच ही नहीं खेले थे और उनको भी बुला लिया गया. साथ ही साथ 2 कोचेज जो थे, सरफराज अहमद और उमर गुल जो बॉलिंग कोच, उनको भी वापस बुला लिया. उनके बदले में माइक हेसी को भेज दिया गया. माइक हेसी जबकि शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट के कोच हैं, उनको भी बॉलिंग कोच हैं, उनको भेज दिया गया इंग्लैंड में कि आप जाके टीम को संभालिए. देखिए दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट यू नो सिचुएशन वेयर पाकिस्तान क्रिकेट इज़ राइट नाउ. और पाकिस्तान क्रिकेट को थोड़ा सा उम्मीद यह है कि कल के इस मैच में टॉस जीतने के बाद कम से कम थोड़ा सा यू नो डिसीजन ले कि बैटिंग चाहिए या बोलिंग. और इस टेस्ट को हारे ना, इससे होगा क्या कि यू नो इट विल गोइंग टू बी अ वाइट वॉश एंड 3-0 का क्लीन स्वीप विल नॉट डू रियली गुड पाकिस्तान क्रिकेट के लिए. ये मैच होने जा रहा है बर्मिंगहम में, बर्मिंगहम के एजबास्टन ग्राउंड में. और बर्मिंगहम शहर में बता दूं कि यहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश के जितने भी लोग हैं वो मुकीम हैं वहाँ पर. और मुझे उम्मीद है कि इस मैच में पाकिस्तान के लिए सपोर्ट जो है, सपोर्ट बेस जो, इट्स अ वंडरफुल वेन्यू और यहाँ पे सपोर्टर्स की कमी यानी फैंस की कमी नहीं महसूस होगी. लेकिन परफॉर्मेंस भी आपको देने होंगे एंड परफॉर्मेंस के साथ साथ वो एक कन्विंसिंग रिप्लाई टू द इंग्लिश बॉलर्स जो बड़े ख़तरनाक साबित हुए इस सीरीज़ में एंड स्पेशली द फास्ट बॉलर्स जिनके अगेंस्ट में पाकिस्तानी बल्लेबाज बड़े लड़खड़ाए ओपनिंग से लेकर डाउन द लोअर ऑर्डर तक. और मैं बता दूं कप्तान है बाबर आजम को भी थोड़ा सा अपने फॉर्म को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा. और साथ साथ कई ऐसे यू नो जो यंग प्लेयर्स हैं उनको भी थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए. एंड आई ऑल होप यू नो वी ऑल होप यू नो कि पाकिस्तान टीम विल कम बैक स्ट्रॉन्ग इन दिस गेम. और इंग्लैंड के कप्तान है जो रूट और इंग्लैंड की टीम जो है काफ़ी मजबूत नजर आ रही है. आई मीन दैट इज़ हाउ इट शुड हैव बीन. बेन डकेट, ओली रॉबिन्सन, जोफ्रा आर्चर तो बड़े खतरनाक साबित हुए इस सीरीज में. डैन लॉरेंस, जॉश तंग, सैम कुक, हैरी ब्रूक, ओली पॉप, गस एटकिंसन, जेमी स्मिथ, जॉर्डन कॉक्स, एमिलो गे, सोनी बेकर, शोएब बशीर जो है इनके राइट हार्म ऑफ स्पिन बॉलर है. पाकिस्तान टीम के बारे में बात करूं, शान मसूद, मोहम्मद अब्बास, साजिद खान, मोहम्मद इमरान, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, सईम अयूब, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अली, मोहम्मद गाजी गोरी, अजान अवैस, अराफात मिन्हास, साद बेग, उबैद शाह, अब्दुल्ला फजल, रजाउल्ला. तो ये है पाकिस्तान की टीम और ये इंग्लैंड की टीम. और उम्मीद है कि यू नो यहाँ पे इंग्लैंड को 77% का वो एक विन प्रोबेबिलिटी दे रखे हैं इन लोगों ने. देखिए मैच है और मैच इसलिए कि क्रिकेट है और क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट्स कुछ भी हो सकता है. आजकल तो टेस्ट मैचेस जो है 2-3 दिनों में ख़त्म. तो इसीलिए इंग्लैंड फेवरेट है डेफिनेटली, 2-0 से अप है और अपनी होम ग्राउंड पर ये मैच खेलने जा रहे हैं. तो तब भी पाकिस्तान को सपोर्ट की ज़रूरत है. एंड बर्मिंगहम जैसे मैंने कहा, एजबास्टन, बर्मिंगहम, पाकिस्तान इंडियंस और पाकिस्तानीज इंडियंस और बांग्लादेशी से भरे हुए रहते हैं ये शहर. तो उम्मीद है इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत सपोर्ट मिलने वाला है. एनीवे अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं. ऑस्ट्रेलिया ने मारनास लाबुशांग

को 16 मेंबर स्क्वाड में बरकरार रखा। ये सीरीज जो है बेसिकली साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों सीरीज के लिए अनाउंस किया गया है। मारनास लवुशांगे बहुत ज्यादा फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन डिस्पाइट द पुअर बैटिंग फॉर्म टीम में उन्हें शामिल कर लिया गया है। अच्छा, वहीं पाकिस्तान 9 अक्टूबर से 21 नवंबर तक श्रीलंका और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों की मेजबानी करेगा और इस दौरान एक बायलैटरल सीरीज और एक ट्राई सीरीज खेली जाएंगी जिसका ऐलान भी कर दिया गया है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट इज कमिंग अप, लॉट ऑफ एक्टिविटीज आर कमिंग अप और इसलिए अच्छी बात है कि यू नो क्रिकेट होना भी जरूरी है। क्रिकेट इज द गेम ऑफ द देसी लोग, द साउथ एशियन कंट्रीज, एंड क्रिकेट पे ही अगर देखा जाए कि पूरे स्पोर्ट्स की दुनिया जो है ये साउथ एशियन कंट्रीज में क्रिकेट के ही इर्द गिर्द है। क्रिकेट है तो सब कुछ, जैसे कि क्रिकेट एशियन गेम्स में भी क्रिकेट होने जा रहा है, तो दैट इज अनदर बिट ऑफ अट्रैक्शन फॉर एशियन गेम्स। एशियन गेम्स में लोग सोचे कि ये क्रिकेट भी है, अच्छा है, T20 फॉर्मेट में क्रिकेट इज गोइंग टू बी प्लेड एंड ऑल द टीम्स आर देयर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दे आर ऑल देयर। सो एक तरफ ये है और एक तरफ वुमेन्स एशिया कप ये भी एक इंटरेस्टिंग इवेंट है। देखिए वुमेन्स क्रिकेट को भी काफी पॉपुलर या काफी एनकरेज किया जा रहा है वुमेन्स एशिया कप क्रिकेट, और आज जो मैच होने जा रहा है उसमें बांग्लादेश का सामना है UAE से। तो बांग्लादेश इज फेसिंग ई और इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होगा। मैं एक बार आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ, नो माफ कीजिएगा, पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच ऑलरेडी हो चुका है जिसमें इंडिया को जीत मिली थी। पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, नहीं सनीचर की बात कर रहा हूँ, सैटरडे की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान लॉस दैट मैच एंड इंडिया 1/7 विकेट्स। और फाइनल जो है वो 13 सितंबर को होने जा रहा है, आइंदा ये जो इतवार है इसमें 13 सितंबर, एंड हु इज गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल विल हैव टू वेट। इंडिया प्लेइंग वन ऑफ द सेमीफाइनल्स टुडे, अनाउंस अभी तक हुआ नहीं है, और ये फर्स्ट सेमीफाइनल जो है 10 सितंबर यानी जुमेरात को है, परसों है, और जुमे के रोज श्रीलंका और पाकिस्तान का सामना होगा, एंड इसमें जो भी टीम जीतेगी दे विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल एंड दैट इज ऑन संडे। और वहीं मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वुमेन्स एशिया कप क्रिकेट फाइनल में शिरकत करेंगे, दैट आल्सो हैज़ कम, एंड ये इम्पॉर्टेंट अपडेट्स फ्रॉम द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। And now let's move on to the regional and world sports. And regional and world sports में क्या हो रहा है कि मैं आपको बता दूं कि basketball federation यानी कतर की basketball federation ने men's general league championship का schedule announce कर दिया है, और ये जो event है 10 अक्टूबर से शुरू है और 9 क्लबों के दरमियान ये इवेंट्स हैं, और इसमें काफ़ी कुछ मैचेस होते हैं, टफ मैचेस भी होते हैं, एंड बास्केटबॉल इम्पॉर्टेंट है कतर के लिए बिकॉज अगले साल 2027 का वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने जा रहा है यहाँ पे। और कई वुमेन्स वॉली टीम ने अम्मान में तीसरी वेस्ट एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में 4th पोजीशन हासिल की, जबकि फाइनल मैच में डिफेंडिंग चैंपियंस लेबनन के हाथों उन्हें शिकस्त मिली, लेकिन इट्स ओके एंड उसके बाद अब देखते हैं 2026 वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। जैसे मैंने पहले बताया था वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप कतर में वापसी है एंड वापसी कर रही है, एंड दैट इज वेरी ग्रेट फॉर द शूटर्स ऑफ कतर, एंड कतर शूटिंग इज गुड एक्चुअली। मुझे तो लगता है कि लगता नहीं है, मैंने देखा भी है कि वुमेन शूटर्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, एंड उनके साथ साथ नासिर साले लातिया भी शूटर हैं, आपको पता है कि ही इज़ अ रैली ड्राइवर, लेकिन इसके साथ साथ वो शूटिंग भी करते हैं, उनको भी हम देखेंगे इस शूटिंग चैंपियनशिप में व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू। फुटबॉल की थोड़ा बात कर लूँ, फुटबॉल में पेरिस सेंट जर्मन इस हफ्ते यानी माफ कीजिएगा कल चैंपियंस लीग के जो टाइटल है वो डिफेंडिंग चैंपियन है उसका वो डिफेंड करेंगे, यानी फर्स्ट मैच वो खेलेंगे, और इसके साथ साथ उनके ऊपर काफ़ी कुछ प्रेशर भी होगा क्योंकि मुसलसल 2 एडिशन जीतने के बाद Paris Saint-Germain has become a really tough team in a European circuit. देख लेते हैं कि और किन किन के मैचेस हैं और पता चले। अच्छा, कल जो पेरिस सेंट जर्मन का मैच है वो रात 10 बजे है और स्लोवान ब्रातिस्लावा, इजी मैच है, एंड कुछ खास मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही टफ मैच होने जा रहा है। सो बेस्ट ऑफ लक टू द PSG बिकॉज PSG कतर का ही क्लब है, एंड कतर यू नो इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज इन्वॉल्व विद पेरिस सेंट जर्मन जो कि फ्रांस फ्रेंच लीग लीग वन में, फ्रेंच लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का जो लीग है टॉप टीयर, वो लीग वन में दे पार्टिसिपेट। और मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, और अंडर 17 वर्ल्ड कप भी कतर में है, एंड इट्स अ रेगुलर सिनेरियो जहाँ पे कतर इज होस्टिंग मेजर टूर्नामेंट्स, उसमें अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप भी जारी है, एंड ये टूर्नामेंट जो है ये अगले 4 साल, दिस इज द सेकेंड टाइम, अगले 3 साल मान के चलिए, अगले 3 साल तक

कतर इज गोइंग टू होस्ट दिस टूर्नामेंट। तो हर नवंबर को याद रखिएगा कि कतर में अंडर 17 वर्ल्ड कप होने जा रहा है इंशाल्लाह। और ये टूर्नामेंट है 19 नवंबर से 13 दिसंबर तक दोहा में खेला जाएगा और इसमें 48 नेशनल टीम्स विल पार्टिसिपेट। 22 नवंबर कतर इज गोइंग ओपन द कैंपेन इन अ ग्रुप ए मैच अगेंस्ट इजिप्ट। गल्फ कप क्लब चैंपियनशिप लीग 2026 और 2027 के जो तीसरे एडिशन है इसकी जो ड्रॉ सेरेमनी है दोस्तों ये 9 सितंबर यानी कल को होगी और टूर्नामेंट जो है 13 अक्टूबर से 30 अप्रैल 2027 तक शेड्यूल है। ये भी एक मेजर इवेंट है चैंपियंस लीग फुटबॉल और गल्फ क्लब गल्फ के जितने भी क्लब्स हैं वो पार्टिसिपेट उसमें शिरकत करेंगे एंड दैट इज आल्सो अ बिट इवेंट फ्रॉम द फुटबॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। पिछले हमें देखने को मिला है फुटबॉल ट्रांसफर में लोकल फुटबॉल ट्रांसफर में अलेसियो रोमाग्नोली जो कि इटली के डिफेंडर हैं और लाजियो से खेलते थे उन्होंने अलसत को ज्वाइन किया है और काफी नो इन अ लंबे कॉन्ट्रैक्ट पर एंड दैट इज 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पर ही विल प्ले फॉर अलसत क्लब कतर्स चैंपियन टीम चैंपियन क्लब। यूएस ओपन की बात करूं तो वीनस विलियम्स पहले राउंड से ही बाहर हो गई हैं और उन्हें उनकी ही कंट के सोफिया केनिन ने स्ट्रेट सेट में हरा दिया था। अच्छा इंडियन फुटबॉल के हवाले से एक न्यूज़ आप लोगों से शेयर करूं, जो भी फुटबॉल के थोड़ा बहुत इंडियन फुटबॉल इंटरेस्ट रखते हो आप लोग जो भी सुन रहे हो उनके लिए एक बता दूं कि पनामा की कौमी फुटबॉल टीम 26 सितंबर को इंडिया के खिलाफ एवे मैच खेलेगी। यानी पनामा की फुटबॉल टीम जो वर्ल्ड कप में आप लोगों ने देखा था दे विल ट्रैवल टू इंडिया और 25 सितंबर को इंडिया के खिलाफ ये मैच खेली जाएगी। बेंगलुरु में है ये मैच, बेंगलोर के कांतिराबाद स्टेडियम में जा रहा है। और एक अपडेट अभी अभी आया है और ये अपडेट ये है कि एलिना रबाकिना ने फॉर्मर यूएस चैंपियन नाओमी ओसाका को 6-1, 6-4 सेट से हराकर क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना लिया। और चीन की जेंग किनवेन ने एक और शानदार कमबैक करते हुए 6 मरतबा की मेजर चैंपियन पोलैंड की ईगा स्वांतेक को अपसेट कर दिया है। अच्छा अब आते हैं क्विज पर। ये क्विज पर काफी कुछ जवाब है काफी अच्छा ये है कि ये जो मैंने सवाल पूछा था कि उन क्रिकेटर का नाम बताइए जिनके वालिद ने इंडिया के लिए खेला था लेकिन उनके बेटे ने पाकिस्तान के लिए, ये बड़ा ही टफ क्वेश्चन था एंड या किसी ने भी इस तरह से नहीं दिया, किसी ने कहा ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं उन्होंने दिया भी है। नाम आपने बताया नहीं, मैं अरबाज खान आपने मोर ऑर लेस मुझे लगता है ये सही जवाब है लेकिन बता दूंगा जवाब क्या है आपको मैं बता देता हूँ। जी बिल्कुल सही है एंड के एम खान साहब आपने भी सही जवाब दिया है और किसी ने कहा हार्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा रिपॉन बांग्लादेश के रिपॉन साहब क्रिकेट खेलते हैं पिछले बार ने बताया था उन्होंने कहा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और कौन है के एम खान साहब आपने मैसेज दिया वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ जवाब दे देता हूँ आप लोगों को, बहुत ही डिफ़िकल्ट तो नहीं है लेकिन अगर आप लोग थोड़ा ढूंढते तो आप लोगों को पता चलता कि फादर सन कॉम्बिनेशन अली जैसे कि इंडिया के नवाब मंसूर अली खान पटौदी ने इंडिया के लिए खेला और उनके वालिद साहब जो थे इफ्तिखार अली खान पटौदी वो इंग्लैंड के लिए खेला था तो दैट वॉज प्री इंडिपेंडेंस की टाइम की बात है। और यहाँ पर जो सवाल है वो सवाल ये था कि किस क्रिकेटर ने इंडिया के लिए खेला और उनके बेटे ने पाकिस्तान के लिए खेला। तो ये एक क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने मुझे लगा कि आप लोग बता पाएंगे तो चलिए जवाब आप लोगों को दे देता हूँ। और जिन्होंने सही सही जवाब दिया है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन। और बता देता हूँ जहांगीर खान वॉज अ क्रिकेटर जिनके बेटे माजिद खान ने प्लेड फॉर पाकिस्तान। तो माजिद खान वन ऑफ द लीडिंग पाकिस्तानी क्रिकेटर, कैप्टन, डैशिंग ओपनर एंड क्या बात है उनके बैटिंग देखते हुए लोग मतलब उनको बैटिंग करते हुए मतलब इतने हैंडसम थे कि उनको उनके बैटिंग देखने के लिए अलग बात उनको देखने के लिए मैदान पे पहुंचते थे। और उनके वालिद साहब जहांगीर खान साहब वाज आल्सो अ प्रोमिनेंट क्रिकेटर फ्रॉम इंडिया एंड ये एक अनोखा एक हिस्ट्री है, एक रिकॉर्ड है जहाँ पर फादर ने इंडिया के लिए खेला और बेटे साहब ने पाकिस्तान के लिए। तो ये आप लोगों के पास सही सही जवाब पहुँच गया, आप लोग लिख लीजिए आप लोगों के लिए अच्छा है। और जिनके पास ये जवाब नहीं रहा है उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट एनेक्डोट है, यू कैन नोट इट डाउन फॉर एनी टाइप ऑफ क्विज कॉन्टेस्ट आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पर इसका जवाब आपके पास होगा।

और यहीं तक आज का स्पोर्ट्स राउंड अप का जो है सफर था, और अगली बार मिलेंगे अगले मंगल को। और लेकिन परसों आप लोगों से मुलाकात होगी इट्स अ गोल प्रोग्राम में, सेम टाइम 1 PM पर। और सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कीजिए, FM 107 के सोशल मीडिया हैंडल्स है उस पर भी फॉलो कीजिए, एंड यू गेट टू नो लॉट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर गोइंग अराउंड। और अगले हफ्ते फिर दोबारा मिलते हैं नए जज्बे और अपडेट्स के साथ सिर्फ FM 107 पर। फॉर मोर अपडेट्स ऑन स्पोर्ट्स सुनते और देखते रहिए डेली स्पोर्ट्स न्यूज ऑन FM 107। तब तक के लिए खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, एंड बी स्पोर्टी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड कीप लिसनिंग टू FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: इंतजार का वक्त खत्म हुआ और घड़ी ने बजा दिए 1:30।
0: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: राइट गाइस, सलाम आदाब, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग खैरियत से होंगे। सर्वर और नाजिया हम दोनों आ चुके हैं शो में जिसका नाम है एनर्जी आर। पूरे एक घंटे आपके साथ भरपूर तरीके से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। तो आप कहाँ पर हैं? फिलहाल जहाँ पर भी हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे नंबर्स के थ्रू। नंबर है 6622107 या फिर आप डायरेक्टली हमें कॉल कीजिए 4434377 पर।
2: बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप और पूरे एक घंटे आपके साथ हम जैसे कि नाजिया ने बताया रहने वाले ही हैं, जहां पर बहुत सारी बातें होंगी आपके किस्से कहानी जो है जिंदगी से रिलेटेड, आज के मौजू से रिलेटेड वो सुने जाएंगे, जाने जाएंगे। हम भी कुछ बताएंगे, आप भी कुछ बताइए, आपसे जानेंगे भी, आपसे सीखेंगे भी और मैसेजेस जैसे हमने कहा कि शामिल करेंगे, फोन कॉल्स भी शामिल करेंगे, साथ में साथ कुछ अपडेट्स वगैरह भी है वो भी देते रहेंगे और बेहतरीन आपके जो मन पसंद गाने हैं वो भी बीच में चलते ही रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि दिन बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा, अभी तक का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। और जैसे कि मैं कहता आता हूं कि सुबह से जो शक्लें नहीं देखी थी जैसे कि मैंने देख ली है और एक घंटे तक मैं देखता रहूंगा, तो आपके साथ भी ये मरहले जो हैं दिन के शुरू हो चुके होंगे। नजीर से पहले आप कुछ तारीफ के पुल बांधे, यहाँ पर पहले कॉलर जो है वो हमारे साथ कनेक्ट हो गए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
2: अहलन व सहलन, कैसे हैं और कौन है हमारे साथ?
4: मेरा नाम रियाज है।
2: रियाज भाई, अहलन व सहलन,
3: खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ।
4: कल मैंने बहुत ट्राई किया, मुझे चांस नहीं मिला। मैं आज छोटा देती ये सब आ जाएंगे, मैं
3: बहुत अच्छा किया आपने और हमें भी नहीं पता चलता। इफ इन केस अगर आप बहुत ज्यादा चाहते हैं कि इस टॉपिक पे कुछ मुझे बताना है, मुझे कुछ ना कुछ अपना जो है इनपुट देना है, तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं कि प्लीज कॉल मी, तो उस केस में हम आपको खुद से कॉल कर लेंगे। ठीक है, कभी ऐसा हो आपके पास।
2: जी रियाज भाई,
4: भाई क्या
2: है? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह।
4: मैं बहुत टाइम के बाद
2: कहाँ से आया?
3: छुट्टी से।
2: सऊदी से आए? ओके या ओहो, आप तो हमारे साथ सऊदी में भी कनेक्टेड। ओहो रियाज भाई, अब पहचाना
3: मैं तो ऐसे डर गई कि आप बिरयानी साथ में बैठ के खा के आए। सर्वर भाई
2: यार, ये हमारे साथ सऊदी से कनेक्टेड रहे हमेशा, तो आप क्या आप वापस आ गए हैं और ऐसा कुछ मामला है या क्या है?
4: अभी मामला ऐसा है कि मैं मल्टीनेशनल हो गया हूँ,
2: अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला रहे, आपके सफर में भी आसानी हो और आपके रिस्क में भी अल्लाह ताला बरकत बनाए रखे। तो रियाज भाई, आज का जो टॉपिक है, जो मौजू है,
3: आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, दुनिया में ना अक्सर जो है ये सवाल पूछा जाता है कि नॉलेज ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक्सपीरियंस। आपने सुना ही होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि नॉलेज सब कुछ है। नॉलेज मतलब अगर आपके पास इल्म नहीं है तो इंसान फैसले नहीं कर सकता और सही तरीके से

0: अपनी जिंदगी जो है वो स्पेंड नहीं कर सकता. वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि नॉलेज हो ना हो, डिग्री आपके पास हो ना हो, लेकिन अगर आपके पास लाइफ का अच्छा खासा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो वो आपकी लाइफ के लिए इनफ है. वो जिंदगी की जो सीख, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन हमें मिलती है, वो कहीं ना कहीं नॉलेज या इल्म से कहीं ज्यादा होती है. तो आपको क्या लगता है, नॉलेज ज्यादा जरूरी है या फिर आपके हिसाब से एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा मैटर करता है?
1: जिंदगी का जो एक्सपीरियंस होता है ना,
0: हाँ जी,
1: वो आपको ना किसी किताबों में मिलता है ना स्कूलों में. देखो इंसान बहुत कुछ सीखता है अपनी जिंदगी से, और असल एक्सपीरियंस या असल जो हम सीखते हैं वो जिंदगी से सीखते हैं. लेकिन नॉलेज अपनी जगह पे बहुत जरूरी है, इलम जरूरी है. इस्लाम में भी अगर आप देखें ना तो इलम की बहुत ज्यादा वो हो गई है, इलम हासिल करना फर्ज है. लेकिन अगर हम इस दुनियावी बार के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि आज के हिसाब से आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो बोलता है, बहुत जरूरी है.
0: मतलब कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस के बगैर नॉलेज जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है.
1: मुकम्मल नहीं है,
0: तो कहीं ना कहीं नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस का होना जरूरी है.
1: जैसे मैं अगर एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे हम ड्राइविंग यहाँ सीखते हैं,
0: हाँ हाँ,
1: तो हम उसके लिए जाते हैं, क्लासेस लेते हैं, वो नॉलेज हासिल करते हैं क्या क्या है, लॉज है, ये है, सिग्नल है, स्पीड है वगैरह वगैरह, लेकिन वो काफी नहीं है. तो स्कूल के बाद आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप निकले और आपने मतलब कोई सिग्नल कैमरा नहीं मारा या कुछ, खुदा ना करे किसी के साथ एक्सीडेंट होता है, पहले बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ आपके एक्सपीरियंस आ जाता है ना, तो फिर आपको किसी वो नॉलेज खुद ब खुद आपका मतलब फिर बोलने लगता है. मेरा मतलब ये है, एक्सपीरियंस ये एक्सपीरियंस के ज्ञान की उतार हो गई है, आपकी नॉलेज जो है वो बोलने लगती है.
2: क्या बात है भाई, पहले से आराम होता चले जाता है. रियाज भाई को पहले से आराम है और बड़ी अच्छी बात शेयर करी. तो कब तक हैं दोहा में आप इंशाल्लाह ताला?
1: इंशाल्लाह एक महीना तो रहूंगा.
2: चलिए साहब, तो इंशाल्लाह अब आपसे रब्ता भी कायम रहेगा इंशाल्लाह. और अपना ख्याल रखिए, बड़ी अच्छी बात करी आपने रियाज भाई, और बड़ा अच्छा लगा कि आपने कॉल करी.
1: जी सरवर भाई, लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ. आज सुबह में कबीर भाई का शो सुन रहा था, वो भी बहुत टाइम के बाद में सुना, काफी दिनों के बाद.
2: अच्छा, तो तबीयत खराब हो गई होगी और मजीद आपकी या सही रही?
1: नहीं, तबीयत तो सही थी, लेकिन वो बोला कि मतलब अगर सरवर भाई आए तो उसको एक मैसेज दीजिएगा.
2: क्या है बताइए, आज का
1: मैं रहा था कि भाई को बोलिए कि मजनू भाई क्या हाल है. अभी वो बोल रहे थे कि सरवर भाई ने अपना नाम चेंज किया है, मजनू भाई रखा है, तो क्या ये सच है?
2: नहीं, मैं समझ गया है वो किधर. एक्चुअली मैं आप लोग को बताऊं कि मेरे हाथ में खून लिखा है, एक नहीं मतलब खून से मेरा मतलब वो नहीं है,
0: मेरा मतलब है तारीख लिखी है. नहीं
2: हाँ, बस वो तारीख ढूंढ रहा हूँ मैं, वो तारीख जिस दिन मिल गई
0: आपको मिल रही है तारीख.
2: सनी देओल चला रहे थे ना कि भाई तारीख तारीख, इसी तरह मैं भी चल रहा हूँ, जिस दिन वो तारीख मिल गई उस दिन ये सारे सवाल जवाब बंद हो जाएंगे.
1: कबीर भाई आपने हर कहे आपका एक करेक्टर ढूंढता है लाजिम.
2: छोटी पुड़िया है मगर इतने धमाकेदार है कि मैं आपको बता नहीं सकता, इसीलिए मुझसे छुपते फिरते हैं और दूसरों से मिस पहुंचवाते हैं. इंशाल्लाह ताला जिस दिन उनसे मुलाकात हो गई
0: सर, मेरे भाई आप इनके गले ऐसे लगे गिर पड़िएगा.
2: हाँ नहीं बिल्कुल, इस बार यही आपने बिल्कुल एक वंस एंड ऑल कहते हैं ना जी. चलिए भाई, मेरी तरफ से भी आप उनको कल सुबह अगर आपकी मुलाकात होने से तो सलाम कहिएगा और कहिएगा कि आपके आपका इंतजार कर रहे हैं और आपसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं.
0: ये मत कहिएगा, कहिएगा कि वो तारीख मांग रहे हैं,
2: तारीख मांग रहे हैं,
0: डेट आप देना चाहेंगे
2: किस चीज की, तो वो आराम से बताइएगा मैसेज करके.
0: नहीं वो बताइएगा मत, सिर्फ आप ये पूछिएगा तारीख मांग,
2: तारीख हाँ कहना, तारीख पे तारीख मिलोड. चलिए तो ये कह दिएगा उनसे. ठीक है रियाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. वक्त कम होता है, बातें तो बहुत करने का दिल करता है नाजिया का भी, मेरा भी आप लोगों से, बट क्या करें मजबूरी है और दूसरे लोगों को भी कॉल पे लेना है. अब देखते हैं कौन है हमारे साथ. रियाज भाई अभी तक लाइन पे है, उम्मीद पे दुनिया कायम है. रियाज भाई ड्रॉप हो जाओ किसी तरह, चलो नहीं.
0: हेलो,

0: अच्छा एक ही अकरम है,
1: मैंने कहा दो क्यों नहीं लेकर आते कान की।
0: अकरम भाई, अकरम भाई
2: जी,
0: तो खैरियत से हैं? अच्छा, अब तो खुद ही एक टॉपिक हो गए, टीपी टीपी टॉप टॉप। अच्छा बताइए, तो क्या कहते हैं आप, कैसे, पहले तो ये बताइए कहाँ है अकरम भाई, टॉपिक तो चलता रहेगा, बहाना है।
2: घर को जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ।
0: अच्छा तो मेरी खैरियत तो पूछिए, मैं कैसा हूँ?
2: आप कैसे, माशाल्लाह आपकी आवाज, आप दोनों की आवाज सुन के माशाल्लाह पता लग जाता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा नहीं, मैं तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बस गुरूर ना करवाए, हसीन खूबसूरत हूँ ही अल्हम्दुलिल्लाह, बट ये हंसी की क्या जरूरत थी उसके अंदर?
1: नहीं, खैर इंसान
0: इसको कहते हैं अंग्रेजी में कौन सा कॉम्प्लेक्स,
1: नहीं इसे कहते हैं अल्लाह ताला गलत फहमियों में रखे।
0: अकरम भाई, अकरम भाई से बात कर लेते हैं इंतजार में। तो अकरम भाई कहाँ है इस वक्त एग्जैक्टली?
2: एग्जैक्टली मैं अभी वकरा में हूँ, अभी घर जा रहा था ऑफिस से निकल के।
0: आप भी वकरा में, क्या बात है, और आप भी वकरा से ऑफिस जाते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं टॉपिक पे, क्या कहना चाहते हैं आप, फरमाइए।
1: चाहते भी हैं कि नहीं, पहले पूछ लेते हैं। अच्छा चाहते हैं
0: जी अकरम भाई।
2: टॉपिक माशाल्लाह अच्छा है, मेरे को ऐसा दिखता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, आपके पास डिग्री है मास्टर्स हो, एक्सपीरियंस आपको ना बहुत वो करता है, लेकिन जो बुक्स भी बने हैं वो भी एक्सपीरियंस के बाद ही है ना बुक्स बनाना शुरू करते हैं कि भाई ये डाउन होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, जब टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं फिर उसके बारे में स्टडी होके फिर हासिल करके जब बुक्स बनते हैं।
1: नाइस,
2: तो एक्सपीरियंस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप है ना, अगर आप जॉब के लिए भी जाएंगे तो ना आप डिग्री कौन सी भी डिग्री लेके जाए पहले आपसे एक्सपीरियंस ही पूछेंगे, भाई आप पहले जॉब दे दो फिर एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस लेंगे। कहीं भी आप जॉब के लिए जाएंगे पहले एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो यानी कि अगर आप डिग्री भी है सब है तो फिर पहले तो एक्सपीरियंस ही सबसे इम्पोर्टेंट है।
0: चलिए ये भी अच्छी बात है यार, समझ में आई बात,
1: और बहुत ही वैलिड पॉइंट।
0: अच्छी बात,
1: बहुत ज्यादा वैलिड। और जैसे आपने कहा ना कि बुक्स में भी लोग जो लिखते हैं दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, तो ये बात भी
2: एक्सपीरियंस के बाद ही बनेंगे ना, ज्योमेट्री हो जाओ या स्टार्स हो जाओ, प्लैनेट्स हो जाओ, रोड्स वर्क कुछ भी, पहले तो
0: कुछ भी हो जाओ ना, क्या कह रहे हैं अकरम भाई तुम, कुछ भी हो जाओ।
1: नहीं सही कहा उन्होंने, जितनी भी चीजें हैं जो कुछ भी, अभी भी देखो ना प्रैक्टिकल नॉलेज को कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती है, थ्योरेटिकल है इक्वली इंपॉर्टेंट लेकिन प्रैक्टिकल।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैसेज में मैं आपसे कितनी बार आपको क्या क्या कह जाता हूँ, क्या क्या बातें होती हैं, आप पे कभी कोई असर नहीं होता, मगर सामने मिलने के बाद जो रसीद करी जाती है तो उन चीजें अलग है। चलिए भाई अकरम भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, आज बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया एंड फॉर नाउ दीप कलसी।

0: 107 ਦੇ ਨਾਲ
1: राइट गाइस एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम खुश आमदीद आप सुन रहे हैं शो एनर्जी आर सर्वर और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं और चलिए बात कर लेते हैं मौसम की तो आज का मौसम कैसा रहने वाला है वैसे आज भी सनी रहेगा थोड़ा गर्म ज़्यादा ही रहेगा और दिन के वक्त अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 40 से 45 डिग्री सेल्सियस रहेगा और आपको फील हो सकता है 48 से 49 तक क्योंकि आज भी ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा ही है वहीं अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करूँ तो मिनिमम रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस और अगर हवा की बात की जाए तो हवा जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन से 12 से 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है एयर क्वालिटी ठीक चल रही है एयर क्वालिटी जो है वो इस वक्त पुअर और थोड़ा सा अनहेल्दी कैटेगरी है जैसे रिपोर्ट ने दिखाया आपकी तरह
2: मतलब ये काफी
1: सेंसिटिव लोग जो हैं आपकी तरह बच्चे मेरी तरह बच्चे, बुजुर्ग आपकी तरह ये जो है जरा बोलने से परहेज करें
2: हाँ जरा ख्याल करें
1: थोड़ा ख्याल
2: अभी गर्मी है भाई अभी गर्मी है तो जरा गर्मी को मान लो कि अभी गर्मी है ऐसे मत सोचिए कि
1: और बस हम आपसे यही कहेंगे कि वैसे कोशिश कीजिए कि जो पीक आवर्स हैं लाइक 11 से लेके 3 बजे तक डायरेक्ट सनलाइट से आप बचें लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको कोई ऐसा काम है जो मैंडेटरी और आपको सनलाइट में एक्सपोज आप हो ही रहे हैं तो उस वक्त अपने वाटर इनटेक का खास ख्याल रखना है ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहें भले से आपको प्यास लग रही है कि नहीं लग रही है
2: जबरदस्ती पीजिए
1: नहीं थोड़ा थोड़ा सिप कीजिए
2: जी मंत्राने लगेगा फिर क्या करूंगा
1: आपकी तो लाइफ में हर चीज क्वांटिटी ज्यादा है अरे भैया थोड़ा थोड़ा सिप करने की बात हो रही है आइए भर भर के मतलब बोतलें पूरी पूरी ढकेल जाएंगे
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम
3: हाँ जी
2: गाबा भाई क्या बात है वेदर था आप आए क्या कहने भाई कैसे हैं
1: अच्छा मौसम ये हुआ
2: कैसे
3: भाई ये जो गाना चल रहा था ना यार उसमें तारीफ कहाँ से आ गई आपको किसने बोला तारीफ की उस गाने
2: तारीफ ही तो है वो आप समझ नहीं रहे मैं साफ साफ थोड़ी कह सकता
1: हूँ तारीफ होती तो थोड़ी मेरे लिए होती
2: जिसने सलावाते वो डाल रहा है वो सबकी हूबहू मतलब कोई फर्क ही नहीं कर सकता हरकत इनकी वही वाली थी
3: उसमें जो जिक्र हुआ ना वो तो कोके का जिक्र हो रहा था
2: हाँ हाँ तो यार कम से कम कहीं तो मिलाऊंगा नहीं मिलाऊ
3: सही आप सही है भाई यही तो आपका तजर्बा है सरवर भाई
1: आपने सही कहा जो स्कूल के अंदर इन्हें मिलानी बाहर इन्हें इसी तरह के कोके ओके हाथ लगे
2: और वही तजुर्बे बात भी कर रहे देखिए भाई तजुर्बा ज्यादा जरूरी या फिर काम तो क्या कहते हैं गाओ भाई आज के मौजूद
3: भाई सरवर भाई देखिए जो नॉलेज है वो तो बंदे को चलो किताबें छोड़ो यूट्यूब पे भी मिल सकती है यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्रीज पे मगर तजर्बा होना चाहिए सर्वर भाई जैसा सर्वर भाई
2: सुनो ना दिया
3: मसाले की नॉलेज बिरयानी की नॉलेज हर चीज की नॉलेज अवेलेबल है
1: मगर जो खाने का
3: तजर्बा है ना पूरी जिंदगी खाया पिया है पर नादिया जी किसी का हक नहीं खाया मैं
2: क्या कहने भाई क्या कहने भाई आज तो गावा भाई के नाम हो गया
1: हक तो नहीं खाया हक का खाया
2: है काहे का खाया यार प्लीज बी स्पेसिफिक ना दिया देखिए मैं कहीं और
1: हक हक
2: हाँ ये कही नॉलेज तो हर जगह मिल रही है मगर एक्सपीरियंस जो है वो अपने आप
1: मैटर करता है और शायद थोड़ा कहीं ना कहीं हल्का ज्यादा एज जो है वो एक्सपीरियंस
2: अच्छा अंदर भी गावा भाई इस चीज का फर्क महसूस किया है उम्र के चलते और जो भी एक्सपीरियंस हुआ लाइफ में कि पहले से मेरे अंदर ये चीजें इन चीजों ने तब्दीली लाई है ऐसा महसूस होता है
3: मेरे अंदर जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है ना वो रिश्तों को लेके हुआ है सरवर भाई
2: ओके ओके ओके बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात
3: दस या 15 साल छोड़ो मैं अब भी देखता हूँ ना जो भी मेरे रिश्तेदार हैं मेरे में भी सरवर भाई बहुत सारी खामियां हैं मगर वो बंदे सरवर भाई इतने सेंसिटिव है ना यार रिश्तों को लेके बस उस चीज में मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ इसे आप तजर्बा ही कह सकते हैं क्योंकि बंदे का रूठना

0: जी, बंदे का रूठना या बंदे का गुस्सा होना ये चीज सिर्फ साइकोलॉजी की वजह से ही होता है सर्वर भाई। देखिए किसी का ज्यादा बोलना, किसी का वेट थोड़ा ज्यादा होना कम होना, ये चीज तो
1: करती। वेट पर क्यों आ गया?
2: वेट तो खैर ज्यादा ही होना आप, हाँ हाँ, ज्यादा से और ज्यादा होना, फिर और ज्यादा होना।
1: नहीं, मगर उन्होंने बात अच्छे से समझाई अपनी कि ये तो डिपेंड करता है
2: वेट, वेट की बात है।
1: बहुत ही बढ़िया गावा भाई, और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं?
0: भाई आप पूछो कोई सवाल, फिर मैं उसके हिसाब से सर्वर भाई जवाब दूंगा।
1: आज के लिए बस इतना ही।
2: मैंने कहा फौरन खाना पूछेंगे आप।
0: मैंने सर्वर भाई बस एक चीज पूछनी थी।
1: जी जी जी।
0: आपने नाजिया जी ने अभी लंच का जिक्र किया ना।
1: अच्छा,
0: आपने कभी आटा चिकन खाया सर्वर भाई?
1: आटा चिकन
0: जी,
1: यार ऐसे तो नहीं याद आ रहा, इस नाम से तो नहीं याद आ रहा।
2: मैं बताती हूँ, उन्होंने खाया है जब ये चिकन को रोस्ट करते थे तो ऊपर वो पॉट आपने आटे से नहीं बंद किया हुआ होता?
1: नहीं नहीं, वो
2: वही आटा था।
1: ऐसे तो हम नारी में भी आटा डाल रहे हैं, उससे क्या मतलब है? नहीं, कुछ और ही चीज होगी, क्या चीज है गावा, बता दो जल्दी से।
2: अरे रोटी से खाते नहीं है आप आटा चिकन? अजीब हालत है आपके दिमाग की।
1: नहीं, तो कोई डिश लाए निकाल के, मुझे लग रहा है। नहीं
0: देखो नाजिया जी ने आपको बिल्कुल जर्नलिज्म के एक्सपीरियंस के हवाले से समझा दिया।
1: आप सुबह का शो सुन रहे थे क्या पिछले दिनों? कैसे पहले?
2: हाँ बिल्कुल
0: सर्वर भाई सुनता हूँ, बट जैसे ही टाइम मिलता है।
2: नहीं सुनते थे जब मैं
1: जब नाजिया कर रही थी, असर उस बात का लगा ना मुझे इस आटा चिकन में।
2: मिर्जा आपकी अकल तो मैंने देख ली यहाँ पर।
1: चलिए साहब,
0: वो एक डिफरेंट चीज है, फिर किसी और दिन बताऊंगा।
1: क्या बात है, क्या बात है गावा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच कॉल किया आपने, इंशाल्लाह कल फिर तशरीफ लाइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
0: ओके जी, टेक केयर,
1: बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। हाँ नादिया, तो अब मैसेजेस पे आ जाते हैं, वरना ऐसा ना हो कि हम
2: आप खाने पे निकल जाएं।
1: ओके, नॉलेज इज ओनली एट स्कूल एंड जो एक्सपीरियंस आपको खाम अच्छा काम करने के मिलते हैं। रजा भाई,
2: रजा जी आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ये कहूँगी नॉलेज भी बहुत जरूरी है। नॉलेज आपको जो है वो एक्सपीरियंस को सही तरह से अलाइन करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।
1: सर्वर
2: ये भी एक है।
1: एंड नाजिया, अस्सलाम वालेकुम, तौफीक अलवाकरा से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी, आई एम हियर एट योर रेडियो स्टेशन KM2QBS रेडियो, यूसुफ शमीम, यूसुफ भाई। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर भाई, इट इज सो नाइस टू बी हियर अगेन, लास्ट टाइम इट वाज ऑन इनविटेशन बाय आरजे कबीर। अरे यार, हमें पता होता कि आप पास हैं तो अब हम मुलाकात करती आपसे। और ये यूसुफ भाई फोटो भी उन्होंने शेयर किया, एहसन भाई, और अगर प्रोग्राम के बाद तक आप रहते हैं तो हम जरूर मुलाकात करेंगे आपसे। मजनू भाई और नाजिया मैम को सलाम। ये आज जो छोड़ गया है ना ये,
2: अरे तो आप क्यों नहीं पूछते कि लोगों से कि
1: मोहम्मद अशफाक, मुझे सब मालूम है, ये पेंटिंग हवाले से कल से बात चल रही है, उसने मुझे ही बनाया होगा पेंटर इसके अंदर, और गधा सॉरी मतलब घोड़ा जो है वो मैं उसको मतलब वो मैं पेंटिंग, आप लोग समझ रहे होंगे, हाँ समझ रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम मजनू सर, यहाँ पे भी वही है सर, जिंदगी में नॉलेज की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस अच्छा है, और एक्सपीरियंस इससे होता है कि तुम्हें जितने धोखे मिलते हैं तुम उतने एक्सपर्ट बनोगे, मतलब धोखा देने के लिए। ये देखिए नाजिया, आपने बिल्कुल सही फरमाया, मेरे सामने जीती जाती मिसाल मौजूद है, और ट्रैफिक बताते हैं
2: बैठी है यहाँ पर
1: 49 भार। हमारे साथ हैं अरबाज खान, शाह खान के छोटे भाई, देखिए हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मजनू सरोवर भाई एंड नाजिया मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सलमान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
2: अरे मुझे तो मजनू भाई से वही वाली पेंटिंग, अरे
1: वही है ये, वही है वो, यही करके गए हैं आज सुबह सुबह। मैं जरा सा देखूंगा आज, इंशाल्लाह उनसे मुलाकात करनी जरूरी होगी। नहीं मुझे लग रहा है मुलाकात अब जरूरी हो गई है, और आज इंशाल्लाह
2: क्यों नहीं ले रहे हैं?
1: नहीं डेट तो वो खुद देंगे, अब किस दिन बसना चाहते हैं प्लेनेट अर्थ से। मोहम्मद जुल्कर नैन साहब हमारे साथ मौजूद है, इज इट जुल्कर नैन साहब? सलाम सलाम कहते हैं दो बार, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ला, एहतराम हमारे साथ हैं, कहते हैं ये बता कौन है जरूर भाई, हाथी निकल गई, आई एम सॉरी,
2: कौन है भैया?
1: ये देखिए फोटो इतनी जल्दी वायरल होते हैं यार,
2: ये है कौन?
1: फिर देखिए
2: नहीं है कौन,
1: ये वही है जो मजनू भाई ने पेंटिंग बनाई थी जिसकी मैंने अभी जिक्र किया।
2: ये तो 80s वाला ट्रेंड,
1: 80s वाला ट्रेंड,
2: ये आज तो नहीं है,
1: आरजे कबीर हैं यार वो,
2: ये कबीर लग ही नहीं रहे,
1: हम आए भी नहीं और शो चालू हो गया। बताइए भैया नांदी, जाइए बाहर, दोबारा से आइएगा, मोहम्मद हुसैन है हमारे साथ, जाइए जाइए भाई, हुसैन भाई आप आए। यहाँ पर वॉइस नोट है जीशान शरीफ साहब का, शरीफ भाई इंशाल्लाह हम शराफत से कोशिश करते हैं कि उसको सुन लें। और ओके तो भाई अब एक ब्रेक ले लें या फिर कॉल, कॉल हमें ड्रॉप हो गई अभी अभी कॉल, तो ये कुछ मैसेजेस थे, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हमें, आप नंबर क्या

0: नंबर है हमारे 666-22-107। यहाँ पर हम आपके मैसेजेस ले रहे हैं और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं नंबर है 443-443-77। और हाँ, ब्रेक पे जाने से पहले आज का हमारा सवाल जो हम आपके लिए रिपीट करेंगे, आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्या है, नॉलेज है या फिर एक्सपीरियंस है? तो लेट अस नो, नंबर है 443-443-77।
1: लीजिए साहब, आए हाय।
0: अरे हर तीसरे दिन आप आए हाय चला लेते।
1: करण ओझला और नेहा कड़,
0: ये क्या अपने लिए खास आपने चुन रखा है ना? हाय हाय,
1: चुनवाया गया है नारकली को जैसे चुनवाया था ना।

0: उन ट्रेनिंग्स को आप अपग्रेडेशन जो करते हैं तो मकसद है कि वो उनका उनकी ये जो नई डिस्कवरीज या नई अपग्रेडेशन है वो उनकी एक नॉलेज है, वो आपकी नॉलेज अपग्रेडेशन है. फॉर एग्जांपल एक मेडिकल में जो नई फाइंडिंग्स आई हैं तो वो डॉक्टर अपग्रेड होते हैं. न्यू रिसर्च इसमें आप इस चीज को इस आई से इस व्यू में देख सकते हैं. तो मकसद है कि वो भी एक उनकी रिसर्च है, नॉलेज है, वो ट्रांसफॉर्म करते हैं ट्रेनिंग के थ्रू.
1: तो मतलब तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज का हिस्सा है और जब हम उसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपनी लाइफ में देन इट बिकम्स एक्सपीरियंस. राइट, बहुत ही अच्छा.
0: फिर उसको आप एक्सपीरियंस करते हैं जिस तरह आप सर्वर भाई को देखें, आपने रेडियो का प्रोग्राम की ट्रेनिंग ली होगी लेकिन सर्वर भाई को आपने एक्सपीरियंस किया, हाउ टू डील विद.
2: आपके प्लान की वैधता समाप्त हो चुकी है. लाइन जारी रखने के लिए कृपया दोबारा से कॉल करें.
0: और एक्सपीरियंस की एक और ये भी मिसाल है कि आपको नॉलेज है. वो कहते हैं ना, कॉल आई जी घर में आग लग गई, वो फायर एक्सटिंग्विशर हाँ वो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, तो भाई सही इस्तेमाल करो, वो मुझे पता नहीं है कैसे इस्तेमाल करूं.
1: ये बात बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी इन्होंने.
2: आपने तो ये एक्सपीरियंस करी है ना चीजें, पता ही नहीं कि इस्तेमाल कैसे करनी
1: है. हर वक्त मैंने आपके मुंह के आगे लगाया है.
2: नहीं नहीं, वो तो बात आपकी गलत है. खैर बिल्कुल ही कोई इसका वो नहीं है. चलिए साहब,
1: मुझे आग लगाते रहते हो जाना.
0: जबरदस्त था, रिलेवेंट था कल का. मैं मेरा दिल कर रहा था मैं कॉल करूं क्योंकि मैं उसको एक्सपीरियंस इसलिए कर रहा था कि कल मैंने बच्चों को सलवा रोड पे हम लोग गए.
2: अच्छा, फैमिली के साथ थे.
1: नहीं जुल्कन जी, आपने प्रॉमिस किया आप हर रोज कॉल करेंगे.
2: बिल्कुल,
0: माशाल्लाह कॉलर भी अच्छे हैं और आपको अपना वाकई इन मिड ऑफ द डे आपकी एनर्जी बूस्ट कर देता है.
2: कॉलर तो अच्छे हैं क्योंकि सरवर मिर्ज़ा भी तो अच्छे हैं. जुल्कन साहब
0: ये बात
2: सही है. ये है इनकी चकल ना देखू मैं तो. ये बात तो सही कही
0: आपने.
2: चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्कन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अच्छी अच्छी बातें समझाने के लिए. अपना ख्याल किया, थैंक यू सो मच. तो भाई कुछ मैसेजेस और उसके बाद एक गाना, क्या कहती है नाजिया?
1: हाँ
2: हाँ, जुल्कन भाई ने लाइन नहीं काटी, अभी और बात करना चाह रहे हैं क्या? हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु. और जनाब खैरियत
2: से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
3: हमरा बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह. भाई से पेंटिंग बन गई क्या?
2: पेंटिंग बन गई क्या करूं मैं,
1: अपनी मैं कह रही हूं, एक बना ही लीजिए.
2: पेंटिंग बना दिया इस आदमी ने. मतलब
1: मैं चाह रही हूं पेंटिंग बने ना, मैंने दीवार लग जाए.
2: ये जिन हने नहीं दीवार पे तो नहीं की लगेगी बल्कि और फूल भी चढ़ेंगे. अल्लाह ताला सेहत याब रखे मेरे भाई को.
1: नहीं मैं कह रही जो आपकी पेंटिंग बन जाए दीवार पे टंग जाए.
2: टंगेंगी
1: नहीं,
2: नहीं नहीं बेटी इतना कैसे टंगेगी, वो तो रखी रहेगी नीचे, वो नीचे रखी रहेगी. तो जैस भाई है हमारे साथ, अगर शुएब भाई कहूंगा मैं तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे. जैस भाई है
3: भाई
2: साहब, चमन प्राश की कुछ ज्यादा ही जरूरत है. अरे यार, एक तो नाम बता, मैंने कहा ना कि जैस भाई है. जैस भाई है
3: पेंटिंग के लिए भाई साहब.
2: हाँ सही बात है. चलिए साहब,
1: ये तो है.
2: तो क्या कहते हैं,
1: तो एक्सपीरियंस बोल रहा है.
2: हाँ ये एक्सपीरियंस है. क्या कहते हैं इस मौजू के हवाले से?
3: अब आपने बता दिया एक्सपीरियंस बोल रहा है तो बताओ.
2: नहीं तो जिंदगी में कभी इसको महसूस किया जैस?
3: नहीं भाई, जरूरत ही नहीं
1: पड़ी. जरूरत ही नहीं
3: पड़ी मतलब? जहाँ भी गया अल्हम्दुलिल्लाह काम मिल गया.
1: वाओ, यानी आपका उस टॉपिक या उस फील्ड से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस अच्छा है प्लस नॉलेज अच्छी है, दो का कॉम्बिनेशन.
3: हाँ सही है. जैसे भी जहाँ भी गए, फर्स्ट टाइम पहले कुवैत गए, चेक कर रहा उन्होंने लिया हमारा टेस्ट वेस्ट लिया, पता चल गया कि हाँ वो सही है. सबकी पहले फर्स्ट टाइम गए थे कुवैत, पहली बार विदेशी गाड़ियां देखी थी.
1: ओ अच्छा अच्छा. आपको आसानी से जॉब्स मिलती गई. नाइस. और फिर धीरे धीरे नॉलेज आपको बढ़ती गई कि किस तरह से मुझे यू नो गाड़ी को समझना है, उसके मैकेनिक्स को समझना है, उसकी और इंजन्स को समझना है. सो वो आपकी नॉलेज का हिस्सा.
2: मैकेनिक को समझना है? मैकेनिक तो खुद समझता है
1: भाई जान. मैकेनिक्स जो काम करते हैं

0: वाह क्या बात है,
1: वेटिंग की कोई
0: आप
1: तो बोले।
0: सुनना चाहती हैं तो मैं कभी भी सुना सकता हूँ, आप ऐसी क्यों बातें करती हैं।
1: मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हूँ।
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम,
0: कैसे हैं? कौन है?
2: शमशीर।
0: अरे यार क्या बात है यार,
1: क्यों आप क्यों डर गए?
0: नहीं नाम इतना जबरदस्त शमशीर।
1: हाँ अपनी गर्दन नजर
0: आ गई। हाँ मतलब डरना भी पड़ता भाई जब ऐसा नाम और ऐसी आवाज माशाल्लाह। शमशीर भाई कैसे हैं?
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, आई थिंक इनसे भी मुझे पहली बार बात हो रही है।
2: वो मॉर्निंग टाइम में कॉल किया था।
1: अच्छा मॉर्निंग में आप
2: वही पुराने कॉल हैं हम जो अभी जो बता रहे थे पिछले
0: वाले। वही वही पुरानी हैं, ये वही हैं
1: पुरानी बात। मशीन लेकर आई है सरमिजा साथ में।
0: यार इनकी आवाज बड़ी,
1: ये कह रहे हैं कि समिया तैया वगैरह के टाइम में कॉल करते थे।
2: अच्छा।
1: वो टाइम के कॉलर
0: हैं। हाँ ओके ओके एलन वर्स
1: है। अब मशीन क्यों नहीं कार्य करते सर?
2: 107 फैमिली को छोड़े नहीं है, सुन रहे हैं।
1: अच्छा
2: अच्छा
1: कर लेते हैं। चलिए हमें बड़ी खुशी है कि आपने जो है आज वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े, कॉल की, और इंशाल्लाह आगे भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं इंशाल्लाह जरूर। तो आज हमारा जो सवाल है वो है, अच्छा अच्छा प्लीज बताइए फिर। क्या बात कही इन्होंने, कहीं कहीं नॉलेज काम आती है और कहीं पर एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छी लाइन, बहुत सही का, बहुत सही, मतलब एक लाइन में जैसे कहते हैं ना कंक्लूजन।
2: जितना भी नॉलेज हम लोग को हो तो कभी हमको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़े, किसी हमारे से बुजुर्ग आदमी हो, कोई एक्सपीरियंस आदमी हो, उससे हम लोग मशवरा करेंगे तो हमारी नॉलेज को हटा के बाजू रख के जो मशवरा वो देते हैं उसमें चलेंगे तो कहीं कहीं काम अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट हो जाता है।
1: सही
2: कहा। उस टाइम पे नॉलेज भी काम आती है, उस टाइम पे उनका एक्सपीरियंस जो वो बताते हैं उससे ही काम चलता है। वो कहते हैं ना माँ कोई डिग्री नहीं पढ़ती, जो डिग्री पढ़ा हुआ लड़का हो उसको भी समझा देती है।
0: वाह वाह वाह वाह यार, ये आपने जो बात मैं कहना चाह रहा था वो बड़ी प्यार से कह,
1: बहुत अच्छी कही।
0: वाह बहुत खूब,
1: बहुत ही जबरदस्त आपकी कॉल।
0: इस तरीके से जो लव्ज
1: नहीं आप इतना अच्छा कह भी नहीं पाते सर।
0: वो वाकई हकीकत है, बड़े प्यार से बड़ी आराम से। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू जी, बहुत जबरदस्त आपकी।
0: क्या नाम बताया भाई ने? माजरत मैं शमशीर भाई, शमशीर भाई, ये नाम भूलने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शमशीर साहब, अपना ख्याल रखिए इंशाल्लाह आगे।
1: इन्होंने कहीं ना कहीं हमें और आपको सर्वर ये बताया कि नॉलेज जो है प्रॉब्लम्स को हमें समझने की सलाहियत देती है, लेकिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है वो कई बार एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। सो दैट इज अ फैंटास्टिक टेक अवे, बहुत ही अच्छा टेक अवे था। एंड वी आर कनेक्टेड टू वन कॉलर। अच्छा हेलो, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: हमने आपका मैसेज पढ़ा अभी, आपकी फोटो देखी, हैंडसम मैन यूसुफ भाई, और हम तो सोच रहे थे कि आपसे मुलाकात होगी।
1: बताते आप हमें, तो हम लोग भी आपसे मिलने आ जाते।
3: स्टेशन में दाखिल हुआ, मैंने सबसे पहले पूछा कि उर्दू रेडियो स्टेशन में अभी किसका प्रोग्राम चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं पता, पता कर लीजिए। फिर मैंने आरजे कबीर जी को फोन किया तो उन्होंने कहा सरवर भाई का शो चल रहा है यूसुफ भाई।
0: अरे आपने इतने गलत, मैंने मतलब सही आदमी को फोन कर लिया भाई आपने। आपको सही इन्फॉर्मेशन दे दी, बहुत जानी है वो तो, आपके लिहाज में दे दी उन्होंने सही इन्फॉर्मेशन, मरना पता नहीं। बहरहाल यूसुफ भाई उम्मीद है कि आपका प्रोग्राम अच्छा होगा। जी
3: जी मैं मिल नहीं पाया आप लोग से, बस आप लोग का।
0: अरे भाई हाँ, हमें भी ये मलाल रह गया, इंशाल्लाह आगे जरूर मुलाकात होगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रोग्राम अच्छा रहा होगा QBS में भी, और अच्छे ही प्रोग्राम जाते हैं उनकी जानिब से भी, और कोशिश हम सबकी यही रहती है। तो शमीम भाई आज के मौजू के हवाले से क्या कहना चाहते हैं?
3: जी असल में जिस सब्जेक्ट में आप लोग अभी आज बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट अभी इसी साल मेरे साथ, मेरे रिलेटिव के साथ भी हुआ है। वो यहाँ आया जॉब के लिए और वो इंडिया से एक्सपीरियंस गेन करके आया किसी फील्ड में, पर यहाँ आने के बाद वो एक्सपीरियंस को थोड़ा सा उसे दिक्कत आई जॉब मिलने में। फिर उसे अपने जो एरिया जिसमें वो एक्सपर्ट था उसके अलावा उसको ढूंढना पड़ा, पर फिर उन्होंने उसे जॉब ऑफर करना मतलब जरूरी नहीं समझा। फिर आखिरकार फाइनली वो ऐसे जॉब में ही उसको जॉब मतलब उसका हुआ जहाँ पे उसका एक्सपीरियंस ही उसके काम आया। तो एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों अपनी जगह है, बट एक्सपीरियंस यहाँ पे देखा जाए तो गर्ल्स में एक्सपीरियंस को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि आप उस फील्ड से हैं तो क्या आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है। एजुकेशन को तो वो एक साइड रखते हैं एज अ
0: क्वालिफिकेशन। मेरे ख्याल में ये दुनियावी निजाम है इस वक्त का, फिलहाल हर जगह

0: ऐसा ही है और बड़ी अच्छी बात कही और हकीकत है।
1: कोई भी यहाँ अप्लाई करता है, कहीं भी अप्लाई करता है, जैसे कि मैं काफी वॉलंटियरिंग करता हूँ तो मुझे काफी लोग मिलते हैं जो कि वेल एजुकेटेड हैं पर एक्सपीरियंस की कमी है, तो वो जानबूझ के वॉलंटियरिंग में आते हैं और फिर वहाँ पे अलग अलग एरियाज में वो काम करते हैं और हर चीज में अपने आप को डेवलप करते हैं कि हम ऐसा एक्सपीरियंस गेन कर ले यहाँ से और फिर हमें वही काम आए। तो वो अपना सीवी तैयार करते हैं, उसमें वो लिखते भी हैं कि मैंने स्टूडेंट्स को इवेंट में ये काम किया, मैंने टिकटिंग का काम किया तो वो टिकटिंग लाइन में जाता है, मैंने एक्रेडिटेशन का काम किया तो वो ऐसे से एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया, तो डिफरेंट डिफरेंट लाइन, फिर उसी हिसाब से उसको जॉब ऑफर मिलते हैं। और ऐसे काफी लोग हैं जिनको फायदा भी हुआ है और उन्होंने ऐसे ही वॉलंटियरिंग करके एक्सपीरियंस डेवलप करके जॉब पाए।
0: क्या बात है यार, बहुत ही प्यारी बात, बड़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी करी। असल में प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है तो इजाजत लेंगे और आपकी बात बड़ी अच्छी यूसुफ भाई, मुलाकात इंशाल्लाह फिर होगी।
2: और आपकी बात से मुझे याद आई ना वो एक लाइन, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, जो हमेशा हमने पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं वो अप्लाई तो होती है।
0: ऑलराइट देन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भाईजान, इंशाल्लाह ताला आगे भी इंतजार रहेगा आपका
2: जरूर,
1: आगे मौका लगेगा तो आप लोग जरूर मिलूंगा मैं,
0: जरूर जरूर, एनी टाइम इंशाल्लाह हमें मौका लगेगा तो हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच,
1: आपसे मिलना बहुत जरूरी है, नाले मैम से तो मिलना हो गया है मेरा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: आज तक मिला नहीं हूँ, आमने सामने हुआ है,
0: अरे जबरदस्त मिलेंगे, एकदम जबरदस्त मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है यूसुफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तो भाई जल्दी से कुछ मैसेजेस यहाँ पर चलने से पहले पहले, और मुझे नहीं लगता अब हम कॉल ले पाएंगे। मेरी नॉलेज मोर कन्फ्यूजन, नो नॉलेज नो कन्फ्यूजन, अच्छा मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन, नो नॉलेज नो कन्फ्यूजन, मेरे साथ कुछ ऐसा है। इमरान खान है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम मैडम जी एंड सर भाई, जिंदा बात कह रहे हैं यार, मुझे इनका नाम तो मैं ले ही दूंगा जाते जाते, के एम खान बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। सलाम, सबकी कॉल पिक हो रही है बट मेरी कॉल क्यों नहीं पिक हो रही,
2: सर्वर भाई नहीं उठाते हैं।
0: नाजिया, मिस्टर जैदी हमारे साथ हैं, जैदी साहब अब वक्त
2: नहीं रहा,
0: वेरी सॉरी के वक्त हुआ।
2: दोस्तों जाते जाते आप सबसे ये कहना है कि जितने भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़े सबने बहुत ही कमाल की बात कही, कहीं ना कहीं देयर इज अ स्लाइट एज, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस को थोड़े से ज्यादा नंबर दिए ही जाते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस हर हाल में हर तरीके से जरूरी है, लेकिन हाँ दोनों का साथ में अलाइन होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक कॉलर ने कहा ना, कहीं पर नॉलेज काम आती है और कहीं पर एक्सपीरियंस काम आता है। अगर नॉलेज हम ये कहें कि रोशनी की तरह है तो एक्सपीरियंस उस रोशनी में सफर करने की सलाहियत आपको देता है। तो बस अपने नॉलेज
0: और रोशनी जो है वो सरवर मिर्ज़ा है, अगर

0: के लिए लेते हैं आपसे इजाजत और बहुत अच्छे से
1: ले लीजिए।
0: अब बात नादिया ने पूरी करी और उम्मीद करते हैं कि ये छोटी छोटी बातें आपकी और हमारी जिंदगी पर अच्छा असर डालें इंशाल्लाह ताला, और आपसे हम कुछ सीखें, हमसे आप कुछ सीखें,
1: आप भी कुछ सीखें
0: इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल नहीं, मैं इससे ज्यादा पूछना ही नहीं चाहता। तो भाई मेरा बहुत सारा ख्याल रखिए इंशाल्लाह ताला, कल आपसे मुलाकात होगी इसी शो में जिसका नाम है एनर्जी आर, जहाँ पर आपकी बातचीत और आपकी बातें हमें खूब एंटरटेन करेंगी इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिए, सुनते और देखते रहिए
1: FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन इकराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने एक बालिश्त भर जमीन भी जुल्म से ले ली तो 7 जमीनों का तौक उसकी गर्दन में डाला जाएगा। इसे रिवायत किया है बुखारी और मुस्लिम ने। मुत्तफ़क़ुन अलैह। सामने किराम, इस हदीस के क्लस पर ज़रा तवज्जो दीजिए। वो ये कि सिर्फ एक बालिश्त की बात कही गई, यानी मामला एक बड़े प्लॉट, एक खेत या बड़ी ज़मीन का ही नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल ही ऐसी दी जिससे मालूम होता है कि किसी के हक में मामूली सी ज्यादती भी मामूली नहीं। हमारी निगाह में शायद वो चंद इंच हो, लेकिन अगर वो किसी दूसरे का हक है तो ये हुकूकुल इबाद हैं, तो इसे ज़रूर हमें साहिब हक की तरफ वापस लौटाने हैं। यही सुन्नत की तरबियत है। मज़ीद ये कि ज़मीन पर कब्ज़े की बात इतनी संगीन क्यों है, क्योंकि ज़मीन एक ख़ास नौईयत है। माल की बहुत सी सूरतें आती जाती रहती हैं, लेकिन ज़मीन पर किया गया कब्ज़ा बाज़ औक़ात नस्लों तक चलता रहे। एक शख्स किसी की ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा अपने हदूद में शामिल कर लेता है, फिर वही हद उसके बच्चों को मुंतकिल होती है, फिर अगली नस्ल उसे अपनी मिल्कियत समझने लगती है। यूं जुल्म करने वाला शायद दुनिया से चला गया, लेकिन उसका कायम किया हुआ जुल्म बाकी रह गया। इसीलिए ज़मीन के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हदबंदी हो, विरासती ज़मीन हो, मुश्तरक जायदाद हो, रास्ते का हक हो या पड़ोसी की ज़मीन, मोमिन का उसूल ये होना चाहिए, जो मेरा नहीं उस पर मेरा कोई हक नहीं। समय क्राम, कितने ख़ानदान सिर्फ ज़मीन के चंद गज़ पर बरसों से एक दूसरे से नाराज़ हैं। कहीं दो भाइयों के दरमियान विरासती ज़मीन का झगड़ा है, कहीं किसी ने बहन का हिस्सा दबा लिया, कहीं पड़ोसी ने दीवार बनाते हुए चंद इंच आगे बढ़ा दी, कहीं ताकतवर शख्स ने कमज़ोर की ज़मीन अपने कब्ज़े में ले ली। जिसने 100 एकड़ जमा किए उसे भी कब्र के लिए चंद गज़ दरकार हैं, जिसने किसी के चंद इंच छीने उसे भी सब कुछ यहीं छोड़ कर जाना है। फ़र्क ये है कि ज़मीन यहीं रह जाएगी, उसका हिसाब साथ जाएगा। इसीलिए मोमिन दुनिया की मिल्कियत को आखिरत की जवाबदेही के आईने में देखता है। वो सोचता है कि क्या ये वाकई मेरा हक है, क्या मैं ये चीज़ अल्लाह के सामने भी अपनी कह सकूँगा। तो सामने किराम, यहाँ सुन्नत हमें दीनदारी का एक वसी तसव्वुर देती है। अगर कोई नमाज का पाबंद हो लेकिन वरासत में दूसरों का हक खा जाए, पड़ोसी की ज़मीन दबा ले, मामलात में जुल्म करे, तो उसे अपने किरदार पर दोबारा गौर करना होगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यह है कि बंदों के हुकूक भी मुकद्दस हैं, दूसरे की मिल्कियत का एहतराम करना भी तकवा है। तो सामने किराम, आज की सुन्नत का अमली पहलू ये है कि सबसे पहले अपनी मिल्कियत और दूसरों की मिल्कियत के दरमियान हद वाज़ेह रखिए। ज़मीन के मामले में अंदाजे, ताकत या पुराने रिवाज के बजाय सही पैमाइश और वाज़ेह हक को बुनियाद बनाएं। विरासत का मामला हो तो हर वारिस को उसका शरई हक दीजिए, खुसूसन ऐसे अफराद का हक न दबाइए जो कमज़ोर हैं या अपना हक मांगने की ताकत नहीं रखते। अगर कभी मालूम हो जाए कि हमारी दीवार, तामीर या इस्तेमाल में दूसरे की ज़मीन शामिल हो गई है, तो अना का मसला बनाने के बजाय हक वापस कीजिए। और अगर कोई पुराना मामला दिल में खटक रहा है तो उसे ज़िंदगी ही में साफ कर लीजिए, क्योंकि दुनिया में चंद कदम पीछे हट जाना आसान है, क़यामत में जवाबदेही का बोझ उठाना आसान नहीं। अल्लाह ताला हमें जुल्म से महफूज रखे, दूसरों के हुकूक की हिफाजत की तौफीक दे और हमें ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ और ऐसी पाकीज़ा मिल्कियत अता फरमाए।

0: जिसके बारे में क़यामत के दिन हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूह परवर सुन्नत के आज के सलके से तकनीकी मुआविन शकीब अहमद और मुझे तलहा शरफुज़्ज़मान को इजाज़त दीजिए। मासलामा।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम की जो फुटबॉल की दुनिया में बिजली की तरह चमका है, किलियन एम्बापे, मॉडर्न जनरेशन के स्टार। पेरिस के सबर्बन इलाके बॉन्डी से निकलने वाला एक ऐसा लड़का जिन्होंने अपनी स्पीड, स्किल और डिटर्मिनेशन के जरिए दुनिया के सबसे

जिंदगी का एक अहम हिस्सा था, लेकिन उनका ड्रीम सिर्फ फुटबॉल खेलना नहीं था, वो फुटबॉल की दुनिया पर राज करना चाहते थे। और फिर सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल फुटबॉल में डेब्यू किया। मोनाको के लिए उनकी परफॉर्मेंसेस ने सबको मुतासिर कर दिया, खासतौर पर उनकी स्पीड, उनकी ड्रिबलिंग और गोल के सामने उनकी फिनिशिंग, दैट मेड किलियन एम्बापे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फॉरवर्ड्स स्ट्राइकर्स ड्यूरिंग हिज टाइम। धीरे धीरे पूरी दुनिया की नजरें इस नौजवान फ्रेंच खिलाड़ी पर जमा होने लगे। 2017 में पेरिस सेंट जर्मेन यानी पीएसजी ने एम्बापे को अपनी टीम का हिस्सा बनाया और यहां से उनका करियर ने एक नई रफ्तार पकड़ी। पीएसजी के साथ उन्होंने गोल स्कोर किए, ट्रॉफीज जीते और फ्रेंच फुटबॉल के सबसे बड़े स्टार्स में अपनी जगह बनाई। लेकिन एम्बापे की सबसे बड़ी पहचान उनका इंटरनेशनल करियर बना। यहां 2018 का फीफा वर्ल्ड कप, सिर्फ 19 साल की उम्र और दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट, एम्बापे ने फ्रांस के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। उन्होंने टूर्नामेंट में 4 गोल स्कोर किए और फाइनल में क्रोएशिया के खिलाफ भी गोल किया। फ्रांस ने फाइनल 2 के मुकाबले 4 गोल से जीता और एम्बापे बन गए वर्ल्ड कप विनर, एक टीनेजर वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन अगर 2018 ने दुनिया को एम्बापे का नाम बताया तो 2022 का कतर वर्ल्ड कप ने उन्हें फुटबॉल की हिस्ट्री में और भी गहरा लिख दिया। अर्जेंटीना के खिलाफ लोसेल स्टेडियम में उस फाइनल में एम्बापे ने हैट्रिक स्कोर की, 3 गोल्स वर्ल्ड कप फाइनल में, और टूर्नामेंट के तमाम मैचेस में उन्होंने 8 गोल स्कोर किए। इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद एम्बापे ने गोल्डन बूट जीता और वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर बने। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने महसूस किया एम्बापे सिर्फ फ्यूचर का स्टार नहीं, वो प्रेजेंट का भी सुपरस्टार है। और फिर आया 2024, एम्बापे ने रियल मद्रिद ज्वाइन किया, पीएसजी को कह दिया टाटा बाय बाय। दुनिया के सबसे मशहूर और कामयाब फुटबॉल क्लबों में से एक रियल मद्रिद, रियल मद्रिद की लेजेंडरी व्हाइट जर्सी में कदम रखना हर फुटबॉलर का एक ड्रीम होता है, पर अब किलियन एम्बापे भी उसी तारीख का हिस्सा हैं। फैंस उनका मुकाबला लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे लेजेंड से करते हैं, लेकिन एम्बापे ने अपनी पहचान खुद बनाई है, अपनी रफ्तार से, अपनी सोच से और अपनी फिनिशिंग से। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी स्पीड। जब वो ओपन स्पेस में बॉल लेकर दौड़ते हैं तो डिफेंडर्स के पास अक्सर सिर्फ एक ही सवाल होता है, उन्हें रोका जाए कैसे। लेकिन एम्बापे सिर्फ तेज नहीं, वो इंटेलिजेंट भी हैं। उनके मूवमेंट, उनकी टाइमिंग और गोल के सामने उनकी फिनिशिंग, जिसको कहते हैं किलर फिनिश, उन्हें मॉडर्न फुटबॉल के सबसे डेंजरस फॉरवर्ड्स में शामिल करती है। और इस साल का फीफा वर्ल्ड कप

इंडिविजुअल लेवल पर फुटबॉल हिस्ट्री में अपना नाम और भी मजबूत कर दिया। सोचिए कि 2018 में वर्ल्ड चैंपियन, 2022 में गोल्डन बूट विनर और 2026 में दोबारा गोल्डन बूट और वर्ल्ड कप हिस्ट्री के सबसे ज्यादा गोल्स करने वाले खिलाड़ी। बॉन्डी शहर से शुरू होने वाला सफर मोनाको, पीएसजी, फ्रांस और फिर रियल मद्रिद तक, ये सिर्फ एक फुटबॉलर की कहानी नहीं, ये एक ऐसे ख्वाब की कहानी है जो स्पीड, टैलेंट, मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ हकीकत में बदल गया। किलियन एम्बापे, स्पीड का नाम, स्किल का नाम, रिकॉर्ड्स का नाम और मॉडर्न फुटबॉल के एक ऐसे सुपरस्टार का नाम जो अब सिर्फ फुटबॉल का फ्यूचर नहीं, फुटबॉल की तारीख का हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों, ये था स्पोर्ट्स हाइलाइट्स का आज का खास सेगमेंट। उम्मीद है आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए लेजेंड, एक नए चैंपियन और एक नई कहानी के साथ। तब तक मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। तब तक खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें। फी अमानिल्लाह।

0: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया। सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी
1: गेम चेंजर सीजन 2। आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, और वक्त हो गया है एक और टेक अपडेट का। ये बोलने बड़ा कूल लगता है, टेक अपडेट। अच्छा शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट्स जो बड़ी काम की हैं और बहुत काम की हैं, लजीज भी हैं इस बारी तो, और खबर में क्या है वो भी बताना जरूरी है। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले शुरू करूंगा उन वेबसाइट से जो मुझे मिली है और बहुत बहुत यूनिक एंड इन अ वे ये कूल भी है यार, काफी कूल है। शुरू करें? ओके, तो नंबर वन ऑन द लिस्ट मेरी वेबसाइट जो मुझे मिली है वो है tempmail.org। कैसे लिखना है? TEMP फिर हाइफन और डैश व्हाटएवर, टेम्प डैश फिर मेल MAIL उसके बाद .org। अब आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट जो होती है आपको पता नहीं होता है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, आपको आपको पूछते हैं अपना ईमेल दो, जरा ईमेल दो, ईमेल दो, साइन अप करो, साइन इन करो, और आपको लगता है अरे यार अब अपना मुझे लेना पड़ेगा। यहाँ पे जाके आप एक टेम्पररी ईमेल बना सकते हैं, आपको ऐसे बना के दे देगा भाई, वो तो नहीं होती नहीं वो क्या कहते हैं टेम्पररी जो काम होता है ठीक है इस चीज के लिए जरा देना एक, तो ये एक ऐसा ईमेल है जो आपके वैसे किसी काम का नहीं है लेकिन उस वेबसाइट के लिए काम आ सकता है। अगर कोई वेबसाइट पुश कर ही रही है इतना कि लाओ अपना ईमेल दो, और आपको लगता है पता नहीं अपना ईमेल दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो tempmail.org पे जाके आप एक टेम्पररी ईमेल बना के उस वेबसाइट पे डाल सकते हैं और ईमेल भी रिसीव कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो ये आपको बहुत बहुत हेल्प कर सकता है आपके ईमेल्स में कुछ भी कोई भी हैक करने की कोशिश करे या कुछ वायरस भेजने की कोशिश करे तो इट इज इम्पॉसिबल टू डू इट नाउ। ओके, अब बढ़ते हैं अगली वेबसाइट की तरफ। अगली जो वेबसाइट है इसका नाम है myfridgefood.com। सही सुना आपने, माय फ्रिज, मेरा फ्रिज, तो मैं स्पेल आउट कर देता हूं पूरी वेबसाइट। सबसे पहले myfridgefood.com। इस वेबसाइट पे जाके जब आप देखेंगे पेज पर बहुत सारे खाने के आइटम्स उनके नाम लिखे होंगे, इनफैक्ट जो रॉ आइटम्स उनके नाम लिखे होंगे, आप उन पे टिक कर सकते हैं अपने फ्रिज में चेक करके। मतलब ये हुआ कि आपके फ्रिज में जो आइटम्स हैं उनको देख लिया आपने और साथ साथ टिक करें, हाँ मेरे पास आलू है, हाँ ये भी है।

0: हाँ ये भी है, आप टिक करेंगे उसके बाद नीचे लिखेंगे या क्लिक करेंगे के रेसिपी, तो आपको जो आपके फ्रिज में पड़ा हुआ सामान है उसके बेसिस पर एक रेसिपी बना के ये दे देगा कि भाई आप ये बना सकते हैं अगर आपके फ्रिज में ये पांच आइटम है तो। इतनी बढ़िया चीज है ना, इतनी बढ़िया चीज है, इस बहाने आप ऐसी ऐसी चीजें बना लेंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। रेसिपी के साथ साथ पूरा का पूरा उसको कैसे कैसे बनाना है पूरा प्रोसेस भी आपको मिलता है, विच इज ब्यूटिफुल। मुझे इतनी काम की लगी ना ये वेबसाइट myfridgefood.com, आप एक बार खुद जाके देखिए, आपको मजा ना आ जाए तो कहिएगा, डेफिनेटली वर्थ इट। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ जो इस वीक भर के आई है। देखिए एक खबर जो है थोड़ी सी अभी पुरानी हो गई होगी लेकिन फिर भी बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता, सैमसंग लॉन्च करने जा रहा है S26 FE, जो उन्होंने बोला था कि भाई ये तो हम कंफर्म निकाल के ही रहेंगे मार्केट में, तो आ चुका है। उसका रिव्यू अगर आपके पास है तो हमें बता दीजिएगा एंड लेट अस नो। बाकी और भी मॉडल्स लॉन्च करने वाला है सैमसंग बहुत जल्दी, ऐसा सुनने में आया है, तो जब वो आ जाएगा तो मैं आपको जरूर जरूर बता दूंगा। फिलहाल एक जो गैजेट है जो मार्केट में हड़कंप मचा रहा है वो है सैमसंग का नहीं गूगल का, गूगल पिक्सल की वॉच 5 वो मार्केट में आई है और वो एक और प्रोटेक्टिव लेयर लगाती है, हेल्थ सेफ्टी फीचर्स में भर भर के दिए हैं और जेमिना इंटीग्रेशन कर दिया है और साथ में इम्प्रूव GPS भी दिया है। ये एक बहुत बड़ी जीत है। मैं स्मार्ट वॉचेस को शुरुआत में बहुत पसंद करता था, फिर बीच में कह रहा है जब मैंने कहा नहीं नहीं नहीं स्मार्ट वॉचेस नहीं, बट नाउ दैट दे आर डूइंग समथिंग विद द वॉचेस, एटलीस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट और भी हो रहा है, तो आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि गूगल ऐसा कर रहा है। गूगल कीप डूइंग इट, ऑल द बेस्ट टू यू। बाकी खबरों के लिए और टेक अपडेट के लिए सुनते रहिए FM 107। अपना ख्याल रखिए एंड दिल से देसी टेक अपडेट।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का, और ये शो फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर दिन आपको एक नए जमाने के नए फ्रॉड से मैं मिलवाता हूं। एक्चुअली ये फ्रॉड इतने ज्यादा आम हो गए हैं कि किसी के साथ भी हो सकते हैं और कोई भी कर सकता है। इवन आजकल 12, 15 और 18 से लेकर 22, 25, 30 और 45 से लेकर 50 साल तक के उम्र के बच्चे और बूढ़े सारे लोग इस तरह के स्कैम में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि लोगों के लिए ये है आसान पैसा। दोस्तों, चालाकी का खेल, ये इस फ्रॉड के बारे में हम बात करने वाले हैं। डायरेक्टरी लिस्टिंग स्कैम्स, ये स्कैम खास तौर पर स्मॉल बिजनेसेस को फंसाने के लिए बनाया गया है। इसमें होता ये है कि एक दिन आपके पास अचानक एक कॉल या ईमेल आएगा। स्कैमर्स बहुत ही पोलाइट आवाज में, बेहतरीन आवाज में आपसे बात करते हैं कि सर, हम आपके बिजनेस इंफॉर्मेशन को एक लोकल ऑनलाइन डायरेक्टरी में वेरीफाई करना चाहते हैं ताकि आपको नए कस्टमर मिल सके। आप ऐसे में बिजनेसमैन हैं, आपको नए कस्टमर्स की जरूरत है। वो आपसे साफ साफ कहेंगे कि ये बेसिक लिस्टिंग बिल्कुल फ्री है और आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। आपके एम्प्लॉयज बिना सोचे समझे हाँ बोल देते हैं, और कई बार अगर आप भी बिजनेस ओनर भी कॉल पर होता है तो वो बिना सोचे समझे हाँ बोल देगा कि यार फ्री का काम है, हमें कुछ करना नहीं है, और डिटेल्स वेरीफाई करवा दिया जाता है। लेकिन असली खेल कुछ हफ्तों बाद शुरू होता है। आपके बिजनेसेस के नाम पर एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव इनवॉइस बिल आता है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ रियाल्स या डॉलर्स मांगे जाते हैं। जब आप उन्हें कॉल करते हैं तो स्कैमर्स क्लेम करते हैं कि आपने एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए साइन अप किया था। अगर आप मना करते हैं तो वो आपको डराने के लिए एक हैवीली एडिटेड वॉइस रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग का कट पेस्ट करके बनाई गई एक ऑडियो होती है, वो सुनाते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि आपके एम्प्लॉई ने पैसा देने के लिए हाँ बोला था। लोग कोर्ट कचहरी या लीगल एक्शन का डर बहुत ज्यादा उनको सता देता है, इसलिए वो किसी भी तरह के बवाले में, किसी तरह के स्कैम में पड़ना नहीं चाहते। ऐसे में इस तरह के अलग और अजीब स्कैम से कैसे बिजनेस ओनर बचें या फिर एम्प्लॉयज बचें, इसका सॉल्यूशन भी है। दोस्तों, इस तरह के स्कैम बड़े यूनिक होते हैं। ऐसे में इस तरह के स्कैम से हम बच पाए ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बचने का तरीका थोड़ा लेंदी जरूर है। सबसे पहले किसी भी एम्प्लॉय को जब आप हायर करें तो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए और बेहतरीन होनी चाहिए। किसी भी एम्प्लॉय को बिजनेस से ना जाने देना ये एक ऑप्शन होता है, ये एक प्रिविलेज है किसी भी बिजनेस ओनर के लिए कि उसका एम्प्लॉय लंबे वक्त तक उसके साथ रहे। लेकिन जब आप अच्छी ट्रेनिंग करते हैं अपने एम्प्लॉयज की तो वो आपके साथ लंबे वक्त तक रहता भी है और सीखता समझता है। इसके लिए उसकी ट्रेनिंग भी बड़ी जरूरी है। अपने सभी स्टाफ और एम्प्लॉयज को सख्त इंस्ट्रक्शन दें कि फोन पर कभी भी बिजनेस की सेंसिटिव डिटेल्स या अकाउंट इन्फो वेरीफाई ना करें। अगर कोई फ्री लिस्टिंग का कॉल आए तो उससे बोल दें कि उन्हें ईमेल पर ऑफिशियल प्रपोजल भेजा जाए। पर किसी ऑफिशियल प्रपोजल के काम बिजनेस ओनर को या एम्प्लॉयज को नहीं करना चाहिए। उसके अलावा इनवॉइस अप्रूवल सिस्टम, पीओ सिस्टम भी जरूर रखना चाहिए। आमतौर पर यह बिजनेस लैंग्वेज है पीओ सिस्टम। अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक रूल सेट करें, कोई भी बिल तब तक पे नहीं होगा जब तक उसे एक असली परचेज ऑर्डर यानी कि पीओ और डिलीवरी रिसीट के साथ मैच ना किया गया हो। बिना चेक किए किसी भी बिल को पास ना करें, ना ही एम्प्लॉयज और ना ही ऑब्वियसली बिजनेस ओनर। उसके अलावा अर्जेंसी से कभी ना डरें। अगर कोई ईमेल कहे कि वेबसाइट बंद हो जाएगी या लीगल एक्शन होगा तो डर में अक्सर तुरंत पेमेंट ना करें। पहले उस वेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनके रियल कस्टमर केयर पर कॉल करके कंफर्म करें, फिर रिकॉर्डिंग की सच्चाई पर भी आते हैं। अगर कोई आपको फोन पर एडिटेड वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाकर डराए तो बिल्कुल ना डरे। उनसे कहें कि आप इसकी कंप्लेंट साइबर क्राइम सेल में करने जा रहे हैं। स्कैमर्स साइबर क्राइम का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। आमतौर पे आपको 99% स्कैमर्स हैं वो साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट से या साइबर क्राइम सेल से डर जाते हैं और वो भाग जाते हैं। उसके अलावा रिपोर्ट कैसे करें? रिपोर्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। साइबर सेल डिपार्टमेंट सबसे अहम होता है। किसी भी कंट्री का साइबर सेल डिपार्टमेंट इन सब मामलों में एक्टिव रहता है। अगर आप किसी शहर में हैं या अगर आप कतर में हैं तो आपका बिजनेस ऐसे किसी फ्रॉड का शिकार ना बने, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो भी जाए तो साइबर क्राइम विंग को रिपोर्ट करें या मेट्रेश 2 ऐप के थ्रू भी फ्रॉड की रिपोर्ट आप दर्ज करा सकते हैं। ये कुछ आसान तरीके हैं जिससे आप नए जमाने के नए स्कैम से बच सकते हैं। तो फिर कैसे बचना है? एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, पीओ सिस्टम, इनवॉइस अप्रूवल सिस्टम, अर्जेंसी से बिल्कुल ना डरें, रिकॉर्डिंग की सच्चाई, उसके अलावा कतर में कैसे रिपोर्ट करना, उसके अलावा अगर आप दूसरे कंट्री में भी हैं तो वहां पर भी साइबर सेल होते हैं, साइबर डिपार्टमेंट, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और शुरुआत के 1-2 घंटे बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड में बात करते हुए। दिल से देसी स्कैम अलर्ट।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
3: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। और आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं माइक्रो इन्वेस्टिंग की। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इन्वेस्ट

सकता है या इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है लेकिन मॉडर्न फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक कांसेप्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है और ये है माइक्रो इन्वेस्टिंग अब माइक्रो इन्वेस्टिंग है क्या देखिए माइक्रो इन्वेस्टिंग का मतलब है छोटे छोटे अमाउंट्स को रेगुलरली इन्वेस्ट करना ताकि वक्त के साथ वेल्थ बिल्ड की जा सके इस कॉन्सेप्ट ने इन्वेस्टिंग को आम लोगों स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए भी एक्सेसिबल बना दिया है माइक्रो इन्वेस्टिंग का जो बेसिक आइडिया है वो बड़ा ही सिंपल है आपको एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती आप रोजाना हफ्तावार या महीने बेसिस पर छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं ये अमाउंट $5 $10 या इससे भी कम हो सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्वेस्टमेंट जो है वो अमाउंट नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी को देखता है बहुत से बिगनर्स इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके पास ज्यादा पैसे होंगे तब करेंगे यहाँ माइक्रो इन्वेस्टिंग जो है वो एक बेटर सोल्यूशन है जब लोग रेगुलरली छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे एक इन्वेस्टमेंट हैबिट डेवलप कर लेते हैं और ये हैबिट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस की फाउंडेशन बनती है देखिए माइक्रो इन्वेस्टिंग को समझने के लिए कंपाउंड ग्रोथ या फिर कंपाउंड रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट समझना भी जरूरी होता है कंपाउंड ग्रोथ का क्या मतलब है कंपाउंड ग्रोथ का मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न अर्न करती है वो फ्यूचर में और ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करे यानी आप सिर्फ अपने ओरिजिनल पैसे पर ही प्रॉफिट नहीं कमाते बल्कि प्रॉफिट पर भी प्रॉफिट अर्न करते हैं चलिए एक मिसाल देके मैं आपको समझाती हूँ कि अगर कोई शख्स हर महीने थोड़ी सी अमाउंट इन्वेस्ट करे और उस इन्वेस्टमेंट को कई सालों तक कंटिन्यू रखे तो कंपाउंड ग्रोथ की वजह से हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिस्क तो इन्वॉल्व है ही मार्केट कभी ऊपर है तो कभी नीचे है इसीलिए इन्वेस्टर्स को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए देखिए वेल्थ ओवरनाइट बिल्ट नहीं होती माइक्रो इन्वेस्टिंग जो है एक स्लो और स्टेडी प्रोसेस है जो पेशेंस और कंसिस्टेंसी डिमांड करती है फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स अक्सर रेकमेंड करते हैं कि इन्वेस्टिंग को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए यूज करना चाहिए अगर कोई पर्सन रिटायरमेंट प्लानिंग फ्यूचर एजुकेशन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहता है तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स उसे अपने गोल्स के करीब ले जाते हैं यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इमोशनल डिसिप्लिन जब मार्केट टेम्परेली डाउन हो तो पैनिक करने की बजाय लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर फोकस करना चाहिए माइक्रो इन्वेस्टिंग एक एजुकेशनल बेनिफिट है जब लोग छोटे छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल मार्केट सेविंग्स और वेल्थ क्रिएशन के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल तौर पे सीखते भी हैं और ये लर्निंग फ्यूचर में उन्हें बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प करती है देखिए आज के जमाने में इन्फ्लेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहे तो वक्त के साथ उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है इन्वेस्टिंग का मकसद ये होता है कि पैसा ग्रो करे और फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स को सपोर्ट करे इसीलिए बहुत से फाइनेंशियल प्लानर्स सेविंग्स के साथ साथ रेगुलर इन्वेस्टमेंट को इम्पॉर्टेंट समझते हैं बस अब जाते जाते मैं यही कहूंगी कि माइक्रो इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा लेसन ये है कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है बल्कि कंसिस्टेंट होना जरूरी है छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स अगर रेगुलरली और लॉन्ग टर्म बेसिस पे किए जाएं, तो वक्त के साथ सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट की जा सकती है कंपाउंड ग्रोथ पेशेंस और डिसिप्लिन माइक्रो इन्वेस्टिंग के ये तीनों इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इसीलिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्टार्ट स्मॉल इन्वेस्ट रेगुलरली वेल चलिए आज के लिए बस इतना ही मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से दिल

0: में टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लिए सिर्फ अलकास के इंक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामिन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में आसर की अजान का वक्त हो गया है।

0: तब्दील होता है तो जज्बात भी तब्दील हो जाते हैं। हमें आज एक दूसरे के बारे में नुक्ता नजर तब्दील करने की जरूरत है, जज्बात खुद ही तब्दील हो जाएंगे।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
3: FM 107।
1: दिल से देसी।
2: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
4: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक्स।
3: जनरेशन टॉक्स।
5: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड वेलकम टू जनरेशन टॉक। यहाँ पर जनरेशन के गैप के बारे में बात नहीं होती, वो तो क्लीशे है, हर कोई कर लेता है, लेकिन हम जो है उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि दोनों ही जनरेशन को, इनफैक्ट तीनों चारों जनरेशन को, जेन एक्स, जेन अल्फा, जेन जी, मिलेनियल, सबको एक साथ जोड़े रखती है या फिर अलग करती है। तो मेरे साथ आज एक बहुत ही खास गेस्ट है, मेरे बड़े भाई, इनसे बड़ी मोहब्बत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कतर में जिनसे हम मिलते हैं, उनके साथ आप हंसी मजाक कर सकते हैं, यू कैन बी कंफर्टेबल अराउंड देम, जो एक तो जज नहीं करते और सीरियस नहीं होते, ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है। लाइन पर है मेरे साथ फवाद भाई। फवाद भाई, वेलकम अगेन।
6: बहुत शुक्रिया तालियों की गूंज में, बहुत शुक्रिया।
5: तो तालियों की गूंज के बाद मुझे ये बता दे कि आप जो है कौन सी जनरेशन से आजकल रिलेट कर पा रहे हैं, बिकॉज यू आर अ फादर एज वेल, सो कौन सी जनरेशन ज्यादा रिलेटेबल है आप आजकल?
6: जेन जी।
5: क्या बात कर रहे हो, जेन जी से कैसे रिलेट कर पा रहे हो भाई?
6: तो इसलिए कि कहते हैं अब हमें उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा ना, ताकि उनके लेवल पे आ सके।
5: ओके, तो आप उनके लेवल पे आने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कुछ मेहनत करिए आप?
6: सर मैंने अपना वजन 25 केजी कम किया है, और कहते हैं उसके बाद टेक्नोलॉजी की तरफ आगे हैं, उनकी तरह यो डूड बनने की कोशिश कर रहे हैं।
5: अरे वेरी नाइस, सो योर डूड बनने के बाद, मैं सच में बहुत टाइम से देखा नहीं मैंने आपको, बट आई वुड लव टू सी दैट। मुझे ये भी बताइए कि जो इनके टर्म्स हैं वो भी सीख लिया आपने योर डूड के अलावा, जो इनकी नई नई डिक्शनरी है उसमें कौन कौन से वर्ड्स आपने सीख लिए अभी तक?
6: सर नहीं सर,
5: स्कीबिडी नहीं सीखा आपने?
6: सर ओनली 6-7 के अलावा और कुछ नहीं पता।
5: अभी दिल्ली दूर है मेरे दोस्त, दिल्ली अभी दूर है। तो फवाद भाई, ये जो जनरेशन गैप है, अभी तक हम जेन जी के बारे में बात कर रहे थे, अभी जेन अल्फास के बारे में बात होती है, जेन एक्स भी हैं, बहुत कुछ है, बट लुकिंग बैक एट योर जनरेशन, कौन कौन सी चीजें आप मिस करते हैं और कौन सी आपको लगता है कि यार ठीक है, नहीं है, चलेगा, कोई टेंशन नहीं?
6: शायद मैं मिलेनियम में आता हूं ना सर, शायद 44 में।
5: हाँ ठीक है, उसी के हिसाब से बता दो यार, क्या मिस करते हो?
6: सर मिस क्या क्या करते हैं मिस? सर हमने जिंदगी में कभी कुछ मिस करना सीखा ही नहीं, ये हम लोग मोबाइलों की जनरेशन से आए नहीं है, तो हम लोग जितनी एक्टिविटीज और चीजें कर सकते थे हम नहीं है। यही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है जो कि जेन जी, जेन अल्फा कभी नहीं दे सकेंगे।
5: ओके ठीक है, और कौन सी चीज आपको लगता है कि ठीक है यार अभी नहीं है, तो आपको कुछ ज्यादा खास रिग्रेट नहीं है कि नहीं है कोई बात नहीं है?
6: जैसा आप समझ लें कि AI टेक्नोलॉजीज या कोई ऐसी चीजें हैं जो कि अब हम लोगों को जारी पता है, अगर दोबारा बुक्स खोल के कुछ चीजें पढ़नी पड़े तो हमें टाइम लगता है, तो हम उसको किसी तरह कवर कर लेते हैं, तो अगर वो नहीं भी आई तो हम थोड़ा बहुत उसका 10-20% सीख के भी गुजारा कर लेते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। बाकी अगर मोबाइल एक दिन गुम भी हो जाए तो कई दफा नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आजकल इतनी जरूरत के हिसाब से वो जरूरी हो गया है कि आपको जरूरत इस्तेमाल करना पड़ जाता है।
5: ओके, और फवाद भाई आप ऑब्वियसली इतने सालों से काम कर रहे हैं, यू हैव वर्कड आउटसाइड एज वेल, आपका यहाँ पे कॉन्वर्सेशन है, मतलब यू गेट टू नो जेन जीज़ आपकी कंपनी में है, मुलाकात होती है, मिलना जुलना होता है?
6: मैं अपनी कंपनी में जेन जीज़ को हायर करता हूँ एज ए इंटर्न, और बहुत सारे जेन जीज़ के साथ काम भी कर रहा हूँ, उनका फास्ट डिसीजन मेकिंग कुछ चीज़ों में अच्छा भी होता है लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत डेंजरस होता है वर्क एक्टिविटी के हिसाब से, और एकदम से किसी के खिलाफ या किसी के बारे में एकदम से डिसीजन लेना भी उनके लिए अच्छा नहीं होता है, तो उन लोगों को अभी ऑफिस डेवलपमेंट या कॉर्पोरेट लेवल या कोई काम के हिसाब से यहाँ पे उस तरह की ट्रेनिंग होती नहीं है हमारे कतर में, तो वो सीखने में जेन जी या जेन अल्फा को बहुत टाइम लगेगा।
5: ओके, तो ये आपने मेन नोटिस किया कि इनका मतलब जो

0: काम करने का जो जो तरफ उसकी तरफ रवैया है वो ऐसा है कि बड़ी फास्ट पेस थिंकिंग है, यू नो दे थिंक एवरीथिंग ऑन ऑन द गो, क्या अभी बस समझ में आ गया कर लिया. पर ये चीज़ आपने जैसे आपने कहा कि तारीफ काबिल तारीफ भी है कि भाई ये बड़ी अच्छी बात भी होती है और ये ऐसा भी होता है कई मरतबा के पैनिक मोड भी ऑन हो जाता है. बट डू यू थिंक के दे आर हार्ड वर्किंग और डू यू थिंक के नहीं अभी भी वो हार्ड वर्किंग के स्ट्रेचर पर तो नहीं रखूंगा मैं आप किस तरह से देखते हैं इनके वर्किंग कल्चर को?
1: बहुत अभी तक मैंने काफ़ी सारों को देखा है, एटलीस्ट 20-30 इंटर्न्स जो उनके साथ काम किया है, उनमें से 1% जो है ना सीखना चाहते हैं, 1-2%. तो बाकी जो है मुझे पता है नहीं, मैंने किया हुआ है कहीं पे नहीं, ये मुझे ये अच्छा अच्छा यूं ही होता है ना बस, ठीक है ठीक है ठीक है. तो ये जो इनका तरीका कार है ना, इसमें मैं 1-2% देखे हैं जो कहते हैं हाँ जी आप बताएं सर मैं ये सीखा चाहता हूँ या मैंने ये सीखा है, उस तरह गलती नहीं करूंगा, उस तरह के बहुत कम लोग मिले.
0: हाँ ओके, तो हाँ ये चीज मुझे भी लगती है. बट आप इनके इतने सारे इंटरव्यूज और इंटर्नशिप के बारे में मैं कल किसी से बात ही कर रहा था, तो इंटर्नशिप को लेकर क्या आपको फर्क नजर आता है? हैव यू बीन एन इंटर्न इन योर लाइफ एवर?
1: I've been intern, yes. I started my first job, मैंने की थी reception पे खड़ा हुआ था और क्या कहते हैं होटल में काम किया था मैंने अपने पॉकेट मनी के लिए, ठीक है. जब तक मोबाइल लिया था उस ज़माने में इतना महंगा था तो लेके उसके बाद ख़त्म की थी. लेकिन ये कि इंटर्नशिप, यस, हमारे ज़माने में इंटर्नशिप में काम करना पड़ता था वरना सर्टिफिकेट नहीं मिलता था और हमसे काम कराया जाता था और हम सीखने की कोशिश करते थे. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये लोग इतनी जल्दी, इनको इतनी क्या कहते हैं आप, दिक्कतें मुसीबतें इन्होंने झेली नहीं है, या तो इन्होंने जिन्होंने झेली होती है उनको पता होता है कि ये हार्ड टाइम्स के साथ गुड टाइम्स कैसे आएंगे.
0: ओके, अच्छा पहले ये कहा जाता था कि बच्चे को ना थोड़ा सा उसमें डालो, मुश्किल में, डिस्कम्फर्ट में डालो, नॉट एक्जैक्टली मुश्किल पर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में डालो ताकि सीख सके. जैसे हमारे बाप ने कहा बेटा तुम यहाँ जा रहे हो तो एक काम करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ, इवन इफ यू हैव अ बाइक यू हैव अ कार कोई मतलब नहीं भाई, तू ऐसी जाएगा. तो वो एक रवैया रहता था. अभी आई थिंक दो तीन मेरे भी दोस्त हैं और आप खुद एक पेरेंट है, तो लोग मुझसे कहते हैं कि यार अभी थोड़ा मुश्किल है उन्हें डिस्कम्फर्ट में डालना, बड़ा मुश्किल है, वो खुद आ गए तो बात दूसरी है. व्हाट इज योर ओपिनियन फॉर दैट?
1: जो मेरा लेटेस्ट प्रोडक्शन है ना वो 2022 वाला, वो जो है उसको निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे पुराने वाले जितने हैं उनको अगर मैं कहता हूँ ये तुम लोगों का बजट है, इसी में खाज की आउटिंग है, यही खाना है, अपना हिसाब लगा लो मोबाइल पे खाना है और ये गुजारा करना है, तो वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं. और उनको मैंने इस तरह सिखाया है कि लाइफ में कभी भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपके पास कभी 1,000 रियाल भी होंगे कभी 10 रियाल भी होंगे, तो आपको पता होना चाहिए इतने पैसों में कहाँ पे बैठे खाना है और किस सर्टिफिकेट से खाना है, और 10 रियाल वाले में ही बैठे खाना है तो किस तरह खाना है.
0: ओके, और ये तो मतलब आपने काफ़ी मैनेज कर लिया भाई, वरना लोगों का तो तड़का उधर जाता है मामला. लेकिन बहुत भाई मैं एक हमारी बहन है असरा, उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे पूछा महीने के कितनी मतलब आपको लगता है कि ये क्या कहते हैं पॉकेट मनी जो है आपने कितनी बांधी हुई है, क्या सिस्टम है घर का?
1: 71 में तो मैंने अभी एक का अकाउंट खुलवा दिया है, बाकी के आई पे कार्ड बना दिए हैं उनके, ठीक है. तब मैं छोटे बेटे के अकाउंट, सबसे छोटा जो है उसके 20 रियाल डालता हूँ क्योंकि वो उससे तो इस तरह की चीज़ें खानी है, बाकी सेविंग रहेगी उसकी. और बड़ा जो मिडिल वाला है उसके 100 और जो बेटी है उसके 200.
0: अच्छा, तो इसमें बढ़ोतरी हुई है, प्रमोशन हुआ है या कितने साल से चल रहा है?
1: नहीं नहीं, ये प्रमोशन उनका इस हर 6 महीने बाद 100 रियाल बढ़ जाता है हम सबका, इतना हमारा नहीं बढ़ता.
0: अच्छा, तो फवाद भाई लुकिंग एट द कल्चर, क्योंकि देसी कल्चर ऐसा रहा है, हमें भी हमारे माँ बाप ने बताया गया, देखो बड़ा दिलीप कुमार ये पिक्चर देखो, देखो बड़ा गुरुदत्त ये है, इनको देखो, तो हमें ऐसे ही हम पले बढ़े क्योंकि हमें नॉलेज जो है मूवीज़ की भी सिनेमा की भी ऐसी आई है. आपने कितना जोर लगाया और कितना आसान रहा है आपके लिए? आर दे अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू हैव सीन, जो आपने देखी हैं सिनेमा हो चाहे म्यूज़िक हो?
1: बेसिकली एक चीज़ तो सबसे बड़े हमारे पेरेंट्स के अंदर ये है कि हम लोगों को अपने बच्चों के साथ कंफर्टेबिलिटी पैदा करनी है बस, कि भाई वो जो बात है आपसे कर सकें. अगर हम हर बात पे उनको चिल्ला देंगे या उनको हर चीज़ पे ना कर देंगे, उसका कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देना है. इसी तरह मूवीज़ का भी यही सिस्टम है. अगर आजकल आपको पता है मीडिया किस तरह चल रहा है, आपको कोई चीज़ एक भी गलत आप खोलते हैं तो बच्चों के लिए कोई ना कोई गलत होता है, तो आप उसको किस तरह

0: आपको इस वक्त के हिसाब से आपके लिए गलत है। तो वो चीजें मैंने मूवीज बच्चों के साथ बैठ के देखी भी हैं, हॉरर भी देखी हैं, एक्शन भी देखी हैं, रोमांस वाली भी देखी हैं, बच्चों के साथ बैठ के देखी हैं।
1: ओके तो इस अप्रोच पे आपको क्या कहना है? ऐसे लोग कहते हैं ना कि अपने बच्चों को बताते बेटा ये होता है VCR, ठीक है तुमने नहीं देखा होगा ये, तो ये एक अप्रोच होती है जो शायद खत्म हो गई है, आई डोंट नो, बट डू यू ऑल्सो डू दिस के बेटा VCR होता था हमारे जमाने में तो ये होता था हमारे जमाने में, वो ऐसा करते हैं आप?
0: सर मेरे पास VCR घर में पड़ा हुआ है, DVD रिकॉर्ड प्लेयर भी पड़ा हुआ है, CD प्लेयर और मेरा रैक जो मैंने जवानी से अपनी किस्तें 96, 87, 78 दिलीप कुमार, किशोर कुमार, गीत सिंह, सारों के जो गाने और वॉल्यूम्स थे ना, मेरे पास पूरा रैक है। 200 या 300 जो कैसेटें रह गई हैं, 500-600 CDs हैं, उसमें रिकॉर्ड्स हैं, मेरे पास 15-20 रह गए हैं सिर्फ उसमें से, वो सब मेरे पास अभी घर में है पाकिस्तान में। और मैं वो बच्चों को जो पिछली बार गए थे पूरी चीज़ें दिखाई थी, और मैंने अपनी स्टैम्प्स कलेक्शन भी दिखाई थी, बेटा ये देखो मैंने उस ज़माने में स्टैम्प्स कलेक्ट किए थे और हम लोग यूँ ही रखते थे।
1: ओके यार बहुत बढ़िया यार, मुझे लग रहा है गलत आदमी को कॉल लगा ली, कोई फ्लो ही नहीं है इसमें। हाँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अल्लाह ताला आपको ऐसी रखे, वेरी वेरी वेल मैनेज्ड। और फवाद भाई एक हम यहाँ पे देखते हैं कतर में एक मेजर, नॉट एग्जैक्टली एन इशू मगर इट इज़ समथिंग जो जिस पे काम करना पड़ता है, जैसे बच्चे जो होते हैं अपने अपने मुल्क में होते हैं तो इट इज़ ईजी, जब वो बाहर जाते हैं तो मिलना जुलना, सेम भाषा, सेम कल्चर, सेम सब कुछ, बट जब वो यहाँ पे होते हैं और उनका एक्सपोजर जो होता है वो काफी लिमिटेड होता है, स्पेशली जेंजीज जो अपने ही एक बबल में रहते हैं, दे हैव देयर फोन्स एंड व्हिच इज नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट ब्लेमिंग द टेक्नोलॉजी, जरूरत है आज के जमाने की, बट उसके लिए क्या किया जाए, वो एक्सपोजर देना ना देना कैसे करते हैं आप या कैसे करना चाहिए?
0: कोशिश तो मैं करता हूँ कि जहाँ जाऊँ साथ लेके जाऊँ, जहाँ जहाँ लेके जा सकता हूँ, जिस तरह आप कभी मैं ट्रैफिक ऑफिस में किसी काम से जा रहा हूँ तो बेटे को साथ लेके जाता हूँ ताकि उसे पता हो कि क्या किस तरह टोकन लिया है, क्या बात की है, अरबिक में क्या बात की है, इंग्लिश में क्यों इस्तेमाल किया है, किसको किस तरीके से बात की है, आपके एटिकेट्स और आपके बच्चों के टेबल पे बैठने, क्योंकि आजकल मेरा नहीं क्या स्कूलों में उस तरह सिखाया जाता है जिस तरह हमारे ज़माने में कुछ चैप्टर्स होते थे, बल्कि बताया जाता था कि ग्लास में इतना ड्रिंक छोड़ते हैं तो ये मकसद है, प्लेट में खाना छोड़ते तो यूँ होता है, स्पून को इस तरह छोड़ते हैं, तो हम लोग, मैं भी, वाइफ भी और मैं भी, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को, देखें आपके पढ़ाई और इल्म तो बंदे सीखते ही रहते हैं सारी ज़िंदगी, लेकिन एटिकेट्स और ये आदतें और ये आपकी चीज़ें जो है ना, अगर एक बार पक्की हो जाए तो ख़त्म नहीं होती हैं।
1: ओके हाँ, वेरी वेरी वेरी सॉर्टेड आंसर, और ये तो बहुत बढ़िया था। अच्छा एक जो बात मैंने कहीं पढ़ी भी थी, आई थिंक रेडिट की किसी पोस्ट से पढ़ी थी, कि लोग कहते हैं कि पहले के बच्चे ना थोड़े से बदमाशी में ज़्यादा होते थे, आजकल क्या है कि बदमाशी चलो है, वो ये नहीं कह रहा कि अच्छी वाली बदमाशी कह रहा हूँ, जिसमें थोड़ा होता है कि शरारती होते हैं, आजकल जो वो शरारत है वो उस सिस्टम की नहीं है, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, क्या कहेंगे इस पर आप?
0: तो शरारतें तो अभी भी हैं, लेकिन हाँ उस

0: को जरूरत है, इनको पता है कि सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए हैं, कानून सख्त है, किसी को बगैर वजह के तंग नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में होंगे तो पानी का गुब्बारा भी फेंक देंगे किसी की तरफ कुछ भी कर देंगे, टायर में हवा निकाल के भाग देंगे। वैसे तो यहाँ भी हो जाता है ऐसा, लेकिन वो चीज़ें या ऑफकोर्स यहाँ पे कम है, लेकिन बदमाशियाँ यहाँ पे करते हैं बच्चे, थोड़े बहुत तो करते ही।
1: ओके ओके।
2: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स हैं। ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
3: तो ये जानने के लिए सुनिएगा Generation Talks. Generation Talks.
1: वैसे इस जनरेशन से काफ़ी कुछ सीखने को तो है, और क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि आपने काफ़ी कुछ सीख भी लिया है। अपनी जनरेशन से आजकल क्या चेंज है, मतलब आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द जो आपके हम उम्र हैं, आपने देखा मुझे काफ़ी एक स्टबर्ननेस भी है कि मैं क्यों बदलूँ भाई, ये लोग बदलेंगे, हम क्यों बदलेंगे, हम तो ऐसे ही हैं, ये देखा है आपने इस पे, इस एटीट्यूड पे क्या कहना है आपका?
0: बिल्कुल है सर, ये सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे कि उसने कर दिया मैं क्यों करूँ, उसने भी तो कूड़ा नीचे फेंक दिया तो मैंने फेंक दिया तो क्या हो गया। ठीक है, आप इस सोच से बाहर निकले। हमारे जमाने में जो

0: आपने कहा ना लड़ाई की, हम लोग अगर लड़ाई होती थी तो पूरा पूरा ग्रुप लड़ता था और ये नहीं पूछता था कि हुआ क्या है, ठीक है, दोस्त लड़ने गया है तो लड़ने चले गए सारे, ठीक है, वो बाद में बताता था कि वो सही था कि गलत था, ठीक है। और हम अभी तक दोस्त हैं, 23 लोग जो हमारे, हम लोग 8-10 तक पढ़े थे, हम लोग अभी तक 23 लोग एक ही ग्रुप में और सारे मिलते जुलते हैं, जब भी मिलते हैं खाते होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि वो जो ग्रुप है ना, वो आजकल की दोस्तियां उस तरह नहीं है, हर का जंजीर या जलपा ये मुफाद परस्त भी हैं थोड़े बहुत, कुछ हैं अच्छे दोस्त भी, लेकिन ये लोग एक दूसरे से फायदा मिल जाए तो अच्छा है, चलते रहेंगे।
1: ओके, और आपकी जैसे हमारी और आपकी जनरेशन है, कहीं ना कहीं एक स्टबननेस है कि हमेशा मैं देखता आता हूँ कि हमेशा क्रिटिसिज्म मिलता है जेंजीज को, नहीं मिलना चाहिए। अब अभी मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्रिटिक्स आ जाते हैं, ये जेंजीज, ये जेंजीज ने ये नहीं देखा वो नहीं देखा, मतलब लॉट टू लर्न फ्रॉम देम। तो आप अपनी जनरेशन को क्या मैसेज देंगे फवाद भाई, जो आपके हम उम्र हैं उनको क्या कहेंगे?
0: मैं यही कहूँगा कि हमें अपनी स्किल्स, अगर कोई प्लेटफॉर्म हो तो हमें अपनी स्किल्स उन जो बच्चे सीखना चाहते हैं ना उनको देनी चाहिए, ताकि उनकी एक्टिविटीज़ में इजाफा हो उनके, क्योंकि आजकल की जनरेशन के दिमाग हमसे ज़्यादा तेज़ हैं, क्योंकि जिस तरह आइडिया डेवलपमेंट है, चीज़ें हैं बहुत तेज़ हो चुकी हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। तो हम लोगों के पास जो स्किल्स हैं, किसी के पास अगर AI है, किसी के पास IT है, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि कोई आए ट्रेनिंग दे उनको, वो अपनी वेस्ट टाइम को कहीं यूज कर सके। हर कोई अपना मवाद बेचने पे लगा हुआ है, हर कोई बेच रहा है, ठीक है, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि किसी को फायदा भी दे दे किसी मकसद में।
1: फेयर इनफ, बिल्कुल सही कहा आपने। और स्पेशली जो अभी टाइम है, आई थिंक इस टाइम पे वो जो ब्रिज है वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि बैक इन द डे जो जनरेशन थी 70s, 80s, 90s, इनमें जो गैप था वो चल रहा था, वो किसी ने नोटिस नहीं किया था, मगर जो एक बड़ा गैप आया वो इंटरनेट की बूम के बाद, तब जाके लोगों ने समझा अरे ये तो बहुत ही बड़ा गैप है, एंड देन अभी नजर आ रहा है कि वो भी छोटा होता नजर आ रहा है। डू यू ऑल्सो फील दिस वे? क्योंकि आपने भी देखा होगा आपके आपके फादर के बीच में जो वो जनरेशन गैप होगा वो कभी नोटिसेबल नहीं था, इट्स लाइक कि हाँ यार मेरे पापा हैं, उन्होंने ये देखा है वो देखा, पर वो गैप के बारे में मेंशन नहीं होता जितना अब होता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अब वो जो इस जनरेशन है वो कहती है कि आपको तो पता ही नहीं है, असल में वो समझते हैं कि हमें पता ही नहीं है, जबकि हम लोग को ने इसकी ग्रोथ 0 to 100 तक देखी है, वो यही समझते रहते हैं कि हमने देखा नहीं है। हमने टेक्नोलॉजी, वो क्या कहते हैं, इतना बड़ा पत्थर के साइज का फोन से लेके जैसे सर फाड़ देते थे, और अब छोटे से 8810 था मेरा ख्याल है, वो छोटा सा आया था 8300, ठीक है, उस नोकिया तक का देखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये लोग समझते हैं कि हमने नहीं देखा हुआ, लेकिन हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी हुई है, हमने सैंड गेम इतनी खेली है, वो क्या स्नेक वाली जितनी किसी ने नहीं खेली होगी, ठीक है। तो ये वाकई बात है कि ये लोग समझते हैं कि हमें इनसे ज्यादा नहीं पता, ठीक है, हम अपने माँ बाप से ये समझते थे उन्हें नहीं पता, ठीक है। तो ये तो एक जनरेशन की चीज़ है जो हर कोई समझता है कि हमें नहीं पता, लेकिन

0: और आज के जमाने में बिकॉज माशाल्लाह आपके बच्चे, तो हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज, क्या जेन जी से दोस्ती करने के लिए क्या टिप्स देंगे आप लोगों, अगर कोई मेरे लिए मिलेनियल जेन जी से दोस्ती करना चाह रहा है आपका क्या मशवरा है?
1: सर 100% दोस्ती हुआ तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन उनको अपने साथ कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए कि आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है जो कि हमारे पास बहुत कम होता है। कई लोगों के पास जॉब के साथ, लोग एक्स्ट्रा जॉब करते हैं, लोगों की शिफ्ट्स में होती हैं, ठीक है, थके हारे ज़्यादा आते हैं, लेकिन टाइम जितना आप स्पेंड कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि मैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, बीचेस पर जाना, पार्क्स में जाना। मैं ये पहली दफ़ा यूरोप अकेला गया हूँ, वरना मैं कभी अकेला नहीं गया इनके बगैर, ठीक है ठीक है। लेकिन कहते हैं आज हम सऊदीया बॉर्डर तक ड्राइव पे गए, इस तरह यानी आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है उनके साथ, उनकी बातें सुननी पड़ती हैं, उनकी तरह के गाने सुनने पड़ते हैं जो कि समझ भी ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ता है।
0: कुल मिला के इस दोस्ती में हमेशा एक छोटा सा वो रहेगा, गैप रहेगा, वो मेरे ख्याल में रहना भी चाहिए। एंड आप बच्चों में से कौन आपका बेस्ट फ्रेंड है?
1: देखें कहते ऐसे हैं कि जो पहली बेटी होती है अगर ना, वो बाप की कॉपी होती है, माँ की उसके अंदर खुशियात होती हैं लेकिन गुस्सा और चीज़ें बाप की होती हैं, वो मुझे नज़र आता है। जो बेटा है मेरा, वो कहते हैं काफ़ी उसने यानी मेरे साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया है, हम लोग क्रिकेट भी खेल लेते हैं, फुटबॉल भी खेल लेते हैं, जाहिर बात है मेरे नी इशू की वजह से कुछ चीज़ें नहीं खेलता मैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सकता है वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं। सबसे छोटे के साथ अभी तक कोई ख़ास नहीं है, लेकिन वो कोशिश बहुत करता है अपनी तरफ लाने के लिए, ठीक है, लेकिन उसके साथ माँ का ज़्यादा है या भाई का ज़्यादा है उसके, तो लेकिन ये कि बेटे के साथ और बेटी के साथ ज़्यादा है
0: बड़े वाले। ओके, तो अब काफ़ी डिप्लोमेट लेकिन काफ़ी आर्टिस्टिक वे में अपने जवाब दिया, कि जवाब भी दे दिया और नहीं भी दिया। वेरी गुड। अच्छा तो मैं पूछना चाहूँगा, भाभी बेहतर हैं आपसे इस मामले में डीलिंग विद द जेन ज़ी, और आर यू बेटर देन हर?
1: नो, ऑफ कोर्स शी इज़ बेटर, क्योंकि हमसे भी इतने साल से रह रही हैं, हमारे साथ 20 साल से हमें बर्दाश्त कर रही हैं, तो ये सारी बात है बहुत बेहतर है सबसे, ठीक है, तभी वो उन्हें ही बर्दाश्त कर रही हैं, हमें ही बर्दाश्त कर रही हैं, हमारी पसंद का भी खाना बन जाता है, उनकी पसंद का भी खाना बन जाता है, इसका मतलब वो हमसे ज़्यादा समझदार हो गई हैं इस मामले में।
0: एंड आपने कौन से अतरंगी सतरंगी खाने वाने ट्राई किए, माचा वाचा ट्राई किया है, जेंजीज का क्या कुछ खाया आपने ऐसा जो बहुत बढ़िया लगा हो या फिर गुस्सा आ गई?
1: बहुत बुरा था वो, क्रीम किस्म का बड़ा ही बुरा था, शुक्र करे खाना बाहर नहीं आ गया। उन्होंने कहा, सबने कहा जेंजी साथ गए कैसे सर, माचा ट्राई करें सर, माचा माचा माचा लगे थे, हमारा ही माचा बन गया। मैं मेरे दोस्त सामने बैठे जो दोनों सीनियर थे, एक दूसरे की शक्ल देखते, आखिरी दफा भाई।
0: ओके, और कुछ ट्राई किया आपने? बिकॉज बहुत सारे थीम रेस्टोरेंट्स और पता नहीं क्या क्या आ गया मार्केट में, या फिर हिम्मत नहीं हो रही?
1: रेस्टोरेंट्स तो बहुत है, रेस्टोरेंट्स तो मैं सारी ट्राई करता हूँ, कोई ना कोई कैफे या किसी जगह मैं और मेरा भाई मेरी वाइफ जो है हम लोग निकल जाते हैं, तो हम लोग सैटरडे को अपना टाइम स्पेंड करते हैं बाहर जाके, तो कोई ना कोई नया कैफे या कोई चीज़ ट्राई कर लेते हैं, तो बच्चों के साथ भी जहाँ खाना अच्छा मिलता है वहाँ हम पहुँच जाते हैं।
0: ओके, चलो ये बढ़िया, ये थोड़ा मैनेजेबल लग रहा है, यहाँ मामला ठीक है। एंड यूके एक वर्क कल्चर में काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिली है, अभी प्रोफेशनल फील्ड की अगर बात करूँ तो मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ कि हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। आजकल जो एक चीज़ बहुत बढ़िया की है जेन ज़ी ने, वो है मेकिंग देयर ओन करियर इन अ डिफरेंट वे। हम लोग इतना फ्रीलांसर के बारे में सोचते भी नहीं थे, रूह कांप जाती थी, बट अब फ्रीलांसिंग और ओपन ये स्टार्टअप्स वगैरह काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, इज इट द राइट वे टू डू इट, और आप क्या सोचते हैं इन जनरल?
1: बहुत अच्छी चीज़ है, बेहतरीन काम है, मैं अपने बेटे को भी कह रहा हूँ कि सीखे, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा हो तो मैं ज़रूर उसे डाल के किसी के साथ सिखाऊंगा। उसको राइट वे में हम अगर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसको डी ट्रैक ना होने दें, यही एक चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट और दूसरे लोगों को सीखनी चाहिए कि भाई उनको डी ट्रैक ना होने दें, बाकी उसके साथ काम करना, उनके अंदर बिजनेस की अपनी चीज़ों को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये कि जॉब करना उस लिहाज से ज़रूरी है कि उनके अंदर एक पंक्चुअलिटी आ जाती है।
0: एंड इन जनरल जैसे बहुत सारी जगहों पे अभी कूल कर दिया गया है कि इफ़ यू आर वर्किंग 9 to 5 देन इट्स अ वेरी बोरिंग थिंग, मतलब 9 to 5 कर रहे हैं आप तो बोर आदमी हैं आप, तो ये इस पे आपका क्या कहना है, बिकॉज आपने भी कहीं ना कहीं ये सब सुना ही होगा।
1: बिल्कुल सही कहते हैं, 9 to 5 में आपकी बोरिंग रूटीन हो जाती है, लेकिन आपने उस काम को अगर आपको पसंद है और आप उसके

0: अंदर इस टेक्नोलॉजी और चीजों को लाते हैं तो सारी बातें उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, लेकिन अगर आप उस शिकंजे या हॉल से बाहर नहीं निकलेंगे, यानी इस तरह उसको उसी तरह लेंगे, अपनी लर्निंग और डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं करेंगे, तो ऑफ कोर्स इट्स 9 o'clock पहुंचेंगे, पंच इन करेंगे, 5 बजे आउट करेंगे और बोलेंगे बस सैलरी आ रही है, बस चल ले दो। वो पुराने ज़माने में ऐसे ही चलता था, ठीक है। लेकिन अगर आपने ग्रोथ करनी है अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना है तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो करनी पड़ेगी, आपको पता है।
1: एक पार्ट आता है मैच्योरिटी का, जहाँ पे मैं खुद लोगों से कहता हूँ कि भाई अपनी ना उम्र के हिसाब से रहो तो थोड़ा अच्छा है। दिस इज़ दी ओनली कंप्लेन दैट आई हैव, क्योंकि क्या है मैच्योरिटी अभी थोड़ी बूम कर रही है, आप बता ही नहीं पाएंगे कि सामने जो आपके खड़ा है वो 16-17 साल का है कि 25-26 साल का है। व्हाट डू हैव टू से इस पे, क्या बोलेंगे फौज भाई, आपको भी दिखता होगा ऐसा।
0: चल मेरे अभी तक बेगम को मेरी अम्मी कहती हैं चारों बच्चे कैसे हैं, 3+1। तो मैंने अपनी लाइफ को हमेशा हंसते खेलते रखा है। वो ऑफिस वाले भी कहते हैं तुम बड़ा हंसते खेलते रहते हो। मैंने कहा देखो अगर रोते ही जिंदगी गुजारनी है तो वैसे ही बड़ी टेंशन है जिंदगी में, हर किसी को पैसे की टेंशन है, हर किसी को किसी के आगे जाने की टेंशन है, उसकी प्रमोशन क्यों हो गई है टेंशन है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को अगर हम लोग अगर आपस में खुश रहेंगे ना तो हम कुछ ना कुछ डेवलप कर लेंगे। तो लेकिन ये कि अगर आप सोचें कि हम लोगों के अंदर वो जो पुराने और नए का डिफरेंस हम लेके चलते रहेंगे तो कभी भी नहीं बदल सकेंगे हम लोग।
1: ओके, तो ये जो दोस्ती होती है अभी आपको लगता है कि आज के ज़माने में मैटर करता है कि आपके दोस्त कितनी एज के हैं या सेम एज के दोस्त बनाना ही ज़रूरी है, ये इस आपका क्या आपकी क्या सोच है इस बात पे?
0: मैटर तो नहीं करता, जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप पैदा हो जाए तो चल जाता है। लेकिन ये होता है कि आप जेंजीज के साथ दोस्ती इसलिए ज़्यादा नहीं कर सकेंगे क्योंकि अगर आप यहाँ पे बैचलर हैं तो शायद आपकी नौकरी चल उनके साथ काम चल जाए क्योंकि या फैमिली ना हो। अगर आपकी फैमिली यहाँ है और जेंजी से दोस्ती कर ली वो तो रात को 12 बजे ही बाहर निकल जाएगा, आप कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो वो आपका बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपको फ्राइडे को मैं कॉल कर दूँ गेम से उठ के आ जाए तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो वो ये कई लोगों का चलता रहता है ऐसा ही।
1: ओके, एंड लास्टली मैं जानना चाहूंगा, ऑनलाइन फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा है, राइट? हमारे टाइम पे हमें एक ज्यादा डर नहीं रहता था कि ठीक है, हमें वो पता था कि ठीक है मोर कुट शॉर्ट कुट था तो चल जाता था काम। अभी ऑनलाइन फ्रेंडशिप हैज कम टू अ लेवल जहाँ पे इट इज इक्वली रियलिस्टिक, इनफैक्ट मिलना अभी बहुत आसान है। इनफैक्ट पहले वहां मिल रहे होते हैं लोग, फिर यहाँ मिल रहे होते हैं, या आप असल जिंदगी में मिलते हैं तो आपको वहां पे मिलना ही पड़ेगा कि कैसे ऐड नहीं किया मुझे। तो ये जो गैप है ये आपके अराउंड भी है या आपने मैनेज करके रखा है? हाउ डू यू मैनेज दिस? कोई नजर रखते हैं क्या करते हैं?
0: वैसे तो मैनेज करते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चों को लोगों को मिलना ज्यादा जरूरी है ना कि ऑनलाइन, बिकॉज ऑनलाइन 70-80% लोग फेक ही होते हैं, जारी बात है, आपको कोई ना कोई बनावट बनाई होती है। तो बच्चों को इस बात का बिल्कुल बताना चाहिए कि भाई ये चीज़ जो आप देख रहे हो सब कुछ रियलिस्टिक नहीं होता है, रियल लाइफ में बहुत चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो अगर आप किसी को मिल रहे हो फिजिकली या ऑनलाइन बात कर रहे हो, वो कह रहे हैं ना अगर मैं यूके गया हुआ हूँ तो यूके गया हुआ नहीं गया हुआ ये आपको नहीं पता, चैट जीपीटी से फोटो भी आ जाएगी यूके की, ठीक है, लेकिन वो यूके में नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको हर चीज किसी के मुकाबले में जाने की जरूरत नहीं है, अपनी मेहनत और अपने आप को इम्प्रूव करोगे तो खुद ही सब कुछ हासिल हो जाएगा और लोग आपको खुद ही फॉलो करेंगे, खुद ही बात करेंगे, आपके आगे पीछे खुद ही लोग होंगे।
1: और फवाद भाई आपके लिए जरूरी है क्या कि आपसे अगर कोई मिला है तो आपके इंस्टाग्राम पे भी होना जरूरी है, मतलब आपका बहुत ही खास मुखास दोस्त, ऐसा नहीं कोई रैंडम, आप कोई दोस्त है तो क्या जरूरी है कि सोशल मीडिया पे हो आपके साथ या फिर आपको चलता है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो इंस्टाग्राम जैसे आपने कहा ना चैट ग्रुप्स, आप ऑर्कड के जमाने के हैं, हम MIRC के जमाने के हैं, ठीक है। तो और तो इसलिए वो जो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं, मैं इंस्टाग्राम में मेरे पास बहुत लिमिटेड लोग हैं, इसी तरह टिकटॉक ही मेरे दोस्त ने डाल के दिया था वो भी बहुत लिमिटेड लोग हैं। मेरे फेसबुक पे मैं कभी कभार ही ऑनलाइन जाता हूँ, देखता हूँ कौन रिक्वेस्ट आई है कौन नहीं आई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बंदा अच्छा है, जेन्युइन है, ऑनेस्ट है, आपके साथ सिंसियर है, ठीक है, सिर्फ आपके लिए किसी मकसद से नहीं जुड़ा हुआ ना, तो बस That's it. He is good enough.
1: आंखों का डर है घर पे आपका किसी का भी या फिर हट चुका है वो एकदम मतलब it doesn't exist.
0: किसका सर?
1: आपके आंखों का डर बच्चों पे कभी रहा है या भाभी का हमारी बहन का किसी का डर रहा है कभी?
0: वो मेरा है.
1: और क्या बात कर रहे हो?
0: अरे वो भी मेरा छोटा बेटा बड़ा बेटा बेटी उनको पता है कि बाबा अगर कहीं महफिल में बैठे आंख दिखा दी है तो उसका मतलब हमने कोई गलत चीज कही है तो हम नोटिस कर लें.
1: अरे वाह भाई वाह वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह. और फहद भाई मैं ये तो सीधा सीधा कॉम्प्लीमेंट है मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए मगर जिस तरीके से आप बहुत ही आर्टिकुलेट वे में बात करते हैं बहुत ही काबिल तारीफ है. इट शोज के आपके अंदर एक बहुत ही शानदार ओरेटर है. अपने थॉट्स और व्यूज आगे रखना एक बहुत बड़ी बात होती है और ये बहुत कम लोगों में होती है सो कुडोस टू दैट. और बाकी आप जो अकेले शादी के बाद बैचलर जिंदगी जीने यूरोप गए थे उसके लिए मैं अभी भी चलता हूँ आपसे तो उसका कुछ कर नहीं सकते. तीसरी चीज यही है कि थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला. आई एम प्रीटी श्योर कि जो आपका वक्त मैंने लिया है इस वक्त आप बहुत कुछ कर लेते हैं अभी घर पे बट मेरी तरफ से सबको सलाम और प्यार दीजिएगा भाई.
0: मुझे ड्रामे ही किस तरह रहेंगे बस वही जाकर
1: ओके अपना ड्रामा देखिए एंजॉय योरसेल्फ में सबको सलाम कहिएगा मेरे भाई बहुत प्यार आपको हमेशा की तरह.
0: वालेकुम सलाम बहुत शुक्रिया सब
1: बहुत शुक्रिया भाई. आप सब अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.

पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
1: यस नाउ वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप द रिक्वेस्ट शो पर. आपकी रिक्वेस्ट प्ले करने का वक्त आ चुका है और हमारे लिसनर्स आज देखो भाई जिन्होंने अभी हमको ज्वाइन किया ना आज की थीम ऐसी है ब्रेकअप टू मेकअप. मतलब जो दिल टूटा होगा किसी भी वजह से आपका ठीक है उस टूटे दिल को आपने मेंड किया इस पर्टिकुलर गाने को सुनकर अपने दिल की सारी भड़ास निकाली चाहे वो आंखें नम करना हो या अपने आप से बात करना हो ठीक है. सो अभी मुझे रिक्वेस्ट आई है आसिफ की एंड ही वॉन्ट्स टू लिसन टू दिस सॉन्ग जो कि ब्रांड न्यू सॉन्ग है एंड जो मूवी आई है ना मिर्जापुर उसका है एंड मधुर शर्मा की आवाज़. आई रियली लव दिस सॉन्ग. आई नो ये इस गाने के ना कई वर्जन बन चुके हैं बट ये लेटेस्ट वर्जन है एंड सांसों की माला. आहा
2: प्रीतम का कुछ दोष नहीं
1: क्या बात है. तो बस ये गाना कुछ ही देर में पूरा मैं आपको सुनाने वाली हूँ. उसके बाद इमरान और काशिफ है वो सुनना चाहते हैं ये गाना. देखो कौन सा गाना है मैं जहाँ रहूँ. आई नो दिस इज़ अ रीमिक्स वर्जन लेकिन अगर आप चाहें तो इसका ओरिजिनल वर्जन भी आई विल फिगर आउट एंड मैं आपको सुनाऊंगी. सो मैं जहाँ रहूँ नमस्ते लंदन फिल्म का बेहतरीन गाना. ये दोनों ही गाने आपकी राहों में आएंगे और हमारे लिसनर्स जो अभी हमारे साथ चलते चले जा रहे हैं और हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं मैं कहूंगी कि आप भी अपने पसंदीदा गानों की रिक्वेस्ट यहाँ कर सकते हैं बिकॉज दिस इज योर पर्सनल म्यूजिकल शो एंड द रिक्वेस्ट शो पर आप उन गानों की रिक्वेस्ट करें आज जो आपके टूटे हुए दिल को ना जोड़ देते हैं दे मेंड इट ठीक है. सो 666-22-107 666-22-107 इस नंबर पर अपने नाम के साथ हमें मैसेज करें और गानों का सिलसिला जारी रहेगा. सो एंजॉय ऑल्सो ठीक है. स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी.

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now. Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
2: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूसडे एट 3 PM, एट 3 PM ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.
3: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए. RJ A for अमिता के साथ AI लॉक्ड पर. एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए. तो सुनिए AI अनलॉक्ड, RJ A for अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी. आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो A for अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
4: Yes, now welcome once again FM 107. सुन रहे हैं आप The Request Show is on and definitely आज का जो थीम है बड़ा ही क्लासिक थीम है. मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो हर किसी की जिंदगी में आती ही आती है, दैट इज ब्रेकअप टू मेकअप. तो वो कौन से गाने हैं जिसने आपके टूटे हुए दिल को सहारा दिया, टूटे हुए दिल को जोड़ा और फिर से आपने कहा कि अब कोई दुनिया की ताकत मुझे नहीं रोक सकती खुश होने से. है कि नहीं? वेल, अभी हमारे कुछ लिसनर्स हैं जो 90s 80s की तरफ जा रहे हैं. देखो, थोड़ा सा नए गानों की तरफ भी जाओ. कोई नहीं, ये तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे. लेकिन अभी के लिए हमें रिक्वेस्ट आई है आसिफ कमाल की और कहते हैं कि अमिता मुझे ना ये गाना सुनना है. अच्छा, अभी जो दो रिक्वेस्ट मैं प्ले करने वाली हूँ, पहले बता दूँ, ये हमारे आमिर खान के गाने

करते हैं, एंड स्पेशली आमिर खान के जो कहते हैं ना बडिंग करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ये दोनों ही फिल्में जिसकी रिक्वेस्ट आई है. सो आसिफ कमाल सुनना चाहते हैं मुझे नींद ना आए, ओ हो मुझे चैन ना आए. ब्यूटिफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी दिल. एंड डेफिनेटली कहा जाता है कि जब इस फिल्म में आमिर खान ने काम किया तो उनके डूबते हुए करियर को वो कहते हैं ना कि एक मुकाम मिला, एक सहारा मिला, एंड देन वो आगे बढ़े. ओके, क्योंकि शुरुआती दौर में वो कहते हैं ना कि प्लस माइनस बहुत हो रहे थे. तो यस, ये गाना हमारे आमिर खान के लिए भी काफ़ी लकी है. एंड सेकंड रिक्वेस्ट आई है हमारे वन ऑफ द रेगुलर लिसनर प्रिंसन की, एंड ही सेइंग कि अमिता देखो इंटरनेट पर ना एक अलग तरह का ट्रेंड चल रहा है एंड आई वॉन्ट कि मैं भी ना कुछ उसी ज़माने का एक गाना सुनूँ. सो दिस इज़ द सॉन्ग उदित नारायण की आवाज़ में पापा कहते हैं, जो कि मैं कुछ ही देर में पूरा आपको सुनाऊँगी. So be ready. और आप क्या कर रहे हैं? आप भी अपनी लिस्ट भेजो भाई, ब्रेकअप टू मेकअप, वो कोई गाना जिसने आपके टूटे हुए दिल को सहारा दिया. सो 666-22-107, 666-22-107 इज़ आवर नंबर. अपने नाम के साथ अपनी एक एक लाइन की स्टोरी भी डाल सकते हो या किसी खास को गाना डेडिकेट भी कर सकते हो. तो जल्दी जल्दी मैसेज करो. और अभी के लिए दिल फिल्म का ये गाना आपकी राहों में आ चुका है. सो एंजॉय, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन। FM 107 सुन रहे हैं आप, आपका द रिक्वेस्ट शो हाजिर है। भाई, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और यहाँ पर आपके पसंदीदा गाने सिर्फ और सिर्फ प्ले होते हैं। तो आज का जो थीम है दैट इज ब्रेकअप टू मेकअप, कोई ऐसा गाना जो आपके टूटे हुए दिल को बिल्कुल मेंड कर देता है। फिर चाहे वो कोई भी गाना हो, तड़कता भड़कता गाना हो, स्लो सॉन्ग हो, एनी सॉन्ग जो आपके लिए परफेक्ट रहा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एंड देन आपने वापस से अपने आप को पाया। ठीक है, सो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं 666-22107 पर, 666-22107 पर, अपने नाम के साथ और किसी खास को कोई गाना डेडिकेट करना है, देन दिस शो इज जस्ट फॉर यू। पर अभी हमें रिक्वेस्ट आई है, ये है अनवर की और रिजवान की और मोहम्मद यूसुफ खान की। वो सुनना चाहते हैं राहत फतेह अली खान और रिचा की आवाज में ये गाना है। ये एक्चुअली आंखें नम कर देता है एंड या द सॉन्ग इज जग सुना सुना लागे। उफ, इट्स रियली, वो कहते हैं ना, दिल का दर्द एकदम से उजागर हो जाता है। सो दिस इज दैट सॉन्ग, ये मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। और उसके बाद ये बहुत खूबसूरत गाना है, आई मीन द अगली रिक्वेस्ट, और ये है शेख इरफान अल काजमी की और वो सुनना चाहते हैं। अच्छा, इनका नाम इरफान, इरफान कह सकते हैं इनको हम। ओके, एंड ही वॉन्ट्स टू लिसन टू दिस सॉन्ग, बागी टू फिल्म का वो साथी। सो डेफिनेटली ये गाना हम आपके लिए आगे प्ले करने वाले हैं। और आपकी प्लेलिस्ट क्या कहती है जनाब, जल्दी जल्दी शेयर कर सकते हैं आप 666-22107 पर, और यहाँ पर ये गाना फुल वॉल्यूम पे आप प्ले करेंगे। हाँ, ये जो गाना मैं प्ले कर रही हूँ, जग सुना सुना लागे, वाकई में दिल में दर्द थोड़ा तो होगा, है कि नहीं? बट इस दर्द को बिल्कुल दर्द की तरह ना लें, इंजॉय करें और आगे बढ़ें, क्योंकि ज़िंदगी खुश रहने का नाम है कि नहीं? स्टे ट्यून्ड।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
3: गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती, आपका

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: Absolute cinema.
0: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर थर्सडे रात 9 बजे से RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: Yes, and now welcome once again FM 107 सुन रहे हैं आप और हमारा द रिक्वेस्ट शो जो कि सिर्फ आपका पर्सनल म्यूजिकल शो है उस पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। और वो कहते हैं ना कि द रिक्वेस्ट शो अब धीरे धीरे अपने आखिरी मुकाम की तरफ बढ़ रहा है, तो इससे पहले कि हमारा आखिरी मुकाम आ जाए, आखिरी पड़ाव आ जाए, क्यों नहीं हम आपका फिल्मी नॉलेज चेक कर लें।
0: क्विज़ टाइम।
2: हाँ जनाब, तो क्विज़ टाइम पर एक गाना मैं बीच से प्ले करने वाली हूँ और उस गाने को आपको पहचानना है। देखो मैं अभी से बता देती हूँ, ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज में, एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग जो कि हर ब्रेकअप को मेकअप में बदल देता है।

Yes, guess the song. 666-22107, 666-22107 पर अपने नाम के साथ बताएं कि ये गाना कौन सा है. एंड डेफिनेटली अगर आपने सही गैस किया तो ये गाना मैं आपके नाम कर दूंगी, यानी कि आपको डेडिकेट कर दूंगी. लेकिन अभी डेडिकेशंस का वक्त है तो हमें इमरान बानी की रिक्वेस्ट है और उन्होंने एक बेहद खूबसूरत गाने की रिक्वेस्ट की है. कहते हैं कि अमिता ये गाना प्ले कर दो, ये मैं अपनी बेटी को डेडिकेट करना चाहता हूँ. एंड इट्स अ वेरी वो कहते हैं ना हार्ट टचिंग सॉन्ग है. एक रिश्ता है फिल्म का नाम एंड मोहम्मद अजीज की आवाज़ में है. हम खुश हुए सो ये गाना पूरा पूरा मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ. एंड देन रियाज, उफ रियाज की रिक्वेस्ट सुनकर लगता है, देखकर लगता है कि ये बहुत ही इंटेंस फीलिंग के साथ रिक्वेस्ट किया गया है. एंड द सॉन्ग इज़ मेरा इंतकाम देख

देखेगी, उफ वाओ. लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक हाँ. सो ये दोनों ही गाने आपकी राहों में आने वाले हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ. और अपनी रिक्वेस्ट 666-2107 पर जरूर अपने नाम के साथ कीजिए. स्टेडियम टू FM 107, दिल से दे

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: यस माय देसी ऑडियंस, वेलकम वेलकम वेलकम. द रिक्वेस्ट शो के आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. और क्या कहना, मतलब आज जो आपने गानों की रिक्वेस्ट की सच में दिल को छूने वाली थी. और हर दिन आपकी रिक्वेस्ट ना मतलब एक अलग ही कुछ लेवल की होती है कि लगता है वाओ यार, मतलब आपको अगर हम अपनी प्लेलिस्ट बनाने का मौका दें तो मतलब आप कमाल कर देंगे, है कि नहीं. वेल, हमने कॉन्टेस्ट में, हमारा जो क्विज टाइम होता है, उसमें एक गाना आपको बीच से सुनाया था और कहा था कि गाना पहचानो. यस, अरिजीत सिंह की आवाज का ये गाना है. बेहद बेहद खूबसूरत सॉन्ग है एंड दिस इज फ्रॉम द मूवी ए दिल मुश्किल का ये गाना है. और वो कहते हैं ना कि जब दोस्ती में प्यार आ जाता है तो कई बार उस रिश्ते को मुकम्मल करना बड़ा मुश्किल होता है. एंड दिस इज रियली ब्यूटीफुल ट्रैक. हाँ, और इसे पहचाना है हमारे लिसनर्स ने. आइए जरा उनके नाम देखते चलते हैं कि कौन कौन है जिन्होंने सही गेस किया है. दैट इज फलक है, आसिफ है, और ये जनाब कौन है. देखिए, नाम जरूर लिखा करें, आप लोग नाम नहीं लिखते हैं तो मुझे एक एक की प्रोफाइल में जाना पड़ता है. दैट इज मोहम्मद फयाज ने सही जवाब दिया, हुसैन ने सही जवाब दिया है, और कौन है, मोहम्मद अशफाक ने भी सही जवाब दिया है, प्रिंसन ने सही जवाब दिया है, सबीर ने सही जवाब दिया है, अकबर ने सही जवाब दिया है, और जिशान ने सही जवाब दिया है, मोहम्मद ने सही जवाब दिया है, मोहम्मद यूसुफ खान ने सही जवाब दिया है, इरफान ने सही जवाब दिया है. दैट्स सो स्वीट. एंड इरफान अली ने भी सही जवाब दिया है. सो गाइज, आप सब ने जो सही जवाब दे दिया ना, बस ज़ोरदार तालियां आपके लिए बजानी बनती है. और इसी के साथ ये बेहद खूबसूरत गाना आपके नाम हो जाएगा. तो आप ज़रूर इसे इंजॉय कीजिएगा फुल वॉल्यूम पे, क्योंकि ये गाना ना एक्चुअली दिलों को छूता है और वो हर ब्रेकअप जो हुआ है ना उसे मेकअप में बदल देता है. फिलहाल आपको मुझे देना होगा इजाज़त, क्योंकि वक्त हो गया मेरे जाने का. अब आपकी मेरी मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे, 4 से 5. कल क्या स्पेशल थीम होगी ये तो आपको कल ही पता चलेगा. बट यस, अपनी प्लेलिस्ट बिल्कुल तैयार रखिएगा, है कि नहीं. तो मीनवाइल क्या करना है, जो हमारा FM 107 है उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं एंड अपनी आर्जी अमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं. और अब जाते जाते ये कहना तो बनता है, हम हेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का

मांग करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.
3: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया. सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
4: गेम चेंजर सीजन 2. अस्सलाम दोस्तों, गेम चेंजर में आपका इस्तकबाल है. मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन. दोस्तों, गेम चेंजर शो में हम स्पोर्टिंग हिस्ट्री के मुख्तलिफ लम्हों को एनालाइज करते हैं जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट का सबब बना और कभी कभी गेम रूल्स भी तब्दील कर दिए. इस बार का गेम चेंजर थोड़ा नए तरह से क्यूरेट किया गया है. हैविंग सेड दैट, इस प्रोग्राम में खेलों की दुनिया से मुख्तलिफ हिस्टोरिक मोमेंट्स भी शामिल होंगे. तो चलिए शुरू करते हैं विद द स्पोर्ट्स हाइलाइट्स. गेम चेंजर सीजन 2. कतर के सैफ अल्दीन मोहम्मद ने एक बार फिर नया मायार कायम कर दिया है. कतरी एथलीट ने पोलैंड के सपोर्ट एथलेटिक्स में 5.90 मीटर की बुलंदी पार करके नया कौमी रिकॉर्ड बना दिया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 9 अक्टूबर से 21 नवंबर तक श्रीलंका और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों की मेजबानी करेगा. इस दौरान बायलेटरल और ट्राई सीरीज खेली जाएंगी जिसका ऐलान आज कर दिया गया है. और अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल दोबारा कतर में होने जा रहा है इस नवंबर को. तो ये थी आज के स्पोर्ट्स हाइलाइट्स. दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयटन सेना की लेगेसी के बारे में. आयटन सेना नाम तो सुना ही होगा, फॉर्मूला 1 के लेजेंड. यहाँ दोस्तों, फॉर्मूला 1 की तेजी भरी दुनिया में जहाँ स्पीड और प्रेसिशन का टकराव होता है, एक नाम हर इंजन के रोर से ज्यादा गूंजता है. आयटन सेना ब्राजील के थे. वो ड्राइवर जो सिर्फ रेस नहीं करता था, वो रेस को दोबारा डिफाइन करता था. वो इंसान जो सिर्फ मुकाबला नहीं करता था दोस्तों, वो खेल का चेहरा बदल देता था. ये कहानी है आयटन सेना की, ब्राजील का वो अफसाना जिसकी ब्रिलियंस, पैशन और परफेक्शन की तलाश ने उन्हें ट्रैक का शहंशाह बना दिया और हर आने वाली जनरेशन के लिए रोशनी का एक चमकता चिराग है आयटन सेना. अच्छा, तस्वीर कीजिए 1960s का साओ पाउलो, ब्राजील का वो शहर फुटबॉल के लिए काफी फेमस है. एक छोटा सा बच्चा जो गो कार्ट चला रहा है और जो उनके वालिद ने उन्हें गिफ्ट किया हाथों से बना, ये लड़का था आयटन सेना दा सिल्वा. आंखों में चमक और दिल में तेजी का जुनून. कार्टिंग ट्रैक के उस धूल भरे रास्ते से शुरू हुआ एक सफर जो सिर्फ ड्राइवर बनने का नहीं था, एक फेनोमेनॉन बनने का था. 13 साल की उम्र में लोकल गोकार्टिंग सर्किट्स का चैंपियन. उनकी प्रिसिशन, उनका फियरलेसनेस और मशीन को आखिरी हद तक ले जाने का वो हुनर सब कुछ साबित करता था ये बच्चा आम नहीं है. He was something different. लेकिन सेना को गेम चेंजर बनाने वाली चीज सिर्फ टैलेंट नहीं थी, वो था उनका नजरिया. वो रेस जीतने के लिए नहीं चलता था, बल्कि वो रेस करता था ताकि कुछ और बन जाए. आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ. समटाइम आप लोगों को लगता होगा कि क्रिकेट कोई खेलता है या फुटबॉल कोई खेलता है जस्ट बिकॉज ऑफ फेम. नो, जुनून, पैशन, उसको लाइक करना बहुत ज़रूरी है. उस स्पोर्ट को आप पसंद करते हैं इसीलिए आप खेलते हैं, ना कि आपको उसमें करियर बनाना है. उनके लिए रेस ट्रैक एक कैनवस था. हर कॉर्नर एक ब्रश स्ट्रोक और हर लैप एक मास्टरपीस. जब 1984 में सेना ने फॉर्मूला 1 का डेब्यू किया टोलमैन टीम के साथ, तो मोटर स्पोर्ट ने एक ऐसी ताकत का सामना किया जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। सेना का ड्राइव करना एक नज़म था, प्रिसिशन और ब्रेवरी का एक परफेक्ट मिक्स। उनके डेब्यू सीजन टोलमैन के साथ एक धमाका था, 1984 का मोनाको ग्रैंड प्री। बरसात हो रही थी लेकिन सेना ने एक अंडरडॉग कार में सेकंड पोजीशन हासिल की, ऑलमोस्ट एलन प्रोस्ट को ओवरटेक कर दिया था। एलन प्रोस्ट उस जमाने का नंबर वन फॉर्मूला वन ड्राइवर। मोनाको का वो नैरो और डेंजरस ट्रैक सेना का प्लेग्राउंड बन गया और उन्होंने मोनाको 6 दफा जीता आगे जाकर। अब सोचिए इस बात को, और मिल गया टाइटल किंग ऑफ मोनाको। लेकिन बात सिर्फ स्पीड की नहीं थी दोस्तों, सेना का कनेक्शन कार के साथ स्पिरिचुअल था, जैसे वो कार का हिस्सा बन जाता था। 1988 में मोनाको क्वालिफाइंग रेस में सेना ने प्रोस्ट को 1.4 सेकंड से पीछे छोड़ दिया। प्रोस्ट, वही प्रोस्ट नंबर वन फॉर्मूला वन के बेताज बादशाह थे उस जमाने में, और खुद सेना कहते हैं, जैसे मैंने ट्रांस में था, अपने जिस्म से बाहर एक और दुनिया में। मतलब उनको यकीन ही नहीं था कि उन्होंने एलन प्रोस्ट को हरा दिया। यह था सेना का तोहफा, एक मशीन के साथ वो कनेक्शन।

सिर्फ ड्राइवर नहीं था, वो इंजीनियर भी था। उनका टेक्निकल फीडबैक, कार के डिजाइन, एरोडायनामिक्स, सस्पेंशन, सब कुछ बदल देता था। कहते हैं ना कि आप गाड़ी जब चलाते हैं तो गाड़ी के ईच एंड एवरी पार्ट्स को आपको जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ आप स्टीयरिंग व्हील के स्टीयरिंग व्हील को आप संभालने के लिए नहीं बैठते हैं, यू नीड टू नो द मैकेनिक्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल, जो भी आपके पास गाड़ी है, जो भी है, बाइक भी चलाते हैं तो उसको भी आपको जानना जरूरी है कि उसका हर एक पार्ट्स, हर एक उसके जो यू नो वायरिंग्स है, सब कुछ यू शुड हैव दैट नॉलेज। और वही बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आयटन सेना के लिए, जो आयटन सेना, ही लव द कार मोर देन हिमसेल्फ, सो ही न्यू द कार। उनको पता होता था कि क्या फॉल्ट है, क्या डिफेक्ट है, गाड़ी अगर तेज नहीं जा रही है तो उनको फौरन पता चल जाता था। दैट्स द काइंड ऑफ कनेक्शन ही हैड विद द कार्स। सेना के स्टैंडर्ड्स मैक्लारेन और विलियम्स जैसे टीमों के लिए ब्लूप्रिंट बन गए। तो समझ लीजिए इस बात को, मॉडर्न फॉर्मूला वन का बेस उनके इनपुट से बना। दिस इज सो मच फैसिनेटिंग स्टोरी। एक ड्राइवर के इस इंजीनियरिंग नॉलेज को मैक्लारेन और विलियम्स जैसे कंपनियों ने भी अपना ब्लूप्रिंट बना।

बढ़ गई। सेना की जीत की भूख हर लिमिट से आगे चली गई। 1990 में सुजुका पे दोबारा तकरार, सेना चैंपियन बना, लेकिन दुनिया दो हिस्सों में बांट गई। कुछ ने कहा रुथलेस, कुछ ने कहा पैशन, लेकिन सब ने मान ये बंदा कभी पीछे नहीं हटा। सेना और प्रोस की ये टकरार, यानी ये जो फाइट्स, यानी फॉर्मूला वन के ट्रैक की बात करूं, इसमें फॉर्मूला वन को एक ग्लोबल फिनोमेनन बना गई। और ये सिर्फ रेस नहीं थी, ये ड्रामा था, इमोशन था, और 200 माइल्स पर आवर पे चलती हुई इंसान की कहानी थी। अच्छा, ट्रैक के बाहर भी सेना एक हीरो था, ब्राजील के लिए एक उम्मीद का नाम। हालांकि ब्राजील, एज यू ऑल नो, कि फुटबॉल में ब्राजील को हर कोई जानता है, यू नो दे वर द चैंपियन, दे आर द लीडिंग टाइटल विनर्स ऑफ द वर्ल्ड कप। और आज भी ब्राजील की बात

सपोर्टर या फुटबॉल फैन ऑफ ब्राजील, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि हमें यू नो आयटन सेना जैसे कोई एक किरदार, कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन हीरो था ब्राजील के लिए, और एक एक उम्मीद का नाम, एक मुल्क जो मुसीबत से गुजर रहा था उसका यू नो अगर देखें कि द टिपिंग पॉइंट, अगर देखें द ग्लोइंग पॉइंट, द ग्लोइंग पॉइंट एंड अच्छी वाली बात जो थी उस जमाने में वो था आयटन सेना. देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और वहीं पे एक पॉजिटिव वाइब जो है वो आयटन सेना लेकर आया था. 1991 का ब्राजीलियन ग्रांप्री, अपने ही मुल्क में जीत का पहला मौका, और दर्द से छलकता हुआ वो लम्हा जब उनका जिस्म थक गया था लेकिन रूह जीत गई थी. विक्ट्री के बाद वो फ्लैग लहराता हुआ, आंखों में आंसू और दिल में सुकून. सेना एक स्पिरिचुअल आदमी था दोस्तों. वो कहता था, मेरी एबिलिटी, मेरी रेस, सब कुछ खुदा का तोहफा है. क्या बात है, उनका हर लैप एक इबादत था. ये समझना बहुत जरूरी है, हम ऑलवेज वी एनालाइज अ स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम हिज स्पोर्ट्स, आई मीन फ्रॉम हिज और हर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेस, लेकिन हम कभी भी इस तरह एनालाइज नहीं करते हैं कि वो इंसान भी तो है और उनके इस परफॉर्मेंस के पीछे क्या क्या स्ट्रगल्स, क्या क्या यू नो उनकी इबादत है, हमें बिल्कुल पता नहीं चलता जब तक आप उनके बारे में गहराई से आप पढ़े नहीं. तो अगर आप पढ़ते हैं आयटन सेना को, और आई मीन मैं ये कहना चाहूँगा कि नॉट ओनली आयटन सेना, देर आर सो मेनी स्पोर्टिंग लेजेंड्स अराउंड अस, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब हम गहराई से उस नॉवल के जरिए, स्पोर्ट्स हिस्ट्री के जरिए हम जब उनकी उनको हम देखते हैं और उनकी लाइफ को अगर हम थोड़ा सा ए टू जेड परखते हैं, तो हमें भी पता चलता है कि भाई वो भी तो इंसान थे, लेकिन इस इंसान ने भी क्या कमाल करके दिखाया विद द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस. आई मीन आयटन सेना जो कि कार्टिंग के रेस से शुरू करके फॉर्मूला वन का बेताज बादशाह बना, एंड दिस इज समथिंग फैसिनेटिंग, समथिंग सो एनकरेजिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ ड्राइवर्स हु केम एंड रियली अडोर्ड आयटन सेना. और जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि सब कुछ खुदा का तोहफा था, खुदा का तोहफा था. सच अ ब्यूटीफुल लाइन दैट ही सेड, कि वो कुछ नहीं है, वो इंसान है, ही इज जस्ट परफॉर्मिंग, एंड दैट परफॉर्मेंस कि जो पीछे जो यू नो दो एनर्जी है, इट कम्स फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम अल्लाह, एंड दैट इज सो ब्यूटीफुल. दोस्तों सेना ने रेस सिर्फ जीती नहीं, उसे रिवोल्यूशनाइज भी उन्होंने किया. ड्राइवर फिटनेस, रिफ्लेक्स ट्रेनिंग, फोकस, वो सब कुछ करता जो दूसरे भूल जाते हैं. हमें ये लगता है कि गाड़ी पर आप बैठ जाते हैं, जो आई मीन नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर्स की बात कर लें, दोहा में आपने बहुत सारे ऐसे टैक्सी ड्राइवर्स देखते होंगे. आई एम नॉट कंपेयरिंग फॉर्मूला वन रेस विद द नॉर्मल ड्राइविंग ऑन द रोड, लेकिन ये जो फिटनेस की बात हो रही थी कि फिटनेस भी इतना इम्पॉर्टेंट है फॉर एनी ड्राइवर, और फॉर्मूला वन रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए. आई मीन काइंड ऑफ स्पीड आपकी बॉडी जो है ना, वो लगता है कि स्पेस में है. तो उस फिटनेस, उस रिफ्लेक्स ट्रेनिंग और उस फोकस को अगर आप मजबूती से, अगर आप उसको फोकस, आई मीन अगर आप नहीं देखते हैं, अगर आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं करते हैं, नहीं देते हैं, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है हर फॉर्मूला वन ड्राइवर्स के लिए. इसीलिए तो कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, और यहाँ पर सिकंदर जो है आयटन सेना ही था, बिकॉज ही डिडंट ओनली फोकस ऑन ड्राइविंग, फोकस्ड ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग अ चैंपियन ड्राइवर, जैसे कि रिफ्लेक्स ट्रेनिंग की बात की, बहुत सारे एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे फिटनेस मॉड्यूल से आपको गुजरना पड़ता है. इट्स नॉट जस्ट कि आप हेलमेट पहन लिए और उस गाड़ी के अंदर आप बैठ गए और आपने गाड़ी को घुमा दिया लैप बाय लैप. आप यू नो दिस समथिंग मोर इनटू बिकमिंग अ चैंपियन, जो कि आयटन सेना ने दिखाया था. उनका अप्रोच मैं समझता हूँ बहुत साइंटिफिक था, और नए ड्राइवर्स उनके फुटप्रिंट्स पर चलने लगे थे. लेकिन दोस्तों एक अफसोस की बात, वो दिन आया जो फॉर्मूला वन रेस की तारीख में सबसे आउट से ब्लैक डे, सबसे ट्रॉमेटिक, सबसे ट्रेजिक डे, दैट वाज 1994 फर्स्ट मई, सैन मारिनो ग्रांप्री इटली के, और इमोला का टम्बुरेलो कॉर्नर और एक क्रैश. काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आप लोग देख सकते हैं, ऑन आयटन सेनाज ट्रेजिक एक्सीडेंट एट द इमोला, जहाँ दुनिया ने अपना चैम्पियन खो दिया. और इसीलिए आज भी लोग आयटन सेना को एक लार्जर देन लाइफ लेजेंड, क्या कहूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके बारे में हम कह सकते हैं. तो वो डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए आप थोड़ा

अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का वो ड्राइवर थे, किस तरह का लिविंग लेजेंड थे जो इमोला के उस रेसिंग ट्रैक में बस यू नो ख़त्म हो जाते हैं। सेना की मौत सिर्फ एक लॉस नहीं थी, वो एक अवेकनिंग थी। और उनके जाने के बाद नए सेफ्टी मेजर्स आए कि फार्मूला वन रेस में देयर वर सम लूप होल्स, जो बाद में पता चला इंक्वायरी में, इंस्पेक्शन में, कि देयर वर सम लूप होल्स ट्रैक में, कुछ लूप होल्स गाड़ी के इंजन को लेकर बहुत सारे ऐसे सवालात उठाए गए हैं जिसे क्वेश्चन मार्क लग गया था कि वेदर फार्मूला वन रेस इज सेफ और इट इज अनसेफ। बेटर बैरियर्स, इम्प्रूव्ड कार डिजाइन, स्ट्रिक्टर रूल्स, यहाँ पे सेना गेम चेंजर था। और वो अपने जिंदगी को दाव पे लगाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग। इससे पहले एक वाक्या हुआ था and it is a sort of a hint for him ki there is something wrong with the car engines, there is something wrong with the track. aapne dekha hoga barriers hote hue, barriers rakhe jate hain on the formula 1 race track mein, to pehle ye bahut hi mamooli si matlab andaaz se organizers lete the, are chalo drivers hain wo to gaadi ghuma hi lenge, lekin kabhi kabhar aisa hota nahi hai, aapko thoda sa andaaza hona chahiye ki you know the speed of formula 1 रेस कार, स्पीड ऑफ अ फार्मूला वन रेस कार, मतलब किस अंदाज से ये लोग गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को होना भी चाहिए। इट्स अमेजिंग अमेजिंग स्पीड, और इसको कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल है, स्पेशली एट द बेंडिंग। 360 किलोमीटर फी घंटा, विच मीन्स 220 माइल्स पर आवर ऑन स्ट्रेट वेज। The highest speed officially recorded during a Grand Prix weekend is 378 km per hour, which means 234.88 miles per hour. और ये रिकॉर्ड किया था Valtteri Bottas ने 2016 के यूरोपियन ग्रैंड प्री में। जबकि मॉडर्न अगर गाड़ियों की बात करूँ, फॉर्मूला वन की बात करूँ, तो 200 से 230 miles per hour on fast circuits में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि how difficult is to maintain फॉर्मूला वन कार। और यहाँ पर देयर वर लॉट ऑफ लैक्यूने, यानी लॉट ऑफ गैप्स थे जो कि सेना ने अपने मौत से पहले 1994 इमोला ट्रैक के हादसे से पहले ही उन्होंने सबको नॉक कर दिया था, यानी सबको अलर्ट कर दिया था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन फार्मूला वन रेसिंग, और इसमें अगर तब्दीलियाँ ना लाए जाए तो खतरा ही खतरा है। और जो कि यू नो उन्होंने अपनी जान देकर ये साबित कर दिया कि देयर वाज रियली समथिंग मिस्टीरियस, रियली समथिंग रॉन्ग इन द रेसिंग ट्रैक्स ऑफ फार्मूला वन। उनके जाने के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस आए, रूल्स में कंट्रोल कर दिया गया है, रूल्स के साथ साथ रेस ट्रैक को सही तरह से सजाया गया, बैरियर्स बनाए गए और मेडिकल यूनिट्स को हर जगह पे तैनात कर दिए। और आज के मॉडर्न रेसेस में हम वो 1994 वाली जो बात थी, जो हादसा हमें देखने को मिला था, वो होता ही नहीं है, बिकॉज इट हैज़ बीन लिमिटेड, इट हैज़ बीन कट डाउन, दोज काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स हैव बीन कट डाउन। फौरी तौर पर कोई ना कोई पहुंच ही जाता होगा, देयर आर हेलीकॉप्टर्स, इमीडिएटली आपको शिफ्ट कर दिया जाता है टू द हॉस्पिटल, नियर बाई हॉस्पिटल। और जैसे कि मैंने कहा इससे पहले भी कि आयटन सेना के जाने के बाद नए सेफ्टी मेजर्स आए, बेटर बैरियर्स बने, इम्प्रूव्ड कार डिजाइंस, स्ट्रिक्टर रूल्स, और उनके जाने के बाद फॉर्मूला वन जिंदा रह गया। आई मीन दिस इज समथिंग, आई मीन आयरनी है, आयरनी है कि आज अगर आयटन सेना होते तो क्या वो कर डालते, क्या रेसेस जीतते, आई मीन उस सेफ्टी मेजर्स के साथ। थोड़ा सा आप तसव्वुर कीजिए कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि क्रिकेट के हवाले से मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब यू नो प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं थे उस ज़माने में, तो बैट्समैन को कितना परेशानी होती थी, क्योंकि आपको सिर्फ फ्लॉपी एक कैप पहन के बैटिंग करने जाते थे, गार्ड्स बहुत सारे नहीं होते थे, पैड्स तो डेफिनेटली वॉज दैट, बट एल्बो गार्ड, चेस्ट गार्ड ये सब नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग ऑफ 1930s, 40s, 50s, 60s की बात कर रहा हूँ मैं, हेलमेट्स तो प्रिवेलेंट ही नहीं थे उस जमाने में, लेकिन अब क्रिकेटिंग गार्ड्स एंड इनफैक्ट इन फुटबॉल ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ इफेक्टिव मेजर्स हैव बीन टेकन टू सेव गार्ड द प्लेयर। और वहीं इमोला में जो हादसा हमें देखने को मिला 1994 में, वो एक यू नो अ बिग क्वेश्चन मार्क वाज पुट अप ऑन फार्मूला वन ऑर्गेनाइजर्स, ऑन फार्मूला वन FIA की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि आप लोग कर क्या रहे थे, एंड देयर वाज सो मच गैप्स, एंड कौन इस चीज को इस हादसे के पहले ही somebody pointed it out, एंड ही वॉज आयटन सेना। सोचिए आयरनी है।

इट्स एन आयरनी, जिस साहब ने, जिस बंदे ने इस चीज को पॉइंट आउट किया वही खत्म हो गया। तीन वर्ल्ड टाइटल्स 1988, 1990, 1991, 41 रेसेस उन्होंने जीते ओवरऑल और उसमें 65 पोल पोजीशंस। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स हैं, असल जो विरसा ये है कि सेना ने फॉर्मूला वन का लेवल को बढ़ा दिया, उनके पैशन, उनका जज्बा, और उन्होंने रेसिंग को एक आर्ट बना दिया। माइकल शूमाकर से लेकर लुई हैमिल्टन तक सब ने कहा सेना हमारा हीरो है। और आज भी मार्क वेस्टपिन, जो कि मॉडर्न फॉर्मूला वन रेस का जो वन ऑफ द स्टार्स हैं, वो भी मानता है कि आयटन सेना वाज समथिंग। और ब्राजील में इंस्टीट्यूटो आर्टन सेना आज भी हजारों बच्चों की जिंदगी रोशन कर रहा है। वो चैंपियन था सिर्फ ट्रैक पे नहीं, इंसानियत में भी। लाइक इट्स अ फाउंडेशन जो आयटन सेना ने बना के गया बच्चों के, यू नो, मुस्तकबिल के लिए, यू नो, बेटर फ्यूचर के लिए। नॉट ओनली जस्ट रेसिंग की बात हो रही है, फॉर एजुकेशन, फॉर द सोसाइटी दैट एवरीबडी वॉन्ट्स टू कंट्रीब्यूट, वो आयटन सेना करके गए थे। और आज इसीलिए ही इज नोन नॉट जस्ट एज अ फॉर्मूला वन यू नो रेस चैम्पियन, बट एज अ नाइस जेंटलमैन, एज अ पर्सन जो कि अपने समाज के लिए कुछ करके आप गए थे और आज भी लोग उसको याद करते। तो क्यों कहते हैं कि सेना गेम चेंजर था, क्योंकि वो सिर्फ ड्राइवर नहीं था दोस्तों, वो एक इंस्पिरेशन था। वो सिर्फ जीता नहीं, जीत की डेफिनेशन बदल गया। उनकी राइवलरी ने स्पोर्ट को दुनिया भर में ले गया और उनकी मौत ने स्पोर्ट को महफूज बना दिया। मैंने बताया आपको कि कितना आयरनी है इस बात को देखिए, जिस इंसान ने आवाज उठाई और उसी इंसान की आवाज जो है बंद, आई मीन ही डाइड ऑन द इमोला ट्रैक। व्हाट अ ट्रेजेडी। मैं तो अभी भी, जब भी मुझे टाइम मिलता है, आई वॉच दीज डॉक्यूमेंट्रीज। ये डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल हैं टीवी के, यू नो, चैनल्स पर आप देख सकते हैं, एंड सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स पर भी आपको ये नज़र आ जाएगा। ये जो वाकया मैं बता रहा हूँ, इमोला रेसिंग ट्रैक का ये जो हादसा 1994 फर्स्ट में, एक पूरी सीरीज है और इसको आप देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें गलतियां थी, एंड नॉट फ्रॉम आयटन सेना की पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फ्रॉम द फॉर्मूला वन रेस ऑर्गेनाइजर्स की जानिब, कि क्या क्या मिस्टेक्स उन्होंने किए थे जिसकी वजह से एक चैंपियन रेस, एक चैंपियन ड्राइवर जो है, यू नो, उस उनके गलतियों से एक चैंपियन ड्राइवर जो है वो जिंदगी से हाथ धो बैठता है। एंड ही वॉज सो यंग आयटन सेना, ही वॉज सो यंग। हमें आज भी इसीलिए कहते हैं कि आयटन सेना अगर कोई लेजेंड है फॉर्मूला वन में तो आयटन सेना, 1960 से लेकर 1994, हार्डली 34, आई मीन 34 में ये एक बड़ा, यू नो, हादसा था, बड़ा एक, यू नो, लॉस है फॉर द फॉर्मूला वन रेस, फॉर द फॉर्मूला वन, यू नो, डिफरेंट जो जनरेशन के ड्राइवर्स आए हैं उनके लिए। ही वॉज इमैक्युलेट, ही वॉज समथिंग जो कि आज भी लोग एक एग्जाम्पल देते हैं, आयटन सेना। एंड क्या क्या मूवीज बनी हैं इसके ऊपर, ये भी आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज ही वॉज अ लेजेंड अपने ही, यू नो, जिंदगी में। जो बहुत से होते हैं ना कि स्टार्स बन तो जाते हैं, लेकिन लेजेंड के स्टेटस में पहुंचने के लिए यू हैव टू क्रॉस अ सर्टेन एज लिमिट, लेकिन वो इस कम उम्र में पीपल, एक्सपर्ट्स सब ने कहा कि ही वॉज अ लेजेंड। और एट द एज ऑफ 34 आयटन सेना टाटा बाय बाय कर देते हैं इस दुनिया को, और फॉर्मूला वन रेस बिकम्स मच मोर मॉडर्न एंड मच मोर सेफ फॉर द फ्यूचर ड्राइवर्स। और इसके पीछे आयटन सेना का एक बहुत बड़ा अहम किरदार रहा है। तो आयटन सेना एक लेजेंड, एक आइकन, और वो शख्स जिन्होंने खेल का रुख बदल दिया। तो ये आयटन सेना की बात आज हमने किया टू मेक यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझाने के लिए कि गेम चेंजर जो ये एपिसोड्स हैं, जो आने वाले टाइम में हम भी और पेश करेंगे ऑन मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर, तो ये गेम चेंजर एक्चुअली है क्या। द गेम चेंजर बेसिकली हम इस पे हाईलाइट इसीलिए कर रहे हैं कि हम उन खिलाड़ियों के ऊपर बात कर रहे हैं जिनके अपने परफॉर्मेंस के बलबूते पर, जिन्होंने अपने प्रेजेंस के बलबूते पर उनके उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को चेंज किया, यानी नए रास्ता दिखाया, कोई मार्गदर्शन जिसको हम कहते हैं, टू शो अ न्यू वे to achieve the bit

0: betterment of that sport, not only just winning medals. जैसे मैंने कहा कि सेना medals के लिए अपनी गाड़ी को नहीं भगाता था, सेना driving इसलिए करता था क्योंकि उनके साथ उनका इस रेस के साथ और you know speed के साथ एक लगाव था. और यहाँ पर ही एक you know one of the leading legend कतर के हैं जिनके बारे में hopefully मैं चंद हफ्तों में ही पेश करूँगा. Same to same, उनसे कई बार मैंने पूछा, ये सवाल पूछा था कि आपको क्या मोटिवेट करता होगा, ओवर द इयर्स यू हैव बीन यू नो कॉम्पीटिंग पार्टिसिपेटिंग मेडल्स भी जीता है. तो उन्होंने एक साफ अल्फाज में कहा था कि मोहब्बत, यानी लगाओ, यानी उस खेल के साथ मोहब्बत करना. किसी की चीज़ भी आप देख लीजिए, आप पढ़ाई के साथ मोहब्बत करेंगे तो यू विल रियली गेन समथिंग, काम के साथ आप करेंगे तो यू विल गेन समथिंग. दोज आर कॉल्ड creativities, and यहाँ पर Ayrton Senna was one of the creative artist. तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और interesting sports character के साथ. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और sound designer शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.
1: सीजन 2 FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 स्टूडियो की घड़ी में 6:02 और आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग।
2: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
3: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: हाँ जी आवाज वगैरह तो आ रही है ना, इस्तकबाल है फिर तो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। FM 107 पे फजील के साथ है। अब क्या है हाल चाल और काम इतना ज्यादा करो कि आपको वक्त का दिन का पता ही ना चले। आज मुझे लग रहा था मंडे है, काफी देर बाद रियलाइज हुआ अरे ट्यूजडे हो गया यार आज तो। देख रहा काम में इतना ज्यादा मुक्तला हो जाए आपको पता ही ना चले। यार वैसे आज बड़ी जबरदस्त एग्जीबिशन से होकर आ रहा हूँ और ये सब तो आपको

पता ही होगा, 8th ऑफ सितंबर से यानी कि आज से सहेल कटारा इंटरनेशनल हंटिंग एंड फेल्कन्स एग्जीबिशन हो रहा है, जो कि 8 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक चलेगा। वेल, बड़ा ही मजेदार, क्या खूबसूरत, कैसी कैसी चीज़ें वहाँ पर रखी हैं फेल्कन से रिलेटेड, हंटिंग से रिलेटेड, जो बहुत दूर दराज इलाकों में जाते हैं, रेगिस्तान के अंदर तक जाते हैं और फेल्कन और फेल्कन के साथ हंटिंग करते हैं, तो यार उनके लिए जो चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल थी तो मज़ा आ गया। तो मुझे लगता है ये एक इकलौता ऐसा इवेंट है जिसके बारे में आपको तो ज़रूर जानना चाहिए। उसका एक ख़ास और बड़ा मकसद है, उसका रीज़न ये है कि किसी भी शहर के मुल्क के बारे में अगर आपको जानना है तो वहाँ के ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज के बारे में जानिए, हिस्ट्री के बारे में अगर जानना है तो वैसे ही सहेल भी आपको आपको कतर के हेरिटेज, कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में बड़े बारीकी से बताएगा, लेकिन मॉडर्न तरीके से, है ना। तो क्योंकि धीरे धीरे अब जो कल्चर है ये थोड़ा चेंज भी हो रहा है। अब क्या, एक ज़माना था हंटिंग के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जाता था फेल्कन का, लेकिन अब गन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, बेहतरीन कार्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो 4x4 कार्स है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन अब आपको जाने का दिल है, आप कैसे जाएंगे? वैसे सब तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस आपने सोचा कि यार आज जाएंगे तो ऐसे नहीं जा सकते। आपको सहेल का एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ से जाकर आप रजिस्टर करिए और फिर टिकट को डाउनलोड करिए, देन यू कैन गो। ठीक है, तो ये तरीका है, आसान तरीका यही है कि आप जो है टिकट ले, हालांकि है एकदम फ्री, पैसे नहीं लगेंगे, ना पैसे 1 रुपए भी नहीं लगेंगे, लेकिन उसका तरीका यही है कि जब भी आपने अगर सोचा कि यार हमें जाना है मजे करने, तो सहेल ऐप है, उस ऐप में जाइए, फिर करीब से आप उन फेल्कन्स को देख सकते हैं जो लाखों रियाल के हैं, बाइनोकुलर्स को देख सकते हैं, गन्स वहाँ पर एक से एक नए ज़माने की लगी हुई है वो आप देख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ आप करीब से एहसास कर सकते हैं, भले आप फेल्कन के हंटिंग के लिए या फेल्कन के साथ हंटिंग के लिए नहीं जाते। ऑक्शन भी आप देख सकते हैं, ये 5 दिन, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 5 दिन आपके लिए है सहेल ऐप फॉर कतर, जहाँ पर कटारा इंटरनेशनल हंटिंग एंड फेल्कन एग्जीबिशन का टिकट आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कहाँ से मिल जाएगा ये सब तो बताने की ज़रूरत नहीं, मैं तो बस बता रहा था कि यार है तो बड़ी गजब की और लाजवाब जगह। फिलहाल अब आते हैं हल्के हाथ से आज के शो की तरफ, और आज बड़ा स्पेशल दिन है, अगर मैं रिक्वेस्ट शो कर रहा होता तो आज आशा जी के गाने में प्ले कर रहा होता, लेकिन क्या कर सकते हैं, आशा जी के गाने प्ले नहीं कर सकते, लेकिन उनकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट तो लोग कर ही रहे हैं। बाकी उम्मीद है कि आपने गाने तो सुने ही होंगे, और फिलहाल खूबसूरत सा एक ट्रैक जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और जब वापस आएंगे तो फिर हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि आज का सवाल क्या होने वाला है। आज का सवाल इंटरेस्टिंग है और मुझे पूरा यकीन है कि आज के सवाल से आप कनेक्ट कर पाएंगे। आपकी ज़िंदगी में इस सवाल का हिस्सा तो है, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में हिस्सा है। फिलहाल कितने बेचैन हो के अनप्लग्ड मेल वर्जन सुनिए करण नवानी की आवाज में FM 107 पे। फजील के साथ है, आप वापस आते हैं कुछ ही देर में, दिल से देसी।

0: FM 107 पे फजील के साथ हैं आप।
1: आप सुन रहे हैं Unplugged Evening with RJ Fazil.
2: Only on FM 107, दिल से देसी।
0: हाँ जी, दिल से देसी। 6:08 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और अभी से लेकर 7 तक हमारा और आपका साथ। और आज के टॉपिक पर आते हैं। यार आज का टॉपिक ना, मुझे घर में एक सामान देखने के बाद याद आया यार इस पर भी बात हो सकती है। तो एक दिन मैं कश्मीर गया था पिछले साल, तो वहाँ पर ना खरीदारी इंसान कहीं जाता तो करता ज़रूर है। वहाँ पर मैंने केसर देखा और केसर के बाद जो है आप अपने आप को संभाल नहीं पाते, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है ना। और फिर जो कार में बैठा था बंदा, जो ड्राइवर था, उसने हम लोगों को हर जगह घुमाना था और घुमाते घुमाते वो कश्मीर की हर एक खूबसूरत बात के बारे में वो बताता था। तो अपने को लगा यार ठीक है, हर एक चीज़ बढ़िया, ये भैया वो फलाना जगह चले जाओ वो अच्छा है, फलाना जगह चले जाओ अच्छा है, ये खरीद लो वो खरीद लो। तो खरीदने में उसने ना 2-4 चीज़ें बताई, उनमें से एक था केसर। तो केसर के बारे में जब उसने बताया तो मैं और मेरी बीवी इन्फ्लुएंस हो गए। और वो था केसर को खाने के बाद या केसर का पानी पीने के बाद चेहरा लाल होता है ना, आपके गोरापन आता है, बाल अच्छे होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें उनने बताई। मैं कहा यार ये तो अच्छी बात है। पर हम लोग एक जगह गए वहाँ से खरीद के लेकर आए कि भाई इसको तो खाएंगे पियेंगे। लेकिन उसको लाने के बाद मैं 3-4 डिबियाँ लेकर आया था, शायद छोटी छोटी, वो होता शायद 10-10 ग्राम 5 ग्राम, बहुत महंगा होता है, 1.5-2 लाख रुपए किलो का ऐसा कुछ, 3 लाख रुपए किलो का। तो अपन 1.5-2 ग्राम 3 ग्राम लेकर आए या शायद 10 ग्राम, आई डोंट नो। फिर उसके बाद इस्तेमाल तो एकदम हुआ ही नहीं यार, लेकिन वो तो 1-2 बार उसमें पानी भर कर और 4-6 पत्तियाँ डाल दी। फिर एक दिन मैं ज़्यादा पी गया तो चक्कर अक्कर आ जाता, भाई ये भी है उसका कि ऐसा नहीं हो कि एक ग्लास में 4-6 पत्ती डाल जाओ, ऐसा सर घूमेगा ना भाई आपको कोड़े वाला आदमी याद आ जाएगा सामने से, वो रहे ना रहे, सॉरी कोड़े वाले भैया आपकी बात हो गई, लेकिन वो हो जाता है। और अगर 1-2 पत्ती डाले तो फिर इस्तेमाल नहीं, तो बहुत बड़ा मतलब ऐसा सेटअप करके डालना पड़ता है। तो मैंने सेटअप करके डाला, 2-4 बार इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद सेटअप से यार इंसान थक गया, फिर मैंने उसको कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो मैंने कहा यार ये चीज़ हो सकती है, आज इस पर सवाल ही हो जाए कि हम दुनिया में अपने अपनी ज़िंदगी में कितनी फिजूल की चीज़ें खरीदते हैं यार, लेकिन उसका इस्तेमाल ही नहीं होता है कभी। जैसे ये जो 1-2 ग्राम की पत्तियाँ हैं जिसमें बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं, वो केसर बहुत सारे होते हैं, मतलब पत्ती भी नहीं होती है वो तो केसर है बस, ये तो समझ लो। और बहुत सारे थे उसमें, अब 2-4-10 ग्राम में भी बहुत सारे होते हैं, मेरे ख्याल में एक साल चल जाए इतना अगर आप एक दिन में एक भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो। लेकिन उसका इस्तेमाल जो है अपन दोबारा करें नहीं। फिर ये बार अब हार्ड में जाए, कौन गोरा हो रहा, हम हटाओ यार कौन बाल सही करे यार, बड़ी मेहनत का काम है, पानी फिर उसके बाद वो डालो, इस्तेमाल ही नहीं किया और वो रखी हुई है, चाय पी रहा था मुझे वो केसर दिख गया यार और ऐसा भी नहीं कर सकते कि चाय के अंदर केसर डाल दो फिर टेस्ट खराब हो जाता है, तो वैसे ही पड़ा हुआ है। अब वो एक्सपायर तो हो ही नहीं, चीज़ जिंदा है तो जिंदा है, बस वो उसमें कीड़े पड़ेंगे तभी वो जाएगी हमारे घर से बाहर। तो वो मैं उस पर कुछ कर भी नहीं रहा। लेकिन आज का सवाल यही है कि हम जिंदगी में कितनी फिजूल की चीज़, कितनी बेवजह की चीज़ें खरीदते हैं जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो ऐसे ही आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा ये सवाल भी इसलिए कि आप जो चीज़ें बताएंगे ना कि अरे यार ये चीज़ हमने खरीदी और फिजूल की निकली, किसी काम की नहीं थी, तो ऐसे में बाकी लोगों को पता चल जाएगा हाँ यार ये देखो फलाना आदमी फजील भाई ने भी केसर खरीदा, कोई इस्तेमाल हुआ नहीं, हम भी नहीं खरीदेंगे। आपके पैसे बचा रहा हूँ मैं बस, या आप दूसरों के पैसे बचा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में मुझे बताइए, नंबर है 666-22-107, कि आपने अपने घर में फिजूल का कोई एक सामान लिया हो, या फिर आपको उस वक्त जब आप खरीद रहे थे तो आपको लगा हो कि ये मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये रहेगा ना तो सब कुछ सही हो जाएगा, ये रहेगा ना तो मेरी ज़िंदगी तृप्त हो जाएगी, ये रहेगा तो मेरी ज़िंदगी एकदम परफेक्ट हो जाएगी, इसके बगैर ही तो मैं अधूरा फील कर रहा था, और फिर जब आपने ख़रीद लिया तो ठेंगा उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं आया वो पड़ा है तो पड़ा है। भाई ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा गौर करना है, वो आप बताइए। हमारा नंबर है 666-22-107, 666-22-107। आप यकीन नहीं मानेंगे मेरा भाई, मैं सच में अपने गर्दन की चमड़ी पकड़ कर बता रहा हूँ आपको एक बार ना होता है खूबसूरती के लिए इंसान बहुत काम करता है, तो मेरी बीवी ने पता नहीं क्यों क्या दिमाग में था अल्लाह जाने भाई, तो एक बहुत ही अजीब एप्लीकेशन आया है, उसमें आपको सामान जो दिखेगा आप वो सामान मंगवाते हो, जब वो घर आता तो आपको पता चलता है इतना छोटा सामान है, नाम नहीं ले सकता मैं, वो कतर में तो बहुत ज़्यादा उसका नाम है, टी से नाम शुरू होता है, ठीक है बाकी तुम समझ लो तो उसमें होता ये है कि आपने कुछ भी ऑर्डर, एक तो सस्ता सस्ता सामान और देखने में लगता है हाँ ये तो सबसे सही सामान है और इसकी तो ज़रूरत थी, और वो पड़ा हुआ है लाश बन के, तो ऐसे ही ना मेरे घर पे मेरे बेगम ने मंगवाया वो जिससे जॉ लाइन बनती है, और भाई वो किसी काम का नहीं है। और जॉ लाइन ऐसा भी नहीं कोई मशीन हो, मशीन को लगा दो मुंह पे तो अपना काम करे, उससे खुद ही हाथ से काम करना पड़ता है। और वो है एक साबुन की शक्ल, देखी आपने साबुन, बस किनारे से साबुन कट गया है इतना समझ लो, बस वैसे ही है वो, उसको आपको चेहरे पर रगड़ना पड़ता है। ये सामान की जरूरत क्या थी भाई, क्या जरूरत थी ये, लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं ये महिलाओं के जिंदगी में जो चीजें आती इसका तो और ज्यादा इस्तेमाल। मर्द तो फिर भी खरीद के 4-6 बार इस्तेमाल कर रहा है, भाई मैंने आज तक उसका इस्तेमाल देखा ही नहीं घर पे, और वो कूड़े के माफिक पड़ा हुआ है। बस सवाल यही है कि आपकी जिंदगी में ऐसे क्या फालतू की चीजें हैं जो घर में पड़ी हैं। एक और चीज मेरे घर में थी, मैं रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूँ आपको और इजी समझ में आएगा। और वो थी जैसे होता ना इंसान थोड़ा झुककर चलता है, तो अपने को लगा कि यार अगर ये सामान खरीद लेंगे, और फिर वहीं से खरीदा था वही एप्लीकेशन जिसको आप पीठ पे थोड़ा बांधते हैं और वो रस्सी टाइप की होती है, गर्दन के पीछे से ले जाके वो पीठ से होते हुए आती है और फिर वो पेट पे थोड़ा सा टाइट हो जाती है तो आपका सीना थोड़ा सा सीधा हो जाता, अलाइन हो जाता है। भाई साहब हमें लगा इसी की तो कमी है, ये आ जाएगा तो मैं स्मार्ट दिखने लग जाऊंगा, और ये वाला तो मैंने खुद ऑर्डर किया है भाई, एक दिन पहना है। पहले तो मैं मोटा इतना तो वो आ ही नहीं रहा था, दूसरा मंगवाया। जब दूसरा मंगवाया तो पता चला वो है तो सही लेकिन बैठो तो खुल जा रहा है, और उसका भी सिर्फ एक दिन इस्तेमाल हुआ, वो भी भाई कूड़े के माफिक हमारे घर में पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं है, कोई एक रुपए का उसका काम नहीं है। यार आप बताओ आपके पास ऐसा क्या सामान है जिसका कोई काम नहीं है लेकिन आपने खरीद के रखा हुआ है, ईमानदारी से बताना, आपकी ईमानदारी छलकेगी आज। व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107, 666-22-107। हिशाम साहब का सलाम आया बहुत पहले ही आ गया, वालेकुम अस्सलाम। सलाम एक और भाई का है, वालेकुम अस्सलाम। मुबीन साहब का है मैसेज, मेहर देकर एक खूबसूरत चीज ली थी, सुना था काम की बहुत, अरे यार। ये वाला तो नहीं बोलना था भाई, मोहम्मद सादिक साहब मेहर देगी बहुत खूबसूरत चीज ली थी, सुना था काम की है बहुत, पर हमारे साथ कुछ उल्टा पड़ गया और रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है। अरे हाँ भाई, और ये वाले पॉलिसी में है कि रिटर्न सिर्फ साल में एक बार होता है, और उस रिटर्न पॉलिसी का नाम है मायका। इसके अलावा तो और कुछ काम आप कर भी नहीं सकते ना भाई, क्या काम करेंगे इसके अलावा आप रिटर्न पॉलिसी में क्या करेंगे। और जो रही बात मेहर की, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि हमने दिया और हम ही को काम करना पड़ रहा है, उल्टा हमारा लोड बढ़ गया है थोड़ा सा, नहीं ऐसा ऐसा फील नहीं होता कि पहले तो अपनी ही जिम्मेदारी संभाल रहे थे अब दो लोगों की जिम्मेदारी। अरे ये ओनो रिवर्स तो मैंने चला भी नहीं था, लेकिन हुआ कैसे ये? ये तो भारी पड़ गया अपने ऊपर। लेकिन एक चीज है, उसका नाम है मजबूरी, यही है भाई मजबूरी, और क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद, अरे मेरा भाई यही तो मैं कह रहा था, हाँ बिल्कुल सही। एक भाई का नाम है रहमतुल्लाह, आई गेस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, माय नेम इज आल्सो हैव दिस आइटम। अच्छा माई इनके घर में भी एक ऐसा ही आइटम है, बिल्कुल सही भाई, ये दिल के माफिक दिखता है और सही है, मतलब पतला साबुन जो घिस घिस के एकदम पतला हो जाता है, और भाई ने बाकायदा फोटो भेजी है उसकी, अपने घर पे ही बैठ के इन्होंने ढूंढा मुझे लग रहा है। ये ऐसा समझो रंगीन ब्लू कलर का या पिंक कलर का साबुन है जो पतला हो गया है और अब वो दिल के शेप में आ गया है, कभी भी बीच से दो हो सकता है, ये वही है जो जॉ लाइन बनाने के काम में आती है, और ठेंगा इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रही है भाई। बिल्कुल सही फोटो भेजी है मेरा भाई आपने, ये हमारे घर में बस कूड़े के माफिक पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं, अभी मैं एक एक करके बताऊंगा ना तो आप लोगों को लगेगा अरे यार इसके घर में सामान नहीं है, इसके घर में कूड़ा है बस ये रह रहा है। वागी दिलबर साहब का मैसेज है, सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरा भाई जान। अल्हम्दुलिल्लाह दिलबर साहब बेहतरीन है, आपका नाम ही यार बड़ा गजब का है। धनिया, मुबीन भाई ने लिखा धनिया, धनिया तो फिर भी काम में आ जाती है मेरा भाई। मुबारक शाह का मैसेज है, हाय हाय मुबारक भाई, कैसे हैं, उम्मीद अच्छे होंगे। मेरे घर में एक पंखा रखा हुआ है, पुराना पंखा है, मेरे माँ इसको मेरी माँ ने इसको भेजा था लेकिन मैंने मना किया है, इसकी कीमत बहुत कम है लेकिन मैंने वैसे ही रखा है बस। इशाक साहब, हाँ यार ये भी होता है ना कि आप जब एक तो कतर में आ गए, आपको पंखे की ज़रूरत थी भी नहीं, यहाँ तो घर भी रेंट पे लो तो एसी साथ में मुफ्त में मिलती है, ख़राब हो जाए तो तुम्हें सही करानी है, वो अलग है। लेकिन सही, अच्छा यहाँ पर उल्टा है, आप सही कराने जाएं तो न्यू आइटम जो आप ले रहे हैं उससे ज़्यादा महंगा पड़ जाता सही कराना। टीवी टूटती है भाई घर में, 1200 की LCD लगेगी, 1100 में नई टीवी आ जाएगी, हैं? कुछ कैलकुलेशन तो समझ में ही नहीं आती भाई, अपने सर से बाहर होती है। वैसे ये पंखा है लेकिन ठीक है, पंखा चल तो रहा है कम से कम, जिस दिन एसी काम नहीं करेगी पंखा आपको जिंदा तो रखेगा, जिंदा होना चाहिए इंसान को। आगे एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, वालेकुम अस्सलाम, मेरी वालिदा की सेहत ख़राब है, सभी लिसनर्स से रिक्वेस्ट है कि दुआ करें, प्लीज़ दुआ करें, और हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा ख्वाजा साहब। फिर अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, एक और ही मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, भाई क्या बात है, मेरे घर हॉट पॉट रखा है फिजूल का, नहीं तो ये तो अच्छी बात, अगर हॉट पॉट फिजूल का है तो उसका मतलब गरम रोटी आपके बिल्कुल प्लेट में आ रही ना डायरेक्ट, ये कौन सी बात है। देखो ये घर का हारा हुआ बंदा है, घर का हारा हुआ बंदा वो यही करता है कि अरे भैया मेरे घर में हॉट पॉट रखा हुआ किसी काम का नहीं है, मेरी बेगम ने कह दिया था खरीद लो बड़े इस्तेमाल में आएंगे, लेकिन फिर सच में उसका इस्तेमाल नहीं है फिर ना, तो अच्छी बात है यार, मेरे घर में तो सिर्फ हॉट पॉट का इस्तेमाल है और मेरे घर में तीन है, एक का है दो का इस्तेमाल ही नहीं है, धुले ही नहीं जाते हैं कभी, अगर मेरी बेगम किसी दिन शो सुन लेना भाई साहब कसम से दूसरा नया बेलन आएगा मेरे घर में क्योंकि फिर पुराना वाला मेरे सर पे टूटेगा और रिपेयर का कोई चांस तो है नहीं यहाँ पे तो चलो भैया 6:20 हमारे स्टूडियो के घड़ी में, बाकी लोगों के मैसेज कुछ देर में हम पढ़ेंगे। सवाल यह है कि आप फिजूल की जो चीजें खरीद के घर पे रखे हुए हैं वो क्या क्या चीज है, है ना, हम सब अपने घर में काफ़ी बेकार फिजूल की चीज़ें खरीद कर रखते हैं और ये सिर्फ रखी रह जाती हैं, फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं फिजूल जो आप घर पे रखे हुए हैं, आपने ख़रीदारी करी उस वक्त आपको लगा कि नहीं यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लेकिन फिर वो सच में किसी काम की थी नहीं और वो बस घर पे रखी हुई है, तो वो बताएं, नंबर है 666-221-07 666-221-07। राजदीप चटर्जी की आवाज में ये थोड़ा स्लो सॉन्ग अनप्लग्ड वर्जन का, और गाना है अभी ना जाओ छोड़कर, दिल से देसी।

0: one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं।
4: अरे पर कुछ मिस हो गया तो? इनफैक्ट हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए, वरना बेचैनी रहेगी ना।
3: उफ, पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना।
5: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की, जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर ओपिनियन मैटर। सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर, हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 आरजे नाजिया और आरजे सरवर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
6: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
7: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
8: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
9: हाँ जी, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। 6:33 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और आज का सवाल यह था कि आपके घर में फिजूल की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका कभी इस्तेमाल नहीं किया आपने, आपने खरीदी बड़े जोश और खरोश के साथ लेकिन कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया, और क्यों नहीं किया? वैसे उसका रीज़न अगर है तो वेल डन, आप तो वो रीज़न भी बताइए। बाकी वो कौन सा सामान है जो खरीद लिया लेकिन इस्तेमाल कभी नहीं किया, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं। एक भाई ने तो इसमें बिजनेस ही ढूंढ लिया है, नाम पता नहीं, नाम लेना है कि नहीं लेना है, बशारत भाई साहब ने बताया नहीं तो, लेकिन मोहम्मद बशारत ने कहा है कि जिसके पास फजूल का आइटम है लोकेशन दो। भाई ने हल्के हाथ से क्या बिजनेस ढूंढा है, बहुत ही उम्दा। मुझे वैसे ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं सच में, जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, है ना। अब जितने भी लोग हैं, अगर भाई को लोकेशन शेयर कर दे तो देखो आपके घर से सामान कम हो जाएगा, किसी की इनकम हो जाएगी। देखो भाई ने हल्के हाथ से बिजनेस ढूंढ लिया है, अब वो 2 रुपए का जो जॉलाइन बनाने वाला है वो अगर 1 रियाल में बिक जा रही है तो क्या क्या बुराई है, क्या बुराई क्या है, लेकिन बड़े हैं। उसके अलावा एक मैसेज है मेरे पास, एक क्रिकेट बैट है पुराना, भाई ये आपने फिजूल का, देखो कुछ चीज़ें ना खरीदते नहीं है आप, कुछ चीज़ें इन्वेस्टमेंट होती हैं, आए आए, जैसे आप अपने बच्चों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो ऐसे नहीं कि यार बच्चे की ज़रूरत थी ले ली, नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट कर रहे। क्रिकेट बैट इन्वेस्टमेंट है, स्पोर्ट्स खेलना इन्वेस्टमेंट है आपके ऊपर, आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वो है इन्वेस्टमेंट। बाकी देखो मेरे को चीजें, बाकी जैसे और भी स्पोर्ट है, फुटबॉल अपने को इतना वो नहीं, लेकिन क्रिकेट इज लव। तो दिलबर साहब आपके पास जो बैट पड़ा है मेरे को दे सकते हो अगर नहीं खेल रहे तो, लेकिन अगर फिर भी आपने रखा हुआ ना तो उस बैट को अगर हाथ में लेकर एक दिन हफ्ते में बैकफुट पंच कर पा रहे हो, कवर ड्राइव कर पा रहे हो, तो बस वो उतनी देर के लिए जो खुशी आपके दिल में उतर रही है वही तो है जिंदगी, और क्या कुछ है। तो वो इन्वेस्टमेंट अपने साथ रखो, किसी के साथ वक्त गुजारना गुजारना नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होता है। हाय क्या बात कह दी। अगर आप अपने घरवाली के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ कहीं ड्राइव पर निकलते हैं ना तो वो वक्त गुजार नहीं रहे, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या बात है यार, कभी कभार लाइन तो बहुत कर रही आ जाती है। भाई साहब एक और ये मैसेज है, और इनका नाम है, नाम ही तो नहीं है, टीजी लिखा हुआ बस, लेकिन प्रोफाइल पर तो यही है, और अगर मैं ऊपर देखूं तलहा फ्रॉम, ओके तलहा भाई हैं ये, अपने वाले तलहा नहीं है, दूसरे वाले हैं शायद, लेकिन ठीक है। तलहा भाई ने कहा है कि स्लीपिंग बैग कैंपिंग के लिए ले तो लिया बट कैंपिंग पे गए ही नहीं 3 साल से। अरे भाई तुमने जो बात बताई है ना तलहा साहब, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये वाला जो कीड़ा है ना हर एक शख्स के अंदर कभी ना कभी तो आया होगा, है ना। जैसे ही आप मुल्क में आते हैं आपको बीच दिखता है, बीच दिखने के बाद आपको बीच बीच में एक शौक लगता है, और वो है टेंट खरीदने का शौक। बीच पे जाएंगे, रात में रुकेंगे, चांद सितारे देखेंगे, हवा चलेगी, मजा आएगा, सारा ढह जाता है। मैंने भी सोचा था, मैं बाकायदा गया टेंट लेने के लिए, मैंने टेंट लेने का एकदम सोच लिया था, प्लान कर लिया, फिर मैंने अमाउंट देखा 500 का यार, हटाओ यार कार में सो लेंगे। हाँ भाई 500 कौन खर्च करे। फिर मेरे को लगा कि चलो एक दो बार अगर ऐसा हो गया कि पूरी पूरी रात रुक गए कार में भी रहते हुए, तब, क्योंकि मेरा तरीका वही है, किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले मैं उसे पर्सनल लेवल पर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे जिम जाने से पहले अपने घर के अंदर कितना मैं एक घंटा दे सकता हूँ बॉडी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको, जैसे मुझे कभी कभार ऐसा भी लगता है कि यार ट्रेडमिल ले लूँ क्या एक, लेकिन उससे पहले घर के बाहर कितना दौड़ सकता है भाई तू, तो मैंने ना जिम का कोई इक्विपमेंट लिया है ना ही ट्रेडमिल लिया भी। देखिए आप इसे अलग लेवल का पागलपन कह सकते हैं। लेकिन स्लीपिंग बैग भी मैं एक बार ले रहा था तलहा साहब की तरह, और ये वाला कीड़ा मेरे अंदर भी बहुत कुलबुलाया था, बट फिर मैंने नहीं लिया। उसके बाद कभी ऐसा हुआ

0: भी नहीं कि मैं रुका हूँ इतना लंबा। फिर उसके बाद ये मैसेज है फलक का, भाई कैसे हो, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाए कैसे हैं फलक, उम्मीद है आप भी बहुत बेहतरीन और लाजवाब होंगे। उसके अलावा एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरे घर पे सोफा पड़ा है, उस पर बैठता तक है, सोफे पे नहीं बैठते मेरे भाई। भाई ये कैसी चीज़ है यार, ये तो काम की चीज़ है यार। मेरे घर में तो सोफा अगर है भी तो मैं फालतू का सामान रखकर इस्तेमाल कर लेता हूँ यार, ये कैसे हो सकता है, बड़ी अजीब बात है भाई। ठीक है, और क्या फिजूल का सामान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा पिछले वाले का नाम, एक मिनट पिछले वाले का नाम तो देख लूँ। पिछले वाले भाई का नाम है यूनुस। ओह यूनुस भाई, बहुत दिन बाद ये नाम सुना यार। फिर एक और ये मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है जुहेब साहब, कहते हैं कि भाई मेरे घर पे हर वो सामान फिजूल का है जो मैंने नहीं ली है, घरवाली का। घरवाली ने जो भी लिया वो फिजूल का है, ऐसा ऐसा लगता है जब आप उस तरफ नहीं होते ना तो ऐसा लगता है। वो कहते हैं ना कि दूसरे के थाली का रसगुल्ला सबसे बढ़िया लगता है, बस वही वाली बात है, ऐसा होता नहीं है। फिर और ये मैसेज है, भाई मैं तो अपने घर का वाईफाई भी फिजूल ही कहता हूँ, घर से ज़्यादा ऑफिस रहता हूँ। यार आपने तो शायरी मार दी हल्के हाथ से। नाम आपका क्या है? अली साहब इनका नाम है। ओके अली भाई। फिर उसके बाद एक और ये मैसेज है, वाईफाई तो यार इस्तेमाल हो जाता है, आप रात में भी जाते हैं तो इस्तेमाल कर ही लेते हैं। अब वो अलग बात है कि पूरे दिन का पैसा दिया हुआ है लेकिन इस्तेमाल जो है 10 रियाल 20 रियाल ही हो रहा है। अली भाई ने मैसेज भेजा। अली भाई हम आपके मैसेज को सुन चुके हैं और आपको रिप्लाई भी दे चुके हैं, बाकी अगर कुछ हो पाता है तो मैं जुगाड़ करवाता हूँ आपका। बाकी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले अब एक खत की बारी है, और ये खत होगा आपके उस घर पे पड़े हुए फिजूल के बेकार के सामान को, जो आपने खरीद तो लिया लेकिन उसका इस्तेमाल आपने कभी नहीं किया। अगर आपको एक खत लिखना हो उस लज्जित, उस बेशरम सामान को जो घर के कोने में पड़ा हुआ, जिसका एक रत्ती भर का आपने इस्तेमाल नहीं किया लेकिन खरीदते हुए आपको लग रहा था ये बहुत ज़रूरी है, तो वो ख़त आप क्या लिखेंगे? डियर लिखने के बाद जो भी वो सामान का नाम है आप फिर दिल खोल कर वो ख़त लिखें। सुनते रहे FM 107। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियाँ, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानी।

0: उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
1: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर एक बजे से ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
3: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
2: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 से ओनली ऑन एफएम 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
4: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
5: हाँ जी, दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। 6:49 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और आपके खत जो है वो हमारे पास पहुंच चुके हैं। मुझे सबसे बढ़िया चीज़ ये लगती है कि आप अपने दिल के दर्द जो है वो खत में निकाल देते हैं। क्या बात है। मतलब सवाल ये था कि आपको ये बताना है आपके घर में कितने फिजूल के सामान है जो आपने खरीदे, आपको खरीदते समय लग रहा था कि यार ये तो क्या काम की चीज़ है, लेकिन फिर उसका इस्तेमाल कभी किया नहीं। और सच में मुझे भी बड़ा बेकार लगता है कि जिस चीज़ का इस्तेमाल नहीं है और इंसान वो सामान खरीद लेता है। एक तो फिजूल खर्ची है और फिर फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए। लेकिन फिर भी आपने सामान खरीदा, ऐसे तो मैं भी कोशिश करता हूँ लेकिन कहीं ना कहीं फिजूल का सामान खरीद ही लेता हूँ। लगता कि आए हाय क्या काम की चीज़ है, लेकिन पड़ी है तो पड़ी है। तो सवाल यही था कि ऐसी क्या फिजूल की चीज़ है जब आप खरीद रहे थे तो आपको लगा कि बड़े काम की है लेकिन फिर उसके बाद वो पड़ी रही। तो भाइयों ने तो, एक दो लोगों ने तो फिर वो भेज भी दिया कि अरे जॉ लाइन बनाने के लिए जो आइटम है ना वो मेरे घर पे भी पड़ा हुआ, मेरे घर पे भी है। कूड़े बने हुए भाई। और एक भाई ने तो मेरे दिल की बात ही कह दी है खत में। उस पर आएंगे, एक एक करके मैसेज पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम है अबू बकर भाई। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ भाई का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी ट्यूसडे इवनिंग आपको भी। फिर एक और भाई का मैसेज है और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है और अक्सर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भी। ये है इरफान साहब का मैसेज, कहते हैं डियर, नहीं नहीं ये वाला नहीं, रुको ये तो दूसरा वाला है। इनका नाम कहाँ गया यार, नाम ढूंढना पड़ेगा मुझे, एक मिनट को पहले नाम, क्योंकि ये वाला ना असल में हम लोग के साथ होता है। नाम है इनका अब्दुल है। ओके अब्दुल साहब, जो पूरा सर्च करना पड़ता है। अब्दुल भाई ने बहुत ही, और ये हमारा घर भी गराज बना रहता है, मेरे घर तो नहीं लेकिन मैंने कईयों के घर देखा है। और इन्होंने वहाब है क्या है यार फेसबुक अब्दुल, तो इनने लिखा है कि डियर बच्चों साइकिल चला लिया करो, घर गराज लगता है, नहीं तो सेल कर दूंगा। ये खत कितना छोटा है आप देखिए। ये खत मुझे इसलिए ज्यादा लग रहा है कि बच्चों के लिए सरकैज़म है, इसलिए नहीं कि घर में फिजूल का सामान रखा हो तो उसको हम खत लिख रहे हैं। ना ना ना ना ना, वो खत नहीं है। ये खत बच्चों के लिए है, घर को गराज जो बना के रखा है वो। अक्सर ऐसा होता भी, और कतर में यार साइकिल चलाना आसान नहीं है और खास तौर पर गर्मी में। अब आप मतलब अब्दुल साहब नहीं कर सकते आप, भार तो बच्चों पर नहीं लाद सकते। हाँ ये अलग बात है कि कतर में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल का ट्रैक है और ये ट्रैक लगातार चलता रहता है, लेकिन डियर बच्चों साइकिल चला लिया करो, घर गराज लगता है, नहीं तो सेल कर दूंगा। उसके अलावा इरफान भाई का मैसेज है और इरफान भाई लिखते हैं डियर, मैं पहले समझ नहीं पाया मैं कि जादू लिखने की कोशिश कर रहे हैं क्या है, फिर मुझे समझ में आया झाड़ू कह रहे हैं। डियर झाड़ू, कभी तुम भी काम कर लिया करो, सारा काम वैक्यूम करता है, तो झाड़ू खरीदा क्यों मेरा भाई। क्या पता था ये दिन देखना पड़ेगा। बताइए झाड़ू के लिए खत पढ़ रहा हूं मैं। मतलब पूरा मूड ही खराब हो गया।
6: तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया।
5: मतलब क्या करेंगे, अभी तो करना ही पड़ेगा। सवाल पर, लेकिन इरफान साहब मैं आपका दर्द समझता हूँ। तो वैक्यूम क्लीनर ले आए तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, वैक्यूम तो इस्तेमाल में हो रही है ना, झाड़ू फेंक दो मेरा भाई अगर इस्तेमाल नहीं है, किसी को बेच दो। एक भाई है उनने कहा है, उनने कहा है जिसके घर जो भी फालतू सामान है मेरे को लोकेशन दो, मैं आकर लेकर जाऊंगा। फिर आबिद भाई ने भी एक मैसेज किया, सलाम वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं पहले मैं डर गया, मैं कहा ये क्या बात लिखी है, फिर इनने जो बाकी की लाइन लिखी थी मैं उसमें थोड़ा सा सुकून हुआ। आपको भी समझ में आएगा लिखा है।

इन्होंने डियर वाइब्रेशन बेल्ट, तो उसके बाद इन्होंने लिया भी था, लिखा डियर वाइब्रेशन बेल्ट लिया था, तुमने खरीद के तुमको खरीद के अकाउंट ही हल्का हुआ है, मैं नहीं। हाँ वो होता है ना, एक बेल्ट आती है जो पेट पे लगाओ फिर वो वाइब्रेट करती है, उसमें से पसीना निकलता है, इसके विजुअल्स तो बड़े अच्छे लगते हैं, लगता कह रहे यार ये दुबला करेगा, सिक्स पैक्स आ जाएंगे। तो सच्ची बात तो ये है कि तुमको खरीदने के बाद पेट जो है वो वहीं का वहीं है, अकाउंट हल्का हुआ है, पेट तो कोई हल्का नहीं है। कितनी सत्यता है इस बात में, लेकिन ये सब तो बहुत पुराने ज़माने में लोग खरीदते थे, अब तो कोई खरीद भी नहीं रहा यार बेल्ट वेल्ट। बाकी एक और मैसेज है जावेद साहब का, लिखते हैं डियर ऑल, मैं ये वाला मैसेज जब भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, डियर ऑल क्या आप सबको कह रहे हैं या घर में जो सामान पड़े वो? डियर ऑल, सारे सामान बिक जाओ तो मेरी सैलरी बन जाएगी एक महीने की, मतलब इस बात में बात नहीं है लेकिन ठीक है, मैं आपके दर्द को जो है वो समझ सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरा भाई, इकबाल नेपाली साहब का मैसेज है, गनी साहब ने मैसेज किया है, फौजी भाई अस्सलाम वालेकुम, एक बार मैं अपने मोटरसाइकिल के लिए स्पेशल लाइट ख़रीदा, जब घर गया तो मोटरसाइकिल ही नहीं थी, पूछा कहाँ है, उसने बोला कि उसको तो बेच दिया, लाइट अभी भी पड़ी हुई। भाई वो मोहम्मद साहब का मैसेज आया था कि लोकेशन भेज दो, जिसके घर में भी जो सामान पड़ा हो मैं आ जाऊँगा लेने के लिए। अगर वो लाइट पड़ी है फालतू की तो बताओ, लेकिन ये तो आपके साथ गजब की गनी साहब ट्रेजेडी हो गई यार। एक तो कोशिश भी करा यार कि कार खूबसूरत लगे, घर में गाड़ी खूबसूरत लगे, लेकिन कोई मसला नहीं। हाउ आर यू ब्रदर फजल, मैं बहुत अच्छा हूँ उस्मान साहब, आप सुनाए कैसे हैं? फजल भाई आप मुझे ये बताएं कि चार दिन से कतर में ट्रैफिक क्यों ज़्यादा है? यार एक तो कटारा की तरफ एक इवेंट चल रहा है सहेल वाला, मुझे वो रीज़न लगता है, और मुझे भी थोड़ा एहसास है कि थोड़ा सलवा रोड पे भी मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिखा कल, तो है यार, लोग एक साथ निकल कर आ गए होंगे। उसका एक और बड़ा रीज़न मुझे लगता है कि सितंबर का ये जो शुरुआत का महीना है, लोग छुट्टी मना कर आ गए हैं और गाड़ियाँ एकदम से ज़्यादा हो गई हैं, है ना, सब अपने अपने मुल्क में थे, तब आपको तीन महीने लग रहा था कि यार ये तो सब हंकी डोरी चल रहा है। फिर सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम गुलाम रसूल साहब का, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, टुडे इज़ माय सन्स बर्थडे। गुलाम भाई के जो भी मतलब जितने और भी कहीं जो बच्चे हैं उनको गुलाम गौस को बहुत बहुत बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद। फिर ये एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम फजल भाई कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, सैयद खादिम साहब को सलाम है, का सलाम लिखते भाई ये मुगल फ्रॉम मुगल, ठीक है मुगल भाई की तरफ से सलाम है, लेकिन खादिम भाई को मेरे थ्रू क्यों सलाम, आप खुद उधर से कर लो यार, ये तो कोई बात नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई, क्या वालेकुम अस्सलाम भाई कैसे, मैं अच्छा हूँ आसिफ की कैसी, आप सुनाए कैसे हैं? आसिफ भाई देखो ये जो सवाल आपने किया है ये आपको सुबह करना पड़ेगा सवाल, इसके लिए मैं आपकी वफादारी को समझता हूँ लेकिन इस वक्त मेरे पास ये आइटम नहीं है जो आप आइटम मांग रहे हैं स्टोरी, लेकिन आपको सुबह आपको ज़रूर मिल जाएगी, है ना। फिलहाल 6:56 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, मुझे इजाज़त लेने का वक्त आ गया, वरना कोड़ा वाला जो आदमी है ना वो उधर से कोड़ा दिखाना शुरू कर दिया उसने कहा चलो बाहर आओ, क्योंकि अभी कुछ ही देर में हो रहा है न्यूज़ का वक्त, आपको न्यूज़ बुलेटिन सुनने को मिलेगी, कतर की तमाम खबरें आपको यहाँ FM 107 पे सुनने को मिलेंगी। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, एक खूबसूरत सा ट्रैक आ रहा है अरिजीत सिंह और अकासा की आवाज में, साथ में रोचक कोहली, FM 107 पे दिल से देसी।

0: इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल, भाई जहां हम बात करते हैं जिंदगी के उन पहलुओं पर जो अक्सर हमारी नजर से छुप जाती है। भाई मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा और आज का हमारा टॉपिक है द हिडन रोल्स वी प्ले एट वर्क। हर रोज दोस्तों जब हम अपनी नौकरी पर जाते हैं हम सिर्फ अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन ही नहीं लेकर जाते, हम मेंटर भी होते हैं। भाई किसी ना किसी के तो मेंटर होते ही हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर भी होते हैं, इनोवेटर भी होते हैं और कभी कभी कल्चर बिल्डर भी बन जाते हैं। ये वो रोल्स हैं जो किसी आईडी कार्ड पर लिखे नहीं होते लेकिन हमारी असली पहचान बना देते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तीन अहम टॉपिक्स पर और वो क्या हैं? हु आर वी बियॉन्ड वर्क, पर्पस एंड ग्रोथ, और आखिर में चलते चलते हम बात ऐसी कुछ करेंगे जो बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो तैयार हो जाइए एक मीनिंगफुल बातचीत के लिए। आइए दोस्तों अब इस एक बात पे बढ़ते हैं कि हु आर वी बियॉन्ड वर्क। अक्सर हम अपनी पहचान को अपनी नौकरी के साथ जोड़ देते हैं। भाई जैसे ही कोई पूछता है आप कौन हैं, हम फौरन ही जवाब देते हैं मैं इंजीनियर हूं, मैं टीचर हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं। लेकिन क्या हम सिर्फ वही हैं जो हमारी जॉब का नाम है या हमें जो जॉब दी गई है?
2: उर्दू रेडियो एफएम 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है के दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अजान का वक्त हो गया है।

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: इस दुनिया में रहते हुए हर शख्स को अपनी जिंदगी में अच्छे और बुरे हालात का सामना जरूर होता है। इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और अपनी बेहतरी के लिए दुआगो रहना चाहिए। याद रखिए कि दुआएं मुसीबतों का रुख बदल देती हैं। दुआएं मांगते और देते रहा करें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम और अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप पर रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए।
1: पैगाम ऑन FM 107।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
5: समझकर सेल्फ वर्थ को जॉब टाइटल्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं हम, यूजुअली ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आपकी नौकरी अच्छी है तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर नहीं तो आपको लगता है कि आप कमजोर हैं या दुनिया को ऐसा लगता है कि आप कमजोर हैं। ये मिसकंसेप्शन तोड़ना जरूरी है। आप अपनी फैमिली में कितनी वैल्यू क्रिएट करते हैं, अपनी कम्युनिटी में कितना फर्क लाते हैं, ये सब चीजें आपकी असली पहचान है। भाई छोटी छोटी एक्शंस जैसे कि मदद करना, मुस्कुरा देना किसी को देखकर, या अपने बच्चों को वक्त देना, अपनी फैमिली को वक्त देना, अपने दोस्तों को वक्त देना, ये सब आपकी वर्थ को डिफाइन करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मीनिंगफुल जिंदगी जीने के लिए आपको एक डिफाइंड टाइटल की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्किल्स और जज्बात से दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, अगर कल आपकी जॉब टाइटल खत्म हो जाए तो आप अपनी पहचान खो देंगे या किसी चीज से डिफाइन करेंगे? सोचिए और हमें अपने थॉट्स भेजिए। भाई सोच समझ के फैसले कीजिए, सोच समझ के अपने आप को प्रेजेंट कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या हूँ। क्या मैं वही हूँ जो रोज सुबह ऑफिस जाता है और ऑफिस से वापस आता है और बस खत्म? नहीं, आप वो हैं दुनिया के लिए जो लोग देखते हैं। जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आपकी शख्सियत वही है दरअसल में।

दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल सरवर मिर्जा के साथ। कहीं भी मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और जानेंगे कि कैसे हम अपने टाइटल से बाहर निकलकर दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं।

0: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ।
1: वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद दोस्तों। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल, जहां बात हो रही है आपके जॉब टाइटल से हटके। भाई आप जो हैं वही नजर आना जरूरी नहीं, आपकी जो शख्सियत है वो दुनिया भर में छलकनी चाहिए, चमकनी चाहिए, दिखनी चाहिए। तो आइए इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ग्रोथ और पर्पस क्या है या किस तरह होती है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। तो हम सबके अंदर स्किल्स, टैलेंट्स और पैशन छुपे होते हैं जो अक्सर हमारी नौकरी से अलग होते हैं। भाई सवाल ये है, क्या हम उन्हें एक्सप्लोर करते हैं? सक्सेस को अक्सर पैशन और पोजीशन से मेजर किया जाता है, लेकिन असली सक्सेस क्या है? अपने अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव डेवलप करना, यही मेन सक्सेस है। जब आप अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं और वो आपसे खुश हो जाते हैं और आपकी शख्सियत से मुतासर होते हैं, भाई यही तो असली चीज है जो हम चाहते भी हैं, तो फिर हम अपने जॉब टाइटल को ही सामने रखकर आगे क्यों बढ़ते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। भाई अपने अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव डेवलप करें, अपने

जज्बात को समझें और अपनी जिंदगी को बैलेंस करना सीखिए, यही है असली कामयाबी। आज के दौर में प्रेशर, कंपैरिजन और अनसर्टेनिटी हर जगह है। सोशल मीडिया पर दूसरों की अचीवमेंट्स देखकर हम अपने आप को कम समझने लगते हैं, लेकिन रेजिलियंस और सेल्फ अवेयरनेस से हम इस चैलेंज को टैकल कर सकते हैं। भाई, हर वक्त दूसरों को देखकर ही अपने आप को मेजर नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या कोई मुझे भी देखकर आगे बढ़ रहा है, और अगर हाँ, जो कि वाकई हकीकत है, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके घर वाले, यहाँ तक कि कभी कभार आपके वालदैन भी आपसे सीखते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं क्या हूँ, मैं दूसरों को देखकर आगे बढ़ूंगा या मुझे जो देखकर आगे बढ़ने वाले हैं मैं उनका ख्याल करूंगा। इस बात का ख्याल रखना, इस बात पे काम करना आपको दरअसल एक बहुत अच्छी शख्सियत बना देता है, एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बना देता है। इस बात का ख्याल करना बेहद ज्यादा जरूरी है और सबसे पहले जरूरी है। आप अपने जज्बात को लिख कर देखिए भाई, अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर कीजिए और अपने लिए रियलिस्टिक गोल्स सेट कीजिए। ये छोटे स्टेप्स आपको एक पर्पसफुल जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। और वो क्या है कि आपके चैलेंजेस आप देखने लगते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं, उनको आप स्टेप बाय स्टेप हैंडल करने लगते हैं। यही जिंदगी है, यही इंपॉर्टेंट है। इस बात का जज्बा अपने दिल में हमेशा रखना हमें बहुत ही ज्यादा बेहतर शख्सियत बनाता है। आपके हिसाब से सक्सेस का मतलब क्या है, ये हमें हमेशा सोचना है। क्या वो पैसा है, क्या वो पोजीशन है, या फिर पीस ऑफ माइंड है, ज़हनी सुकून है? अपने जवाब हमें खुद सोचने हैं, खुद लिखने हैं और अपनी कहानी को इसी खूबसूरती से लिखते हुए दूसरों के लिए बेहतर जहां बनाना है और अपने आप को भी आगे बढ़ाना है। दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल सरवर मिर्जा के साथ। कहीं भी मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और जानेंगे कि कैसे हम अपने टाइटल से बाहर निकलकर दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं।

0: इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ।
1: वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद दोस्तों। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल, जहां बात हो रही है आपके जॉब टाइटल से हटके। भाई आप जो हैं वही नजर आना जरूरी नहीं, आपकी जो शख्सियत है वो दुनिया भर में छलकनी चाहिए, चमकनी चाहिए, दिखनी चाहिए। तो आइए इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ हिडन रोल्स जो हम अपने जगहों पे, अपने काम में प्ले करते हैं। आज के टॉपिक पर वापस आते हैं, द हिडन रोल्स वी प्ले एट वर्क। दोस्तों जब आप अपनी ऑफिस डेस्क पर बैठे होते हैं, आप सिर्फ अपनी जॉब ही नहीं कर रहे होते हैं, आप मेंटर होते हैं। जब आप किसी जूनियर को गाइड कर रहे होते हैं तो वो आपको अपना मेंटर बना लेता है। आप प्रॉब्लम सॉल्वर भी होते हैं जब कोई अर्जेंट इशू आपके पास आता है। आप इनोवेटर भी होते हैं जब आप नए आइडियाज प्रपोज करते हैं। और यूजुअली ये हम सबकी डेली लाइफ के हिस्से हैं जिन पे हम आज के जमाने की भागा दौड़ी पे नजर ही नहीं डालते हैं। दरअसल हकीकत और जिंदगी जीने का सबक हमें वहीं से मिलता है। और आप कल्चर बिल्डर होते हैं जब आप अपने कलीग्स के साथ पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। भाई कलीग्स के साथ हम एक जिंदगी गुजारते हैं, हमारा ऑफिस, हमारे कलीग्स हमारी सेकंड फैमिली होती है। जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट यहाँ दूसरे मुल्क में अपना सेकंड होम बनाते हैं, भाई इसी तरीके से तो ऑफिस भी हमारी सेकंड फैमिली ही हुई ना। तो हम इस बात को सोचें और जहन में रखें तो यकीन जानिए आप अपने काम की जगह का माहौल भी बेहद खूबसूरत बना सकते हैं। कोई भी बात है आई गई करना हमारी शख्सियत को दिखाता है। अगर हम छोटी सी बात पे रिएक्ट करना शुरू करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं हम दूसरों के लिए भी कहीं ना कहीं उस राह को रोकने लगते हैं। ये रोल्स किसी आईडी कार्ड पर लिखे नहीं होते, लेकिन ये ही आपकी असली कॉन्ट्रीब्यूशन है। इन रोल्स को समझना और अप्रिशिएट करना जरूरी है, क्योंकि यही आपको एक बेटर प्रोफेशनल और बेटर इंसान बनाने का रास्ता हमवार करते हैं। आप अपने काम पर कौन से हिडन रोल्स प्ले करते हैं, मेंटर, इनोवेटर या कल्चर बिल्डर, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं 666-22-107। तो दोस्तों एक बात क्लियर है, हमारी पहचान सिर्फ हमारी नौकरी ही नहीं, हमारी वर्थ, हमारे जज्बात, हमारे एक्शंस,

और रिलेशनशिप से डिफाइन होती है। भाई किसी भी रिलेशन में एहतियात रखना, इज्जत करना और बदल करना बेहद जरूरी है, हाँ हमारी इस्तेदाद को मद्देनजर रखते हुए। और यही चीज हमें दूसरे के सबब भी जाननी चाहिए। क्या आपके कलीग्स जो आपके साथ बदल कर रहे हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनकी इस्तेदाद क्या है? और इस्तेदाद से मतलब यहाँ सिर्फ फाइनेंशियली ही मेरा इशारा नहीं है, उनकी इस्तेदाद मतलब उनका मिजाज कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उनका बात करने का तरीका कैसा है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें ऑफिस का इन्वायरमेंट बेहतर भी बनाना चाहिए और इसका ख्याल भी बेइंतहा रखना चाहिए। फिर देखिए किस तरीके से आपके काम में भी आसानी होगी और हम इंशाल्लाह ताला एक साथ आगे बढ़ सकेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, इस बात पे हमेशा गौर कीजिए कि मैं अपनी जिंदगी को किस तरह मीनिंगफुल बना रहा हूँ। आप जितने भी रोल्स प्ले करते हैं घर पर, ऑफिस में, सोसाइटी में, सब ही बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी वैल्यू समझिए और अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए। और हाँ याद रखिए, आपकी ह्यूमन वर्थ किसी टाइटल से कम नहीं है, आपकी इंसानियत से कम नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल आपको पसंद आया होगा और आज का ये टॉपिक द हिडन रोल्स वी प्ले एट वर्क आपको समझने में आसानी हुई होगी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। इसी के साथ प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी और सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का, और ये शो फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर दिन आपको एक नए जमाने के नए फ्रॉड से मैं मिलवाता हूं। एक्चुअली ये फ्रॉड इतने ज्यादा आम हो गए हैं कि किसी के साथ भी हो सकते हैं और कोई भी कर सकता है। इवन आजकल 12, 15 और 18 से लेकर 22, 25, 30 और 45 से लेकर 50 साल तक के उम्र के बच्चे और बूढ़े सारे लोग इस तरह के स्कैम में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि लोगों के लिए ये है आसान पैसा। दोस्तों, चालाकी का खेल, ये इस फ्रॉड के बारे में हम बात करने वाले हैं। डायरेक्टरी लिस्टिंग स्कैम्स, ये स्कैम खास तौर पर स्मॉल बिजनेसेस को फंसाने के लिए बनाया गया है। इसमें होता ये है कि एक दिन आपके पास अचानक एक कॉल या ईमेल आएगा। स्कैमर्स बहुत ही पोलाइट आवाज में, बेहतरीन आवाज में आपसे बात करते हैं कि सर, हम आपके बिजनेस इंफॉर्मेशन को एक लोकल ऑनलाइन डायरेक्टरी में वेरीफाई करना चाहते हैं ताकि आपको नए कस्टमर मिल सके। आप ऐसे में बिजनेसमैन हैं, आपको नए कस्टमर्स की जरूरत है। वो आपसे साफ साफ कहेंगे कि ये बेसिक लिस्टिंग बिल्कुल फ्री है और आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। आपके एम्प्लॉयज बिना सोचे समझे हाँ बोल देते हैं, और कई बार अगर आप भी बिजनेस ओनर भी कॉल पर होता है तो वो बिना सोचे समझे हाँ बोल देगा कि यार फ्री का काम है, हमें कुछ करना नहीं है, और डिटेल्स वेरीफाई करवा दिया जाता है। लेकिन असली खेल कुछ हफ्तों बाद शुरू होता है। आपके बिजनेसेस के नाम पर एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव इनवॉइस बिल आता है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ रियाल्स या डॉलर्स मांगे जाते हैं। जब आप उन्हें कॉल करते हैं तो स्कैमर्स क्लेम करते हैं कि आपने एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए साइन अप किया था। अगर आप मना करते हैं तो वो आपको डराने के लिए एक हैवीली एडिटेड वॉइस रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग का कट पेस्ट करके बनाई गई एक ऑडियो होती है, वो सुनाते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि आपके एम्प्लॉय ने पैसा देने के लिए हाँ बोला था। लोग कोर्ट कचहरी या लीगल एक्शन का डर बहुत ज्यादा उनको सता देता है, इसलिए वो किसी भी तरह के बवाले में, किसी तरह के स्कैम में पड़ना नहीं चाहते। ऐसे में इस तरह के अलग और अजीब स्कैम से कैसे बिजनेस ओनर बचें या फिर एम्प्लॉयज बचें, इसका सॉल्यूशन भी है। दोस्तों, इस तरह के स्कैम बड़े यूनिक होते हैं। ऐसे में इस तरह के स्कैम से हम बच पाएं ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बचने का तरीका थोड़ा लेंदी जरूर है। सबसे पहले किसी भी एम्प्लॉय को जब आप हायर करें तो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए और बेहतरीन होनी चाहिए। किसी भी एम्प्लॉय को बिजनेस से ना जाने देना ये एक ऑप्शन होता है, ये एक प्रिविलेज है किसी भी बिजनेस ओनर के लिए कि उसका एम्प्लॉय लंबे वक्त तक उसके साथ रहे। लेकिन जब आप अच्छी ट्रेनिंग करते हैं अपने एम्प्लॉयज की तो वो आपके साथ लंबे वक्त तक रहता भी है और सीखता समझता है। इसके लिए उसकी ट्रेनिंग भी बड़ी जरूरी है। अपने सभी स्टाफ और एम्प्लॉयज को सख्त इंस्ट्रक्शन दें कि फोन पर कभी भी बिजनेस की सेंसिटिव डिटेल्स या अकाउंट इन्फो वेरीफाई ना करें। अगर कोई फ्री लिस्टिंग का कॉल आए तो सीधे बोल दें कि उन्हें ईमेल पर ऑफिशियल प्रपोजल भेजा जाए। बगैर किसी ऑफिशियल प्रपोजल के काम बिजनेस ओनर को या एम्प्लॉयज को नहीं करना चाहिए। उसके अलावा इनवॉइस अप्रूवल सिस्टम, पीओ सिस्टम भी जरूर रखना चाहिए। आमतौर पे ये बिजनेस लैंग्वेज है पीओ सिस्टम। अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक रूल सेट करें, कोई भी बिल तब तक पे नहीं होगा जब तक उसे एक असली परचेज ऑर्डर यानी कि पीओ और डिलीवरी रिसीट के साथ मैच ना किया गया हो। बिना चेक किए किसी भी बिल को पास ना करें, ना ही एम्प्लॉयज और ना ही ऑब्वियसली बिजनेस ओनर। उसके अलावा अर्जेंसी से कभी ना डरे। अगर कोई ईमेल कहे कि वेबसाइट बंद हो जाएगी या लीगल एक्शन होगा तो डर में अक्सर तुरंत पेमेंट ना करें। पहले उस वेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनके रियल कस्टमर केयर पर कॉल करके कंफर्म करें, फिर रिकॉर्डिंग की सच्चाई पर भी आते हैं। अगर कोई आपको फोन पर एडिटेड वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाकर डराए तो बिल्कुल ना डरे। उनसे कहें कि आप इसकी कंप्लेंट साइबर क्राइम सेल में करने जा रहे हैं। स्कैमर्स साइबर क्राइम का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। आमतौर पे आपको 99% जो स्कैमर्स हैं वो साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट से या साइबर क्राइम सेल से डर जाते हैं और वो भाग जाते हैं। उसके अलावा रिपोर्ट कैसे करें? रिपोर्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। साइबर सेल डिपार्टमेंट सबसे अहम होता है। किसी भी कंट्री का साइबर सेल डिपार्टमेंट इन सब मामलों में एक्टिव रहता है। अगर आप किसी शहर में हैं या अगर आप कतर में हैं तो आपका बिजनेस ऐसे किसी फ्रॉड का शिकार ना बने, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो भी जाए तो साइबर क्राइम विंग को रिपोर्ट करें, या मेट्रेश 2 ऐप के थ्रू भी फ्रॉड की रिपोर्ट आप दर्ज करा सकते हैं। ये कुछ आसान तरीके हैं जिससे आप नए जमाने के नए स्कैम से बच सकते हैं। तो फिर कैसे बचना है? एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, पीओ सिस्टम, इनवॉइस अप्रूवल सिस्टम, अर्जेंसी से बिल्कुल ना डरें, रिकॉर्डिंग की सच्चाई, उसके अलावा कतर में कैसे रिपोर्ट कर रहा हूं, उसके अलावा अगर आप किसी दूसरे कंट्री में भी हैं तो वहां पर भी साइबर सेल होते हैं, साइबर डिपार्टमेंट, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और शुरुआत के 1-2 घंटे बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड में बात करते हुए। दिल से देसी स्कैम अलर्ट।

0: FM 107 presents Your Health Matters. Your Health Matter with RJ Shruti.
1: कभी ऐसा हुआ है क्या कि बॉडी कुछ कहना चाहती हो और आपने कह दिया हो बाद में? कभी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बढ़ते जा रहे हो और हमें लग रहा है ठीक है कॉफी पियेंगे तो नींद उड़ जाएगी। शोल्डर्स एकदम हैवी हो गए हो, नेक्स्ट स्टेप हो गई हो और हमने कह दिया वर्क प्रेशर है ना, मे बी दैट्स व्हाई। पर सच बताओ, बॉडी कभी बिना वजह कंप्लेन नहीं करती। आज हम बात कर रहे हैं लिसनिंग टू योर बॉडी, यानी अपने शरीर की सुनने के बारे में। हमारी बॉडी एक बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम है, वो हर दिन हमें सिग्नल्स भेजती है, कभी थकान के थ्रू, कभी हेडेक के थ्रू, कभी मूड ऑफ होने के थ्रू, कभी नींद का डिस्टर्ब होना। लेकिन हम क्या करते हैं, सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमने थकान को हसल का सिंबल बना दिया है, जैसे कि कोई मेडल मिल रहा हो। जैसे अगर हम टायर्ड है तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और तभी लगता है कि हाँ कुछ तो किया है आज दिन में। पर ये आइडिया ना थोड़ा डेंजरस है क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जब बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता तो पहले सिग्नल्स आते हैं, ब्रेकडाउन नहीं होता, उसके बाद कॉन्स्टेंट फटीग, इरिटेशन, फोकस का कम होना, बॉडी का हैवी लगना, ये सब बॉडी का तरीका होता है कहने का कि प्लीज रुक जाओ। लेकिन हम रुकते नहीं है, हम कॉफी बढ़ाते जाते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ाते जाते हैं, ऐसा लगता है जितनी मेहनत करेंगे उतने ही जल्दी सक्सेस मिलेगा, गोल्ड मेडल मिलेगा, नींद कम कर देते हैं और फिर एक दिन बॉडी खुद रुक जाती है। आपने नोटिस किया होगा जब आप इमोशनली ड्रेन्ड होते हो तब भी आप काफी लो फील करते हो, आपकी बॉडी हैवी लगती है, एग्जॉस्टेड हो जाते हो, माइंड नेगेटिव हो जाता है। सो ये जो बॉडी और माइंड का रिश्ता है ये काफी ज्यादा गहरा है। जो हम महसूस करते हैं वो सिर्फ दिल तक सीमित नहीं रहता, वो मसल्स, गट, स्लीप और इम्यूनिटी हर जगह तक पहुंचता है और यहीं पर लिसनिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि हर छोटी सी सेंसेशन से हम डर जाए, लिसनिंग का मतलब होता है अवेयरनेस, इत्मीनान के साथ ऑब्जर्व करें अपनी बॉडी को। अगर आप थके हुए हो और फिर भी लगातार काम कर रहे हो तो बॉडी आपसे फाइट नहीं कर रही, वो आपसे मदद मांग रही है। और जब हम बॉडी की बात सुनते हैं हीलिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। बल्कि आप जानते हैं रिसर्च बताती है कि रेगुलर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं और इमोशनल रिएक्शन स्टेबल हो जाता है। मतलब जब हम रुकते हैं तब बॉडी रिपेयर करती है। तो आज एक छोटी सी प्रैक्टिस ट्राई कीजिए, जब बॉडी बोले स्लो डाउन तो थोड़ा स्लो हो जाइए, जब बॉडी कहे रिलैक्स तो थोड़ा गिल्ट फ्री रेस्ट लीजिए, जब बॉडी कहे इनफ तो उस चीज की इज्जत कीजिए। ये लेजीनेस नहीं होता, ये होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। खुद पे थोड़ी मेहरबानी कीजिए, अपनी बॉडी की सुनिए क्योंकि आखिर में ये बॉडी ही है जो आपको रोज उठाती है, चलाती है और आपके सारे सपनों को कैरी करती है। और अगर हम उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वो आवाज धीरे धीरे जोर से बोलने लगेगी। तो आज एक वादा खुद से कीजिए कि अपनी बॉडी को इग्नोर नहीं करेंगे आप, उसकी खामोशी को समझने की कोशिश करेंगे और सिग्नल्स को रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि जब आप बॉडी की सुनते हैं ना तो वो आपको हेल्थ, एनर्जी और सुकून के साथ जवाब देती है। तो याद रखिए, लिसनिंग टू योर बॉडी इज द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स रियल हेल्थ एंड योर हेल्थ मैटर।
0: FM 107 प्रेजेंट्स योर हेल्थ मैटर विद आरजे श्रुति।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम की जो फुटबॉल की दुनिया में बिजली की तरह चमका है, किलियन एम्बापे, मॉडर्न जनरेशन के स्टार। पेरिस के सबर्बन इलाके बॉन्डी से निकलने वाला एक ऐसा लड़का जिन्होंने अपनी स्पीड, स्किल और डिटर्मिनेशन के जरिए दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेजेस पर अपनी जगह बनाई। एम्बापे का बचपन बॉन्डी में गुजरा, जहां फुटबॉल जिंदगी का एक अहम हिस्सा था, लेकिन उनका ड्रीम सिर्फ फुटबॉल खेलना नहीं था, वो फुटबॉल की दुनिया पर राज करना चाहते थे। और फिर सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनल फुटबॉल में डेब्यू

किया। मोनाको के लिए उनकी परफॉर्मेंसेस ने सबको मुतासिर कर दिया, खासतौर पर उनकी स्पीड, उनकी ड्रिबलिंग और गोल के सामने उनकी फिनिशिंग, दैट मेड किलियन एम्बापे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फॉरवर्ड्स स्ट्राइकर्स ड्यूरिंग हिज टाइम। धीरे धीरे पूरी दुनिया की नजरें इस नौजवान फ्रेंच खिलाड़ी पर जमा होने लगे। 2017 में पेरिस सेंट जर्मेन यानी पीएसजी ने एम्बापे को अपनी टीम का हिस्सा बनाया और यहां से उनके करियर ने एक नई रफ्तार पकड़ी। पीएसजी के साथ उन्होंने गोल स्कोर किए, ट्रॉफीज जीते और फ्रेंच फुटबॉल के सबसे बड़े स्टार्स में अपनी जगह बनाई। लेकिन एम्बापे की सबसे बड़ी पहचान उनका इंटरनेशनल करियर बना, यहां 2018 का फीफा वर्ल्ड कप। सिर्फ 19 साल की उम्र और दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट, एम्बापे ने फ्रांस के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। उन्होंने टूर्नामेंट में 4 गोल स्कोर किए और फाइनल में क्रोएशिया के खिलाफ भी गोल किया। फ्रांस ने फाइनल 2 के मुकाबले 4 गोल से जीता और एम्बापे बन गए वर्ल्ड कप विनर, एक टीनेजर वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन अगर 2018 ने दुनिया को एम्बापे का नाम बताया तो 2022 का कतर वर्ल्ड कप ने उन्हें फुटबॉल की हिस्ट्री में और भी गहरा लिख दिया। अर्जेंटीना के खिलाफ लुसेल स्टेडियम में उस फाइनल में एम्बापे ने हैट्रिक स्कोर की, 3 गोल्स वर्ल्ड कप फाइनल में, और टूर्नामेंट के तमाम मैचेस में उन्होंने 8 गोल स्कोर किए। इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद एम्बापे ने गोल्डन बूट जीता और वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर बने। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने महसूस किया एम्बापे सिर्फ फ्यूचर का स्टार नहीं, वो प्रेजेंट का भी सुपरस्टार है। और फिर आया 2024, एम्बापे ने रियल मद्रिद ज्वाइन किया, पीएसजी को कह दिया टाटा बाय बाय। दुनिया के सबसे मशहूर और कामयाब फुटबॉल क्लबों में से एक रियल मद्रिद। रियल मद्रिद की लेजेंडरी व्हाइट जर्सी में कदम रखना हर फुटबॉलर का एक ड्रीम होता है, पर अब किलियन एम्बापे भी उसी तारीख का हिस्सा है। फैंस उनका मुकाबला लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे लेजेंड से करते हैं, लेकिन एम्बापे ने अपनी पहचान खुद बनाई है, अपनी रफ्तार से, अपनी सोच से और अपनी फिनिशिंग से। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी स्पीड। जब वो ओपन स्पेस में बॉल लेकर दौड़ते हैं तो डिफेंडर्स के पास अक्सर सिर्फ एक ही सवाल होता है, उन्हें रोका जाए कैसे। लेकिन एम्बापे सिर्फ तेज नहीं, वो इंटेलिजेंट भी हैं। उनकी मूवमेंट, उनकी टाइमिंग और गोल के सामने उनकी फिनिशिंग, जिसको कहते हैं किलर फिनिशिंग, उन्हें मॉडर्न फुटबॉल के सबसे डेंजरस फॉरवर्ड्स में शामिल करती है। और इस साल का फीफा वर्ल्ड कप सबने देखा ही होगा, यहाँ एम्बापे ने अपनी कहानी में एक और शानदार चैप्टर ऐड कर दिया। फ्रांस के कप्तान के तौर पर उन्होंने टूर्नामेंट में 10 गोल स्कोर किए और गोल्डन बूट अपने नाम किया। यानी 2022 के बाद एम्बापे ने दोबारा वर्ल्ड कप का गोल्डन बूट जीता और 2026 टूर्नामेंट के बाद उनके वर्ल्ड कप गोल्स की तादाद 22 हो गई। इसके साथ एम्बापे ने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया और फीफा वर्ल्ड कप की तारीख के ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर बन गए। अच्छा, फ्रांस वर्ल्ड कप नहीं जीत सका, लेकिन एम्बापे ने इंडिविजुअल लेवल पर फुटबॉल हिस्ट्री में अपना नाम और भी मजबूत कर दिया। सोचिए कि 2018 में वर्ल्ड चैंपियन, 2022 में गोल्डन बूट विनर और 2026 में दोबारा गोल्डन बूट, और वर्ल्ड कप हिस्ट्री के सबसे ज्यादा गोल्स करने वाले खिलाड़ी। बॉन्डी शहर से शुरू होने वाला सफर मोनाको, पीएसजी, फ्रांस और फिर रियल मद्रिद तक, ये सिर्फ एक फुटबॉलर की कहानी नहीं, ये एक ऐसे ख्वाब की कहानी है जो स्पीड, टैलेंट, मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ हकीकत में बदल गया। किलियन एम्बापे स्पीड का नाम, स्किल का नाम, रिकॉर्ड्स का नाम और मॉडर्न फुटबॉल के एक ऐसे सुपरस्टार का नाम जो अब सिर्फ फुटबॉल का फ्यूचर नहीं, फुटबॉल की तारीख का हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों, ये था स्पोर्ट्स हाइलाइट्स का आज का खास सेगमेंट। उम्मीद है आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा।
मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए लेजेंड, एक नए चैंपियन और एक नई कहानी के साथ. तब तक मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत. तब तक खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें. फी अमानिल्लाह.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आ...

0: 5 बजे से FM 107 पर दिल से देसी
1: Absolute Cinema.
0: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर थर्सडे रात 9 बजे से RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा. FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरज़ू महवश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रस्म, हर

के पास हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस वर्षे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें। कतर की सकाफत में बेडियोन वर्षा बहुत अहम मकाम रखता है। बेडियोन लोगों की जिंदगी रेगिस्तान, सफर, जानवरों और कुदरती माहौल से गहरा ताल्लुक रखती है। इस तर्ज जिंदगी ने लोगों को सब्र, हिम्मत, मेहमान नवाजी और मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ देना सिखाया। रेगिस्तान की जिंदगी आसान नहीं होती। पानी की कमी, सख्त गर्मी और लंबी मुसाफतों के बावजूद लोग अपने हौसले को कायम रखते थे। सफर के लिए सितारों और मौसम और रास्तों का इल्म जरूरी होता था। ये तजुर्बा नस्लों तक मुंतकिल होता रहा और रेगिस्तान को समझने का हुनर पैदा हुआ। ऊंट बेडुइन जिंदगी का बहुत कीमती हिस्सा थे। ये सफर सामान की मुंतकली और रोजमर्रा जरूरियात में मददगार होते थे। ऊंट को सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि रेगिस्तानी जिंदगी का साथी समझा जाता था। उसकी देखभाल, तरबियत और सफर से मुतालिक तजुर्बे बाप दादा से बच्चों तक पहुंचाए जाते थे। बेडुइन जिंदगी में डेरा या खेमा भी अपना एक खास मकाम रखता था, कि सिर्फ आराम की जगह नहीं बल्कि खानदानी जिंदगी और मेहमान नवाजी का मरकज होता था। खेमे में लोग जमा होते थे, खाना तैयार करते, कहवा पेश करते और कहानियां सुनाते थे। मेहमान को इज्जत देना इस जिंदगी का अहम उसूल था। बेडुइन वर्षे का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू उनकी कहानी गोई और शायरी है। सफर, मौसम, खानदान और रोजमर्रा तजुर्बों से मुतालिक कहानियां लोगों को जोड़ती थीं। शायरी के जरिए जज्बात और नसीहत और यादें बयान की जाती थीं। चंद अल्फाज में गहरी बात कह देना इस रिवायत की खूबसूरती है। शायरी और कहानियों की महफिल में सुनने वाले तवज्जो से बैठते थे। बुजुर्ग अपने तजुर्बे शेयर करते और बच्चे उनसे सीखते थे। इस तरह जबानी वरसा महफूज रहता था। आज भी कहानियां और लोक रिवायत कतर की सकाफती कहानियों का प्यारा हिस्सा है। बेडुइन दस्तकारी भी बहुत दिलकश होती है। खास तौर पर साधु बुनाई का ताल्लुक रेगिस्तानी जिंदगी से है। रंगीन धागों और मुख्तलिफ नक्शों से कपड़े और जरूरी अशिया तैयार की जाती थी। इन नक्शों में जिंदगी, कुदरत और काबिलियत मौकों की झलक मिल सकती है। साधु सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि सबर और मेहनत की अलामत है। इस काम में वक्त, तवज्जो और बारीक हुनरमंदी दरकार होती है। आज भी कतर में इस रिवायती हुनर को सकाफती नुमाइशों और तालीमी कहानियों के जरिए महफूज रखा जा रहा है। बेडुइन लिबास भी मौसम और जिंदगी की जरूरियात से मुतालिक था। सादा और आरामदेह कपड़े सफर और रेगिस्तानी माहौल के लिए मुनासिब होते थे। साथ ही लिबास में वक्कार और सलीका भी नजर आता था। खास मौकों पर ज्यादा खूबसूरत और बेहतर तरतीब वाला लिबास पहना जाता था। रेगिस्तान में मेहमान आए तो उनकी खातिरदारी की जाती थी। पानी, खाना और कहवा पेश करना बहुत अहम समझा जाता था। सफर करने वाले शख्स को सुकून देना, उसकी मदद करना अच्छे अखलाक की निशानी था। इसी रवैये ने कतर की मेहमान नवाजी को मजबूत बुनियाद दी। कतर का बेडुइन वरसा आज के जदीद दौर में भी जिंदा है। डेजर्ट कैंप, सकाफती प्रोग्राम और वरसे के मुतालिक मरकज लोगों को पुरानी जिंदगी के बारे में जानने का मौका देते हैं। यहाँ नई नस्ल ऊंट, साधु, रिवायती खेमों और रेगिस्तानी अदाब के बारे में सीख सकती है। बेडुइन वरसे को समझना सिर्फ माजी को याद करना नहीं बल्कि उन उसूलों को पहचानना भी है जो आज भी अहमियत रखते हैं। सबर, मेहमान नवाजी, हिम्मत, तवाजो और कुदरत का एहतराम हर दौर में कीमती है। बेडुइन वरसा कतर की पहचान का एक खूबसूरत सफा है। इसमें रेगिस्तान की वसत, सफर की कहानियां, ऊंट की रिवायत, खेमे की गर्माहट और मेहमान के लिए खुलूस शामिल हैं। आज का कल्चर मोमेंट हमें याद दिलाता है कि किसी भी कौम का वरसा सिर्फ पुरानी चीजों में नहीं होता बल्कि उन अखलाक और तजुर्बों में भी होता है जो लोग अपनी आने वाली नस्लों को देते हैं। कदर का बेडुइन वरसा सब्र, हिम्मत और अपनायत का असल पैगाम है जो आज भी जिंदगी को रोशन

0: नहीं देता है तो लिसनर्स आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं याद रखिए सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है मैं हूं आपकी आरजे महाविश अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए अल्लाह हाफिज
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

0: सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ रहिए अपडेटेड सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का ये शो कतर 2026 का दूसरा एपिसोड जहां पर आपको बहुत सी कतर के मुतालिक जानकारियां हासिल होती हैं जैसे कि कतर की कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स या कोई खास इवेंट लाइव एंटरटेनमेंट से लेकर कॉन्सर्ट तक और फिर इस वीकेंड क्या कुछ होने वाला है चाहे वो कल्चरल एग्जीबिशन के बारे में बात हो या फिर कतर के म्यूजियम की खूबसूरती को लेकर बात हो एंड देन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए फूड या फिर मॉल्स या फिर फैमिली इवेंट तो फूड के मुतालिक कुछ नए रेस्टोरेंट क्या खुल रहे हैं क्या ऐसे रेस्टोरेंट जो आपको कुछ खास प्रोवाइड करा रहे हैं कहां पर डिस्काउंट चल रहा है सारी जानकारी आपको इस शो कतर 2026 में मिलती है और सिर्फ इतना ही नहीं साथ ही आपको कतर के फ्यूचर के बारे में भी जानकारी मिलती है कतर का नेशनल विजन 2030 के मुताबिक जो भी सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम्स हैं स्मार्ट सिटीज को लेकर जो बातें हैं जो सस्टेनेबल यू नो समिट वगैरह हैं उन सब चीजों के बारे में हम यहां पर बात करते हैं तो कतर के फ्यूचर और कतर के फ्यूचर को लेकर जो अनाउंसमेंट है उस पर एंड देन चाहे वो एजुकेशन हो ट्रांसपोर्ट हो या फिर स्टार्टअप का इकोसिस्टम सारी जानकारी आपको यहां एफएम 107 पे मिलती है तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बगैर वक्त जाया किए तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेजर अनाउंसमेंट और गेमिंग इवेंट के बारे में जो कतर ने एक तरह से कतर कैलेंडर ने ऑफिशियली लॉन्च की है ये कतर कैलेंडर ने ऑफिशियली एक बहुत बड़ा गेमिंग टूर्नामेंट लॉन्च किया है जिसका नाम है वर्चुअसिटी बैटल ग्राउंड कतर 2026 ये स्पेक्टेकुलर इवेंट सितंबर के सेकेंड वीक में पूरे जोर शोर से स्टार्ट होने वाला है ये कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है बल्कि ये एक मेजर रीजनल ई स्पोर्ट चैंपियनशिप है जिसमें पूरे $2,00,000 का मैसिव प्राइज पूल रखा गया है तो अगर आपको गेमिंग का बहुत ज्यादा शौक है अगर आप रात रात भर गेमिंग का शौक रखते हुए रात रात भर जाग कर गेम खेलते हैं तो ये खास गेमिंग इवेंट आपके लिए जिसमें रियाल भी नहीं $2,00,000 का मैसिव प्राइज पूल रखा गया है ये प्राइज मनी टोटल 7 ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड गेमिंग टाइटल्स के बीच डिवाइड होगी जिसमें फोर्टनाइट वोलरेंट और पबजी मोबाइल जैसे पॉपुलर गेम्स शामिल हैं ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि इस वीक में हाई स्टेक्स ऑनलाइन और LAN यानी कि लैंड क्वालिफायर्स होंगे जो डायरेक्टली दोहा फेस्टिवल सिटी से ब्रॉडकास्ट भी किए जाएंगे

0: जाएंगे। गेमिंग के अलावा मैरिटाइम अथॉरिटीज यानी कि कतर बोट शो 2026 ने भी ऐलान किया है कि ओल्ड दोहा पोर्ट पर चलने वाली इस तैयारी का जो मेन एम है वो है मल्टी मिलियन रियाल की सुपर यॉट को शोकेस करना। वहां पर साइट प्रिपरेशन का काम जोरों शोरों से चल रहा है ताकि लोग लग्जरी बोट्स का मजा उठा सके। तो अगर आप गेमिंग की दुनिया में नहीं है और आप बोट का शौक रखते हैं तो कतर बोट शो 2026 आपके लिए, जहां पर सुपर यॉट्स आपको देखने को मिलेंगी, शोकेस की जाएंगी और जबरदस्त माहौल कतर बोट शो में भी होने वाला है। और जो पिछले साल लोगों ने एंजॉयमेंट की कतर बोट शो में वो उनको पता है कि भाई ये क्या चीज है। And now let's talk about live entertainments and concert as well, के concert और entertainment को लेकर हम सब कतरवासियों के लिए क्या कुछ है। दोहा में लाइव एंटरटेनमेंट का लेवल इस बार बिल्कुल अलग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि सितंबर के सेकंड वीक में काफी बड़े सुपरस्टार्स आ रहे हैं। म्यूजिक लवर्स के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि ग्रैमी अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट जॉन लेजेंड दोहा आ रहे हैं। क्या बात है, उनका एक डीपली सोलफुल इंडोर वोकल और पियानो परफॉर्मेंस स्केड्यूल किया गया है जो कि 10 सितंबर 2026 को कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगा। इसके बाद इसी महीने QNCC में ही ग्लोबल माइंड रीडर और इल्यूजनिस्ट सुहानी शाह लाइव का शो भी होने वाला है। साथ ही कार्नेटिक माइस्ट्रो सिड श्रीराम का एक डेडिकेटेड मल्टी आर्टिस्ट म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी सेटअप किया गया है। अगर आपको लेट नाइट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक वाइब पसंद है तो अलवहदा स्ट्रीट पर एक नया लग्जरी क्लब खुल रहा है जिसका नाम है हाइट। ये क्लब 10 सितंबर 2026 को अपना प्रीमियर वीकेंड शोकेस डेब्यू करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक स्टार मॉन्ट रोग हेडलाइन सेट परफॉर्म करेंगे। सो बहुत कुछ कतर में हो रहा है और ये सारी जानकारी आपको सिर्फ कतर 2026 में मिलेगी। तो हम एक छोटे से बहुत नन्हे मुन्ने ब्रेक की तरफ बढ़े, उससे पहले आपको बता दें वीकेंड अट्रैक्शन या कल्चरल एग्जीबिशन को लेकर कतर में क्या कुछ माहौल है इस हफ्ते के वीकेंड को लेकर। वीकेंड पर घूमने के लिए कतर के रेसिडेंट्स के पास काफी सारे अमेजिंग ऑप्शन हैं। लोग नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर की स्टनिंग आर्किटेक्चर डिजाइन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सटेंडेड टिकट के जरिए आपको वहां के मल्टी सेंसरी गैलरीज का एक्सेस मिलता है जो कतर की इवोल्यूशन कहानी को दिखाती है कि कैसे ये देश एक छोटे से पर्ल डाइविंग ट्रेडिशन से उठकर आज एक बड़ा एनर्जी जायंट बन गया है। इसके अलावा आप एक क्यूरेटेड फुल डे म्यूजियम टूर भी ले सकते हैं जो आपको म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट और इंटरैक्टिव 321 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम दोनों घुमाएगा। ये सारे स्पेसेस फुली एयर कंडीशनड है और फैमिलीज टूरिस्ट के लिए ये सबसे परफेक्ट, मतलब कह सकते हैं सबसे झकास और परफेक्ट जगह अगर कोई है तो वो यही है गर्मियों के दिनों में, अगर आप कतर के बारे में जानना चाहते हैं और कतर में अगर आप नए हैं। इसके साथ कटारा कल्चरल विलेज में 8 सितंबर 2026 को प्रेस्टीजियस सहेल कटारा इंटरनेशनल हंटिंग एंड फेल्कन्स एग्जीबिशन 2026 वापस आ रहा है जो कतर का सबसे खूबसूरत, जहां पर बहुत बड़े बड़े यू नो स्टोर लगाए जाते हैं, कैसे इनोवेटिव, चाहे वो डिफेंस को लेकर हो, चाहे वो यू नो आर्मरी को लेकर हो, ये सारी चीजें 4x4 कार से लेकर आपके पास हंटिंग को लेकर या फिर फैल्कन्स को लेकर सारे जो सामान है यहां पर दर्शाए दिखाए जाते हैं, एग्जिबिट किए जाते हैं। एंड दिस इज नन अदर देन सहेल कटारा इंटरनेशनल हंटिंग एंड फैल्कन्स एग्जीबिशन। ये शुरू हो रहा है तो इसके लिए भी आप तैयारी कर लीजिए। और ये वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन में 20 अलग देशों से 260 से ज्यादा हेरिटेज और हंटिंग ब्रांड्स आ रहे हैं जहां लाइव डेमोंस्ट्रेशंस और फैल्कन ऑक्शंस होंगे। फिलहाल एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा ब्रेक लेते हैं एंड देन हम जब वापस आएंगे तो फूड मॉल्स, फैमिली इवेंट्स और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कतर के। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं कतर 2026 सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
0: दोस्तों एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का FM 107 पे, ये शो है कतर 2026 और अब जरा बात कर लेते हैं कतर में हो रहे कुछ अनोखी चीजों के बारे में, चाहे वो मॉल्स को लेकर हो, एक्टिवेशंस हो या फैमिली इवेंट्स हो। दोस्तों खाने पीने के जो शौकीन लोग हैं उनके लिए इस हफ्ते दोहा में एक बहुत ही स्पेशल फूड फेस्टिवल चल रहा है जिसका नाम है थाई रेस्टोरेंट वी 2026। अच्छा, ये उन लोगों के लिए है जिनको यू नो नए खाने ट्राई करने, ये जो पालक पनीर वाले हैं, बटर चिकन वाले हैं, कढ़ाई चिकन वाले हैं, इसके अलावा इनको कुछ पसंद नहीं आता, वो उन लोगों के लिए नहीं।

जो नए खाने पसंद करते हैं, जिनको एक्सप्लोर करना पसंद है, कि अगर एक बार खराब निकल भी जाए इट्स ओके, यार खाने का एक्सपीरियंस खराब हुआ, नेक्स्ट टाइम हम अपना जो रेगुलर खाते हैं वो खा लेंगे। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा है भाई साहब, अगर मेरा खाने का एक्सपीरियंस खराब हुआ तो ठीक नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए ये नहीं है, थाई रेस्टोरेंट वीक 2026 होने वाला है और रॉयल थाई एम्बेसी इसे ऑर्गेनाइज करा रही है, जो 3 सितंबर से 19 सितंबर 2026 तक चलेगा। तो यानी कि शुरू हो चुका है। इस फेस्टिवल के जरिए कतर के लोगों को ऑथेंटिक साउथ ईस्ट एशियन गैस्ट्रोनॉमी और एक्सक्लूसिव क्यूरेशंस चखने का मौका मिलेगा। और अगर मॉल्स और फैमिली एक्टिवेशंस की बात करें तो कतर के रिटेल स्पेसेस काफी इंटरैक्टिव एडुकेशनल और गेमिंग कैंपेन्स पर फोकस कर रहे हैं। दोहा फेस्टिवल सिटी में फेस्टिवल एकेडमी बैक टू स्कूल कैंपेन चल रहा है, जो 12 सितंबर 2026 तक चलेगा। यहां स्टूडेंट्स के लिए एक इंटरैक्टिव लर्निंग हब बनाया गया है, जहां साइंस शोज, क्रिएटिव बिल्डिंग और इंस्टेंट गिफ्ट्स मिल रहे हैं। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए इसी मॉल के अंदर एंग्री बर्ड वर्ल्ड इंडोर थीम पार्क भी है, जहां मल्टी जनरेशनल राइड्स और डिजिटल गेम्स हैं, उसका भी बच्चे लुत्फ उठा सकते हैं। स्पोर्ट्स लवर्स के लिए ग्रैंड हमद स्टेडियम में होने वाला है जबरदस्त माहौल, बिटवीन अल अरबी दोहा स्पोर्ट्स क्लब और कतर एससी के बीच, यानी कि कतर स्पोर्ट्स क्लब के बीच। ये एक्साइटिंग फुटबॉल मैच भी उसी शाम को होने वाला है। तो चाहे वो स्पोर्ट्स लवर हो, चाहे वो बच्चे लोग हैं, चाहे वो खाने के शौकीन हो, हर जगह कुछ ना कुछ मिलेगा। दोहा फेस्टिवल सिटी में बच्चों के लिए, खाने पीने के शौकीन के लिए थाई रेस्टोरेंट वीक में, और फिर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए अल अरबी दोहा स्पोर्ट्स क्लब, कतर स्पोर्ट्स क्लब साथ में आएंगे और ग्रैंड हमद स्टेडियम में मुकाबला करेंगे। और अब बात कर लेते हैं कतर के नेशनल विजन 2030 से अलाइन होता हुआ सस्टेनेबिलिटी और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, कतर नेशनल विजन 2030 के तहत देश ग्रीन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। इस सिलसिले में 5th रेट्रोफिट टेक और सस्टेनेबल बिल्डिंग कतर समिट दोहा में 22 सितंबर 2026 को होने जा रही है। इस समिट में गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर्स, डेवलपर्स और टेक प्रोवाइडर्स मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने पर बात करेंगे। देश का टारगेट है, यानी कि कतर का टारगेट है कि 2030 तक कम से कम 35% फैक्ट्रीज को सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस पर ट्रांजिशन कर दिया जाए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने हाल ही में 3 नए सस्टेनेबल पब्लिक पार्क लॉन्च किए हैं, जिनमें मॉडर्न फिटनेस एरियाज और बड़े पेडेस्ट्रियन पाथ्स भी हैं। स्मार्ट सिटी के ऊपर बात करें तो कतर डेटा ड्रिवन अर्बन लिविंग पर बिलियंस इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो मुशरफ डाउनटाउन की बात हो, चाहे वो लुसेल सिटी के बारे में बात हो। मुशरफ डाउनटाउन दोहा में एक एआई पावर्ड ऑटोमेटेड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क लगाया गया है, जो कि सेंट्रल कमांड हब के जरिए थाउजेंड्स ऑफ सेंसर्स को इंटीग्रेट करके रिसोर्स यूसेज को ऑप्टिमाइज करता है। और लुसेल सिटी भी अपना आईसीटी नेटवर्क एक्सपेंड कर रही है, ताकि ट्रैफिक फ्लो, एनर्जी ग्रिड्स और वाटर कंजम्पशन को रियल टाइम डेटा से ट्रैक किया जा सके। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एडुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर, कि कतर का क्या फोकस है एडुकेशन को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर और स्टार्टअप के इकोसिस्टम को लेकर। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन यानी कि MOEHE ने बैक टू स्कूल 2026-2027 कैंपेन शुरू किया है, ताकि एक फ्यूचर रेडी लर्निंग सिस्टम बनाया जा सके। इसका एक मेन पार्ट फर्स्ट स्टेप प्रोग्राम है, जो ग्रेड 1 के नए एनरोल्ड पब्लिक स्कूल के बच्चों के ट्रांजिशन को इजी बनाता है, साथ ही एडुकेशनल इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि एक्रेडिटेड

0: प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने अनाउंस किया है कि उनकी 70% पब्लिक बस फ्लीट अब फुल्ली इलेक्ट्रिक हो चुकी है और उनका टारगेट इसे 2030 तक 100% करने का है। दोहा मेट्रो को इंडस्ट्रियल जोन तक बढ़ाने और हमद पोर्ट को अपग्रेड करने का काम भी लगातार चल रहा है। बिजनेस साइड पर अगर देखें तो दोहा में 21 से 24 सितंबर 2026 तक प्रेस्टीजियस ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप कांग्रेस यानी कि GEC 2026 होने वाला है। इसी के साथ कतर ने अपने फंड ऑफ फंड्स प्रोग्राम को बढ़ाकर $3 बिलियन कर दिया है और स्टार्टअप कतर के तहत फॉरेन टेक एंटिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए $5.5 मिलियन तक की फंडिंग और इंटरनेशनल फाउंडर्स को लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी वीजाज भी दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था कतर 2026 जहां पर हमने हर एक छोटी और बड़ी चीज को कवर किया ताकि आपके लिए, फूडी भाइयों के लिए और बच्चों के लिए, सारे लोगों के लिए कुछ न कुछ कतर में मौजूद रहे। तो जल्दी से एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि इस हफ्ते आप कहां पर एंजॉयमेंट कर सकते हैं। अगर हम मेजर अनाउंसमेंट और गेमिंग इवेंट्स के बारे में बात करें तो वर्चुअल सिटी बैटल ग्राउंड कतर 2026 हो रहा है जिसमें प्राइज मनी रखी गई है $2 लाख का। ये मैसिव प्राइज पूल रखा गया है और इसमें अलग अलग तरह के जो गेम है वो खेले जाएंगे और ये प्राइज मनी टोटल 7 ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड गेमिंग टाइटल्स के बीच डिवाइड होगा। उसके अलावा दोहा फेस्टिवल सिटी भी आपके लिए बहुत कुछ ला रहा है एंड देन कतर बोट शो 2026 भी हो रहा है। जो कतर बोट शो के शौकीन है उनको इसका फॉलो अप जरूर लेना चाहिए। बाकी जानकारी आपको विजिट कतर की वेबसाइट से मिल जाएगा। उसके अलावा जिनको म्यूजिक का शौक है उनको बता दें 10 सितंबर 2026 को कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में जॉन लेजेंड आ रहे हैं। उनका एक डीपली सोलफुल इंडोर वोकल और पियानो परफॉर्मेंस स्केड्यूल्ड है 10 सितंबर QNCC। अगेन ज्यादा जानकारी के लिए आपको कहां जाना है, विजिट कतर की वेबसाइट पे। वीकेंड अट्रैक्शन की बात करें तो नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर बहुत कुछ आपके लिए लेकर आ रहा है। फुल डे म्यूजियम टूर भी आप ले सकते हैं हमारे 3-2-1 कतर ओलंपिक और स्पोर्ट्स म्यूजियम में। उसके अलावा फैल्कन एग्जीबिशन एक बार फिर से वापस आ रहा है विच इज सहेल कटारा इंटरनेशनल हंटिंग एंड फैल्कन एग्जीबिशन। ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इवेंट है कतर का। अगर आप कतर में नए हैं तो इस जगह पे आपका जाना लाजमी, मतलब मैंडेटरी है, जाना ही चाहिए। 8 सितंबर से शुरू हो रहा है। उसके अलावा थाई रेस्टोरेंट वीक 2026 3 सितंबर से 19 सितंबर तक चलेगा। दोहा फेस्टिवल सिटी में फेस्टिवल एकेडमी बैक टू स्कूल कैंपेन चल रहा है 12 सितंबर तक जो कि लगातार चलेगा। उसके अलावा स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए अल अरबी दोहा स्पोर्ट्स क्लब और कतर स्पोर्ट्स क्लब के बीच होगा एक जबरदस्त मैच ग्रैंड हमद स्टेडियम में। इसके साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी शो में जिसका नाम होगा कतर 2026 और मजीद हम खूब सारे इवेंट्स और लाइव कॉन्सर्ट से लेकर कतर के फ्यूचर की हम यहीं पर बात करेंगे। दिल से देसी
1: कतर 2026 RJ फजील के साथ रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
1: FM 107 दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: रूम करे शेक अप, आंखों में फायर लेवल मेकअप, कल जो ख्वाब थे आज चेज अप, दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप. ए दोहा वाला मैं कबीर,
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप.
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी.
3: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया. सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी
2: गेम चेंजर सीजन 2. स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर. आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं.
4: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है. ट्यून इन टू FM 107, दिल से देसी.
5: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

0: fun.
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dilsi Desi.
1: Let's go crazy.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: रफ्तार मेरी जिंदगी का एक सिंपल सा उसूल है, या तो भीड़ में सड़ो या स्पीड से बढ़ो।

0: आवाज़ नहीं होती, ये एक ताकत है। अच्छी बात झगड़े को ख़त्म कर देती है, गुस्से को ठंडा कर देती है, दिलों को दोबारा जोड़ देती है। समझ कराम, कितने ही बार एक ही नरम जुमले ने किसी को रोने से बचाया, किसी कमज़ोर का साथ दिया, किसी लड़ाई को ख़त्म कर दिया और दो दोस्तों को फिर से मिला दिया। याद रखो बच्चों, जब हम अच्छी बात कहते हैं तो शैतान का काम ख़राब हो जाता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम लड़ें और कुरान चाहता है कि हम जुड़ें। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे हमेशा सबसे अच्छी बात कही, क्योंकि बुरी बात दिलों के बीच दुश्मनी पैदा करती है। दोस्तों, हो सकता है कि हर बार तुम न जीत सको, हर बार तुम जवाब न दे सको, लेकिन जब तुम अच्छी बात का इंतखाब करते हो तो अल्लाह के नज़दीक तुम जीत जाते हो। आज के सबक याद रखो कि जब कोई बुरा कहे तो खुद अच्छा बन जाओ, जब कोई गुस्सा करे तो खुद नरम बन जाओ, और जब दिल दुखे तो कुरान को याद कर लो। तो सामने करामी को तो फिर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मुलाकात होती है बिइज़्निल्लाह ताला। जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है, और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुक कर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए।
0: सामने किराम, प्यारे बच्चों, अब जरा सुकून से बैठ जाओ, अपने दिल को नरम और साफ कर लो। अगर दिल चाहे तो मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता भी कह सकते हो, वकूलु लिन्नासि हुस्ना। एक बार फिर दिल से, वकूलु लिन्नासि हुस्ना। इस तरह सामने किराम, हदीस ने भी हमें यही सिखाया है कि हम अपने ज़बान के ज़रिए किसी का दिल नहीं तोड़ें। इस बात को हमें दिल की गहराई में उतार लेनी है कि मेरी ज़बान किसी को दुख नहीं देगी, मेरी बात किसी का दिल नहीं तोड़ेगी। नन्हे दोस्तों, ज़बान एक छोटी सी चीज़ है लेकिन उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। एक नरम बात ज़ख़म पर मरहम बन सकती है, एक प्यारा जुमला उदास दिल को मुस्करा सकता है, और एक अच्छा लफ्ज़ दो दिलों को जोड़ सकता है। इसलिए कुरान हमें सिखाता है कि हमारी हर बात जायका रखती हो, रोशनी रखती हो और दिल को सुकून देने वाली हो। समझने के इसी तरह अब एक लम्हा खामोशी इख्तियार करें और दिल में सोचें कि आज हम किसके साथ नरम बात करेंगे। मुअज़्ज़ज़ प्यारे वालिदैन, अब आपकी जनाब में भी हमारी चंद गुजारिशात हैं। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं और वही बोलते हैं जो वो सुनते हैं। अगर हम आवाज़ ऊंची करें, सख्त लफ्ज़ बोलें या गुस्से में बात करें तो बच्चे भी वही ज़बान सीख लेते हैं, और अगर हम नरमी से बात करें, एहतराम से जवाब दें और ग़लती पर भी प्यार से समझाएं तो बच्चे अच्छी ज़बान और अच्छे अखलाक सीखते हैं। याद रखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बदज़बान नहीं थे, कभी गाली नहीं देते थे, कभी किसी को जलील नहीं करते थे। उनकी हर बात खुशबू की तरह होती थी, रोशनी की तरह होती थी और दिल पर सुकून बनकर उतरती थी। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि बच्चे कुरान को अपनाएं तो हमें कुरान को सज़ा नहीं बनाना, ज़बान को हथियार नहीं बनाना और दीन को दबाव नहीं बनाना है। तो आइए हम सब मिलकर ये नियत करें, हमारी बात मरहम बनेगी, हमारी ज़बान रोशनी बनेगी और हमारा घर अच्छी बातों से भर जाएगा। प्यारे बच्चों, ज़रा एक बात सोचो, अगर हम सब इस दुनिया में अकेले होते तो कैसा लगता? कोई दोस्त ना होता, कोई बात सुनने वाला ना होता, कोई मुस्कराने वाला ना होता। सच तो ये है बच्चों कि ज़िंदगी दूसरों के साथ ही खूबसूरत लगती है। अल्लाह ने हमें अकेले रहने के लिए नहीं बनाया बल्कि मिलजुल कर रहने के लिए बनाया है। लेकिन बच्चों, जब हम साथ रहते हैं ना तो हमारी बातें बहुत अहम हो जाती हैं, क्योंकि एक बात किसी का दिल तोड़ सकती है और एक बात किसी का दिल जोड़ सकती है। कभी कभी एक मजाक में कही गई बात किसी के दिल को बहुत ज़्यादा दुखा देती है, और कभी मोहब्बत से कही गई एक छोटी सी बात किसी को इतनी हिम्मत दे देती है कि वो आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, क्या तुम जानते हो

0: सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
2: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से एफएम 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ।
3: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। Stories of Prophets, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
4: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: दोस्तों, गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर होना एक अहम रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। हर थोड़े वक्त के बाद ये चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं, और गाड़ी में इसे ऐसी जगह रखिए जहां इमरजेंसी के वक्त आसानी से मिल सके, और साथ ही इसके इस्तेमाल करने को भी यकीनी बनाएं। याद रखिए, ये छोटी सी तैयारी किसी इमरजेंसी में जान बचा सकती है। फायर सेफ्टी को इग्नोर ना करें, खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है। अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं। आग किसी भी वक्त लग सकती है ओवरहीटेड इंजन, शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से। जब तक मदद आए, आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है। अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए, और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज ही चेक करें क्या आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है। एफएम 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है।
5: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
6: एफएम 107 दिल से देसी।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
4: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

फिर उनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा, मगर उन्होंने अपनी बड़ाई का घमंड किया और वो मुजरिम लोग थे। बस जब हमारे पास से हक उनके सामने आया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो खुला जादू है। मूसा ने कहा, तुम हक को ये कहते हो जबकि वो तुम्हारे सामने आ गया, क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर फलाह नहीं पाया करते। उन्होंने जवाब में कहा, क्या तू इसलिए आया है कि हमें उस तरीके से फेर दे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, और जमीन में बड़ाई तुम दोनों की कायम हो जाए? तुम्हारी बात तो हम मानने वाले नहीं हैं। और फिरौन ने अपने आदमियों से कहा कि हर माहिर फन जादूगर को मेरे पास हाजिर करो। जब जादूगर आ गए तो मूसा ने उनसे कहा, जो कुछ तुम्हें फेंकना है फेंको। फिर जब उन्होंने अपने अंचर फेंक दिए तो मूसा ने कहा, ये जो कुछ तुमने फेंका है ये जादू है, अल्लाह अभी इसे बातिल किए देता है। मुफ्सिदों के काम को अल्लाह सुधरने नहीं देता, और अल्लाह अपने फरमानों से हक को हक कर दिखाता है, खाह मुजरिमों को वो कितना ही नागवार हो। फिर देखो, मूसा को उसकी कौम में से चंद नौजवानों के सिवा किसी ने न माना। फिरौन के डर से और खुद अपनी कौम के सरबरावरदा लोगों के डर से, जिन्हें खौफ था कि फिरौन उनको आजाब में मुब्तला कर देगा। और वाकई ये है कि फिरौन जमीन में गलबा रखता था, और वो उन लोगों में से था जो किसी हद पर रुकते नहीं हैं। मूसा ने अपनी कौम से कहा कि लोगों, अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उस पर भरोसा करो अगर मुसलमान हो। उन्होंने जवाब दिया, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया, ए हमारे रब, हमें जालिम लोगों के लिए फितना न बना, और अपनी रहमत से हमको काफिरों से नजात दे।

حتى

अगर कभी हम इंसान को अपनी रहमत से नवाजने के बाद फिर उससे महरूम कर देते हैं तो वो मायूस होता है और नाशुक्री करने लगता है। और अगर उस मुसीबत के बाद जो उस पर आई थी हम उसे नेमत का मजा चखाते हैं तो कहता है मेरे तो सारे दिल दरपार हो गए, फिर वो फूला नहीं समाता और अकड़ने लगता है। इस ऐब से पाक अगर कोई हैं तो बस वो लोग जो सब्र करने वाले और नेकोकार हैं, और वही हैं जिनके लिए दरगुजर भी है और बड़ा अज्र भी। तो ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उन चीजों में से किसी चीज को बयान करने से छोड़ दो जो तुम्हारी तरफ वही की जा रही है, और इस बात पर दिल तंग हो कि वो कहेंगे इस शख्स पर कोई खजाना क्यों ना उतारा गया, या ये कि इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों ना आया। तुम तो महज खबरदार करने वाले हो, आगे हर चीज का हवालेदार अल्लाह है। क्या ये कहते हैं कि पैगंबर ने ये किताब खुद घड़ ली है? कहो अच्छा ये बात है तो इस जैसी घड़ी हुई 10 सूरतें तुम बना लाओ, और अल्लाह के सिवा और जो जो तुम्हारे माबूद हैं उनको मदद के लिए बुला सकते हो तो बुला लो, अगर तुम उन्हें माबूद समझने में सच्चे हो। अब अगर वो तुम्हारे माबूद तुम्हारी मदद को नहीं पहुंचते तो जान लो कि ये अल्लाह के इल्म से नाजिल हुई है, और ये कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है। फिर क्या तुम इस अम्र हक के आगे सरे तस्लीम खम करते हो? जो लोग बस इस दुनिया की जिंदगी और इसकी खुशहालियों के तालिब होते हैं उनकी कारगुजारी का सारा फल हम यहीं उनको दे देते हैं, और इसमें उनके साथ कोई कमी नहीं की जाती, मगर आखिरत में ऐसे लोगों के लिए आग के सिवा कुछ नहीं है। वहां मालूम हो जाएगा जो कुछ उन्होंने दुनिया में बनाया वो सब मिलियामेट हो गया, और अब उनका सारा किया धरा महज बातिल है।

उन जालिमों पर जो खुदा के रास्ते से लोगों को रोकते हैं, उसके रास्ते को टेढ़ा करना चाहते हैं और आखिरत का इनकार करते हैं। वो जमीन में अल्लाह को बेबस करने वाले न थे और न अल्लाह के मुकाबले में कोई उनका हामी था। उन्हें अब दोहरा अजाब दिया जाएगा। वो न किसी की सुन ही सकते थे और न खुद ही उन्हें कुछ सूझता था। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खुद घाटे में डाला और वो सब कुछ इनसे खोया गया जो इन्होंने घर रखा था। नागुजीर है कि वही आखिरत में सबसे बढ़कर घाटे में रहे वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और अपने रब ही के होकर रहे, तो यकीनन वो जन्नती लोग हैं और जन्नत में वो हमेशा रहेंगे। इन दोनों फरीकों की मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी तो हो अंधा बहरा और दूसरा हो देखने और सुनने वाला। क्या ये दोनों यकसां हो सकते हैं? क्या तुम इस मिसाल से कोई सबक नहीं लेते?